0: उत्तर प्रदेश के बलिया में एक अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिर्फ 11 साल का एक मासूम बच्चा अब एक बड़े मठ का महंत बन गया है। बलिया के मझौवा मठ में रविवार की शाम अद्भुत नजारे की गवाह बनी, क्योंकि 11 साल के बालक शाश्वत शौर्य तिवारी का पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक किया गया। सोशल मीडिया और इलाके में इस नन्हे महंत की चर्चा हर तरफ है। दिलचस्प बात यह है कि जब तिलक और अभिषेक की रस्में चल रही थी, तो ये 11 साल का बच्चा वीडियो कॉलिंग पर अपने परिवार से बात करते हुए हंसता मुस्कुराता नजर आया। इस मौके पर मठ के तमाम भक्त तो मौजूद थे ही, आसपास के इलाकों के लोग भी इस अलौकिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। महंत बनने के बाद अब 11 साल के इस बच्चे को नया नाम मिला है, श्याम नारायण रामानुज श्री वैष्णोदास। अयोध्या में दूल्हा सरकार के दबाव को इस बार किसी आम फूलों और पत्तियों से नहीं, बल्कि फलों के राजा आम और उसकी पत्तियों से सजाया गया है। गर्मी के सीजन में मंदिर को पूरी तरह से मैंगो थीम पर डेकोरेट किया गया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। चारों तरफ लटकते हुए हरे और रसीले आम और उनके बीच विराजे प्रभु। आस्था और मौसम उत्सव के इस अनोखे संगम को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई दूल्हा सरकार के इस मनमोहक रूप के दर्शन करने और इस अद्भुत सजावट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखा। आम के पत्तों और तरह तरह की वैरायटी के आमों से सजे इस दरबार की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मैदानी इलाकों में बढ़ते पारे के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रौनक देखने लायक है। वीकेंड पर तो सैलानियों की तादाद 2 से 3 गुना हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देखने को मिला, जहां सैलानी बड़ी तादाद में उमड़े। पहाड़ियों की चोटियों पर हसीन मौसम तो सैलानियों को भी भा रहा है, लेकिन कुल्लू की ब्यास नदी के किनारे भी सैलानियों का मेला लगा हुआ है। अलग अलग इलाकों से आए सैलानी नदी की ठंडी धारा में रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले रहे हैं। नदी के ठंडे पानी के बीच सैलानियों के लिए राफ्टिंग रोमांच से भरपूर है। गर्मी से राहत की तलाश में यहां पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी बोनस जैसा है। जून महीने में सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते ब्यास नदी में राफ्टिंग की संख्या बढ़ रही है, और सैलानियों के आने से स्थानीय पर्यटन कारोबार को भी इसका खूब फायदा मिल रहा है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ता तनाव और मानसिक दबाव लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे माहौल में पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन ने एक अनूठी पहल की है, इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की है। IIT मंडी में इस परियोजना का प्रोटोटाइप भी दिखाया जा चुका है। गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से इन कुटीरों को बनाया गया है। कुटीर में एक शख्स को लगभग 10 मिनटों का समय बिताना होता है। इस दौरान उसे अलग अलग प्राकृतिक ध्वनियां सुनाई जाती हैं, जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज, पानी की बौछारों की ध्वनि और घंटियों की आवाज शामिल है।
1: और अब बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। भक्ति और आस्था की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के प्रथम जत्थे को झंडे दिखाकर रवाना किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं।

0: नाथुला में भारत चीन बॉर्डर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुक भूटिया, भारतीय सेना आईटीबीपी और सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। सिक्किम के राज्यपाल ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, हर हर महादेव की गूंज पूरी फिजा में बिखर गयी। नाथुला में श्रद्धालुओं के बीच भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और उत्साह नजर आया। कई तीर्थयात्रियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बताया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार हो रहा है। एक तीर्थयात्री ने कहा कि अब तक ये एक शानदार यात्रा रही है, प्रशासन ने हम सभी के लिए इसे बहुत आसान बना दिया है, अब भगवान शिव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
1: हमें दर्शन देंगे वहाँ जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, कैलाश पर्वत दर्शन होंगे, इससे बढ़िया और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती
0: है। अभी के लिए इसे बहुत आसान बना दिया है, अब भगवान शिव के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है।
1: हमें दर्शन देंगे वहाँ जिस लोकेशन पे वो रहते हैं, कैलाश पर्वत दर्शन होंगे, इससे बढ़िया और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हम बहुत खुश हैं।
0: समुद्र तल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शिव के धाम कैलाश पर्वत के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। 20 जून को सिक्किम में भारत चीन सीमा पर मौजूद नाथुला दर्रे से होते हुए श्रद्धालु कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर रवाना हुए। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक शांति, आस्था और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का अनुपम अवसर भी है।
2: आज बाबा विश्वनाथ बाबा मानसरोवर की यात्रा के लिए दूसरे साल का पहला जत्था हमें रवाना करने का मौका मिला है। इन सबको बाबा की मेहरबानी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जिस प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से सिक्किम के लोग जो इनका आतिथ्य किया है, सबने बड़ा प्रशंसा व्यक्त की है और मैं इन यात्राओं के लिए और सभी यात्रियों के लिए मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हूं। और ये पिछले 5 सालों से जो बंद था, पिछले साल ही शुरू हुआ और मेरा सौभाग्य है कि पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला है।
0: हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन कर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही है, क्योंकि सालों से संजोया गया कैलाश मानसरोवर दर्शन का सपना अब साकार जो होने जा रहा है।
3: कैलाश मानसरोवर यात्रा से जो मेरा जो मानना है वो मैं क्या मांगूंगा, शायद कोई नहीं मांग रहा होगा, कि मैं चाहता हूं कि भगवान शिव जी भारत में आके हमको दर्शन दें।
0: सिक्किम के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकलते समय श्रद्धालुओं में बहुत जोश और उत्साह था और उम्मीद है कि उनकी धर्म यात्रा बाबा बर्फानी की कृपा और आशीर्वाद से सफल होगी।
4: जितना भी यहाँ लोग भक्तजन श्रद्धालु सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट बैच कम से कम सिक्किम में मोटा मोटी 5 दिन पहले वहाँ लोग का उन लोग का आक्रमण हुआ था और इसलिए उन लोग को एकदम डिफरेंट जगह पे हम लोग उन लोग को एक्लमाटाइजेशन के लिए एकदम रखा गया था। और इसके लिए जितना भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट पूरा ध्यान रख के सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जितना भी ऑफिशियल्स है वो सब उन लोग को एकदम देखभाल जो हॉस्पिटेलिटी जो सिक्किम का देना था वो सब दे के एकदम इतना अच्छा खातिरदारी करके जब अभी हम लोग उन लोग के साथ जितना भी भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पे प्रेजेंट था जो अभी आर्मी के जो अभी वो ऊपर जो मेन हॉल में हम लोग का थोड़ा इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए हम लोग को ऐसा मतलब जानने में आए कि वो लोग एकदम खुश था जो सिक्किम का जो हॉस्पिटैलिटी में जो हम लोग बहुत ही स्पेशल है बोल के उन लोग का मुंह से हम लोग को सुनने में आ रहा था, इसलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा हुआ,
5: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक अलोंग विद आईटीबीपी, एसटीडीसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो आई थिंक इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी।
0: पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि इस साल कुल 500 तीर्थयात्री नाथुला रास्ते से यात्रा करेंगे। तीर्थ यात्रियों को 50-50 लोगों के 10 समूहों में बांटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से सिक्किम टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं तीर्थ यात्रियों ने अलग अलग सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों द्वारा दी गई सुविधाओं की तारीफ की।
4: भगवान का कोई दर्शन करने के लिए आए हैं तब एकदम वो लोग एकदम खुश था, सहित ये यात्रा सफल रहेंगे और ये 10 दिन के यात्रा रहेंगे और कम से कम ये 30 तारीख को वो लोग सब यहाँ पे बॉर्डर फिर वापस आएंगे। इसी तरह मतलब इस साल का भी जो 10 बैच है वो लोग एकदम टर्न वाइज करते आएंगे और लास्ट बैच रहूँगा ये अगस्त महीना में जो लास्ट बैच हम लोग हैंडल करेंगे। सहित ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब मतलब जो हो रहा है, जो यात्रा शुरू हो रहा है, ये काफी साल से कम 5 साल से बंद था। लास्ट ईयर ही ये मतलब यात्रा शुरू हुआ है। ये यात्रा शुरू होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिक्किम टूरिज्म में वैल्यू एडिशन देने का एक मतलब काम हो रहा है।
6: बहुत अच्छा, सिक्किम गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सभी स्टाफ बहुत अच्छे, हम लोगों का देखभाल किया बहुत।
0: बता दें कि इस यात्रा के पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। ये ग्रुप देश के अलग अलग हिस्सों से आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ पाए गए।
7: जैसा कि पता है कि ITUP कैलाश मानसरोवर यात्रा में शुरू से इन्वॉल्व है और दोनों तरफ से लिपु लेक और नाथुला की तरफ से हम यात्रा कराते हैं। हमारा काम यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान करना और साथ ही साथ मेडिकल कवर देना होता है। तो बाकी साल की तरह भी इस साल भी हम लोगों ने उसी ढंग का अरेंजमेंट किया है और फॉर्चुनेटली मेडिकल फाइनल एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें सारे यात्री क्लियर हो गए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इनको सिक्योरिटी देना, मेडिकल कवर कराना और क्रॉस कराना हमारी जवाबदारी है। इस बार भी यात्री करीब करीब पूरे हिंदुस्तान से हैं, तमिलनाडु से लेकर के वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, नोएडा, पूरे इलाके के, पूरे हिंदुस्तान के यात्री हैं और अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 30 साल से लेकर 70 साल तक।
0: हालांकि ये यात्रा चुनौतियों से भरी हुई जरूर है, लिहाजा विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास ने यात्रियों को आगाह किया है कि तिब्बत का क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है जहां ऑक्सीजन की कमी, ठंडा मौसम और सीमित सुविधाएं चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूरी तैयारी, चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक सावधानियों के साथ यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में अंतिम, सर्वोच्च और महातीर्थ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदुओं, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का बहुत धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है, जबकि मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
8: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर इंडोनेशिया में सुनाएंगे 3 दिनों तक हनुमंत कथा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में हनुमंत कथा की तैयारी कर रहे हैं। जकार्ता में वो 3 दिनों तक सनातन की अलख जलाएंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जकार्ता में 26 से 28 जून तक प्रभु का गुणगान करेंगे, जहां 3 दिनों तक भव्य हनुमंत कथा और दिव्य दरबार सजेगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर इंडोनेशिया के कार्यक्रम की जानकारी शेयर की है। भारतीय उपभोक्ता अब सामानों से ज्यादा अनुभवों पर खर्च कर रहे हैं। CBRE की नई रिपोर्ट बता रही है कि 2030 तक अनुभवों पर होने वाला खर्च 10.3% की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि भौतिक वस्तुओं से आगे निकल जाएगा। इसमें होटल सेवाओं की ग्रोथ सबसे तेज यानी करीब 10.6% रहने का अनुमान है। CBRE की रिपोर्ट बता रही है कि इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत जेन जी है। ये पीढ़ी तेजी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और जैसे जैसे इनकी आय बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके खर्च करने का तरीका भी बाजार की दिशा तय कर रहा है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बदलने वाली है। इसके तहत अब सिर्फ लाइट लगाना ही नहीं बल्कि उसे चालू रखना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यानी अगर किसी इलाके की स्ट्रीट लाइट खराब होती है और उसे समय पर ठीक नहीं किया जाता है तो ठेकेदार को भुगतान में कटौती झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट्स के लिए नो परफॉर्मेंस नो पेमेंट मॉडल लागू करने का फैसला लिया है। जितने घंटे लाइट खराब रहेगी उसी के हिसाब से कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें स्मार्ट एलईडी लाइट्स को एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा जो रियल टाइम में पूरे नेटवर्क पर नजर रखेगा। इससे अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और अंधेरे वाले हिस्सों की पहचान जल्दी हो सकेगी। असम की ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। ईयू के सदस्य देशों असम के लिए ट्रेवल एडवाइजरी हटा लेने के बाद अब एयर इंडिया 4 अगस्त से गुवाहाटी से दुबई और अबुधाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन नॉनस्टॉप सेवाओं के साथ गुवाहाटी एयरपोर्ट अब 4 देशों यूएई, थाईलैंड, सिंगापुर और भूटान से जुड़ गया है। सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद अगला लक्ष्य वियतनाम के लिए सीधी सेवाएं शुरू करना है। सीएम ने बताया कि गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक बड़े ट्रैवल और ट्रांजिट हब के तौर पर स्थापित करने की तैयारी हो रही है। सासनगीर और गिरनार जंगल में घूमने और एशियाई शेरों के दीदार करने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक अहम खबर है। एशियाई शेरों का वेकेशन शुरू हो रहा है। वन विभाग ने कल से सासनगीर और गिरनार जंगल सफारी को अगले 4 महीने के लिए बंद रखने का फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब 15 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए लायन सफारी भी बंद रहेगी।
8: सुपरस्टार यश की टॉक्सिक की रिलीज डेट आ गई है, तो वहीं अमेरिका में दिलजीत दोसांझ का जलवा देखने को मिला। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
9: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज है। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की रिलीज डेट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। एक्टर यश ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की है कि टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। टॉक्सिक की रिलीज का इसलिए भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इस फिल्म की रिलीज डेट 2 बार टल चुकी है। अब लंबे वीकेंड के साथ फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। टॉक्सिक एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा मूवी है जो गोवा के ड्रग माफिया और अंडरवर्ल्ड की डार्क दुनिया को दिखाएगी। एक्टर दिलजीत दोसांझ के नाम कामयाबी का एक कीर्तिमान आ गया। अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स ने दिलजीत दोसांझ के सम्मान में एक दिन उनके नाम पर रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने 6 जनवरी का दिन दिलजीत दोसांझ डे के नाम से सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत होगी 2027 की 6 जनवरी से और फिर हर साल 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ के नाम पर लॉस एंजल्स में पब्लिक हॉलिडे रखा जाएगा। लॉस एंजल्स द्वारा किसी भारतीय कलाकार को दिया गया यह सबसे बड़ा सम्मान है। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर 2 पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। आंकड़ों के मुताबिक धुरंधर ने दुनिया भर में 3,100 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई। पुष्पा और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की हिट फिल्मों की लिस्ट में लेटेस्ट कॉकटेल 2 का नाम भी शामिल होने वाला है क्योंकि केवल 3 दिनों में दुनिया भर में फिल्म ने 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और 100 करोड़ की ओर बढ़ चुकी है। होमा अजानिया के निर्देशन में बनी कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर की तिकड़ी है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर अच्छी कमाई हासिल की है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और उनके मंगेतर रोहन ठक्कर की शादी का जश्न शुरू हो गया है। शादी से पहले की रस्मों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंशुला की आंटी महीप कपूर ने शादी से पहले के जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। शादी से पहले के जश्न के वीडियोस और तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया गया है कि शादी शुरू, जय माता दी। अंशुला एवं रोहन, उनकी इन तस्वीरों से सेरेमनी की एक झलक दिखी जो माता की चौकी लग रही है।
8: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले, लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

0: आप जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है। जानवरों के मजेदार और प्यारे से वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। देखिए कैसे ये छोटा हाथी पानी के टब में पूरी तरह मस्ती के मूड में है। कभी वो पानी में उछलता कूदता है तो कभी सिर के बल टब में गिर जाता है। उसकी शरारतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं।
1: इंग्लैंड में धूमधाम से मना समर सॉल्स्टिस उत्सव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: इक्कीस जून को इंग्लैंड के प्राचीन स्मारक स्टोन हेंज में समर सोल्स्टिस का उत्सव मनाया गया। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सूरज की पहली किरणों के साथ इस विशेष खगोलीय घटना को एंजॉय किया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साल के सबसे लंबे दिन को बताने वाले इस सालाना आयोजन में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक इमारत स्टोनहेंज में बड़ी संख्या में लोग पूरी रात जागकर सूर्योदय का इंतजार करते रहे, और जैसे ही सनराइज हुआ, इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने म्यूजिक के साथ डांस कर विशाल पत्थरों को छूकर इस पल का जश्न मनाया। डेनमार्क के फैनो द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े पतंग महोत्सव में 26 देशों के हजारों पतंगबाज जुटे। हर साल जून में आयोजित होने वाले फैनो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स मीटिंग में इस बार करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आसमान में लगभग 25,000 रंग बिरंगी पतंगे उड़ी, जिनमें विशाल काय ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर और अनोखे डिजाइन की पतंगे शामिल रही। डेनमार्क के उत्तरी सागर तट से सटे फैनो द्वीप को पतंग उड़ाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थानों में गिना गया है। इसकी 14 किलोमीटर लंबी चौड़ी और समतल समुद्री रेत और लगातार चलने वाली तटीय हवाएं पतंगबाजों को आदर्श माहौल देती हैं। कलर्स और क्रिएटिविटी से सजे इस महोत्सव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पतंग सिर्फ एक खिलौना भर नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को जोड़ने वाली कला और संस्कृति का अनोखा माध्यम भी है। चीन की राजधानी बीजिंग में चौथे चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो का शुभारंभ हुआ। इस अनोखी एक्सपो में डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट व्हीकल का प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बनी AI। इस विशेष एक्सपो में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ केयर, इंटेलिजेंस ड्राइविंग, स्मार्ट फैक्ट्री और इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक जैसे AI बेस्ड आइटम्स को पेश किया गया। चाइना इंटरनेशनल सप्लाई चेन एक्सपो में 85 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चीन के ल्हासा में डुआनवू फेस्टिवल का

0: के पत्तों में लिपटे चावल की डिश लोगों को खूब पसंद आई। हंगरी के बुडापेस्ट में भारतीय सांस्कृतिक और अध्यात्म की झलक देखने को मिली। ग्लोबल वारी 2026 के दौरान भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी की पवित्र पादुकाएं पहली बार हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंची। ये पवित्र यात्रा 6 जून को यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई थी और नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक होते हुए 21 जून को बुडापेस्ट पहुंची। यहां से ये यात्रा भारत में पंढरपुर की ओर बढ़ेगी। ग्लोबल वारी के जरिए भक्ति और वारकरी परंपरा अब भारत से बाहर यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
2: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
3: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
2: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: जो की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
2: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
3: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
4: क्या मंगल के राशि परिवर्तन से देश दुनिया में अशांति बढ़ेगी? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से किसी राशि के जीवन में दुर्घटना घट सकती है? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
7: आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और आठवां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का विधि विधान से शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आज या कल पहुंच सकता है मुंबई, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार।

0: पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित। रोहित शर्मा, ममूटी, अलका याग्निक और विजय अमृतराज जैसे नामी गिरामी लोगों को मिलेगा पुरस्कार। FIH प्रो लीग में आज भारत का पाकिस्तान से मुकाबला। लंदन में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। करीब 2 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
1: एक कथा सुनो फिर हनुमान चालीसा पे चर्चा। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। आओ, आओ, कुछ लोग कहते ना ये

बहुत खाते हैं भाई, आदमी उतना ही खाए खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो भाई वो तो खाते के हिसाब से ही खाते हैं। त्यागी जी, तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने, तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा घर वालों, घर वाले रखते ही उसी को जो काम का हो, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मुड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मुड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मुड़, सिर को मुड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए तीन गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले ये फायदा है, तो मुड़ मुड़ाए तीन गुण। तो घर वालों ने कहा कि कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांखा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला, जाए कहां? इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां? सामने एक मंदिर था, मठ आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं। टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते हैं, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खा खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर, मंदिर के बाहर बैठे थे। ये जा रहा था रस्ते में, इन्होंने देखा, इसने देखा, बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है। बोले ये भी मोटे ताजे हैं लगता है, ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे लगता है, ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया बोले गुरुजी, हाँ आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हमारा। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरुजी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह, मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम? बोले हाँ दो बार। बोले वो चार नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं, आठ बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, आठ बार खूब खाना। इसने कहा यदि नौ बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भाग हैं, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, नौ बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा, गुरुजी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, और आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले, ले आओ। तो पुजारी जी कहे भाई कम से कम पांच मिनट तो गम खा, पांच मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे, अब इसे फ्री में मिले साव आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, आ सांस तेज चल रही हो, दीवाल में टिक्के कीर्तन करे हरे राम हरे राम, उतई ही सो जाए, जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए, ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं, भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे, इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है। तो ये गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो।
गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लगे। तो गुरु जी बोले इधर आओ जी। जी गुरु जी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरु जी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने

ये गाता रहा। अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। तो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला, एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हो। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

आए, अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाए। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ, और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा, वहां कुछ नहीं है, जो है यही है, यहाँ हम भी खा रहे तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए, लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है। राम जी अकेले नहीं आए, सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगों की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवा ही लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कड़ खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, वो दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ, बढ़िया प्रसाद पवाया। इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किया, भगवान जाने लगे। इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ। तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये मंदिर आ गया, इसने गुरुजी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पूछा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी, इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अभी एकादशी आई। तो गुरुजी के पास गया, बोले, गुरुजी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरुजी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते हैं, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ आटा। गुरुजी को लगा, ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा। तो गुरुजी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे दी, ले ले जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कड़ फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई रख ली, साग बनाई रख ली। इसने सोचा, भगवान को बुला ले, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा। तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता राम।

आते हैं, दो का इंतजाम करो, सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला, अब ये कौन है? भगवान बोले, हमारे भाई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले, हुआ क्या? बोले, लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है, इनका अलग है, दोनों अलग अलग रहे। अरे बोले, नहीं नहीं हमारे भाई हैं, इनकी माता जी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बता। हाँ। बोले, हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है, अब पूरे खानदान का, अब तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए, अब ठीक है, लो बैठो, कोई बात लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे, बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा, वाह लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। मन ही मन सोचे, क्या गजब का आदमी, हम जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं, ये कह रहा है ये क्यों आ गए, क्या गजब का भगत है भाई, क्या गजब का भगत। तीनों लोग बैठ गए, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण भैया, तीनों बेटे, इसने प्रसाद रखा, भोजन कराया। आहा, तीनों को गौर से देखने लगा। भगवान तो भगवान ही है, वो तो सुंदर, परम सुंदर है ही है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम है। सो भगवान श्री नील सरोवर, नीलमण नील, नीलधर श्याम, भगवान का नील स्वरूप है। आहा, अलकावलियां झलक रही हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, बड़ी वज्राग देह माई भुजाए है, बढ़िया गला भरा हुआ शंख की तरह है, कपोल बढ़िया मुस्कुराते हुए लाल लाल होंठ हैं, काली काली कजरारी अखियां हैं, श्वेत दंतावली है। आहा, मधुर मुस्कुराता हुआ श्री हमारे राघवजू सरकार का मुखारविंद है। स्वरूप को देख करके ये अद्भुत हो गया। बोले, वाह, कुछ भी कहो, पहले दो लोग अच्छे लग रहे थे, अब तीनों अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने भी भोजन किया, चरण पकड़ के राम जी से बोला, प्रभु जा रहे? राम जी बोले, जा रहे। भगवान बोले, जा रहे? बोले, अगली बार कितने आओगे? आओ, आओ, आओ। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन बुलाया, तीन आ गए, अब अगली बार गिनती बताओ। भगवान बोले, नहीं हम आ जाएंगे, गिनती नहीं पूछते, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। और भगवान ऐसे ही गोलमोल करके गायब हो गए। अभी आया इसको तो फिर एकादशी की पड़ी, के इस बार एकादशी आएगी फिर आफत होगी। सच में एकादशी आ गई, फिर एकादशी आई। गुरुजी बोले, आज फिर एकादशी है? बोले, है तो। गुरुजी बोले, सिर क्यों लटका है? अरे बोले, वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरुजी बोले, कहना क्या चाह रहे? बोले, इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरुजी बोले, डबल? बोले, कितना? बोले, 8 का 16। 8 शेर दिया था 16। गुरुजी मन में सोचने लगे, 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूरी बेचता है। गुरुजी बोले, 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन, दे दो सामान, आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा, राशन पर्याप्त है, एक काम करो, पहले भगवान को बुला लो, जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे। ये पहले ही बैठ गया, नाम तो जान ही गया था। जिसने फिर हाथ जोड़े, आंख बंद की और गाने लगा,

0: दुनिया में अशांति बढ़ेगी? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से किसी राशि के जीवन में दुर्घटना घट सकती है? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और 8वां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का विधि विधान से शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आज या कल पहुंच सकता है मुंबई, जुलाई के पहले हफ्ते दिल्ली पहुंचने के आसार। आज 65 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित, रोहित शर्मा, ममूठी, अलका याग्निक और विजय अमृतराज जैसी नामी गिरामी लोगों को मिलेगा पुरस्कार। FIH प्रो लीग में आज भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, लंदन में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच, करीब 2 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का हुआ शुभारंभ, 26 जून तक चलेगा मेला। आज रात 9:08 पर बंद किए जाएंगे मंदिर के कपाट। मुख्य गर्भगृह 3 दिनों तक रहेगा बंद। 23, 24 और 25 जून को लगातार 3 दिन और 3 रात चलेगा महायज्ञ। मुख्य समारोह 26 जून को होगा। पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद 26 जून की सुबह शक्तिपीठ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। मेले को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी। भक्तों के लिए कई जगहों पर की गई शिविर और भोजन की व्यवस्था। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। अंबुबाची मेले को देखते हुए प्रशासन का ऐलान। मंदिर तक जाने वाले रास्ते सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्सपो लिखा। महापर्व के अवसर पर असम पधारने वाले दुनिया भर के श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, मां कामाख्या की कृपा दृष्टि से सभी का जीवन सुख शांति समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में व्यापक तैयारी। सुरक्षा एजेंसीज भी तैयारियों में जुटी। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कुलगाम में पुलिस के जंगल के ऊंचे इलाकों में बड़े पैमाने पर चला तलाशी अभियान। 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र तीर्थ यात्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में करेंगे हनुमंत कथा। जकार्ता में 3 दिनों का कार्यक्रम। बाबा बागेश्वर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। जकार्ता में 26 से 28 जून तक करेंगे प्रभु का गुणगान। पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन की अनूठी पहल। इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की।

0: कुटर बनाने में गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक चीजों का किया गया इस्तेमाल। 10 मिनट की साधना और ध्वनि तरंगों से मिलेगी तनाव से मुक्ति। परियोजना में अरोमा मेडिटेशन और साउंड थेरेपी के जरिए तनाव को कम करने और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में शोपुर के कूनू नेशनल पार्क में चीता मित्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीता प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। कूनू पार्क के दो दिवसीय प्रवास के बाद वापस रवाना हुई राष्ट्रपति। देश में चीतों की संख्या 52 से जिनमें से 39 चीते कूनू नेशनल पार्क में हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने दासना इलाके में 250 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। जमीन की कीमत 250 करोड़ रुपए होने का अनुमान। कर्नाटक के बलारी में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने खुद की पहल, 3 लाख जमा करके सड़क की मरम्मत कराई। बिहार में छपरा के शशांक गौरव ने 70वीं बैच की बीपीएससी परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल किया। परिजनों में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के किसान ने पत्नी के नाम पर घर के आंगन में मियाज़ाकी आम के 10 पेड़ लगाए। मियाज़ाकी को माना जाता है दुनिया का सबसे महंगा आम। इस साल पेड़ों पर 30 मियाज़ाकी आम लगे हैं। किसान ने कहा, पेड़ पत्नी के नाम पर लगाए हैं इसलिए इन आमों को बेचेंगे नहीं, लोगों को मुफ्त में खिलाएंगे। गाजियाबाद के दो भाइयों विकास और राहुल ने किया कमाल। ई वेस्ट के प्लास्टिक को स्टाइलिश और टिकाऊ फर्नीचर में बदलकर पेश की मिसाल। विकास और राहुल ई वेस्ट के डेकोरेटिव आइटम्स और फर्नीचर बनाते हैं। उनके बनाए प्रोडक्ट्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी किए जा रहे हैं इस्तेमाल। शेयर बाजार से आई गुड न्यूज, सेंसेक्स 291 अंकों की तेजी के साथ 77.94 पर बंद। निफ्टी 89 अंकों की बढ़त के साथ 24102 पर बंद हुआ। पूर्व अग्निवीरों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। साफ सफाई के मामले में 88 साल के पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इंद्रजीत सिंह सिद्धू लोगों के लिए बने प्रेरणा। चंडीगढ़ में सार्वजनिक जगहों की सफाई के लिए करते हैं काम। सार्वजनिक जगहों की सफाई में रोज 8 घंटे देते हैं इंद्रजीत सिद्धू। नागरिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण के लिए पद्मश्री से किए गए हैं सम्मानित। भारतीय नौसेना के जहाज INS उदयगिरी और INS कवरत्ती वियतनाम के होची मिन सिटी पहुंची। समुद्री सहयोग को और मजबूत करना इसका मकसद। अमेरिका से आई गुड न्यूज, भारतीय मूल की पहली बार चुनाव लड़ रही अपर्णा राज ने वॉशिंगटन DC काउंसलिंग सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, हरी सेवा आश्रम में आज संत सम्मेलन में शामिल हुए। मेरठ के संकेत ने पेश की मिसाल, 2 नंबर से JEE एडवांस में असफल होने के बाद सेल्फ स्टडी कर बने इसरो के साइंटिस्ट। एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड, 100 मीटर रिले में चीन को हराया। भारत ने कुल 3 पदक जीते। जूनागढ़ के गीर सासन में जंगल के राजा एशियाई शेरों का वैक्सीन शुरू, 23 जून से 15 अक्टूबर तक गीर सफारी पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। नौसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, नौसेना में शामिल होंगे 2 नए युद्धपोत INS महेंद्रगिरी और INS मालवन। जुलाई में महेंद्रगिरी को विशाखापट्टनम में किया जाएगा कमीशन, मालवन को कोची में नौसेना में किया जाएगा कमीशन। दुश्मन के रडार से छिपने और एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने में पूरी तरह सक्षम है INS महेंद्रगिरी, 6ठा स्वदेशी युद्धपोत है INS महेंद्रगिरी। ओडिशा में पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया युद्धपोत का नाम। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किया गया निर्माण। भारतीय नौसेना को स्वदेशी एंटी सबमरीन थैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने और लड़ने में सक्षम। जम्मू कश्मीर में आस्था और परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का आज शुभारंभ, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। श्रद्धालुओं में मां रागन्या देवी की उतारी विशेष आरती, माता रानी के लगाए जयकारे। गांधरबल के खीर भवानी मंदिर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। खीर भवानी मेले को लेकर गांधरबल में तैनात की गई डॉक्टर्स की टीम, दवाई भी कराई जा रही है उपलब्ध। गांधरबल में खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मंदिर के आसपास इलाकों में तैनात किए गए जवान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तीसरी सिंधु दर्शन यात्रा में आस्था का मेला, गुजरात से पहुंचे 1200 से ज्यादा श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने की महादेव की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। पिछले 36 सालों में पहली बार पहुंचे बड़ी तादाद में सैलानी, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। यह यात्रा राष्ट्र प्रथम सिंधु कुंभ के रूप में मनाई जाती है, राष्ट्रीय एकता भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना का देती है संदेश। सिंधु दर्शन यात्रा जम्मू कश्मीर से होते हुए लेह लद्दाख तक जाएगी, 30 जून तक चलेगी ये यात्रा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: क्या मंगल के राशि परिवर्तन से देश दुनिया में अशांति बढ़ेगी? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से किसी राशि के जीवन में दुर्घटना घट सकती है? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का महत्व और क्या है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
4: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
5: Jack, come home. It's supper time.
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
6: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
4: Jack FM, playing what we want.
7: कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
4: Jack, you're killing me.
3: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
0: इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर छोटे बच्चे बहुत बीमार होते हैं, उनकी सेहत में दिक्कतें होती हैं जिसको लेकर माता पिता परेशान रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के हिसाब से आप कौन से उपाय करें जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। कोई भी छोटा बच्चा है उसके ऊपर किन ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा निभाता है। उम्र के लगभग 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव होता है और इसमें भी पहले 8 साल तक चंद्रमा विशेष शक्तिशाली होता है, यानी जन्म से लेके 12 साल तक बच्चे का जीवन चंद्रमा से चलता है। इसके बाद बुध का प्रभाव धीरे धीरे आता जाता है, होता जाता है। किसी बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा पर विचार करना होगा, चंद्रमा को जानना होगा। इसके बाद कुछ अंशों में सूर्य पर भी ध्यान देना होगा। यानी अगर किसी बच्चे को स्वस्थ रखना है तो उसके चंद्रमा और उसके सूर्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। बच्चों के स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आपका छोटा बच्चा है, उसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो क्या उपाय करेंगे? डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा और डॉक्टर की दवाइयां मानिएगा। उसके अलावा बच्चे को सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज जरूर रखिएगा, उगते हुए सूर्य की रोशनी में। 1 बाल्टी पानी सूर्य की धूप में रख दीजिए और बाद में उस जल से बच्चे को स्नान करवाइए, यानी सूर्य की रोशनी वाले जल से स्नान कराएं। बच्चे को लाल रंग के वस्त्र ज्यादा धारण कराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को पीलिया से छुटकारा पाना आसान होगा।
अगर आपका छोटा बच्चा है और बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, तो क्या करेंगे? बच्चा जब नहाता है तो नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालिए। बच्चे को रोज सुबह और शाम नमक के पानी से स्नान करवाइए। बच्चे के गले में चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में धारण करवाइए। और अगर कोल्ड कफ की समस्या ज्यादा है तो बच्चे के लिए सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा। ऐसा निरंतर अगर आप करें तो आपके बच्चे को सर्दी जुकाम से, कोल्ड कफ से छुटकारा मिलेगा। बच्चे के स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आपके छोटे बच्चे को डाइजेशन की, पेट की समस्या ज्यादा होती हो तो क्या करना चाहिए? बच्चे के गले में एक तांबे का सूर्य धारण करवाइएगा, लाल धागे में रविवार को सवेरे। और जब सूर्य उदित होते हैं उस समय बच्चे को कुछ समय धूप में जरूर रखिएगा। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सफेद और हल्के रंग के वस्त्र धारण करवाइएगा। अगर ये उपाय किए जाएं तो बच्चे का डाइजेशन बेहतर होगा, पेट की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपके छोटे बच्चे को बार बार चोट चपेट लगती हो, बार बार दुर्घटना का शिकार होता हो तो क्या करना चाहिए? मंगलवार को माता पिता में से कोई भी हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी को जो सिंदूर लगाया हुआ है उसमें से थोड़ा सिंदूर मांग करके ले आए। और रोज जब बच्चा नहा ले तब यही सिंदूर उसके माथे पर या उसके कंठ पर लगाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपका बच्चा दुर्घटना का शिकार नहीं होगा, दुर्घटना से बच जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका छोटा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, शिक्षा में, प्रतियोगिता में उसे सफलता मिले, तो इसके लिए दो तीन आदतें अपने बच्चे को छोटी उम्र से डलवाने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात, बच्चे को छोटी उम्र से ही सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए। शुरुआत में जब जल नहीं चढ़ा पाता है तो कम से कम सुबह तैयार होकर सूर्य भगवान को नमस्कार करे, और जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दे। दूसरी आदत, बच्चे को बचपन से गायत्री मंत्र बोलने की आदत सिखाइए, ताकि आपका बच्चा गायत्री मंत्र नियमित रूप से बोले या सुने।
और तीसरी बात, आप बचपन से कोशिश करिए कि सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अपने बच्चे को साथ में लेकर मंदिर जाइएगा। अगर ये तीन चीजें बच्चे

सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: Sage University, transforming your passion into profession.
4: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और आठवां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का विधि विधान से शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। मॉनसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आज या कल पहुंच सकता है मुंबई, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार।

0: पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित रोहित शर्मा, ममूटी, अलका याग्निक और विजय अमृतराज जैसे नामी गिरामी लोगों को मिलेगा पुरस्कार। FIH प्रो लीग में आज भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, लंदन में शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। करीब 2 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी।
1: नमस्कार।
0: तो आज गुड लक टुडे में जानेंगे मंगल की राशि के परिवर्तन के बारे में, आखिर इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज के गुड लक के बारे में।
1: अगर आपका संबंध आपके पड़ोसियों के साथ, नेबर्स के साथ बेहतर नहीं रहता है, तो हर मंगलवार घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक किसी भी तरफ जलाइएगा। अगर ऐसा हर मंगलवार को आप करना शुरू कर दें, तो आपके संबंध आपके नेबर्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ बेहतर हो जाएंगे।
0: और चलिए आप जान लेते हैं कि क्या है 23 जून मंगलवार का पंचांग।

0: जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:39 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 11:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और पंडित जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, राशि परिवर्तन कब हो रहा है और इसका प्रभाव क्या रहेगा?
0: जी देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है हाल में ही, और ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है देश और दुनिया के लिए, आपके जीवन के लिए। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। पहले समझते हैं कि इसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, मंगल अभी तक मेष राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 21 जून को मिडनाइट में वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल की ये स्थिति मध्यम मानी जाती है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और यहां मंगल का होना एवरेज परिणाम जीवन में देता है। अब मंगल ने जब राशि बदली तो मीन में शनि विद्यमान है। शनि की तीसरी दृष्टि सीधे मंगल पर पड़ने लगी, तो मंगल इस परिवर्तन में शनि के सीधे प्रभाव में आ गए हैं। और मंगल की ये स्थिति 4 अगस्त तक बनी रहेगी। इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे। इस परिवर्तन को आप बहुत बेहतर परिवर्तन नहीं कह सकते। कुल मिला जुला कर ये परिवर्तन एवरेज है।
1: और अब समय हो गया है राशिफल जानने का। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: पंडित जी, अब ये बताएं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या असर होगा, आने वाले समय में कैसी स्थितियां रहेंगी?
0: देखिए, जब किसी ग्रह का परिवर्तन होता है और खास तौर से मंगल का परिवर्तन होता है तो बड़ी तेजी से दुनिया भर में इसके बदलाव दिखाई देते हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल के राशि परिवर्तन के समय सूर्य और बुध एक साथ हैं, चंद्रमा और केतु भी उसी समय एक साथ विद्यमान हैं, और सबसे नकारात्मक शनि और मंगल का आपसी संबंध बना हुआ है। तो ये जो 4 अगस्त तक का समय है, ये दुनिया भर में अशांति फैला सकता है। खास तौर से भयंकर दुर्घटना और विस्फोट जैसी स्थिति दुनिया में बन सकती है। अंतरिक्ष संचार के साधन और वायुयान दुर्घटना के योग बन सकते हैं। स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, और इसीलिए वृषभ में मंगल का प्रवेश भारत में आंतरिक अशांति फैला सकता है, और राजनैतिक रूप से बड़ी सारी उथल पुथल मिडिल ईस्ट में और भारत वर्ष के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में हो सकती है। जल की जो आपदाएं हैं, जलीय मुश्किलें या भूकंप जैसी आपदाएं इस समय एकदम से बढ़ सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक बात जरूर है कि जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, वहां पर थोड़ी स्ट्रेंथ इस समय आ सकती है, लेकिन दुनिया भर में अभी भी शांति की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है।
1: और इसी विषय पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल और कितने प्रतिशत है भाग्य का मीटर।
0: कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब समय हो गया है दर्शकों का सवाल लेने का। पंडित जी, आप पहला सवाल किसका लेंगे?
0: जी, आज का पहला प्रश्न दिलबाग सिंह जी ने हमें लिखा है, सोनीपत हरियाणा से लिखते हैं। अपने पुत्र की कुंडली के हिसाब से अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 10 अक्टूबर 1986, 12:30 दोपहर में, सोनीपत हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लगभग दिवालिया होने की कगार पर मैं पहुंच चुका हूं। कब तक स्थितियां बेहतर होंगी और जीवन आगे कैसा चलेगा? दिलबाग जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की। उनकी महादशा चल रही है राहु में शनि की। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के हिसाब से समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरा ये है कि कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़े, जमीन मकान, इस तरह की संभावना भी इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फरवरी 2027 के बाद आप मुश्किलों से निकल जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। और एक भगवान शिव की स्तुति है, दारिद्र दहन स्तोत्र। तो शनि मंत्र सुबह शाम और सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिए, मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अब कौन सा दर्शक का सवाल है?
0: जी, अगला प्रश्न सोनिया रानी ने हमें कुरुक्षेत्र से लिखा है। 28 फरवरी 1990 का जन्म है, 7 प्रातः किरमच, कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रही हैं कि पति के साथ 2021 से तलाक का मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा कब तक हल होगा? क्या मेरी दूसरी शादी हो सकेगी? सोनिया जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा बुध की चल रही है। साल 2027 के आरंभ तक आपसी सुलह समझौते से आपके मामले में डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आगे दूसरा विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसके भी सफल होने की उम्मीद नहीं है। आगे अपने बच्चे पर ध्यान दें, करियर बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: और चलिए दर्शकों के सवालों के बाद अब आते हैं अपने विषय पर। पंडित जी, मंगल की राशि परिवर्तन का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशि को किन बातों का ध्यान रखना होगा?
0: अब ये समझते हैं कि जो कुल 12 राशियां हैं उन राशियों में किसके लिए परिवर्तन अच्छा है, किसके लिए मध्यम है और किसके लिए नकारात्मक है, यानी राशियों पर इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से हम सबके जीवन में अपना प्रभाव दिखा सकता है। कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल है, शुभ है। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और तमाम कामों में इस समय इनको सफलता मिलेगी। लेकिन इन राशि के लोगों को भी आकस्मिक दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। करियर में समस्या हो सकती है, करियर में इस समय कोई भी जोखिम, कोई भी रिस्क नहीं लेंगे। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा सावधान रहेंगे, अपने पारिवारिक जीवन और अपने कारोबार का ध्यान रखेंगे। मिथुन, तुला और कुंभ वाले दुर्घटनाओं से बचें, शल्य चिकित्सा और मुकदमेबाजी की नौबत ना आए, इसका ध्यान रखेंगे।
1: और अब बात करते हैं आगे की राशियों की, क्या रहेगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्यफल।
0: तुला राशि, मानसिक चिंता आपको रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करें, चलिए ये भी जानते हैं पंडित जी से।
0: देखिए, कुल मिलाकर केवल 4 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन 4 के लिए अच्छा है। बाकी किसी के लिए भी मंगल का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। तो इसकी समस्याओं से बचेंगे कैसे? देखिए, ये राशि परिवर्तन जो मंगल का हुआ है, ये मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए ज्यादा प्रतिकूल है, ज्यादा निगेटिव है। इस समय आपको कहीं भी जरा सा जोखिम लगे यात्रा करने में, नौकरी करने में या गाड़ी चलाने में, दौड़ भाग में जरा सा भी रिस्क दिखाई दे तो इस समय कोई जोखिम मत उठाइएगा। इस समय अगले 1 महीने तक रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। आम तौर पे हनुमान चालीसा की पुस्तक में हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक दिया रहता है। संभव हो तो जितना भी कर सकें इस 1 महीने में गुड़ का दान करें, लोगों को गुड़ खिलाएं, पानी पिलाएं, गाय को गुड़ खिलाएं। और जिनके लिए ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है, ऐसे लोग लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करें, लाल रंग की चीजों का प्रयोग इस समय ना करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मंगल के राशि परिवर्तन की समस्या से बचे रहेंगे।
1: और अब बात करते हैं आखिर की 3 राशियों की। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का कैसा रहेगा राशिफल?
0: मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिख रही है, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: शांति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अब समय हो गया है दर्शकों के और सवाल लेने का। पंडित जी, आप कौन से दर्शक का सवाल लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न मुस्कान वाघमारे ने हमें लिखा है, बालाघाट मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 14 फरवरी सन 2000 का जन्म है। 1:52 मध्य रात्रि को बालाघाट मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मुस्कान, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है। बिल्कुल आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, SSC की तैयारी करें, मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें। प्रशासन में, टैक्सेशन में, रेवेन्यू में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है वर्ष 2027 में। और आप ऐसा करिए, मूंगा आपने पहना हुआ है वो पहने रहिए, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में एक माणिक्य पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे में लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, इसको पहना जाएगा रविवार को प्रातः, और रोज सुबह सूर्य देव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
1: अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, आप कौन से दर्शक का सवाल लेंगे?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न वर्षा शर्मा ने हमें लिखा है, बुलंदशहर से लिखती हैं। 3 नवंबर 2001 का जन्म है। 11:20 रात को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा करियर कैसा होगा, क्या मैं मांगलिक हूं? वर्षा, कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करें या प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपका करियर बेहतर होना चाहिए। आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में मंगल बैठा है तो कुंडली आपकी मांगलिक है, इसलिए कुंडली मिला करके विवाह करिएगा। हालांकि कुंडली के हिसाब से साल 2029 में 2029 में आपका विवाह होगा। आप एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 23 जून को। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से जानते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: Thank you. जिन लोगों का जन्मदिन 23 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, करियर में बदलाव होगा और बदलाव के बाद सुधार होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान गणेश की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और चलिए आप जानते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा।
0: देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कम से कम भारतवर्ष में कि मोमबत्ती और दीपक मुंह से फूंक कर बुझाना नहीं चाहिए। क्या मोमबत्ती या दीपक मुंह से फूंक करके बुझाना अशुभ होता है? देखिए, मोमबत्ती या दीपक को मुंह से फूंकने पर आपके चेहरे पर आंच आ सकती है, आपके बाल जल सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मना किया गया है। पहली बात यही है। और हिंदू परंपरा में दीपक को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, इसीलिए सामान्यता ऐसा कहा जाता है कि दीपक को या मोमबत्ती को मुंह से फूंक करके नहीं बुझाना चाहिए।
1: और अब समय हो गया है शुभ पहर के बारे में जानने का। क्या है शुभ पहर और शुभ पहर में कौन सा उपाय करने से होगा आपको लाभ?
0: दिनांक 23 जून 2026, दिन मंगलवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 23 जून मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है आज की गुड लक राशि।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों की विशिष्टता क्या है। आज की गुड लक राशि है कर्क। ये भावनाओं की, इमोशंस की सबसे बड़ी राशि मानी जाती है। और देखिए, कर्क राशि वालों के जीवन में ज्यादातर समस्याएं या तो भावनात्मक होती हैं या तो मानसिक होती हैं।
1: और शो के आखिर में समय हो चला है महा उपाय के बारे में जानने का। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय?
0: जी, देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मन में बुरे विचार आते हैं, निगेटिव विचार आने लगते हैं या खराब भावनाएं मन में आने लगती हैं, तो बड़ा गिल्ट भी होता है। क्या करना चाहिए? अगर पूजा उपासना करते समय मन में बुरे विचार आए, स्नान करके या अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके ही पूजा करिएगा। और पूजा करने के पहले जिस भी देवी देवता की, प्रभु की पूजा कर रहे हैं, उनसे शुद्ध मन देने की प्रार्थना करिएगा और इसके बाद पूजा आरंभ करिएगा। आप मंत्र जप कर रहे हैं, मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आप मंत्र जप पर ज्यादा ध्यान फोकस करिएगा, धीरे धीरे ये विचार समाप्त होने शुरू हो जाएंगे।
1: तो आपने दर्शकों को जो तमाम जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: पंडित शैलेंद्र पांडे दें जीवन को समझने की प्रेरणा और प्लैनेट आयुर्वेदा अर्जुन टी दे दिल को जीवन जीने का जज्बा, क्योंकि ये है हर्बल गुणों से भरपूर चाय भी औषधि भी। आज ही ऑर्डर करें।
1: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: I'm not 18 anymore. I'm working, raising two kids, and I have little free time. That's why I chose University of Phoenix. I take one class at a time and log in on my schedule.
3: University of Phoenix, built for real life. Get started at phoenix.edu.
4: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
5: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go. Seemed perfectly safe. Until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
6: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: और अब बात फुटबॉल की कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों पर वर्ल्ड कप का खुमार साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर से लेकर मैचों की मेजबानी कर रहे स्टेडियम तक हर तरफ जश्न और उत्साह का माहौल है। अपनी पसंदीदा टीमों को समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में फैंस सड़कों और फैन जोन में जुट रहे हैं। रंग बिरंगे झंडे, टीमों की जर्सीज और जीत के नारों के बीच वर्ल्ड कप एक वैश्विक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। और खेल के मैदान के अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में फुटबॉल टीम पर खास बेकरी की डिमांड बनी हुई है। यहाँ सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफीज, सॉकर बॉल्स और टीम के मैस्कॉट के आकार की कोंचास यानी बेकरी का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, तैयार कर रही जा रही है। और लॉस एंजलस में लाखों मेक्सिकन मूल के लोग भी रहते हैं। जाहिर है शहर में मेक्सिको टीम को जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कोंचास मेक्सिको की एक मीठी ब्रेड है जिसे अक्सर हॉट चॉकलेट या कॉफी के साथ खाया जाता है। इस इलाके में मेक्सिकन और आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय हो गई है क्योंकि लोग अपनी पसंदीदा टीम के रंगों वाली ब्रेड खाकर अपना समर्थन दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जो ना केवल उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को बयां कर रही है बल्कि उसमें नजर आ रही है हरियाली के बीच पड़ रही बारिश की फुहारें आपको रोमांचित कर देंगी। एक बड़ा सा घास का मैदान, उस पर हजारों की संख्या में दौड़ते घोड़े। तस्वीर उत्तर पश्चिमी चीन के शिजियांग की है। यहाँ के उइगर ऑटोनॉमस क्षेत्र के झाओसू काउंटी में हाल ही में होने वाली हॉर्स फेस्टिवल जो है वो हुआ। दरअसल यहाँ खास आयोजन घुड़सवारी, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय विरासत को समर्पित एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है जिसमें हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और घुड़सवारी प्रेमी शामिल होते हैं। वैसे बता दें कि इली नदी घाटी में स्थित झाओसू काउंटी को हेवनली हॉर्सेस की धरती के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र सदियों पुरानी हॉर्स रिप्रोडक्शन परंपरा के लिए भी काफी मशहूर है। फिलहाल तो बारिश के बीच हजारों घोड़ों का एक साथ मैदान में दौड़ना उत्सव का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। यहाँ यूजर्स इसकी भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना कर रहे हैं। डेनमार्क के फेनो द्वीप पर कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जहां दुनिया के सबसे बड़े पतंग महोत्सव में 26 देशों के हजारों पतंगबाज जुटे। यहां खुले आसमान में रंगों का समंदर, हवा में तैरती कल्पनाएं और धरती से लेकर क्षितिज तक पतंगों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इन खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। हर साल जून में आयोजित होने वाले फेनो इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स मीटिंग में इस बार करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के मुताबिक वीकेंड में आसमान में लगभग 25,000 रंग बिरंगी पतंगे उड़ी जिनमें बड़ी सी ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर्स और अनोखे कलात्मक डिजाइन शामिल थे। मानो ये फेनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एक विशाल खुली आग गैलरी बन गया हो। तो देखिए किस तरह से फेनो काइट फेस्टिवल जो है उसमें 5,000 के करीब लोगों ने हिस्सा लिया। 26 देशों के हजारों पतंगबाज इसमें जुटे। आसमानों में आप देख सकते हैं किस तरह रंगों का समंदर आपको देखने को मिलेगा। फेस्ट में 5,000 जो हैं वो लोग इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो काइट फेस्ट या आर्ट गैलरी भी आप इसे कह सकते हैं। आसमान में दूर दूर तक आपको हजारों किस्म के कार्टून कैरेक्टर वाली पतंगे भी नजर आएंगी। ये नज़ारा है डेनमार्क का और आसमान में आप सिर्फ और सिर्फ कलरफुल पतंगे देख सकते हैं। इंग्लैंड के प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज में समर सॉल्स्टिस का उत्सव मनाया गया। इसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सूरज की पहली किरण के साथ इस विशेष खगोलीय घटना को एंजॉय किया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साल के सबसे लंबे दिन को बताने वाले इस सालाना आयोजन में लगभग 20,000 लोग शामिल हुए। ऐतिहासिक इमारत स्टोनहेंज में बड़ी संख्या में लोग पूरी रात जागकर सूर्योदय का इंतजार करते रहे और फिर जैसे ही सनराइज हुआ इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों ने म्यूजिक के साथ डांस किया, विशाल पत्थरों को छूकर इस पल का जश्न मनाया। यहां बता दी कि आम दिनों में स्मारक की हिफाजत को लेकर पत्थरों को छूने की इजाजत नहीं है लेकिन इस खूबसूरत संक्रांति यानी कि समर सॉल्स्टिस पर लोगों को इसकी छूट दी जाती है। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात ये कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

आप जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है।

0: क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्ट।
1: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
2: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़ा मंगल पर भक्ति का सैलाब उमड़ गया। दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु की भारी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का विधि विधान से शुभारंभ। 3 दिनों तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। अगले 24 से 36 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है मॉनसून। जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार। अनंतनाग समेत कई इलाकों में तेज बारिश। आज 65 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों से करेंगे सम्मानित। रोहित शर्मा, ममूटी, अलका याग्निक और विजय अमृतराज जैसी नामी लोगों को मिलेगा पुरस्कार। FIH प्रो लीग में आज शाम 7 बजे लंदन में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला। करीब 2 साल बाद आमने सामने होंगी दोनों टीमें। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर क्लोस का तोड़ा रिकॉर्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की।
5: उम्मीदों भरे पैर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: शुभ समाचार की शुरुआत वीर बजरंगी के जयकारे से करेंगे। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विदेश में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। बद्रीनाथ में ध्यान साधना के बाद उनका ही विदेश दौरा है। उन्होंने श्रीलंका में हनुमंत कथा की ओर और वो इंडोनेशिया वो जाएंगे। उनके दौरे की पूरी झलक हम आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही आज 8वां और आखिरी बड़ा मंगल है। ये बेहद ही पावन दिन है बजरंगबली का आशीर्वाद पाने का। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ा मंगल पर कैसी है देशभर में हनुमान मंदिरों की रौनक, ये आगे बताएंगे। तो शुभ समाचार में बात मॉनसून की भी होगी, क्योंकि इसने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे के अंदर मॉनसून मुंबई में एंट्री कर सकता है। हालांकि मॉनसून के पहुंचने से पहले ही मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। आपके शहर कब दस्तक देगा मॉनसून, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही आज हॉकी के मैदान पर देशवासियों को एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल प्रो लीग में आज लंदन में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला होने वाला है। करीब 2 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने होंगी। कितने बजे होगा मैच और क्या रहने वाला है खास, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो बात उमा कुरैशी की भी करेंगे, जिनका किलर लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उनकी अपकमिंग फिल्म में उमा पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किलर के एक ऐसे अवतार में नजर आने वाली है जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। क्या है उमा का ये किलर अवतार और कैसे उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार किया, जानेंगे आगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ महीने के आखिरी बड़ा मंगल पर भक्ति का सैलाब उमड़ गया। दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ा मंगल को लेकर सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग रही है। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए।
6: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं, अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या करीब 40 लाख से अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 14 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
5: वहीं अंबुबाची मेले की आज से शुरुआत हो गई है, जहां मां कामाख्या के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अंबुबाची मेले के दौरान माना जाता है कि मां कामाख्या 3 दिनों तक रजस्वला होती हैं और ये अवधि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस अवधि में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, हर दिन की पूजा अर्चना भी स्थगित कर दी जाती है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता रागन्या देवी मंदिर में ऐतिहासिक खीर भवानी मेला शुरू हो चुका है। ऐसे में दूसरे दिन इस मेले में शामिल होने और देवी रागन्या का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित देश भर से वहां पहुंचे हैं। तो वहीं अमरावती जिले के श्री क्षेत्र कौंडप्यूर से माता रुक्मणी की 432 वर्ष पुरानी भव्य पालकी यात्रा हजारों वारकरियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पंढरपुर के लिए रवाना हुई। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें साड़ी चोली अर्पित की और इसके बाद मायके से बेटी को ससुराल विदा करने की परंपरा के अनुसार बेहद ही भावुक माहौल में पालकी को विदाई दी गई और इस भावुक क्षण में कई श्रद्धालुओं की आंखें छलक गई। पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन ने आधुनिक जीवन की भागदौड़ और मानसिक तनाव से राहत दिलाने के लिए इमोशन ऑब्जर्वन ध्यान कुटीर के रूप में एक अनूठी और अभिनव पहल की है। गोबर और जूट जैसे प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल पदार्थों से निर्माण इसका किया गया। 10 मिनट की साधना और ध्वनि तरंगों से तनाव से इससे मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित द्वितीय नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित हस्तियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। इस दौरान कला, खेल और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दिग्गजों को सम्मानित किया जाएगा। रोहित शर्मा, ममूटी, अलका याग्निक और विजय अमृतराज जैसे नामी लोगों को पुरस्कार मिलेगा।
6: डेनमार्क से पतंगबाजी की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। फेनो आइलैंड पर 26 देशों के पतंगबाज जुटे हैं। इस साल फेनो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में करीब 5,000 पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। आसमान में करीब 25,000 रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई दिखाई दी। सी ड्रैगन, समुद्री जीव, कार्टून कैरेक्टर्स की आकृति में बनी पतंगों को लोगों ने सराहा। वहीं पतंगबाजी देखने पर दूर दूर से यहां लोग पहुंचे।
5: हुमा कुरैशी की आगामी फिल्म बेबी डू डाई डू का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में चंकी पांडे भी कॉमिक रोल से हटकर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। साथ ही हुमा कुरैशी के कथित बॉयफ्रेंड रजत सिंह भी फिल्म का हिस्सा है। ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
7: नाम

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत मंगल ही मंगल के साथ। आज आठवां और अंतिम बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी के अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्ति की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जबकि अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ के मंदिरों में भी सुंदरकांड और रामचरितमानस की चौपाइयां गूंज रही हैं। खास बात यह है कि आज ही के दिन रवि योग का भी संयोग पड़ रहा है, लिहाजा आज हनुमान जी की आराधना के साथ ही सूर्यदेव की कृपा पाने का भी शुभ दिन है। वैसे तो मंगलवार को हनुमान जी की आराधना का विशेष दिन माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार का महत्व कुछ अलग ही है। आज ज्येष्ठ मास का आखिरी मंगलवार है, इसलिए सुबह से ही हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से अगर बजरंग बली की उपासना की जाए तो हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको मिलता है।

0: सनातन परंपरा में जिस ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन का दिन माना जाता है, उससे जुड़ा साल 2026 का आखिरी और आठवां बड़ा मंगल आज है और श्रद्धालु सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए वैसे तो मंगलवार का दिन अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, लेकिन इसकी शुभता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब ये जेठ महीने में पड़ता है और बड़ा मंगल कहलाता है। पंचांग के अनुसार आज 23 जून 2026 को साल का आखिरी और आठवां बड़ा मंगल है। सनातन परंपरा में जिस बड़ा मंगल या फिर कहें बुढ़वा मंगल को सभी संकट और बाधाओं को दूर करते हुए मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता के अनुसार हनुमान जी की साधना प्रातः काल या फिर संध्या के समय करें। आखिरी बड़ा मंगल का पुण्य फल पाने के लिए पूजा के दौरान चालीसा का पाठ और अंत में खैर की लकड़ी से हवन और आरती करना बिल्कुल ना भूलें। आखिरी बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर पड़ रहा है और नवमी तिथि की शुरुआत 22 जून को दोपहर 3:40 पर हो चुकी है, जबकि नवमी तिथि का समापन 23 जून यानी आज शाम 4:40 पर हो रहा है। ज्येष्ठ मास के आखिरी मंगलवार के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक था जो बीत चुका है। अमृतकाल सुबह 5:31 से 7:13 तक था जो समाप्त हो चुका है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक। तो गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक है, जबकि रवि योग सुबह 11:54 से शाम 5:24 तक है। आठवें और अंतिम बड़े मंगल पर रवि योग का बनना बेहद शुभ माना जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से यह एक मंगलकारी महासंयोग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि योग को सभी तरह के अशुभ प्रभावों और दोषों को खत्म करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि भगवान सूर्य को हनुमान जी का गुरु माना जाता है। रवि योग का कनेक्शन सूर्य देव से है और बड़े मंगल का दिन बजरंग बली का है। ऐसे में इस महासंयोग में संकट मोचन की साधना करने से दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो सिर्फ देश में ही नहीं, सात समंदर पार भी जय हनुमान का उद्घोष सुनाई दे रहा है। दरअसल बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल श्रीलंका पहुंचे हैं और वहां उन्होंने अशोक वाटिका में हनुमान जी के श्री चरणों का दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने हनुमंत कथा वाचन किया। श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर इंडोनेशिया पहुंचेंगे और 26 से 28 जून तक भक्तों को दर्शन देंगे और श्री हनुमान कथा का आयोजन करेंगे।

0: वसुदेव कुटुंबकम का संदेश जन जन तक पहुंचाने का मकसद लिए बाबा बागेश्वर एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं। इस बार उनका पड़ाव है श्रीलंका, जहां माता जानकी की स्मृतियां अब भी कण कण में मौजूद है। श्रीलंका पहुंचने पर बाबा बागेश्वर सबसे पहले अशोक वाटिका पहुंचे और हनुमान जी के श्री चरणों का दर्शन किया। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलंबो में मौजूद प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के मध्य सनातन संस्कृति का संबंध अत्यंत प्राचीन और आत्मीय है। भारत के श्रद्धालु माता जानकी की स्मृतियों से जुड़े श्रीलंका के पावन स्थलों के दर्शन करने आते हैं। भविष्य में श्रीलंका के अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे, यही हमारी कामना है। यात्रा के दौरान बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया, साथ ही भारत में सनातन के उत्थान की सराहना की। श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वो 26 जून से 28 जून के बीच हनुमंत कथा करेंगे। इस विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार करना और विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के बीच आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करना है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनके हनुमंत कथा का आयोजन लंदन में भी हो चुका है, जहां पर भारत वंशियों के साथ साथ अंग्रेज भी हनुमंत कथा का पूरा उत्साह के साथ श्रवण लाभ ले चुके हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न शहर में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था, जहां पर उन्होंने भक्तों के सामने हनुमंत कथा का पाठ किया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कैनबरा में मौजूद पार्लियामेंट हाउस में विश्व शांति पर एक ऐतिहासिक संबोधन भी दिया था, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया था। बाबा बागेश्वर फिजी, न्यूजीलैंड और दुबई की यात्रा भी कर चुके हैं। इंडोनेशिया के बाद उनकी अगली यात्राओं में लंदन, ओमान, सिंगापुर और दुबई की यात्राएं भी शामिल हैं, जहां वे सनातन धर्म के प्रचार और बागेश्वर धाम पर बनने वाले वैश्विक स्तर के कैंसर अस्पताल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने हेतु कथाओं का आयोजन करेंगे। बाबा बागेश्वर की विदेश यात्राओं के दौरान होने वाले आयोजनों में कोई शुल्क या टिकट नहीं होता है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो बड़ा मंगल पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। आज के दिन कई भक्तों की योजना होती है कि राम भक्त हनुमान के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए जाएंगे। ऐसे में हनुमानगढ़ी में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ पहुंची हुई है। देखिए किस तरह से आज ज्येष्ठ माह के आठवें बड़े मंगल, जो आखिरी मंगलवार भी है, भक्त जो है दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। और आज आठवां बड़ा मंगल है हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
2: आज हम लोग का दर्शन अच्छे से हो गया है। बजरंग बली का भीड़ बहुत काफी थी।
3: हम लोग 3 बजे भोर में आ गए। भीड़ की तो आप बात कर रहे हैं श्रीमान जी, भीड़ इतनी ज्यादा है, अपार भीड़ है। लगभग 1-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और सबकी श्रद्धा है, हनुमान जी सबकी सुनते हैं।
4: बड़ा मंगलवार का आठवां मंगलवार है और आराम से भगवान के दर्शन हो गए हैं, बाकायदे जैसे होना चाहिए।
5: दर्शन करने में बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया है। हाँ भीड़ है पर हाँ आने में ठीक लग, बढ़िया लग रहा है। हाँ दर्शन हो गया, बढ़िया से हो गए।
1: तो बड़ा मंगल पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक हुआ। भव्य भस्म आरती हुई। भगवान शंकर का अवतार हनुमान जी को माना जाता है, ऐसे में बड़ी संख्या में भक्त अभिषेक में शामिल हुए। जय महाकाल के जयकारों से पूरा महाकालेश्वर धाम गूंजता नजर आया।

और अब आपको गुवाहाटी लिए चलते हैं। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले की शुरुआत हो गई है। कल रात 9:08 पर प्रवर्ती अनुष्ठान की परंपरा निभाई गई। इसके बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब 26 तारीख को निवृत्ति अनुष्ठान के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे।

0: यह आस्था, विश्वास और परंपरा की अद्भुत झलक है। कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, कोई कतारबद्ध खड़ा है, तो कोई ध्यान मग्न होकर माँ की आराधना कर रहा है। गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर में महायोग की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो गया है विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। सोमवार की रात 9:08:42 पर महायोग की प्रवृत्ति से जुड़े अनुष्ठान किए गए और फिर 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब 26 जून को सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद भक्तों के लिए कपाट फिर से खोले जाएंगे। इस बीच मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे और इस दौरान भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अंबुबाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है।
1: लगातार 3 दिन 3 रात को अंबुबाची महायोग रहेगा। ये सबसे शक्तिशाली समय है और ये जागतिक समय है। सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीचों बीच में 3 दिन और 3 रात रहता है। क्योंकि ये इतना दुर्लभ समय है, ये समय में हर कोई जो भी प्रार्थना करे अपना मन से, अपना नियम से, जो भी जैसा चाहता है वो ऐसा प्रार्थना करे, क्योंकि ये समय और साल भर में एक बार ही आता है और दोबारा नहीं मिलेगा। ये समय बहुत दुर्लभ समय है और अपना जो साधना है, अपना सिद्धि है, वो लगातार करते रहिए। 3 दिन 3 रात खाली जो भी है वो हाय हत्तुगोल से बसे, वो इतना शोर शराबा नहीं करे और आराम से आकर के, क्योंकि हम लोग का ये परिक्रमा रहता है इस टाइम में, तो परिक्रमा में श्रृंखलाबद्ध से और अच्छे से आके यहाँ पे ना रुके और जाते रहे और परिक्रमा चलते रहे, क्योंकि माँ का दर्शन बंद रहता है, परिक्रमा ही मुख्य होता है। तो परिक्रमा करके आदमी जाता रहे और सभी को माँ का आशीर्वाद मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। दरवाज़ा बंद करने के आके एक विशेष हम लोग का वो है कि माँ का जो महाप्रसाद कपड़ा है वो कपड़ा बेस्तन करके रखा जाता है। वो प्रवृत्ति के जस्ट शुरू होने के आगे ही माँ का पूजा पाठ करके समाप्त करके उसको कपड़ा से थके हुए होते हैं।
0: अंबुबाची मेला माँ कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव है। ये मेला देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला यानी मासिक धर्म होने और माता पृथ्वी के सृजन शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि माँ कामाख्या 3 दिनों तक रजस्वला होती हैं और ये अवधि बहुत पवित्र मानी जाती है। कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला तांत्रिकों, अघोरियों और साधु संतों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इन 3 दिनों में वे मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में गुप्त साधना और ध्यान करते हैं। असल में तांत्रिक परंपराओं में रजस्वला अवस्था को सृजन शक्ति, उर्वरता और प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है और ये समय देवी की दिव्य शक्ति के जागरण का काल होता है। इसलिए देश विदेश से तांत्रिक साधक और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
2: किन्नर जहाँ है वहाँ पूजा पाठ होती है। हमारा संसार तो नहीं होता है, यदि संसार होना होता था तो माता ने हमें मेल या फीमेल बनाते थे। इस जन्म में शायद से हमें पूजा ही करना है, इसलिए माता ने ये जन्म दिया है।
3: मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ कामाख्या मंदिर में, लेकिन मुझे जो वाइब फील हुई आपकी बार अंबुबाची मेला में आने के बाद में 2026 के, मैं बहुत पहले भी प्रयास कर रहा था, सोचा था कि आऊँगा एक बार, लेकिन अब की बार जब आया तो ऐसा फील हो रहा है कि बार बार आना चाहिए, क्योंकि जो वाइब्रेशन है यहाँ की, जो एनर्जी है, वो जब अभी निकल रहे थे, वो परिक्रमा कर रहे थे और डमरू के साथ में पूरा जो तांत्रिक लोग थे और जितने भी साध्वी यहाँ पे आए थे, पूरा अलग ही माहौल था। और वो देख करके, वो फील करके कोई भी यहाँ पे आने के बाद में यही सोचेगा कि अब की बार तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा।
4: अभी मैं अंबुबाची मेले में हूँ, पहले अंबुबाची मेले में आया था, नॉर्मल डेज में आया था। और दूसरी बात है कि अभी जब आज हमने दूसरी बार दर्शन करे घर पे रह के, और जब दूसरी बार दर्शन करे घर पे रह के तो वो भी बहुत अनप्लान्ड हुए। हम कम से कम 3-4 बजे आए और फिर हमारे 6 बजे तक दर्शन भी हो गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये बोलूंगा कि मैं दूसरी बार आया हूँ अंबुबाची मेले में और मैं आऊँगा भी आगे भी, तो मैं जो लोग घर से देख रहे हैं चीज़, उनसे बोल रहा हूँ कि एक बार आप आगे एक बार प्लीज़ एक्सपीरियंस करें, बहुत सही एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है।
0: 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलने पर विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालुओं को देवी का प्रसाद और पवित्र वस्त्र वितरित किए जाते हैं। ये परंपरा स्त्री शक्ति, सृजन और प्रकृति के चक्र के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। गुवाहाटी से अचिंत्य पतंगिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए मॉनसून वाली गुड न्यूज।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही।
7: क्या आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है? क्या आपके बच्चे को बार बार चोट लगती रहती है? क्या आपका बच्चा बार बार पेट की समस्याओं से परेशान होता है? बच्चों की समस्या का क्या है कारण और क्या है उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
8: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है।
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है।
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और आठवां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का विधि विधान से शुभारंभ, 3 दिनों तक बंद रहते हैं मंदिर के कपाट, चौथे दिन होगी देवी की विशेष पूजा। अगले 24 से 36 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है मॉनसून, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, अनंतनाग समेत कई इलाकों में तेज बारिश। आज 65 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों से करेंगे सम्मानित, रोहित शर्मा, ममूटी, अलका याग्निक और विजय अमृतराज जैसे नामी हस्तियों को मिलेगा पुरस्कार। FIH प्रो लीग में आज शाम 7 बजे लंदन में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, करीब 2 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर क्लोस का तोड़ा रिकॉर्ड।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग

और ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुभ समाचार में आप सभी का स्वागत है। और चलिए बात कर लेते हैं मानसून की। 8 जून से सुस्त पड़ा दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग की माने तो 23 जून को महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्से में दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहुंचने की स्थिति बन रही है। साथ ही संभावना यह भी जताई जा रही है कि 24 घंटे के अंदर मानसून मुंबई में एंट्री कर सकता है। हालांकि मानसून के पहुंचने से पहले ही मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली। महाराष्ट्र के लोनावला में सुबह की शुरुआत बारिश की रिमझिम फुहारों के साथ हुई। पहाड़ों पर तैरते बादल, धुंध में लिपटी वादियां और बरसती बूंदे, मानो प्रकृति खुद मानसून के स्वागत की तैयारियों में जुट गई हो। उधर मायानगरी मुंबई में भी आसमान का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया है, बिजली आसमान को चीर रही है और गरजते बादल मानसून के आगमन का ऐलान कर रहे हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में प्री मानसून बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है।

0: आसमान में काले घने बादलों का डेरा, ठंडी हवा और झमाझम बारिश। इस राहत भरी बारिश का इंतजार हफ्तों से मुंबईकरों को था। इससे न सिर्फ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, बल्कि बारिश को लेकर लंबा इंतजार भी खत्म हुआ है। हालांकि मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई बारिश को प्री मानसून बारिश कहा जा रहा है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 23-24 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई में दस्तक दे सकता है और 2 से 3 दिन जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है।
1: 23-24 में जो मुंबई के लिए अगर बात करूं खासकर मैं, तो वाइड स्प्रेड टाइप की रेन मिलनी चाहिए और साथ में हैवी रेन्स की भी जो है बिल्कुल संभावना है कि 23 और 24 में वो मिलेंगी। और जो क्लाउड कवरेज वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो आप एक देखेंगे कि जो सनशाइन आवर्स वो काफी कम हो जाएंगे और जो पीछे से जो मानसून का सर्ज है उस तरह जो चीजें दिख रही हैं, तो वो भी दिख रहा है कि आगे जो कंटिन्यूटी भी रहेगी, तो बिल्कुल लोगों को राहत मिलेगी और जो मानसून है वो भी आगे बढ़ेगा। और मुंबई में खासकर मैं कहूँ कि 2-3 दिन अच्छी बारिश जो मिलनी चाहिए।
0: आमतौर पर मुंबई में मानसून 10 और 11 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पहले 3 दिन की देरी से मानसून केरलम पहुंचा और फिर कुछ दिन बाद उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई, जिसके चलते इस बार मानसून की बारिश के लिए मुंबई वालों का इंतजार बढ़ गया। हालांकि एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ी है और उम्मीद है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात बिल्कुल मुफीद हैं।
1: अब आप देख रहे हैं कि 1-2 दिन से जो क्लाउड कवरेज है वो बढ़ा है काफी, अरबियन सी में भी है और पेनिसुलर रीजन पे भी है और वो और फिर नॉर्थ वर्ड शिफ्ट होगा और पीछे में जैसे बोला कि सर्ज जो और भी आ रहा है, तो अब ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको बारिश लगातार वो मिलेगी।
0: बात अगर उत्तर पश्चिम भारत की करें तो यहाँ के राज्यों में भी उमस भरी गर्मी से बेहाल लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और यूपी के कुछ शहरों में प्री मानसून बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आई है। मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और आगे बढ़ते मानसून के असर से देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में, जहां अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी गर्मी और लू से बेहाल उत्तर भारत के लोगों के लिए मौसम मेहरबान होने वाला है। दूसरी तरफ मानसून पूर्वी भारत में तेजी से आगे बढ़ चुका है और बिहार होते हुए अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त नमी और अनुकूल हवाओं की स्थिति बनी रही तो पूर्वांचल में जल्द ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम में बदलाव की जो स्थितियां अभी बन रही है उसे देखकर संभावना जताई ये जा रही है कि इससे दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मुंबई से विद्या और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: लेते हैं कपूर खानदान में बजने जा रही शहनाई की। बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की शादी मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ होने जा रही है और दरअसल मुंबई में एक घर पर प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को माता की चौकी के साथ प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत हुई जिसमें पूरा कपूर परिवार शामिल हुआ। इसके बाद संगीत सेरेमनी में भाई अर्जुन कपूर और अंशुला की तीनों बहनें जानवी कपूर, खुशी और शनाया कपूर ने खूब धमाल मचाया। 6 जुलाई को अंशुला की शादी मुंबई में होगी जिसमें बॉलीवुड के दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है।
3: कपूर खानदान में गूंजने वाली है शादी की शहनाई। विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं अंशुला। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की सगी बहन अंशुला कपूर की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। अंशुला अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बीटाउन में चर्चित इस शादी की प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत हो चुकी है जिसमें पूरे कपूर परिवार ने हिस्सा लिया। 21 जून को मुंबई के बांद्रा में बोनी कपूर के घर पर प्री वेडिंग फंक्शन आयोजित की गई। शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम माता की चौकी से हुई जिसमें होने वाले दूल्हा दुल्हन ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अंशुला और रोहन प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में शनाया के साथ उनके पिता संजय कपूर, माँ महीप कपूर और भाई जहान कपूर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अंशुला के भाई अर्जुन कपूर, बहन जानवी कपूर और खुर्शी कपूर भी सेलिब्रेशन में शामिल हुए। सभी पारंपरिक आउटफिट्स में मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आए। शनाया ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वी लव यू अंशुला और रोहन। माता की चौकी की पूजा संपन्न होने के तुरंत बाद संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया। अंशुला के चाचा संजय कपूर और चाची महीप कपूर ने ढोल के थाप पर जमकर डांस किया। अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, खुशी और शनाया कपूर भी पारंपरिक गानों पर थिरकते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन कपूर ने बहन अंशुला के संगीत सेरेमनी में अपनी फिल्मों के हिट डांस नंबर्स जैसे चिट्टियां कलाइयां और हाई हील्स पर पूरे परिवार के साथ हुक स्टेप्स किए। अंशुला की तीनों बहनों जानवी, खुशी और शनाया कपूर ने स्पेशल सरप्राइज डांस प्लान किया था। जानवी कपूर ने अपनी हालिया हिट फिल्मों के गानों पर परफॉर्म किया, जबकि खुशी कपूर ने शनाया के साथ मिलकर मेहंदी लगा के रखना जैसे कुछ सदाबहार बॉलीवुड वेडिंग सॉन्ग्स पर जमकर डांस किया। अंशुला ने इस फंक्शन के लिए बेज और गोल्ड रंग का बेहद खूबसूरत जरदोई कढ़ाई वाला लहंगा पहना था, साथ ही पंजाबी परंपरा को सम्मान देते हुए रंगीन फुलकारी दुपट्टा कैरी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लहंगे को तैयार करने में करीब 1600 घंटे का समय लगा। अंशुला ने अपनी जिंदगी के इस हसीन लम्हों की तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए अपने आउटफिट के बारे में लिखा है, इस खास मौके पर मेरे लिए फुलकारी दुपट्टा पहनना बहुत मायने रखता था। पंजाबी परंपराओं से जुड़ी ये चीज हमारी संस्कृति, बेहतरीन कारीगरी और घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के आशीर्वाद को दिखाती है। पंजाबी दुल्हनों के लिए फुलकारी हमेशा से उनकी जिंदगी के सबसे खास पलों का हिस्सा रही है। रोहन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए इससे सुंदर तरीका और कोई नहीं हो सकता। वहीं रोहन ठक्कर ने अंशुला के आउटफिट से मैच करते हुए पारंपरिक डिटेलिंग वाली मरून रंग की शेरवानी पहनी थी। आपको बता दें कि अंशुला और रोहन ने करीब 8 महीने पहले अक्टूबर 2025 में सगाई की थी। दोनों की लव स्टोरी 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू हुई थी। रोहन के साथ अपने रिलेशनशिप का खुलासा करते हुए अंशुला ने बताया था कि उनकी पहली बातचीत एक मंगलवार को रात 1:15 पर शुरू हुई थी, जो घंटों चली थी। इसके ठीक 3 साल बाद रोहन ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में कैसल के सामने उसी समय यानी रात के ठीक 1:15 पर अंशुला को शादी के लिए प्रपोज किया था। अब तकरीबन 4 साल पुराना ये रिश्ता शादी के साथ मुकम्मल होने जा रहा है। माता की चौकी और संगीत के बाद अब अगले कुछ दिनों में मेहंदी और हल्दी की रस्में निभाई जाएंगी। हालांकि ये फंक्शन कब होंगे इसका परिवार ने खुलासा नहीं किया है। जहां तक शादी का सवाल है तो वो 6 जुलाई को मुंबई के ही किसी आलिशान वेन्यू पर होगी। फिलहाल सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: हुमा कुरैशी ने अब तक के अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू में हुमा पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किलर के एक ऐसे अवतार में नजर आने वाली है जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें हुमा कुरैशी को भारत की पहली देसी हिट वुमेन के तौर पर प्रमोट किया गया है। क्या है हुमा का ये किलर अवतार और कैसे उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
5: लंबी सांस ले, सब डर भाग जाएगा।
3: वो ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन किसी का काम तमाम करने में उसका कोई सानी नहीं। मिलिए इंडिया की पहली हिट वुमन से। ऑन स्क्रीन ही सही, कम से कम बेबी डू डाई डू में हुमा कुरैशी को भारत की पहली देसी हिट वुमन के तौर पर ही प्रमोट किया जा रहा है।
6: नाम नाम बच्ची,
7: अरे मैडम वो डम शरा जो इंग्लिश इंग्लिश
6: बेबी। अगला स्टेशन डेस्टिनेशन बंदी फुल फायर, ना सुनेगी ना बोलेगी
3: खूनी ऑन हायर, थोड़ा जिगरा वगैरह वगैरह रक्षा हर गृहस्थी में उसको। हुमा कुरैशी की अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया और रिलीज के साथ ही रोमांच और रहस्य से भरा ये ट्रेलर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और सबसे ज्यादा चर्चा में है बेबी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का किरदार जो काफी खतरनाक और इंटेंस दिख रहा है।
5: हमारे ऊपर भी लोग हैं, पावरफुल लोग, और हम भी तब तक है जब तक उनके काम आ सके।
3: बेबी डू डाई डू एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो गहरे राज, धोखे और बदले से भरी एक डार्क और सस्पेंस वाली दुनिया में लेकर जाती है। इस क्राइम की दुनिया में बेबी का दबदबा है। अब क्योंकि बेबी बोल नहीं सकती, इसलिए हुमा कुरैशी के पास डायलॉग्स नहीं है, लेकिन अपने हाव भाव से हुमा कुरैशी ने बेबी के किरदार में खौफ पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखा जाए तो मासूमियत, भोलापन और खामोशी ही उसका हथियार है। हाँ, एक हथियार और है, चमकीली लाल छतरी, जिसमें छिपी बंदूक से वो दिन दहाड़े बेखौफ होकर हत्याएं करती हैं। अब क्यों करती है, क्या वजह है, इसका जवाब तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ट्रेलर देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि एक रहस्यमयी कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर हुमा कुरैशी ने जबरदस्त छाप छोड़ी है।
8: ये कोई टाइम है घर आने का?
9: पता नहीं क्या करती रहती है रात रात भर।
3: एक इंटरव्यू में हुमा कुरैशी ने बेबी के किरदार को निभाने में आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ न कुछ कहना और केवल आंखों और शारीरिक हाव भाव से अभिनय करना कई पन्नों के डायलॉग बोलने से ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज की खास ट्रेनिंग ली थी। हुमा ने आगे कहा कि बेबी ने मुझे ऐसे तरीकों से चुनौती दी जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। वो शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, इसलिए हर भावना को अंदर से महसूस करना और दिखाना जरूरी था। ऐसे दिन भी थे जब कुछ न कहना कई पन्नों के डायलॉग बोलने से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता था। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि लोग फिल्म को बहुत जल्दी समझने या सुलझाने की कोशिश किए बिना सिनेमा घर जाएं और बस उसके सफर का हिस्सा बने। हुमा कुरैशी इस फिल्म के एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। नचिकेत सामंत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम ने प्रोड्यूस किया है। एक एक्ट्रेस के तौर पर हुमा कुरैशी ने चुनौती पार कर ली है, लेकिन एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। बेबी डू डाई डू 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी दिन आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई एक्शन फिल्म अल्फा भी रिलीज होगी, जिसने काफी अरसे से जबरदस्त हाइप बना रखा है। यानी एक तरफ है हुमा की सीरियल किलर थ्रिलर तो दूसरी ओर है स्पाई एक्शन थ्रिलर। अब बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन सी फिल्म मारती है ये तो 3 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का खुमार देखने को मिल रहा है। दरअसल अब बात कर रहे हैं हम फुटबॉल की, क्योंकि राजधानी दिल्ली के ऑस्ट्रियाई दूतावास में ऑस्ट्रियन फैंस के लिए एक खास वॉच पार्टी रखी गई। इस दौरान ऑस्ट्रियन फैंस का जोश देखने लायक था। हालांकि अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में जगह बना ली है। इस जीत में लियोनेल मेसी का मैजिक भी देखने को मिला। ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 शानदार गोल दागकर लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा 18 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
4: और सोमवार को स्कॉटलैंड के हजारों समर्थकों ने मियामी के लिटिल हवाना को लिटिल स्कॉटलैंड में बदल दिया। ये फैंस कल ब्राजील के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप मैच की तैयारी के तौर पर बैगपाइप और ड्रम की धुन पर मार्च कर रहे हैं। टीम का जोश बढ़ाने के लिए फैंस स्कॉटलैंड के झंडे लिए लोन डेपो पार्क के आसपास की सड़कों पर जमा हो गए, जहां पूरे इलाके में नारे, गाने और बैग पाइपर की आवाज गूंज सुनाई दी। खास बात यह है कि लिटिल हवाना के लोगों ने भी स्कॉटिश फैंस का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। कल स्कॉटलैंड का ब्राजील से मुकाबला होना है। फैंस को उम्मीद है कि मियामी में उनका यह जश्न मैदान पर भी एक यादगार नतीजे के साथ जारी रहेगा। और अब बात समर्पण सेवा की अद्भुत मिसाल की। 88 साल की उम्र में स्वच्छता मिशन चलाने वाले इंदरजीत सिंह सिद्धू को पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि इंदरजीत सिद्धू आईपीएस अधिकारी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद सालों से सफाई अभियान चला रहे हैं। आज उन्हें इसी सेवा के लिए बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने, देखिए।
10: ये वातावरण है, इसको, इसकी हवा को आप दूषित ना करें। अगर दूषित करेंगे हवा को तो खुद अपना नुकसान है, तो मर जाओगे। साफ हवा नहीं ले सकोगे, सांस नहीं आएगा। तो हमें शर्म आनी चाहिए। अगर वहां धरती माता पर हम कूड़ा फेंकें, गार्बेज फेंकें, हमें दुख लगता है उसे साफ रहना चाहिए। अपनी माता की इज्जत करनी हर बच्चे का फर्ज है।
2: वक्त हो गया इंस्टा स्टोरी का, अब आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए किकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
11: भाई यार कब से वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो ही नहीं रहा है, क्या करूँ कि वेट लॉस हो जाए।
12: आपका दिनचर्या कैसा होता है, मतलब करते क्या हो सारा दिन?
11: भाई देखो सुबह सुबह देखो 9 बजे एक तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, पोहा उपमा कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद 2 बजे लंच करता हूँ, 5 रोटी दाल सब्जी कुछ खा लेता हूँ, शाम को उपमा या पोहा जो बच जाता है वो शाम को खा लेता हूँ, रात को 9 बजे अपना डिनर हो जाता है।
12: बहुत सिंपल है, आपको साइकिल ब्रेक करनी।
2: तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
15: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
14: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
16: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
17: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
20: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
19: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और आठवां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मंदिरों में मर रही है भक्तों की भीड़। अगले 24 से 36 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है मॉनसून, जुलाई के पहले हफ्ते तक दिल्ली पहुंचने के आसार, अनंतनाग समेत कई इलाकों में तेज बारिश। हेमकुंड साहिब में अचानक बदला मौसम का मिजाज, देर रात हुई तेज बर्फबारी, बड़ी ठंड, अब तक हेमकुंड साहिब में 127,379 भक्तों ने माथा टेका। आज 65 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों से करेंगी सम्मानित, रोहित शर्मा, ममूटी, अलका याग्निक और विजय अमृतराज जैसे नामी गिरामी लोगों को मिलेगा पुरस्कार। FIH प्रो लीग में आज शाम 7 बजे लंदन में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला, करीब 2 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें। लियोनल मेसी ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर क्लोज का तोड़ा रिकॉर्ड।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर छोटे बच्चे बहुत बीमार होते हैं, उनकी सेहत में दिक्कतें होती हैं जिसको लेकर माता पिता परेशान रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के हिसाब से आप कौन से उपाय करें जिससे आपका बच्चा स्वस्थ रहे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 4:39 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 11:54 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण कर

यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, शुक्र बुध और बृहस्पति कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। कोई भी छोटा बच्चा है उसके ऊपर किन ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्रमा निभाता है। उम्र के लगभग 12 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव होता है और इसमें भी पहले 8 साल तक चंद्रमा विशेष शक्तिशाली होता है, यानी जन्म से लेके 12 साल तक बच्चे का जीवन चंद्रमा से चलता है। इसके बाद बुध का प्रभाव धीरे धीरे आता जाता है, होता जाता है। किसी बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा पर विचार करना होगा, चंद्रमा को जानना होगा। इसके बाद कुछ अंशों में सूर्य पर भी ध्यान देना होगा। यानी अगर किसी बच्चे को स्वस्थ रखना है तो उसके चंद्रमा और उसके सूर्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। बच्चों के स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार में विवादों से बचाव करें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन का लाभ होगा,
कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने तो दिन बेहतर होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है, उसको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो क्या उपाय करेंगे? डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा और डॉक्टर की दवाइयां मानिएगा। उसके अलावा बच्चे को सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक रोज जरूर रखिएगा, उगते हुए सूर्य की रोशनी में। एक बाल्टी पानी सूर्य की धूप में रख दीजिए और बाद में उस जल से बच्चे को स्नान करवाइए, यानी सूर्य की रोशनी वाले जल से स्नान कराएं। बच्चे को लाल रंग के वस्त्र ज्यादा धारण कराएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को पीलिया से छुटकारा पाना आसान होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है और बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, तो क्या करेंगे? बच्चा जब नहाता है तो नहाने के पानी में एक चुटकी नमक डालिए। बच्चे को रोज सुबह और शाम नमक के पानी से स्नान करवाइए। बच्चे के गले में चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में धारण करवाइए। और अगर कोल्ड कफ की समस्या ज्यादा है तो बच्चे के लिए सोमवार को सफेद चीज का दान करिएगा। ऐसा निरंतर अगर आप करें तो आपके बच्चे को सर्दी जुकाम से, कोल्ड कफ से छुटकारा मिलेगा। बच्चे के स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय न लें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपके छोटे बच्चे को डाइजेशन की, पेट की समस्या ज्यादा होती हो
तो क्या करना चाहिए? बच्चे के गले में एक तांबे का सूर्य धारण करवाइएगा, लाल धागे में रविवार को सवेरे। और जब सूर्य उदित होते हैं उस समय बच्चे को कुछ समय धूप में जरूर रखिएगा। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सफेद और हल्के रंग के वस्त्र धारण करवाइएगा। अगर ये उपाय किए जाएं तो बच्चे का डाइजेशन बेहतर होगा, पेट की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आपके छोटे बच्चे को बार बार चोट चपेट लगती हो, बार बार दुर्घटना का शिकार होता हो तो क्या करना चाहिए? मंगलवार को माता पिता में से कोई भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को जो सिंदूर लगाया हुआ है उसमें से थोड़ा सिंदूर मांग करके ले आएं, और रोज जब बच्चा नहा ले तब यही सिंदूर उसके माथे पर या उसके कंठ पर लगाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपका बच्चा दुर्घटना का शिकार नहीं होगा, दुर्घटना से बच जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में शांति बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आप चाहते हैं कि आपका छोटा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे, शिक्षा में, प्रतियोगिता में उसे सफलता मिले, तो इसके लिए दो तीन आदतें अपने बच्चे को छोटी उम्र से डलवाने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात, बच्चे को छोटी उम्र से ही सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए। शुरुआत में जब जल नहीं चढ़ा पाता है तो कम से कम सुबह तैयार होकर सूर्य भगवान को नमस्कार करे, और जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दे।
दूसरी आदत, बच्चे को बचपन से गायत्री मंत्र बोलने की आदत सिखाइए ताकि आपका बच्चा गायत्री मंत्र नियमित रूप से बोले या सुने। और तीसरी बात, आप बचपन से कोशिश करिए कि सप्ताह में या 15 दिन में एक बार अपने बच्चे को साथ में लेकर मंदिर जाइएगा। अगर ये तीन चीजें बच्चे के बचपन से उसके जीवन में ले आएंगे तो बच्चे की सफलता की, उन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आज हमने आपसे बात की बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या के बारे में और उसके समाधान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। घर में सामान्यतः कांच के बर्तनों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कांच के बर्तनों का प्रयोग करेंगे तो स्वास्थ्य की और रिश्तों की समस्या आपको परेशान करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 23 जून 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
0: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

एक कथा सुनो, फिर हनुमान चालीसा पे चर्चा। एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। कुछ लोग कहते ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाए खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते हैं। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने। तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वालों, घर वाले रखते ही उसी को जो काम का हो, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मुड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मुड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मुड़, सिर को मुड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए तीन गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। आओ, आओ, आओ, आओ। बोले ये फायदा है तो मुड़ मुड़ाए तीन गुण। तो घर वालों ने कहा कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांखा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला, जाए कहां? इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां? सामने एक मंदिर था, मठ आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा, महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं, टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खाओ खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर, मंदिर के बाहर बैठे थे। ये जा रहा था रस्ते में, इन्होंने देखा, इसने देखा बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है। बोले ये भी मोटे ताजे हैं लगता है, ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे लगता है, ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया, बोले गुरु जी हाँ, आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हो महाराज। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरु जी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े हो, खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह, मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम? बोले हाँ, दो बार। बोले वो चार नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं, आठ बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, आठ बार खूब खाना। इसने कहा यदि नौ बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भाग हैं, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, नौ बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा, गुरुजी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले ले आओ। तो पुजारी जी कहे भाई कम से कम पांच मिनट तो गम खा, पांच मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे, अब इसे फ्री में मिले साव आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, आ सांस तेज चल रही, दीवाल में टिक्के कीर्तन करे हरे राम उतई ही सो जाए, और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है।
एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं, भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे। इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है, तो ये गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लग। तो गुरुजी बोले इधर आओ जी। जी गुरुजी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरुजी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुलाने ना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने

अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। तो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के नहीं आ रहे हैं। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

और सीधा साधा सो हाथ जोड़ करके बोला, सुनो प्रभु हमारे पास तुम यहाँ आकर के तुम आ जाओ, पर बाद में कहो मिठाई दो, रबड़ी दो, मालपुआ दो। ना ना सुन लो व्यवस्था,

आए, अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाए। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ, और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा, वहां कुछ नहीं है, जो है यही है, यहाँ हम भी खा रहे तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए, लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है, राम जी अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवा ही लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कड़ खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, वो दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान, पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ, बढ़िया प्रसाद पवाया। इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किए, भगवान जाने लगे। इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ, तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये धाम मंदिर आ गया, इसने गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगावे, तो ये पूछा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी, इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अभी एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया। बोले, गुरु जी, सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरु जी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ, आटा। गुरु जी को लगा ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा, तो गुरु जी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे, ले ले जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कड़ फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई, रख ली, साग बनाई, रख ली। इसने सोचा भगवान को बुला ले, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा, तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता राम।

0: आते हैं, दो का इंतजाम करो, सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला, अब ये कौन है? भगवान बोले, हमारे भाई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले, हुआ क्या? बोले, लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है, इनका अलग है, दोनों अलग अलग रहे। अरे बोले, नहीं नहीं, हमारे भाई है, इनकी माता जी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। हाँ। बोले, हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है, अब पूरे खानदान का, अब तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए, अब ठीक है, लो बैठो, कोई बात लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे, बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा, बाबा लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे, क्या गजब का आदमी, हम जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं, ये कह रहा है ये क्यों आ गए, क्या गजब का भगत है भाई, क्या गजब का भगत। तीनों लोग बैठ गए, राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण भैया, तीनों बैठे, इसने प्रसाद रखा, भोजन कराया, आहा, तीनों को गौर से देखने लगा। भगवान तो भगवान ही है, वो तो सुंदर परम सुंदर है ही है। नीलांबुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम।
1: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
2: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
1: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
4: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
5: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे।
5: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: Good news today.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है 10

0: तक अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। हेमकुंड साहिब में अचानक बदला मौसम का मिजाज, देर रात हुई तेज बर्फबारी, बड़ी ठंड। अब तक हेमकुंड साहिब में 1,27,379 भक्तों ने टेका मत्था। आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और आठवां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम चेन्नई से हुई रवाना, शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वाड का हिस्सा है। FIH प्रो लीग में आज शाम 7 बजे लंदन में भारत का पाकिस्तान से होगा मुकाबला, करीब 2 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने, जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर क्लोज का तोड़ा रिकॉर्ड।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है आखिरी और आठवां बड़ा मंगल का त्योहार। आज के दिन बजरंग बली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंग बली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुई थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंग बली की मुलाकात। भगवान बजरंग बली की कृपा से दूर होती हैं जीवन की सभी बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की है मान्यता, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और आठवां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। आखिरी और आठवां बड़ा मंगल पर बजरंग बली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार, भगवान को अपूर्ति फूलों की मालाएं और आभूषण अर्पित किए जाते हैं। आखिरी और आठवां बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए उनकी की जाती है पूजा अर्चना। अयोध्या में आखिरी और आठवां बड़ा मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाया जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और आठवां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए उनके जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। उज्जैन में आखिरी और आठवें बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी कतार। कौंडयपुर से माता रुक्मणी की 432 साल पुरानी भव्य पालकी यात्रा, बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल। ताल मृदंग वीणा की गूंज और माता रुक्मणी के जयघोष से पूरी कौंडयपुर नगरी पंडरपुर के लिए रवाना हुई यात्रा। गांव के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों ने पालकी यात्रा का किया जोरदार स्वागत, जगह जगह रंगोलियां सजाई गई, फूलों की गई वर्षा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है ये पवित्र यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, जवानों ने इमरजेंसी की तैयारी को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने कराया अपना रजिस्ट्रेशन। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा करने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, चमोली में हुई जोरदार बारिश। हेमकुंड साहिब में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी पर आस्था भारी, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर की अरदास। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा हुआ ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे हैं डुबकी। खराब मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 1,28,000 भक्तों ने टेका मत्था। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन, 26 जून तक चलेगा ये मेला। कल रात 9:08 पर बंद किए गए मंदिर के कपाट, मुख्य गर्भगृह 3 दिनों तक रहेगा बंद। 23, 24 और 25 जून को लगातार 3 दिन और 3 रात तक चलेंगे महायज्ञ, मुख्य समारोह 26 जून को होगा। पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद 26 जून की सुबह शक्तिपीठ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। मेले को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी, भक्तों के लिए कई जगहों पर की गई शिविर और भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। अंबुबाची मेले को देखते हुए प्रशासन का ऐलान, मंदिर तक जाने वाले रास्ते सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, महापर्व के अवसर पर असम पधारने वाले दुनिया भर के श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, मां कामाख्या की कृपा दृष्टि से सभी का जीवन सुख शांति समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो, यही हमारी प्रार्थना है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में व्यापक तैयारियां, सुरक्षा एजेंसियां भी तैयारियों में जुटी। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कुलगाम में पुलिस ने जंगल के ऊंचे इलाकों में बड़े पैमाने पर चलाया तलाशी अभियान, 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र तीर्थ यात्रा। रक्सौल के गेटमैन ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में किया कमाल, बना डीएसपी। जालना में पहली बार कैंसर की जटिल सर्जरी सफल हुई, मैलिग्नेट फाइलॉइड्स ट्यूमर का हुआ सफल उपचार। गाजियाबाद में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के 52वें स्थापना दिवस के समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए इसमें शामिल। अलीगढ़ में सीएम योगी ने 85वें विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा विकास करना हमारा मकसद। देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा की हुई शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे हुए इसमें शामिल। फिट इंडिया मुहिम के तहत तिरुवनंतपुरम में साइक्लोथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें लोग। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर दिया फिट रहने का संदेश, युवाओं ने भी चलाई साइकिल। अगरतला में ओलंपिक दिवस समारोह पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सीएम मानिक सहाने की इसमें शिरकत। गांधीनगर में रनशाला का शुभारंभ, डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी हुए इसमें शामिल। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे लगातार सैलानी, श्रीनगर में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में करेंगे हनुमंत कथा, जकार्ता में 3 दिनों का उनका कार्यक्रम। बाबा बागेश्वर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, जकार्ता में 26 से 28 जून तक करेंगे प्रभु का गुणगान। पुणे के स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन की अनूठी पहल, इमोशन एब्जॉर्बिंग ध्यान कुटीर विकसित की। कुटीर बनाने में गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक चीजों का किया गया है इस्तेमाल, 10 मिनट की साधना और ध्वनि तरंगों से मिलती है तनाव से मुक्ति। परियोजना में अरोमा मेडिटेशन और साउंड थेरेपी के जरिए तनाव को कम करने और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने की कोशिश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: Tune in is your all-in-one audio app, radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है दस्तक। अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी। BCCI ने साझा की जानकारी। वैभव बोले, सपना हुआ साकार। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम चेन्नई से रवाना। शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। श्रेयस अय्यर उप कप्तान, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वाड का हिस्सा। रुद्रनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर यहां पहुंच रहे हैं भक्त। हेमकुंड साहिब में अचानक बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई तेज बर्फबारी, बड़ी ठंड। अब तक हेमकुंड साहिब में 1,27,379 भक्तों ने माथा टेका। आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और 8वां बड़ा मंगलवार। हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भीड़।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। और आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे ग्लोबल बाबा की। जी हां, वही बाबा जिन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर से कथावाचक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की और आज सात समंदर पार सनातन की गूंज बन चुके हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बाबा बागेश्वर की, जो अब दुनिया के कई देशों में लाखों श्रद्धालुओं के बीच सनातन धर्म का संदेश दे रहे हैं। उनके हनुमंत कथा, दिव्य दरबार और हिंदू संस्कृति के प्रचार का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की धरती हो या न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, फिजी की द्वीप हो या फिर ब्रिटेन की संसद, बाबा बागेश्वर जहां पहुंचे वहां हजारों लाखों भारतीय मूल के लोगों की भीड़ उमड़ती दिखाई दी। मेलबर्न, ब्रिस्बेन और सिडनी समेत तमाम बड़े शहरों में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार के आयोजन में बाबा के चाहने वाले पहुंचे और संस्कृति के संदेश को सुना।
1: देव बैठे, एक तरफ सागर है, सागर में भी डुबकी लगाओ, दर्शन में भी डूब जाओ और कथा में भी सरोवर हो जाओ।
2: कभी छतरपुर के बागेश्वर धाम तक सीमित रहने वाली हनुमान चालीसा की चौपाई अब सात समंदर पार तक गूंज रही है। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सनातन का परचम लहरा रहे हैं। अब वो देश दुनिया के कई हिस्सों में हनुमत कथा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन, फिजी से लेकर न्यूजीलैंड और अफ्रीका तक, जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग बसे हैं वहाँ वहाँ बाबा की कथा और दिव्य दरबार लग रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उनकी हनुमंत कथा और सनातन संदेश को सुनने के लिए विदेशी धरती पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। सबसे चर्चित दौरों में ऑस्ट्रेलिया का नाम शामिल है। सिडनी, पर्थ और अन्य शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय ने हिस्सा लिया। वहाँ हनुमंत कथा के साथ सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का संदेश दिया गया।
3: यदि हम बिखरे रहेंगे तो लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यदि हम एक रहेंगे तो किसी भी देश में हमारा स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रिटेन का दौरा भी ऐतिहासिक माना गया। लंदन में बाबा बागेश्वर की मौजूदगी उस वक्त सुर्खियों में आई जब ब्रिटिश संसद परिसर में पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
4: ऐसे ही आपका पूरा खानदान आरती करता रहे और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देता रहे।
2: वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जन जन तक पहुंचाने का मकसद लिए बाबा बागेश्वर एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं। इस बार उनका पड़ाव है श्रीलंका और इंडोनेशिया। जाहिर है भारत से निकली ये धार्मिक यात्रा अब कई महाद्वीपों तक पहुंच चुकी है और हर नए दौरे के साथ इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട്, ഗുഡ് ന്യൂസ് ടുഡേ. बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल श्रीलंका पहुंचे हैं। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में हनुमान जी के श्री चरणों का दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने हनुमंत कथा वाचन किया। श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर इंडोनेशिया पहुंचे और 26 से 28 जून तक भक्तों को दर्शन वहां पर वो देने वाले हैं और श्री हनुमंत कथा का वो आयोजन भी करेंगे।

0: वसुदेव कुटुंबकम का संदेश जन जन तक पहुंचाने का मकसद लिए बाबा बागेश्वर एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं। इस बार उनका पड़ाव है श्रीलंका, जहां माता जानकी की स्मृतियां अब भी कण कण में मौजूद है। श्रीलंका पहुंचने पर बाबा बागेश्वर सबसे पहले अशोक वाटिका पहुंचे और हनुमान जी के श्री चरणों का दर्शन किया। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलंबो में मौजूद प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका के मध्य सनातन संस्कृति का संबंध अत्यंत प्राचीन और आत्मीय है। भारत के श्रद्धालु माता जानकी की स्मृतियों से जुड़े श्रीलंका के पावन स्थलों के दर्शन करने आते हैं। भविष्य में श्रीलंका के अधिक से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे, यही हमारी कामना है। यात्रा के दौरान बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया, साथ ही भारत में सनातन के उत्थान की सराहना की। श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वो 26 जून से 28 जून के बीच हनुमंत कथा करेंगे। इस विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार करना और विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के बीच आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करना है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनके हनुमंत कथा का आयोजन लंदन में भी हो चुका है, जहां पर भारत वंशियों के साथ साथ अंग्रेज भी हनुमंत कथा का पूरा उत्साह के साथ श्रवण लाभ ले चुके हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न शहर में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था, जहां पर उन्होंने भक्तों के सामने हनुमंत कथा का पाठ किया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कैनबरा में मौजूद पार्लियामेंट हाउस में विश्व शांति पर एक ऐतिहासिक संबोधन भी दिया था, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया था। बाबा बागेश्वर फिजी, न्यूजीलैंड और दुबई की यात्रा भी कर चुके हैं। इंडोनेशिया के बाद उनकी अगली यात्राओं में लंदन, ओमान, सिंगापुर और दुबई की यात्राएं भी शामिल हैं, जहां वे सनातन धर्म के प्रचार और बागेश्वर धाम पर बनने वाले वैश्विक स्तर के कैंसर अस्पताल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने हेतु कथाओं का आयोजन करेंगे। बाबा बागेश्वर की विदेश यात्राओं के दौरान होने वाले आयोजनों में कोई शुल्क या टिकट नहीं होता है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: विदेश दौरे में एक बार बाबा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस तस्वीर में बाबा हैट लगाकर जेंटलमैन वाले अंदाज में नजर आए थे। दरअसल जब बाबा ब्रिटेन दौरे पर गए थे तो बाबा का जेंटलमैन वाला अंदाज सभी को नजर आया, लेकिन इंग्लैंड में बाबा पूरी तरह अपने उसी बुंदेलखंड वाले रंग में नजर आए, जो उनके भक्तों को बेहद पसंद है।
2: बाबा का दरबार हर वक्त हर जगह हाउसफुल है, फिर चाहे वो देश हो या फिर विदेश। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार जब इंग्लैंड में सजा तो भक्तों का वो तांता लगा कि देखने वाले बस देखते रह गए। लंदन से लेस्टर तक हर जगह बस ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
3: हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो।

0: बाबा बागेश्वर के भक्तों की तादाद अच्छी खासी है। बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि वो दूर दूर से उन्हें देखने और सुनने आ रहे हैं। इटली और दूसरे देशों से भी श्रद्धालु उन्हें मिलने के लिए इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र और हर तबके के लोगों का हुजूम बाबा को देखने सुनने के लिए पहुंचा है। कोई बस बाबा को सुनने के लिए बेताब दिख रहा है।
1: ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन
2: जी।
1: यूएसए का इंतजार कर रहे हैं।
2: कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं
1: अभी
2: कब से
1: सब कैंसल है,
2: सब कैंसल हो गया तो मुझे आना पड़ गया।
1: ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई
2: बस गुरुजी आप,
1: क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड।
0: और ऐसा नहीं कि आम लोगों में ही बाबा को लेकर दीवानगी है। इंग्लैंड के कई बड़े अधिकारी और लेस्टर के स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग भी वहां बाबा के दरबार में पहुंचे।
1: ये जो यहां अंग्रेज बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, किसी के क्या है, क्राइम कमिश्नर, माय डियर वेलकम टू यू, एंजॉय इन राम कथा, वेलकम।
0: बाबा बागेश्वर के कई श्रद्धालुओं की अक्सर ये कोशिश रहती है कि वो उनके हर कार्यक्रम में पहुँचे। जब इंग्लैंड में ये आयोजन हुआ तो वहाँ भी वो हर जगह से खींचे चले आए। इनमें बाबा से मिलने के लिए आस्था और उत्साह की कोई कमी नहीं दिखाई दी।
1: भैया
3: हॉल भर गया है, हॉल जितना बड़ा था वो पूरा हो गया। यहाँ की पुलिस प्रशासन ने सभी जगह से रोड बंद कर दिए और धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का कि वो कॉपरेट कर रहे, क्योंकि यहाँ के नियम बहुत कड़क हैं। आप तो यहीं के निवासी हैं, हम तो पहली बार ऐसे फंसे। तो हमें कल लग रहा था कि हे भगवान कहीं ऐसा ना हमें वापस भारत इंपोर्ट न कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों का भाव, आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसी हम मंगल प्रार्थना करें। इस बार तो गलती हो गई, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हम अगली बार जो भी आयोजन करवाएंगे उनसे अब हम हॉल हॉल में नहीं, अब सीधा ग्राउंड में करेंगे।
0: यानी बाबा बागेश्वर के इस दरबार को लेकर लोगों में श्रद्धा ऐसी है कि वो नियमों तक की परवाह नहीं कर रहे। हालांकि बाबा ऐसा नहीं चाहते, लेकिन श्रद्धालु बस बाबा की एक झलक पाना चाहते हैं, उनकी कथा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
1: चिंता करोगे तो जीते जी 100 बन जाओगे, 100 का मतलब मुर्दा, डेथ। चिंता करोगे तो 100 बन जाओगे, लेकिन परमात्मा का चिंतन करोगे शिव बन जाओगे। और फिर तुम भी वेद की सूक्तियां बोलोगे, शिवोहम रामोहम अहम ब्रह्मास्मि कृष्णोहम दासोहम शिवोहम। इसलिए चिंता से शिवोहम असंभव है। ज्यादातर दुनिया के लोग चिंता करते, शरीर की चिंता, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास।
0: बाबा को लेकर सात समंदर पार के भक्तों की श्रद्धा, उनकी दीवानगी वाकई देखने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
1: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
3: You're listening to MSNBC.
1: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
4: पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस है जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको सोचने पर मजबूर भी कर सकते हैं।
2: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

आप जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है।

0: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी, BCCI ने साझा की जानकारी, वैभव बोले सपना हुआ साकार।

इंग्लैंड दौरे के लिए टीम चेन्नई से रवाना। शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। श्रेयस अय्यर, उप कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वाड का हिस्सा। देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है दस्तक। अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। उत्साह से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ में अब तक 12,52,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। रुद्रनाथ धाम में भक्तों की भारी। हेमकुंड साहिब में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई तेज बर्फबारी, बढ़ी ठंड। अब तक हेमकुंड साहिब में 1,27,379 भक्तों ने माथा टेका। ज्येष्ठ महीने का आखिरी और आठवां बड़ा मंगलवार। हनुमान जी के दर्शन आशीर्वाद के लिए सुबह से मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
1: सच गई है खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज का मेन्यू, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा आखिरी और 8वां बड़ा मंगल का त्यौहार। आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन। विधि विधान के साथ पूजा करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। अयोध्या में आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शनों के लिए लगी कतारें। उज्जैन में आखिरी और 8वां बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज। 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल। जवानों ने इमरजेंसी की तैयारी को परखा। कौंडीपुर से माता रुक्मणी की 432 साल पुरानी भव्य पालकी यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गांव के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों ने पालकी यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया। जगह जगह रंगोलियां सजाई गई, फूलों की वर्षा की गई। वहीं गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आज दूसरा दिन 26 जून तक चलेगा ये मेला। कल रात 9:08 पर बंद किए गए मंदिर के कपाट मुख्य गर्भगृह में 3 दिनों तक बंद रखा जाएगा इसको। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में करेंगे हनुमंत कथा। जकार्ता में 3 दिनों का कार्यक्रम है। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार। चमोली में हुई जोरदार बर्फबारी। खराब मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 1,28,000 भक्तों ने टेका मत्था।
2: एमपी में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चीता प्रोजेक्ट के बारे में ली जानकारी। देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। सांसद निशिकांत दुबे हुए शामिल। गाजियाबाद प्रशासन ने डासना इलाके में 250 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। जमीन की कीमत 250 करोड़ रुपए होने का अनुमान। कर्नाटक के बेलारी में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने खुद की पहल। 3 लाख जमा कर सड़क की मरम्मत की। बिहार में छपरा के शशांक गौरव ने 17वीं बैच की बीपीएससी परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल किया। परिजनों में खुशी का माहौल।
1: साउथ सुपरस्टार यश के फैंस के लिए गुड न्यूज। टॉक्सिक 26 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बने। फिल्म के दोनों पार्ट से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए हैं। डेनमार्क से आई पतंगबाजी की शानदार तस्वीरें। फैनो आइलैंड पर 26 देशों के पतंगबाज जुटे। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम चेन्नई से रवाना। शुभमन गिल की कैप्टेंसी में खेलेगी टीम इंडिया। श्रेयस अय्यर उप कप्तान, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी स्क्वाड का हिस्सा। लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर क्लोस का तोड़ा रिकॉर्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: अब अच्छी सच्ची खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए। खबरों की प्लेट तैयार है,
1: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: ज्येष्ठ महीने का आज आखिरी बड़ा मंगलवार। बजरंगबली के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता।
1: हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम। जबरदस्त ठंड के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं।
2: अगले 24 घंटों में गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दे सकता है मानसून। जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने के आसार।
1: टीम इंडिया की जर्सी पाकर भावुक नजर आए वैभव सूर्यवंशी। बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो। आयरलैंड इंग्लैंड के दौरे के लिए चुना गया।
2: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर क्लोस का तोड़ा रिकॉर्ड।
1: और चलिए लंच टाइम में आज फिल्मों के साथ साथ आस्था और मौसम की भी बात होगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एक शानदार तस्वीर के साथ जो इस वक्त हम दोनों के पीछे बैकग्राउंड में है। हर क्रिकेटर का देखिए यही सपना होता है कि टीम इंडिया के लिए आखिरकार वो किसी भी टूर्नामेंट में खेलना चाहता है, और जब ये सपना सच होता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का यही सपना सच हुआ और वो इमोशनल से हो गए।
2: बिल्कुल शगुफ्ता, बीसीसीआई ने वैभव का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वैभव को टीम इंडिया की जर्सी मिलते दिखाया गया। जर्सी देखकर वैभव बड़े ही भावुक हो गए। वैभव को आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। देखिए पहली बार टीम इंडिया में शामिल होने पर वैभव ने अपनी खुशी का इजहार किस अंदाज में किया, देखिए।
3: जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ। और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ, और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ड्रीम जैसा ही लग रहा था, और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं। और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते, सेम रिएक्शन मेरा भी था।
2: देखिए बहुत कम उम्र में वैभव ने मैदान में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद वैभव ने श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में जबरदस्त बल्लेबाजी की है।
1: और देखिए वैभव ने महज 29 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्के लगाकर 94 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस बल्लेबाजी के साथ ही उन्होंने ब्लू जर्सी पर अपना दावा और भी मजबूत कर लिया था।
4: तूफान रास्ता नहीं पूछते और आंधियां इजाजत लेकर नहीं चलती। आईपीएल के बाद वैभव सूर्यवंशी को एक नहीं हजारों नसीहतों का पुलिंदा थमाया गया। कहा गया जरा लगाम कसिए, वनडे क्रिकेट में कदम फूंक फूंक कर रखिए, लेकिन दांबुला के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि शेर को शिकार करना नहीं सिखाया जाता। महज 11 गेंदों में अर्धशतक, 29 गेंदों में 94 रन और श्रीलंका पर ऐसा धावा कि विरोधियों की सारी चालें धरी की धरी रह गईं। गेंदबाज बदलते रहे लेकिन नतीजा नहीं बदला। वैभव ने साबित कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत किसी की सलाह नहीं बल्कि उनके खेल का बेखौफ अंदाज है। श्रीलंका ए के खिलाफ खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 324 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 94 रन कूट डाले। यही पारी इंडिया ए की जीत की नींव नहीं बल्कि जीत की इमारत बन गई। अब अगला पड़ाव आयरलैंड और इंग्लैंड है, और क्रिकेट के गलियारों में चर्चा है कि आयरलैंड में ही वैभव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दहलीज पार करने का मौका मिल सकता है। फाइनल में खेली वैभव की इस पारी की कीमत सिर्फ 94 रन नहीं है, ये उस सोच का जवाब है जो उनके बल्ले पर ब्रेक लगाना चाहती थी। पिछले कुछ समय से उन्हें समझाया जा रहा था कि वनडे क्रिकेट में वक्त के साथ चलना है, पारी को बुनना पड़ता है, जोखिम को तराजू में तोलना पड़ता है, लेकिन दांबुला में वैभव ने मानो दुनिया से कह दिया कि नदी की तरह बहना उसकी पहचान है, अगर बहाव रुक गया तो नदी नदी नहीं रहती। आईपीएल में जिस तूफानी बल्लेबाजी ने उन्हें रातों रात सुर्खियों का सितारा बनाया, वो चमक श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती मुकाबलों में कुछ फीकी नजर आई। रन तो बन रहे थे लेकिन बल्ले में वो बिजली नहीं थी, वो धमाका नहीं था जिसने उन्हें क्रिकेट जगत की नई सनसनी बना दिया था। फिर वो मुकाबला आया जहां मैदान पर जुबानी जंग हुई, तनातनी हुई और मामला चर्चा का विषय बन गया। लेकिन क्रिकेट का एक पुराना उसूल है, बल्ला बोले तो बहसें खामोश हो जाती हैं। फाइनल में उतरते ही लगा मानो वैभव ने खुद से एक वादा कर लिया हो। अब ना कोई समझौता, ना कोई बनावटी बदलाव, अब वही खेल जिसने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा किया। और फिर शुरू हुई चौके छक्कों की ऐसी बरसात जिसमें श्रीलंकाई रणनीतियां तिनकों की तरह उड़ गईं। मैच में वैभव को सेंचुरी तो नहीं मिली लेकिन महज 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का कीर्तिमान जरूर उन्होंने बना दिया। बेशक तीर कमान से निकल चुका था, निशाना भेदा जा चुका था, दामुला में खेला गया फाइनल सिर्फ वैभव की 94 रन की कहानी भर नहीं है, ये 15 साल के इस बल्लेबाज का ऐलान है जिसने दुनिया को बता दिया कि उन्हें किसी सांचे में ढालने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें फॉर्मेट के नजरिए से ना देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात बॉलीवुड की कर लेते हैं। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन हरी झंडी देने से पहले सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 18 जगहों पर कैची चलाई।
5: अक्षय कुमार की ये पहली फिल्म है जो इतने ज्यादा कट के साथ रिलीज की जा रही है। फिल्म के जिन हिस्सों पर सेंसर बोर्ड को एतराज था उन्हें हटा दिया गया या फिर बदल दिया गया। अब पर्दे पर आने से पहले इस फिल्म को दर्शकों के सामने रखा जाएगा। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर 26 जून को दस्तक देगी।
6: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
7: एक जबरदस्त कहानी है।
8: और टाइटल क्या है फिल्म का?
7: वेलकम टू द जंगल।
8: अक्षय कुमार एक बार फिर कॉमेडी का जबरदस्त डोज लेकर बड़े पर्दे पर आने को तैयार है।
9: तो पैसों की बात कौन करेगा?
8: उनकी फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होने जा रही है और रिलीज से पहले फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से हरी झंडी भी मिल गई है। खास बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुछ सीन एडिट करने का निर्देश दिया है। फिल्म मेकर्स ने जब वेलकम टू द जंगल को सर्टिफिकेशन के लिए CBFC के पास भेजा तो उन्हें कुल 18 सीन्स को एडिट करने का निर्देश दिया गया। इन सीन्स को एडिट करने के बाद CBFC ने फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दे दी।
7: ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
10: ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा?
7: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
8: फिल्म के जिन 18 सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने कैची चलाई है उसमें कुछ डायलॉग्स और कुछ बोल्ड सीन्स शामिल है। डायलॉग्स में कुछ ऐसे शब्दों को भी बदल दिया गया है जिन पर सेंसर बोर्ड को एतराज था। 10 सेकंड के एक पूरे सीन को ही हटा दिया गया है।
7: कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
8: फिल्म में बिंदु दारा सिंह के एक जेस्चर को भी चेंज किया गया है।
11: वो जो छपरी ने किया है ना वो अपने को भी करने का है।
7: ये स्टंट
8: इन बदलावों के साथ अक्षय की वेलकम टू द जंगल का समय 2 घंटे 44 मिनट तय हुआ है। ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की वो कॉमेडी फिल्म बन चुकी है जिसमें सेंसर बोर्ड ने सबसे ज्यादा बदलाव किए हैं।
12: कहाँ थे तुम 20 साल से?
13: अपने घर।
14: इसको टच रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी।
15: अरे वो पुरानी चावल है।
16: मैं किस लिए फिल्म में?
15: ग्लैमर
17: क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
18: कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे?
8: फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी है और रिलीज से पहले अक्षय और फिल्म की स्टार कास्ट फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। कल अक्षय वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के लिए मुरादाबाद के तीर्थगढ़ महावीर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उनके साथ दिशा पाटनी, अक्षरा सिंह और राजपाल यादव भी मौजूद थे।
19: मैं आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत फिल्में की हैं, लेकिन जब भी ये लौंडे के साथ फिल्म करता हूँ ना वो फिल्म चल पड़ती है। तो अब बोनस कौन हुआ, मैं या ये?
8: वेलकम टू द जंगल वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, रवीन टंडन जैसे 34 बड़े एक्टर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। भारी भरकम स्टार कास्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर और सबमरीन में शूटिंग ने इस फिल्म को और भी ज्यादा खास बना दिया है। रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर भी फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है फिल्म के रिलीज का, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में ही कॉमेडी के जबरदस्त डोज की झलक देखने को मिल रही है।
13: झगड़ा क्या करते हो यार?
16: ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है।
13: मेंढक को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर, हां तो तू रिक्शा कर जा, बाहर में जाओ तुम लोग।
8: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
17: ट्रेलर खत्म, पैसा हजाम।
5: चलिए बात हुमा कुरैशी की करते हैं। हुमा कुरैशी ने अब तक के अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू में हुमा पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किलर के एक ऐसे अवतार में नजर आने वाली हैं जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है।
2: दरअसल फिल्म का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है और इसमें हुमा कुरैशी को भारत की पहली देसी हिट वुमन के तौर पर प्रमोट किया गया है। क्या है हुमा का ये किलर अवतार और कैसे उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार किया है, देखिए रिपोर्ट।
20: लंबी सांस ले, सब डर भाग जाएगा।
21: वो ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन किसी का काम तमाम करने में उसका कोई सानी नहीं। मिलिए इंडिया की पहली हिट वुमन से, ऑन स्क्रीन ही सही, कम से कम बेबी डू डाई डू में हुमा कुरैशी को भारत की पहली देसी हिट वुमन के तौर पर ही प्रमोट किया जा रहा है।
22: नाम नाम बच्ची,
13: अरे मैडम वो डमशरा जो इंग्लिश इंग्लिश
22: बेबी। अगला स्टेशन डेस्टिनेशन बंदी फुल फायर, ना सुनेगी ना बोलेगी खूनी ऑन हायर, थोड़ा जिगरा बिगरा वगैरह वगैरह रख साइड। हर गृहस्थी में उसको।
21: हुमा कुरैशी की अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया और रिलीज के साथ ही रोमांच और रहस्य से भरा ये ट्रेलर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और सबसे ज्यादा चर्चा में है बेबी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का किरदार जो काफी खतरनाक और इंटेंस दिख रहा है।
20: हमारे ऊपर भी लोग हैं, पावरफुल लोग, और हम भी तब तक हैं जब तक उनके काम आ सके।
21: बेबी डू डाई डू एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो गहरे राज, धोखे और बदले से भरी एक डार्क और सस्पेंस वाली दुनिया में लेकर जाती है। इस क्राइम की दुनिया में बेबी का दबदबा है। अब क्योंकि बेबी बोल नहीं सकती, इसलिए हुमा कुरैशी के पास डायलॉग्स नहीं है, लेकिन अपने हाव भाव से हुमा कुरैशी ने बेबी के किरदार में खौफ पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखा जाए तो मासूमियत, भोलापन और खामोशी ही उसका हथियार है। हाँ, एक हथियार और है, चमकीली लाल छतरी जिसमें छिपी बंदूक से वो दिन दहाड़े बेखौफ होकर हत्याएं करती हैं। अब क्यों करती है, क्या वजह है, इसका जवाब तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ट्रेलर देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि एक रहस्यमयी कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर हुमा कुरैशी ने जबरदस्त छाप छोड़ी है।
13: ये कोई टाइम है घर आने का?
20: पता नहीं क्या करती रहती है रात रात भर।
21: एक इंटरव्यू में हुमा कुरैशी ने बेबी के किरदार को निभाने में आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ न कुछ कहना और केवल आंखों और शारीरिक हाव भाव से अभिनय करना कई पन्नों के डायलॉग बोलने से ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज की खास ट्रेनिंग ली थी। हुमा ने आगे कहा कि बेबी ने मुझे ऐसे तरीकों से चुनौती दी जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। वो शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, इसलिए हर भावना को अंदर से महसूस करना और दिखाना जरूरी था। ऐसे दिन भी थे जब कुछ न कहना कई पन्नों के डायलॉग बोलने से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता था। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि लोग फिल्म को बहुत जल्दी समझने या सुलझाने की कोशिश किए बिना सिनेमा घर जाएं और बस उसके सफर का हिस्सा बने। हुमा कुरैशी इस फिल्म के एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। नचिकेत सामंत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम ने प्रोड्यूस किया है। एक एक्ट्रेस के तौर पर हुमा कुरैशी ने चुनौती पार कर ली है, लेकिन एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। बेबी डू डाई डू 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी दिन आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई एक्शन फिल्म अल्फा भी रिलीज होगी, जिसने काफी अरसे से जबरदस्त हाइप बना रखा है। यानी एक तरफ है हुमा की सीरियल किलर थ्रिलर तो दूसरी ओर है स्पाई एक्शन थ्रिलर। अब बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन सी फिल्म मारती है ये तो 3 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बॉक्स ऑफिस की धुरंधर ने रणवीर सिंह को कमाई का भी धुरंधर बना दिया है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर के दोनों पार्ट से रणवीर सिंह को करीब 325 करोड़ की कमाई हुई है। इसी के साथ रणवीर ने कमाई में शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
0: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली धुरंधर ने रणवीर सिंह को कमाई का बादशाह भी बना दिया। धुरंधर की कामयाबी ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी एक नई पहचान दर्ज करा ली। क्रिटिक्स की तारीफ के साथ साथ इस फिल्म ने कमाई के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म की इस कामयाबी ने धुरंधर के एक्टर रणवीर सिंह को भी एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह भारत के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। धुरंधर दो पार्ट्स में रिलीज की गई थी और इन दोनों ही पार्ट्स से रणवीर सिंह ने करीब 325 करोड़ रुपए कमाए। रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह ने इस फिल्म के लिए कोई तय फीस नहीं ली थी। फीस लेने की बजाय उन्होंने फिल्म में एक्टिंग के लिए प्रॉफिट शेयरिंग का विकल्प चुना था, यानी फिल्म की कमाई बढ़ने के साथ ही रणवीर की हिस्सेदारी का बढ़ना भी तय था। जब फिल्म का बजट बढ़ा तो रणवीर ने खुद इस प्रोजेक्ट में पैसा भी लगाया था। आंकड़ों के अनुसार धुरंधर ने दुनिया भर में करीब 3100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म की कमाई के बाद रणवीर को बड़े पर्दे के कलेक्शन के साथ डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के हिस्से के तौर पर 325 करोड़ रुपए मिले। इस कमाई के साथ रणवीर सिंह ने शाहरुख, रजनीकांत और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े स्टार्स की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि एक्टर या फिल्म मेकर्स की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई है। रणवीर से पहले भारत में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के नाम था। साल 2024 में आई फिल्म जेलर से रजनीकांत ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं शाहरुख की पठान और जवान ने भी 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 और प्रभास ने कल की 2898 एडी के लिए 200 करोड़ से ज्यादा की फीस ली थी। लेकिन एक ही फ्रेंचाइजी से 325 करोड़ कमाकर रणवीर सिंह बॉलीवुड में कमाई के भी धुरंधर बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात कपूर खानदान में बजने जा रही शहनाई की करते हैं। बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की शादी मंगेतर रोहन ठक्कर से होने जा रही है। मुंबई में घर पर प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत हो गई है। रविवार को माता की चौकी के साथ प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत हुई, जिसमें पूरा का पूरा कपूर खानदान शामिल हुआ।
3: और इसके बाद संगीत सेरेमनी में भाई अर्जुन कपूर और अंशुला की तीनों बहनें जानवी कपूर, खुशी और शनाया कपूर ने खूब धमाल मचाया। 6 जुलाई को अंशुला की शादी मुंबई में होगी, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारों के शामिल होने की संभावना है।
4: कपूर खानदान में गूंजने वाली है शादी की शहनाई। विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार है अंशुला। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की सगी बहन अंशुला कपूर की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। अंशुला अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बीटाउन में चर्चित इस शादी की प्री वेडिंग फंक्शंस की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पूरे कपूर परिवार ने हिस्सा लिया। 21 जून को मुंबई के बांद्रा में बोनी कपूर के घर पर प्री वेडिंग फंक्शन आयोजित की गई। शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम माता की चौकी से हुई, जिसमें होने वाले दूल्हा दुल्हन ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अंशुला और रोहन प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में शनाया के साथ उनके पिता संजय कपूर, माँ महीप कपूर और भाई जहान कपूर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अंशुला के भाई अर्जुन कपूर, बहन जानवी कपूर और खुशी कपूर भी सेलिब्रेशन में शामिल हुए। सभी पारंपरिक आउटफिट्स में मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आए। शनाया ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वी लव यू अंशुला और रोहन। माता की चौकी की पूजा संपन्न होने के तुरंत बाद संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया। अंशुला के चाचा संजय कपूर और चाची महीप कपूर ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, खुशी और शनाया कपूर भी पारंपरिक गानों पर थिरकते नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन कपूर ने बहन अंशुला के संगीत सेरेमनी में अपनी फिल्मों के हिट डांस नंबर्स जैसे चिट्टियां कलाइयां और हाई हील्स पर पूरे परिवार के साथ हुक स्टेप्स किए।
21: अंशुला की तीनों बहनों जाह्नवी, खुशी और शनाया कपूर ने स्पेशल सरप्राइज डांस प्लान किया था। जाह्नवी कपूर ने अपनी हालिया हिट फिल्मों के गानों पर परफॉर्म किया, जबकि खुशी कपूर ने शनाया के साथ मिलकर मेहंदी लगा के रखना जैसे कुछ सदाबहार बॉलीवुड वेडिंग सॉन्ग्स पर जमकर डांस किया। अंशुला ने इस फंक्शन के लिए बेज और गोल्ड रंग का बेहद खूबसूरत जरदोई कढ़ाई वाला लहंगा पहना था, साथ ही पंजाबी परंपरा को सम्मान देते हुए रंगीन फुलकारी दुपट्टा कैरी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लहंगे को तैयार करने में करीब 1600 घंटे का समय लगा। अंशुला ने अपनी जिंदगी के इस हसीन लम्हों की तस्वीरें अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर करते हुए अपने आउटफिट के बारे में लिखा है, इस खास मौके पर मेरे लिए फुलकारी दुपट्टा पहनना बहुत मायने रखता था। पंजाबी परंपराओं से जुड़ी ये चीज हमारी संस्कृति, बेहतरीन कारीगरी और घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के आशीर्वाद को दिखाती है। पंजाबी दुल्हनों के लिए फुलकारी हमेशा से उनकी जिंदगी के सबसे खास पलों का हिस्सा रही है। रोहन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए इससे सुंदर तरीका और कोई नहीं हो सकता। वहीं रोहन ठक्कर ने अंशुला के आउटफिट से मैच करते हुए पारंपरिक डिटेलिंग वाली मरून रंग की शेरवानी पहनी थी। आपको बता दें कि अंशुला और रोहन ने करीब 8 महीने पहले अक्टूबर 2025 में सगाई की थी। दोनों की लव स्टोरी 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू हुई थी। रोहन के साथ अपने रिलेशनशिप का खुलासा करते हुए अंशुला ने बताया था कि उनकी पहली बातचीत एक मंगलवार को रात 1:15 पर शुरू हुई थी, जो घंटों चली थी। इसके ठीक 3 साल बाद रोहन ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में कैसल के सामने उसी समय यानी रात के ठीक 1:15 पर अंशुला को शादी के लिए प्रपोज किया था। अब तकरीबन 4 साल पुराना ये रिश्ता शादी के साथ मुकम्मल होने जा रहा है। माता की चौकी और संगीत के बाद अब अगले कुछ दिनों में मेहंदी और हल्दी की रस्में निभाई जाएंगी। हालांकि ये फंक्शन कब होंगे इसका परिवार ने खुलासा नहीं किया है। जहां तक शादी का सवाल है तो वो 6 जुलाई को मुंबई के ही किसी आलिशान वेन्यू पर होगी। फिलहाल सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसका भी खुलासा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए अब बात करते हैं बड़ा मंगल पर मंदिरों में उमड़ी आस्था के रंगों की।

0: आज आठवां और अंतिम बड़ा मंगल है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में राम जी के अपने दूत हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसीलिए ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन को हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है।
1: और यही वजह है कि आज बड़े मंगल पर मंदिर में श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। रामनगरी अयोध्या में भक्तों की संख्या में इजाफा भी हुआ है, क्योंकि रामलला के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, जबकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।
0: और देखिए, प्रयागराज में बड़ा मंगल के खास मौके पर लोगों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। इसी तरह दिल्ली से लेकर लखनऊ के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरित मानस की चौपाइयां गूंज रही हैं। खास बात यह है कि आज ही के दिन रवि योग का संयोग भी पड़ रहा है, लिहाजा आज हनुमान जी की आराधना के साथ सूर्यदेव की कृपा पाने का शुभ दिन है। वैसे तो मंगलवार को हनुमान जी की आराधना का विशेष दिन माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार का महत्व कुछ अलग है। आज ज्येष्ठ माह का आखिरी मंगलवार है, इसीलिए सुबह से हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से अगर बजरंग बली की उपासना की जाए तो हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

0: सनातन परंपरा में जिस ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन का दिन माना जाता है, उससे जुड़ा साल 2026 का आखिरी और आठवां बड़ा मंगल आज है और श्रद्धालु सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए वैसे तो मंगलवार का दिन अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, लेकिन इसकी शुभता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब ये जेठ महीने में पड़ता है और बड़ा मंगल कहलाता है। पंचांग के अनुसार आज 23 जून 2026 को साल का आखिरी और आठवां बड़ा मंगल है। सनातन परंपरा में जिस बड़ा मंगल या फिर कहें बुढ़वा मंगल को सभी संकट और बाधाओं को दूर करते हुए मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। मान्यता के अनुसार हनुमान जी की साधना प्रातः काल या फिर संध्या के समय करें। आखिरी बड़ा मंगल का पुण्य फल पाने के लिए पूजा के दौरान चालीसा का पाठ और अंत में खैर की लकड़ी से हवन और आरती करना बिल्कुल ना भूलें। आखिरी बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर पड़ रहा है और नवमी तिथि की शुरुआत 22 जून को दोपहर 3:40 पर हो चुकी है, जबकि नवमी तिथि का समापन 23 जून यानी आज शाम 4:40 पर हो रहा है। ज्येष्ठ मास के आखिरी मंगलवार के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक था जो बीत चुका है। अमृतकाल सुबह 5:31 से 7:13 तक था जो समाप्त हो चुका है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक, तो गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक है, जबकि रवि योग सुबह 11:54 से शाम 5:24 तक है। आठवें और अंतिम बड़े मंगल पर रवि योग का बनना बेहद शुभ माना जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से यह एक मंगलकारी महासंयोग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि योग को सभी तरह के अशुभ प्रभावों और दोषों को खत्म करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि भगवान सूर्य को हनुमान जी का गुरु माना जाता है। रवि योग का कनेक्शन सूर्य देव से है और बड़े मंगल का दिन बजरंग बली का है। ऐसे में इस महासंयोग में संकट मोचन की साधना करने से दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले की रौनक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी, BCCI ने साझा की जानकारी, वैभव बोले सपना हुआ साकार। देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून देने वाला है दस्तक, अगले 24 घंटों में बारिश से तरबतर होंगे गुजरात और महाराष्ट्र, जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचने की उम्मीद। गुजरात के कच्छ में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद। उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में अब तक 12,52,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, रुद्रनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। हेमकुंड साहिब में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, देर रात हुई तेज बर्फबारी, बढ़ी ठंड, अब तक हेमकुंड साहिब में 1,27,379 भक्तों ने टेका मत्था। आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और 8वां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन आशीर्वाद के लिए सुबह से मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर में लिए चलते हैं, विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। कल रात 9:08 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान की परंपरा निभाई गई, इसके बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए
4: और अब 26 तारीख को निवृत्ति अनुष्ठान के बाद मंदिर के कपाट भी खोले जाएंगे।

0: यह आस्था, विश्वास और परंपरा की अद्भुत झलक है। कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, कोई कतारबद्ध खड़ा है, तो कोई ध्यान मग्न होकर माँ की आराधना कर रहा है। गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर में महायोग की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो गया है विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। सोमवार की रात 9:08 और 42 सेकंड पर महायोग की प्रवृत्ति से जुड़े अनुष्ठान किए गए और फिर 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब 26 जून को सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद भक्तों के लिए कपाट फिर से खोले जाएंगे। इस बीच मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे और इस दौरान भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अंबुबाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है।
1: लगातार 3 दिन 3 रात को अंबुबाची महायोग रहेगा। ये सबसे शक्तिशाली समय है और ये जागतिक समय है। सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीचों-बीच में 3 दिन और 3 रात रहता है। क्योंकि ये इतना दुर्लभ समय है, ये समय में हर कोई जो भी प्रार्थना करे अपना मन से, अपना नियम से, जो भी जैसा चाहता है वो ऐसा प्रार्थना करे, क्योंकि ये समय और साल भर में एक बार ही आता है और दोबारा नहीं मिलेगा। ये समय बहुत दुर्लभ समय है और अपना जो साधना है, अपना सिद्धि है, वो लगातार करते रहिए 3 दिन 3 रात। खाली जो भी है वो हाय हत्तुगोल से बसे, वो इतना शोर शराबा नहीं करे और आराम से आकर के, क्योंकि हम लोग का ये परिक्रमा रहता है इस टाइम में, तो परिक्रमा में श्रृंखलाबद्ध से और अच्छे से आके यहाँ पे ना रुके और जाते रहे और परिक्रमा चलते रहे, क्योंकि माँ का दर्शन बंद रहता है, परिक्रमा ही मुख्य होता है। तो परिक्रमा करके आदमी जाता रहे और सभी को माँ का आशीर्वाद मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। दरवाज़ा बंद करने के आके एक विशेष हम लोग का वो है कि माँ का जो महाप्रसाद कपड़ा है वो कपड़ा बेस्तन करके रखा जाता है। वो प्रवृत्ति के जस शुरू होने के आगे ही माँ का पूजा पाठ करके समाप्त करके उसको कपड़ा से थके हुए होते हैं।
0: अंबुबाची मेला माँ कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव है। ये मेला देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला यानी मासिक धर्म होने और माता पृथ्वी की सृजन शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि माँ कामाख्या 3 दिनों तक रजस्वला होती हैं और ये अवधि बहुत पवित्र मानी जाती है। कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला तांत्रिकों, अघोरियों और साधु संतों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इन 3 दिनों में वे मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में गुप्त साधना और ध्यान करते हैं। असल में तांत्रिक परंपराओं में रजस्वला अवस्था को सृजन शक्ति, उर्वरता और प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है और ये समय देवी की दिव्य शक्ति के जागरण का काल होता है। इसलिए देश विदेश से तांत्रिक साधक और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
2: किन्नर जहाँ है वहाँ पूजा पाठ होती है। हमारा संसार तो नहीं होता है, यदि संसार होना होता था तो माता ने हमें मेल या फीमेल बनाते थे। इस जन्म में शायद से हमें पूजा ही करना है, इसलिए माता ने ये जन्म दिया है।
3: मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ कामाख्या मंदिर में, लेकिन मुझे जो वाइब फील हुई अब की बार अंबुबाची मेला में आने के बाद में 2026 के, मैं बहुत पहले भी प्रयास कर रहा था, सोचा था कि आऊँगा एक बार, लेकिन अब की बार जब आया तो ऐसा फील हो रहा है कि बार बार आना चाहिए, क्योंकि जो वाइब्रेशन है यहाँ की, जो एनर्जी है, वो जब अभी निकल रहे थे, वो परिक्रमा कर रहे थे और डमरू के साथ में पूरा जो तांत्रिक लोग थे और जितने भी साध्वी यहाँ पे आए थे, पूरा अलग ही माहौल था। और वो देख करके, वो फील करके कोई भी यहाँ पे आने के बाद में यही सोचेगा कि अब की बार तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा।
4: अभी मैं अंबुबाची मेले में हूँ, पहले अंबुबाची मेले में आया था, नॉर्मल डेज में आया था। और दूसरी बात है कि अभी जब आज हमने दूसरी बार दर्शन करे गर्भगृह के, और जब दूसरी बार दर्शन करे गर्भगृह के तो वो भी बहुत अनप्लान्ड हुए। हम कम से कम 3-4 बजे आए और फिर हमारे 6 बजे तक दर्शन भी हो गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये बोलूंगा कि मैं दूसरी बार आया हूँ अंबुबाची मेले में और मैं आऊँगा भी आगे भी, तो मैं जो लोग घर से देख रहे हैं चीज़, उनसे बोलना चाहूँगा एक बार आप आके एक बार प्लीज एक्सपीरियंस करें, बहुत सही एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है।
0: 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलने पर विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालुओं को देवी का प्रसाद और पवित्र वस्त्र वितरित किए जाते हैं। ये परंपरा स्त्री शक्ति, सृजन और प्रकृति के चक्र के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। गुवाहाटी से अचिंत्य पतंगिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ओडिशा के जगन्नाथ पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली रथ यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। तमाम कारीगर और सेवादार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं।
6: इस साल रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि हर साल की तरह इस बार भी देश दुनिया से भगवान जगन्नाथ के लाखों भक्त इस रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे।

0: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलेगी। इससे पहले ओडिशा के पुरी में तीनों भव्य रथों नंदीघोष, ताल ध्वज और दर्द तलन के निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है, बल्कि यूं कहें कि अंतिम चरण में है। रथों के कलश और नक्काशी का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद रंग रोगन और फिटिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। असल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथों के निर्माण का एक खास विधान और एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके चलते रथ निर्माण का काम बेहद खास हो जाता है।
1: पहले चरण में मुख्य भूमिका यहाँ कारीगर लोग जो विश्वकर्मा सेवक लोग महाराणा लोग लेते हैं, उनके सहयोगी रूप में भोई सेवक रहते हैं। तो तीसरे रूप कारीगर में आते लोहार, जो लोहे का काटा वगैरह रथ के लिए बनाते हैं, और रूपकार जो खुदाई का काम करते हैं, कार्विंग का काम करते हैं। उसके बाद चित्रकार आएंगे, उसके बाद दर्जी आएंगे जो कपड़े का काम करते हैं, रथ के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको। उसके बाद जो कपड़ा डालेंगे, जो ऊपर के कलश लगाएंगे, वो कोठोश्वास या सबक है, उनका काम आएगा। इस तरह के 7 तरीके के कारीगर मिलकर एक रथ बनाते हैं।
0: मंदिर के रथखला में पारंपरिक कारीगर दिन रात मेहनत कर विशाल रथों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। तीनों रथों के लिए निर्धारित 12 द्वार बेड़ों में से प्रत्येक रथ के लिए 2-2 द्वार बेड़ों का निर्माण कर लिया गया है। वही रथों की वेदी के चारों और पटावाड़िया यानी लकड़ी की घेराबंदी का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा तीनों रथों के 24 नाटगुणों में से 12 पर कंदर्प रूप की नक्काशी पूरी हो चुकी है और बाकी 12 पर काम तेजी से चल रहा है। साथ ही पूरी हो चुकी प्रतिमाओं को पॉलिश करने और सजाने का काम भी जारी है।
1: कलश का काम भी अभी चल रहा है। कलश का पिंडी और पकुड़ा वो अभी तैयार हो रहा है। उसको तैयार करने के बाद उसके ऊपर टीन का छप्पर डालने के बाद और चित्रकार लोगों को दिया जाएगा, वो चित्र करेंगे। अभी जो द्वार का जो नाटगोड़ है उसका खुदाई अभी रूपकार सेवक के द्वारा हो रहा है, और खुदाई होने के बाद चित्रकार सेवक उसे लेंगे, वो भी आर्ट किया जाएगा। तो शेष पर काम में रथ को जो सुंदर बनाने के लिए जो विभिन्न तरह के कलर वगैरह यूज किया जाता है, तो उसी का काम अभी बाकी है। कुछ दौरान के बाद हम अपने काम को पूर्ण रूप से समाप्त करने जा रहे हैं।
0: हर साल अक्षय तृतीया के दिन से पवित्र रथ का निर्माण शुरू होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रथ निर्माण में करीब 200 से अधिक पारंपरिक कारीगर और सेवायत जुटे हुए हैं। तीनों रथों के निर्माण में हर साल नई लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी और 24 जुलाई को रथ यात्रा का समापन होगा, जिसे बहुधा यात्रा कहते हैं। इस भव्य रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करेंगे। करीब 3 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर लाखों श्रद्धालु रथों को खींचने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। आस्था, परंपरा और हुनर के इस अनूठे संगम को देखने के लिए देश विदेश से हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनते हैं। उम्मीद है कि इस साल भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज स्टडी।
2: चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे मॉनसून की चाल।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of 5-star reviews?
6: Where did you see all this?
5: Online at APGE.com.
6: Watson, you're always so plugged in.
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: 8 जून से सुस्त पड़ा दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विभाग की माने तो 23 जून को महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की स्थिति बन रही है।
0: साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि 24 घंटे के अंदर मॉनसून मुंबई में एंट्री कर सकता है। हालांकि मॉनसून के पहुंचने से पहले मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली। महाराष्ट्र के लोनावला में सुबह की शुरुआत बारिश की रिमझिम फुहारों के साथ हुई। पहाड़ों पर तैरते बादल, धुंध में लिपटी वादियां और बरसती बूंदे, मानो प्रकृति खुद मॉनसून के स्वागत की तैयारियों में जुट गई हो। उधर मायानगरी मुंबई में आसमान का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया, बिजली आसमान को चीर रही है और गरजते बादल मॉनसून के आगमन का ऐलान कर रहे हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में प्री मॉनसून बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। चलिए बात समर्पण सेवा की अद्भुत मिसाल की करते हैं। 88 साल की उम्र में स्वच्छता मिशन चलाने वाले इंदरजीत सिंह सिद्धू को पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है। खास बात यह है कि इंदरजीत सिद्धू आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद सालों से सफाई अभियान चला रहे हैं। आज उन्हें इसी सेवा के लिए बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज ने।
7: ये वातावरण है, इसको इसकी हवा को आप दूषित न करें। अगर दूषित करेंगे हवा को तो खुद अपना नुकसान है, तो मर जाओगे। साफ हवा नहीं ले सकोगे, सांस नहीं आएगा। कि हमें शर्म आनी चाहिए अगर वहाँ धरती माता पर हम कूड़ा फेंकें, गार्बेज फेंकें, हमें दुख लगता है। उसे साफ रहना चाहिए, अपनी माता की इज्जत करनी हर बच्चे का फर्ज है।
2: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
0: और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
3: खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
3: वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी, BBCI ने साझा की जानकारी, वैभव बोले सपना हुआ साकार। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंचा, अगले कुछ दिनों में यूपी तक बढ़ने के आसार। गुजरात के कच्छ में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद। उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में अब तक 12,52,000 साधा भक्तों ने किए दर्शन, रुद्रनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और 8वां बड़ा मंगलवार, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, चमोली में हुई जोरदार बर्फबारी।

हेमकुंड साहिब में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी पर आस्था पड़ी भारी, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास की। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे हैं डुबकी। खराब मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 1,28,000 भक्तों ने टेका मत्था। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भाग, 2 महीने में आंकड़ा पहुंचा 12.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 11 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 50 लाख से अधिक भक्तों ने करा रजिस्ट्रेशन। चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की विधि विधान से पूजा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, जवानों ने इमरजेंसी की तैयारी को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु ने करा रजिस्ट्रेशन। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। देशभर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है आखिरी और 8वां बड़ा मंगल का त्यौहार, आज के दिन बजरंग बली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान से पूजा करने से मिलती है बजरंग बली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता विशेष महत्व, तो मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को हुई थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंग बली की मुलाकात। भगवान बजरंग बली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की मान्यता, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और 8वें बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। आखिरी और 8वें बड़े मंगल पर बजरंग बली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार, भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और आभूषण अर्पित किए। आखिरी और 8वें बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। अयोध्या में आखिरी और 8वें बड़े मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतार, भक्तों ने लगाया जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधुआ हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और 8वें बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़े मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए।
उज्जैन में आखिरी और आठवें बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।

0: महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतार। कौंडन्यपुर से माता रुक्मणी की 432 साल पुरानी भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ताल मृदंग वीणा की गूंज और माता रुक्मणी के जयघोष से पूरी कौंडन्यपुर नगरी पंढरपुर के लिए रवाना हुई यात्रा। गांव के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों ने पालकी यात्रा का किया जोरदार स्वागत, जगह जगह रंगोलियां सजाई गई, फूलों की वर्षा की गई। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का दूसरा दिन 26 जून तक चलेगा यह मेला। कल रात 9:08 पर बंद किए गए मंदिर के कपाट, मुख्य गर्भगृह 3 दिनों तक रहेगा बंद। 23, 24 और 25 जून को लगातार 3 दिन और 3 रात तक चलेगा यह महायज्ञ, मुख्य समारोह में 26 जून होगा। पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद 26 जून की सुबह शक्तिपीठ के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। मेले को लेकर प्रशासन ने की खास तैयारी, भक्तों के लिए कई जगहों पर की गई शिविर और भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। रक्सौल का गेटमैन ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में किया कमाल, बना डीएसपी। जालना में पहली बार कैंसर की जटिल सर्जरी हुई सफल, मेलिग्नेंट फाइलॉइड्स ट्यूमर का हुआ सफल उपचार। गाजियाबाद में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के 92वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हुए शामिल। अलीगढ़ में सीएम योगी ने 85 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा विकास करना हमारा मकसद। देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे हुए शामिल। फिट इंडिया मुहिम के तहत तिरुवनंतपुरम में साइक्लोथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर दिया फिट रहने का संदेश, युवाओं ने भी चलाई साइकिल। अगरतला में ओलंपिक दिवस समारोह पर भव्य कार्यक्रम, सीएम माणिक साहा ने की शिरकत। गांधीनगर में रनशाला का शुभारंभ, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने शामिल हुआ। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी, श्रीनगर में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में करेंगे हनुमंत कथा, जकार्ता में 3 दिनों का कार्यक्रम। बाबा बागेश्वर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, जकार्ता में 26 से 28 जून तक करेंगे प्रभु का गुणगान। पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन की अनूठी पहल, इमोशन एब्जॉर्ब ध्यान कुटीर विकसित की। कुटीर बनाने में गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक चीजों का किया गया इस्तेमाल, 10 मिनट की साधना और ध्वनि तरंगों से मिलेगी तनाव से मुक्ति। परियोजना में अरोमा मेडिटेशन और साउंड थेरेपी के जरिए तनाव को कम करने और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने की कोशिश। एमपी में शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीता प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। कूनो पार्क के 2 दिवसीय प्रवास के बाद वापस रवाना हुई राष्ट्रपति, देश में चीतों की संख्या 52 है जिनमें से 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने डासना इलाके में 250 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया, जमीन की कीमत 250 करोड़ रुपए का अनुमान। कर्नाटक के बल्लारी में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होने पर किसानों ने खुद की पहल, 3 लाख जमा करके सड़क की मरम्मत कराई। बिहार में छपरा के शशांक गौरव ने 70वीं बैच की बीपीएससी परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल किया, परिजनों में खुशी का माहौल। यूपी में सहारनपुर के किसान ने पत्नी के नाम पर घर के आंगन में मियाज़ाकी आम के 10 पेड़ लगाए। मियाज़ाकी को माना जाता है दुनिया का सबसे महंगा आम। इस साल पेड़ों पर 30 मियाज़ाकी आम लगे हैं। किसान ने कहा पेड़ पत्नी के नाम पर लगाए हैं, इसलिए नामों को बेचेंगे नहीं, लोगों को मुफ्त में खिलाएंगे। गाजियाबाद के दो भाइयों विकास और राहुल ने किया कमाल। ई वेस्ट के प्लास्टिक को स्टाइलिश और टिकाऊ फर्नीचर में बदलकर पेश की मिसाल। विकास और राहुल ई वेस्ट से डेकोरेटिव आइटम्स और फर्नीचर बनाते हैं। उनके बनाए प्रोडक्ट्स नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी किए जा रहे हैं इस्तेमाल। एशियन रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता गोल्ड। 100 मीटर रिले में चीन को हराया। भारत ने कुल 3 पदक जीते। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। चिलचिलाती गर्मी के बाद हुई झमाझम बारिश। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मानसून होगा और मजबूत। 25 से 26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। वाशिम के कई इलाकों में भारी बारिश, जगह जगह भरा पानी। भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के कई जिलों में हुई जोरदार बारिश, कई जगहों पर जल भरा। नवसारी में भी जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। भावनगर में भारी बारिश से लोगों को मिली राहत, 2 घंटे में 1.5 इंच पानी भरा। अमरेली में लगातार 5 दिनों से बारिश जारी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं तमाशा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर जमकर
4: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन ले, लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

0: अब जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है। जानवरों के मजेदार और प्यारे से वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। देखिए कैसे ये छोटा हाथी पानी के टब में पूरी तरह मस्ती के मूड में है। कभी वो पानी में उछलता कूदता है तो कभी सिर के बल टब में गिर जाता है। उसकी शरारतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family-owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
1: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
0: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
2: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen with a home equity loan from CME Federal Credit Union. You'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
3: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
4: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
8: वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी, BCCI ने साझा की जानकारी। वैभव बोले, सपना हुआ साकार। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंचा, अगले कुछ दिनों में यूपी तक बढ़ने के आसार। गुजरात के कच्छ में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद। उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में अब तक 12,52,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, रुद्रनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी और 8वां बड़ा मंगल, हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।

0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी। लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए फिर से एक बार सास बहू और बेटिया का ये फ्रेश एपिसोड। आज तो सास बहू और बेटिया आ पहुंची है खूबसूरत से हैंडबैग स्टोर, और यहीं से कर रहे हैं आज हम हैंडबैग्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट की शॉपिंग। ताका झांकी करेंगे हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में और पता करके आएंगे कि क्या कुछ हो रहा है आकी सीरियल्स की कहानियों में, किस आंगन में आया है कोई नया ट्विस्ट, किस सितारे से की है हमने ये खास मुलाकात। ये सब और बहुत कुछ हमारे आज के इस एपिसोड में, तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, अंश और प्रेरणा की बैचलर्स पार्टी में लगेगा डांस का तड़का, झूमकर नाचेंगे घर वाले।

क्रश और आएंगे दो दो रियलिटी शो, देखेंगे लॉकअप सीजन 2 के नजारे। साथ ही जानेंगे कौन होगा रियलिटी शो अलायंस में, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अगर हमारी जगदात्री जाएंगे एक हैंडबैग लेकर किसी हार्डकोर एक्शन सीक्वेंस पर, तो वो क्या करेंगी? वो तो हैंडबैग से ही करेंगी गुंडों की पिटाई। अब देखिए, जगदात्री को आप ऐसा वैसा ना समझें, जब आ जाती है ना ये फुल ऑन फाइटर मोड में, तब तो कर देती है ये सबका सफाया। वैसे हम तो चाहते हैं यहाँ पर हो जाए जगदात्री की जिंदगी से हर मुसीबत का सफाया। लेकर चलते हैं आप सबको जगदात्री के पास और दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।
1: खतरे में जगदात्री और रुद्र, बार बार बची जगदात्री और रुद्र की जान। बदले बदले रुद्र के तेवर, टीवी के सीरियल जगदात्री में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां मूसा के चंगुल में जगदात्री तो फंसी ही है, साथ ही रुद्र भी फंस गया है, क्योंकि मूसा ने रुद्र पर भी बंदूक तान दी है। ऐसे में देखिए कैसे रुद्र खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने सारे गुंडों के बीच वो अकेला पड़ गया है।

0: ऐसे में तभी कोई आता है जो इन दोनों को ही बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने मूसा और उसके गुंडों पर हमला कर दिया है। ऐसे में जगधात्री और रुद्र दोनों ही छुप रहे हैं। कहीं न कहीं जगधात्री की वजह से रुद्र भी बच गया है और दोनों सही सलामत घर लौट आए हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में शादी का माहौल है, ऐसे में कई मेहमान भी आए हैं और यहाँ पर देखिए कैसे घर वाले यही बातें कर रहे हैं कि इस घर में शिवाय और जगधात्री की शादी नहीं होनी चाहिए।
1: आना तुमसे नहीं पूछा किसी। देखिए बाबा, आपका माया का दिल बहुत, आपका बस चले आप पूरे मुंबई के अनाथों को अपने घर पे बुला के उनकी शादी करवा सकते हैं, लेकिन सॉरी हम ऐसे नहीं है, उन दोनों की शादी इस घर में नहीं हो सकती।
2: इतनी छोटी छोटी बातों को तुम दिल पे क्यों लगा लेती हो? अब जब शादी होना तय हुआ है तो हो जाने दो ना, यहाँ
1: हो जाने दो। भाभी हम अपना घर शादियों के लिए कब से रेंट पे देने लग गए?
2: एग्जैक्टली काकी, ये घर है हमारा, धर्मशाला नहीं है। थोड़ा ही सही पर हमारा भी कुछ हक बनता है ना इस घर पे काकी। एंड सो यूनानिमसली हमने डिसीजन लिया है कि ये शादी इस घर में नहीं होगी।
1: हम तो कह ही रहे थे घर छोटा ही सही पर अपना घर तो अपना ही होता है ना, और लड़की की विदाई तो अपने घर से ही अच्छी लगती है।
3: तो पहले तो आपने, आपको तो शिवाय को जगधात्री की शादी पे जाओ
1: और ना बढ़िया हो, तुमसे तमीज रखो थोड़ी।
2: ओके ओके,
1: तो माया सुना तुमने क्या चाहते हैं सब घर वाले?
0: लेकिन तभी आता है रुद्र जो ऐलान कर देता है कि शिवाय और जगधात्री की शादी इसी घर में होगी। इतना ही नहीं, वो तो पोस्टर भी ले आया है और ले आया है शिवाय और जगधात्री को भी। भाई रुद्र का ये बदला अवतार देखकर सभी अचंभे में हैं। उन्हें नहीं पता कि रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है।
4: शिवाय, जगधात्री और शिवाय की शादी होगी और हमारे घर से ही
1: होगी।
4: बड़ी सारी साहिबा की शादी है भाई, द ब्राइड टू बी, माय मोस्ट फेवरेट, मेरी बड़ी सारी साहिबा जगधात्री।
0: ऐसे में अब जगधात्री और शिवाय की शादी तो इसी घर में होगी। अब इस शादी में कौन कौन से तमाशे होते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट,
5: रूहानी। तो हमसे कह रही हैं कि ये जो हैंडबैग्स होते हैं इसमें लड़कियां रखती हैं अपना पर्सनल सामान, लेकिन सडनली उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी में कुछ भी पर्सनल नहीं है, क्योंकि हर कोई आता है अपना ओपिनियन दे जाता है, हर कोई अपनी पसंद नापसंद बता जाता है और बस फिर उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें। ऐसे में गुरु आपको ही देना है यहाँ पर रूहानी का साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर है फुल ऑन इश्क का जुनून। लेकर चलते हैं आप सबको इश्क जुनूनी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: रूहानी का गुस्सा,

लगाई, बेड पर आग। घर वाले हुए परेशान।

टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी के सर चढ़कर बोल रहा है गुरु का इश्क। जी हाँ, जब से गुरु तेजू के साथ हुआ है तब से रूहानी को जलन तो हो ही रही है, साथ ही साथ काफी गुस्सा भी आ रहा है। ऐसे में वो पहुंची थी कमरे में और कमरे में बेड पर कपड़े बिखरे देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और पहले ही तेजू ने रूहानी को कुछ वीडियो दिखाए हैं जिससे वो काफी परेशान है। ऐसे में देखिए कैसे वो पूरे कमरे को तहस नहस कर रही है, सारी चीजों को यहाँ वहाँ फेंक रही है। रूहानी आई तो थी कमरे में अपना सामान पैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर चीजों को देख कर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और देखिए कैसे गुस्से में वो सब कुछ तहस नहस करने पर तुली है। इतना ही नहीं, उसने तो अपने पैर में भी चोट लगा ली इस टूटे कांच से।

मना करने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ और गुरु के इस बेड पर देखे आग ही लगा डाली। ऐसे में गुरु और बाकी के घर वाले यहाँ पहुँच गए। गुरु तो रूहानी को देखकर परेशान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी तेजू ने आग लगा दी और रूहानी को घर से बाहर निकलवा दिया।

0: माय गॉड, इस शातिर लड़की की नई चाल तो देखिए अंकल, दहेज के नाम पे खुद को जलाकर आप सबको जेल भेजना चाहती है। वाओ नर्स, ये नई स्कीम तो बहुत अच्छी लग
1: रही। ये टीटी की बेटी भूल चुकी है कि हम बाहुबली हैं। हमारे हत्थे चढ़ी ना तो ना कोई गदवा बचेगा और ना ये खुद।
2: बस बहुत हो गया, हम इसे एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बाहर निकालो इसे।
1: चलो चलो
3: ऐसे में देखिए उल्टे पाँव पैरों में खून लेकर रूहानी का घर निकाला हो चुका है। तो भाई अब देखना होगा कि रूहानी क्या लौटकर वापस आएगी या फिर इस प्यार पर लगेगा ट्विस्ट का ब्रेक। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब तो हमारी सास बहू और बेटा की एयरलाइन भी लेकर हाजिर है आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ तो एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज कर रहे हैं आप सबका इंतजार खुले हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड, गेट सेट गो।
3: कलर्स के सीरियल मन्नत में सम्रागी के कहने पर अभिमन्यु और मान्यता पहुंच गए हैं उनका कंसाइनमेंट पूरा करने के लिए। ऐसे में कंसाइनमेंट का ऑर्डर भी हो जाता है और मान्यता अपनी बहन को तसल्ली देती है कि दोनों मिलकर वो ऑर्डर पूरा कर ही लेंगे। इसी बीच अभिमन्यु के फोन पर आ जाता है गोल्डी का कॉल, जिसे देखकर मान्यता उसे उठाने की कोशिश करती ही है कि तभी अभिमन्यु वो मोबाइल छीन लेता है क्योंकि वो मन्नत के बारे में जानना चाहता है। भाई अभिमन्यु की तड़प लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन्नत से अपना कनेक्शन महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, उसकी घड़ी में तो मन्नत के दुपट्टा का टैशल भी अटका हुआ था, जिसे देखकर विक्रांत उसी को याद कर रहा है। इससे पहले कि उसकी धुंधली यादें और ताजा होती, मान्यता चलने के लिए कह देती है, जिसके चलते अभिमन्यु भी गाड़ी में जा बैठता है। ऐसे में तभी मान्यता को मौका मिल गया है अभिमन्यु के साथ वक्त बिताने का, इसलिए देखिए कैसे वो कुल्फी खाकर अभिमन्यु के साथ वक्त बिता रही है क्योंकि कंसाइनमेंट रेडी हो रहा है। हालांकि मान्यता और अभिमन्यु दोनों ही इस बात से अनजान है कि वो कंसाइनमेंट जानलेवा है क्योंकि सम्रागी सामान की डिलीवरी नहीं बल्कि बच्चों की तस्करी करती है। ऐसे में सम्रागी के आदमी जाकर कंटेनर में चेक करते हैं कि बच्चे सही सलामत हैं और वो खुश भी हो जाते हैं। इसी बीच अभिमन्यु उन्हें बुला लेता है, जिसके चलते हड़बड़ी में वो दरवाजा खुला छोड़ पहुंच जाते हैं अभिमन्यु से बात करने। बात कर वो वापस आके चेक करते हैं तो उनके साथ खेला हो चुका होता है क्योंकि बच्चे मौका पाते ही कंटेनर से भाग निकले हैं। अनजाने में ही सही अभिमन्यु ने उन बच्चों की मदद कर दी है।
5: मेरी बहन है साम्रागी, तो उन्होंने एक कंसाइनमेंट दिया है अभी को जो कि डिलीवर करना है हमें दूसरी जगह पे, और उन्होंने रोके वाले दिन दिया है। तो जब अभी आ रहा था तो मैंने कहा मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगी क्योंकि आज हमारा रोका है, तो मैं भी उसके साथ आई हूँ। और हमें नहीं पता था कि उन्होंने बच्चों को किडनैप करके छुपाया हुआ है ट्रक में, जिसे इवेंचुअली अभी बचा लेता है, पर उसको पता नहीं चलता है कि बच्चों को किडनैप किया गया था या ऐसा कुछ सीन है। तो वही कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, वो खुद से कर रही है। मुझे एक्चुअली में मान्यता को कुछ आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है। वो अभी से बस प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। बाकी अभी तक मान्यता के अंदर कोई ऐसा मैलेस नहीं है, वो कोई ट्रैप नहीं खेल रही है। तो दीदी अपने एंड से मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ चीज़ें सिनेरियो क्रिएट कर रही है, लेकिन मुझे और अभी हम दोनों को ही नहीं पता होता है ऐसा कुछ होने वाला है।
3: खैर बच्चे तो भाग निकले हैं और अब तो सम्रागी के दोनों आदमी भी परेशान हैं कि बच्चों को कैसे ढूंढा जाए। इससे पहले कि वो ढूंढने के लिए निकलते, अभिमन्यु उन्हें चलने के लिए कह देता है। अब देखना होगा कि क्या अभिमन्यु को ये पता चल पाएगा सम्रागी का असली काम क्या था।
1: अभिमन्यु
3: कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में ध्रुव को तो बस मौका चाहिए आरंभी से बात करने का, और वो मौका ढूंढ ही लेते हैं। जरा देखिए कैसे आज डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो भले ही फोन पर बात कर रहे हो पर उनका ध्यान आरंभी पर ही है। और जैसे ही आरंभी डाइनिंग टेबल की ओर खाना लेकर आती है तो देखिए कैसे वो पहुंच जाते हैं आरंभी से बात करने। और तो और उन्हें ये भी पता है कि आरंभी राज और नायरा की शादी रुकवा कर ही मानेगी। ऐसे में वो आरंभी को समझाते हैं कि इस लड़ाई में उसे हार मिलेगी, लेकिन आरंभी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसलिए देखिए कैसे वो अपने अतीत को लेकर न सिर्फ इमोशनल होती है बल्कि जैसे ही ध्रुव आगे बढ़ता है तो ध्रुव से पहले ही वो अपने आंसू पोंछ कर अपनी हिम्मत जुटाती है और अपने हौसले ध्रुव चौधरी को दिखाती है। आरंभी ने तो चैलेंज कर दिया है और ध्रुव ने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ध्रुव को क्या पता कि आरंभी जो कर रही है वो सही कर रही है। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में मिष्टी पहुंच गई है नाहर से मीटिंग करने। असल में मिष्टी चाहती है कि जल्द से जल्द कैफे बने और जल्द से जल्द वो कैफे ओपन भी हो जाए, और उसका ये कैफे नाहर के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है। ऐसे में मिष्टी डिजाइंस लेकर नाहर से डिस्कस करने पहुंची है। नाहर वो डिजाइंस देख तो रहा है लेकिन नाहर के मन में सिर्फ एक ही सवाल है और वो है मिष्टी के साथ काम करने वाली लड़की के बारे में जानना। इसी बीच नाहर को अचानक आवाज सुनाई देती है जो पापा कहकर बुला रही है। ऐसे में नाहर को लगता है कि ये आवाज किसी अपने की है, इसीलिए वो मीटिंग छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। भाई नाहर का ये रवैया देखकर मिष्टी खुद हैरान है कि अचानक नाहर को बीच में हो क्या जाता है। इसी बीच नाहर अपना काम कर ही रहा था कि मिष्टी रुहान को लेकर नाहर के पास आ जाती है। ऐसे में रुहान को देखकर नाहर हैरान है और वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि नाहर यहाँ क्या कर रहा है। ऐसे में मिष्टी बताती है कि वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर आई है। अब देखना होगा क्या नाहर को ये पता चल पाएगा कि रुहान वहाँ पर सुहानी से मिलने आया था, क्योंकि सुहानी में उसको अपनी माँ नजर आती है।
4: अब शॉपिंग करना किससे अच्छा नहीं लगता। जब भी मैं जाती हूँ ना शॉपिंग, स्पेशली हैंडबैग्स की, तब तो बस ये होते हैं मेरे हैप्पी आवर्स। उसी तरह हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज, क्योंकि ये तो है एंटरटेनमेंट के हैप्पी आवर्स जो ले आएंगे आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट।
3: नया शो, नया फॉर्मेट,
6: इनको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, पर यहाँ ये एक दूसरे पे ही चीट कोड यूज करेंगे।
3: नए प्रतियोगी,
6: पर यहाँ पे ये सब बस सिस्टम के इशारों पे नाचेंगे।
3: नए प्रतियोगी,
6: पर यहाँ पे ये सब बस सिस्टम के इशारों पे नाचेंगे।
3: नया घर और कई सारे अलायंस, यू शुरू तो रियलिटी शोज में सिर्फ बिग बॉस का ही नाम था, लेकिन उसके बाद उसी के तर्ज पर कई सारे रियलिटी शोज आए, जैसे कि द ट्रेटर्स, राइज एंड फॉल, द 50 और लॉकअप। और अब तो अमेज़न प्राइम भी तैयार है अपना नया रियलिटी शो लाने के लिए, जिसका नाम है अलायंस।
7: सर, सर, सर, सर, अलायंस के नाम आ गए।
6: दुनिया में आने के लिए तुम्हें डॉक्टर के हाथ लगते हैं और जाने के लिए चार कंधे। तो ना तुम अकेले आए हो और ना ही अकेले जाओगे, क्योंकि ये दुनिया अलायंस से चलती है।
7: वाह सर, क्या बोला है।
6: लेकिन इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अलायंस।
7: लेकिन सर, केजो से लेके भाई तक और आपसे लेकर कोने वाले नाई तक सबको सेम ही तो लगता है, तो इस शो में अलग क्या हुआ?
6: अलग ये है कि हमने कंटेस्टेंट से झूठ बोला। उनको लगता है क्योंकि शो का नाम अलायंस है तो यहाँ अलायंसेस बनेगी, लेकिन सच तो ये है कि पहले ही दिन से इस शो में अलायंसेस टूटेंगे। वो देख, ये है अलायंस की सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी, पापा और उनकी परी। सो प्योर, सो स्वीट। लेकिन क्या है ना, मुझे मीठा पसंद नहीं। इनको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, पर यहाँ ये एक दूसरे पे ही चीट कोड यूज करेंगे।
8: स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को फर्स्ट सीट में आउट कर देंगे।
9: सही बोला।
8: वीक प्लेयर्स को एंड में निकालेंगे।
6: इन्हें लगता है यहाँ पे गेम इनके हिसाब से चलेगा, पर यहाँ पे ये सब बस सिस्टम के इशारों पे नाचेंगे।
7: आप तो कॉमेडी करते थे, ये ट्रेजेडी कब तक करने लगे? अरे कलेश करवाओगे क्या कंटेस्टेंट्स के बीच?
6: करेक्ट, रोज सुबह 12 बजे होगा ब्रांड न्यू कलेश।
10: रोज कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश।
7: कब से कर रहे हो ये खुराफाती?
6: तुम खुराफाते छोड़ो और प्लान का आखिरी पार्ट सुनो।
7: क्या?
6: हर हफ्ते होंगे 2 एलिमिनेशन।
7: फाइनली कुछ तो नॉर्मल हुआ।
6: और होंगे 2 नए एडिशंस।
7: क्या?
6: वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो जहां LI से ज्यादा लाइज होंगे। 16 कंटेस्टेंट्स, 8 जोड़ियां, कोई प्लेयर, कोई चीटर, कोई बैकस्टैबर, लेकिन होगा सिर्फ एक ही विनर जो ले जाएगा सारे पैसे, लेकिन शायद खो देगा सारे रिश्ते। वेलकम टू अलायंस, जहां अलायंसेस बनती हैं टूटने के लिए।
7: क्या बात है सर, हिट है शो। सर, सर।
3: नया फॉर्मेट है, नई स्ट्रेटजीज होंगी, लग्जूरियस घर तैयार है, लेकिन इस लग्जूरियस घर के अंदर जो प्रतियोगी होंगे उन्हें बनाना होगा अलायंस। अगर अलायंस होगा तो ही प्रतियोगी आगे बढ़ेगा। इस रियलिटी शो को कोई और नहीं बल्कि अभिनेता कुणाल खेमू होस्ट करेंगे। इस लग्जूरियस घर में कई कलाकारों ने जाने की तैयारी कर भी ली है। ऐसे में नाम आ रहा है बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह का, जिन्होंने जय हो और रेस 3 जैसी फिल्में की हैं। इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो किया है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13, जहां पर उन्होंने खतरों के खेल खेले, लेकिन अब तैयारी कर रही हैं अलायंस के घर के अंदर जाकर अपना अलायंस बनाने की। इनके अलावा नाम आ रहा है कुशाल टंडन का भी, सीरियल 1000 में मेरी बहना है, बेहद, बरसातें, बड़े अच्छे लगते हैं 3 जैसे सीरियल करने वाले कुशाल टंडन बिग बॉस 7 में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 5 में भी खतरों का खेल खेला है, लेकिन अब ये तैयारी कर रहे हैं नई स्ट्रेटजीज के साथ नया खेल खेलने की। कैसी ये यारियां, गुलाम, बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 जैसे सीरियल करने वाली नीति टेलर भी अब तैयारी कर रही है रियलिटी शो अलायंस करने की। हालांकि इससे पहले इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 किया है। इसके अलावा बिग बॉस 16 में भी घर के अंदर रहने का उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन अलायंस उससे थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है। नाम आ रहा है रूही दोसानी का, जो कि इंडियन इंटरनेट पर्सनालिटी है। इंस्टाग्राम में ये डांस वीडियोस बनाती है, साथ ही इन्होंने कई बॉलीवुड एक्टर्स के साथ डांस वीडियोस बनाए हैं, जिसके चलते ये फेमस भी हुई है, लेकिन ये इनका पहला रियलिटी शो होगा। तैयारी तो आवेज दरबार के भाई जैद दरबार ने भी कर ली है अलायंस के घर में जाने की। भाई आवेज ने तो बिग बॉस 19 किया है, ऐसे में

इनके अलावा नजर आएंगी एक्ट्रेस सुबी सूरी, अली गोनी के भाई अरसलान गोनी, उर्फी की बहना डॉली जावेद, कई सारी वेब सीरीज करने वाले अरमान खेरा, अभिनेत्री डेलबार आर्या, यूट्यूबर पायल धरे, सोशल इन्फ्लुएंसर वंशराज सिंह और साथ ही नजर आएंगे रोडीज फेम निखिल चिनप्पा। स्प्लिट्स विला 15 और रोडीज में नजर आ चुके सिवित तोमर का भी नाम आ रहा है।

इसमें से नाम तो बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनी माथुर का भी आ रहा है, जो फिल्म दिल विल प्यार यार और कॉल मी बे में नजर आ चुकी हैं। हालांकि अब तक इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है। इसके अलावा पहले खबरें आ रही थी कि अलायंस रियलिटी शो में अलायंस बनकर ही जोड़ीदार एंट्री करेंगे, जिसमें नाम आ रहा था रवि किशन का, जो कि बिग बॉस 1 में नजर आ चुके हैं और ये अपनी बेटी रीवा किशन के साथ एंट्री करेंगे। रीवा किशन, जिन्होंने फिल्म सब कुशल मंगल है की है। 26 जून से दोपहर 12 बजे अमेजन प्राइम पर आने वाले इस रियलिटी शो ने तैयारी तो कर ली है आने की, लेकिन अब और भी कंटेस्टेंट्स जुड़ सकते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: wanna be rappers. मंगल, मैं जानती हूँ आपके पास तो वक्त नहीं है, तभी तो सोच रही हूँ कि आपके लिए भी खरीद लूँ मैं कुछ खूबसूरत से हैंडबैग्स। देख रही हैं आप ये पीछे वाले रैक में, ओ माय गॉड कितने सुंदर ऑप्शंस हैं, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको मंगल के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है उनकी कहानी में आज, क्योंकि यहाँ मंगल को नहीं मिल रही है चैन की सांस, एक भी सेकंड की नहीं है फुर्सत। कैसे? ऐसे।
1: साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे।
2: अलविदा मंगल लक्ष्मी।

0: मुझे।
1: कलर्स टीवी का सीरियल मंगल लक्ष्मी ऑफ एयर होने जा रहा है और हुआ इसका लास्ट डे शूट, जहां पर देखिए कैसे सभी लोग हो गए हैं काफी इमोशनल। यहां पर सेलिब्रेशन तो हो रहा है लेकिन आंखें नम है, क्योंकि अब फिर से वो सीन नहीं होगा, वो डायलॉग्स नहीं होंगे और वो साथ भी नहीं होगा क्योंकि शो बंद हो रहा है। ऐसे में लास्ट डे पर देखिए कैसे इमोशनल हो गई है मंगल, क्योंकि उसकी बहन लक्ष्मी भी सेट पर आ गई है खास उससे मिलने के लिए।
2: Last day hai, last shoot, last scene shoot hone ja raha hai. Mangal Lakshmi ka, Sanika, ye mujhe aapke saath dene, warm hug. So thank you, thank you meri behna, aane ke liye, milne ke liye. Oh, grateful, grateful for this two and a half year of journey. Yes, sir, I'm so thankful to Mangal Lakshmi ki that I found you. Me too. Thank you guys for loving us, for loving Mangal and Lakshmi. It was a beautiful journey because all of you and because of Sanika, she became such a warm sister. पहली बार इसने you know show में perform किया as an actress और इतना अच्छा खूबसूरत perform किया कि आज मंगल लक्ष्मी ढाई साल तक चला है. So I'm so thankful that you know I got a chance to share screen with such an amazing beautiful actress and such a warm person she is and I love her.
3: I love you too.
2: Thank you everyone for watching us. Mangal Lakshmi.
1: वैसे इसी के साथ सभी ने केक काटा, लेकिन सभी इमोशनल भी हो रहे हैं क्योंकि ये टीम दोबारा देखने को जो नहीं मिलेगी, हालांकि ये कलाकार हैं, नए किरदार में जरूर नजर आएंगे लेकिन दोबारा से यही किरदार वो नहीं जी पाएंगे।
4: जो है मैंने कर दिया, बहुत चैलेंज था बट थैंक यू इनकी अमेजिंग सपोर्ट थी कि मैंने दोबारा टीवी इसलिए नहीं किया था क्योंकि स्टोरीज नहीं थी और मैं अपने को पूर्ण नहीं कर पाया थी, बट इतनी खूबसूरत स्टोरी थी, हर दिन मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं इसको कैसे रिलेटेबल कर लूँ एक घड़ी से, कैसे मैं स्ट्रांग ना दिखूँ और कैसे मैं वो लाइफ दिखूँ इतना सारा काम करने के बाद। तो वो
5: दोस्त दिए, एक इतनी बड़ी फैमिली मिली, आई एम वेरी हैप्पी।

0: बोलना।
1: भाई बात करें सीन की तो सीरियल में भी हैप्पी एंडिंग हो गई है। मंगल ने अदित को पुलिस के हवाले कर दिया है और हो गया है अदित का पर्दाफाश। इसी के साथ साथ मौसी जी यानी गायत्री का भी पर्दाफाश हो गया। ऐसे में देखिए कैसे कुसुम ने गायत्री को थप्पड़ जड़ा और उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया।
2: मगर तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। मैंने अदित के इस मिशन के बारे में तुम्हें बताया था ना, इसलिए तो अदित पकड़ा गया, वरना अदित कभी पकड़ा ही नहीं जाता। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया मंगल, है ना?
3: नहीं मौसा जी, आपने मेरा साथ दिया, आपने अदित जी का साथ दिया, मुझे तो धोखा दिया है आपने।
2: गायत्री, आदित के इस घटिया काम में तुमने भी उसका साथ दिया। अरे मासी तो मां समान होती है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, सही राह दिखानी चाहिए थी। तुम तो खुद अपराधी बन गई उसके साथ। अगर सही समय पर तुमने हमको ये सब कुछ बता दिया होता तो आज यतीन ही नहीं देखना पड़ता। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हो तुम हमसे। तुमने भी अभी धोखा दिया।
4: हो गए
2: मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था जीजी, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। चुप गायत्री, कुछ नहीं सुनना है हमें, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
1: भाई देश की बेटी मंगल ने काफी अच्छा काम किया है, ऐसे में उसे अवार्ड देकर उसकी सराहना की। और इसी बात पर देखिए मंगल भी काफी इमोशनल हो गई है।
5: मंगल जी, आज हम यहाँ सिर्फ मुजरिम पकड़ने नहीं आए बल्कि एक वीर महिला को सम्मान देने भी आए। एक ऐसी वीर महिला जिसने अपनी जान को दांव पर लगाकर देश के खिलाफ चल रही एक गैर कानूनी रैकेट का पर्दाफाश किया।

0: ये मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ। इस सम्मान को अपने हाथ में लेकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ताज़ी हवा में सांसें ले रही हूँ। तुमसे कह रही है कि मेरी तरह तुम भी आज़ाद हो, जो ये कह रही है कि आज मेरा मुक्ति दिवस है। आज मुझे सिर्फ एक अपराधी से ही आज़ादी नहीं मिली है, मुझे उस डर से आज़ादी मिली है जो सालों तक मेरी सांसों पर पहरा दे रहा, उस अपमान से आज़ादी मिली है जो मुझे एहसास दिलाता था कि मेरी कोई कीमत नहीं है, उस एहसास से आज़ादी मिली है जो ये कहता था कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, मुझे लग रहा है कि मैं मंगल बनकर जी सकती, मैं मंगल और मैं काफ़ी। कहते हैं कि जब एक औरत दूसरी औरत को आगे बढ़ाती है तो समाज आगे बढ़ता है, मुझे आगे बढ़ाने का सारा श्रेय अम्मा को जाता है। अम्मा, आपका दिल से धन्यवाद, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, आपने मुझे एक बहू से बेटी बनाया, बेटी बनाकर मेरा हौसला बढ़ाया, उस पर विश्वास किया और मुझे आगे बढ़ाया।
1: इसी के साथ देखिए कैसे मंगल यानी कि दीपिका

0: इमोशनल हो रही है और अपने फैंस को अलविदा कह रही है।
1: देखिए शोज बहुत आते हैं, चल भी जाते हैं, मगर किरदार इतना बेहतरीन लिखना और फिर वो उसका हो जाना अच्छे से, लोगों को पसंद आ जाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने दियर बाती हम किया था, संध्या राठी का किरदार बहुत फेमस हुआ था और अभी मंगल का किरदार बहुत फेमस हुआ, आज भी नंबर 9 की पोजीशन में मंगल का किरदार है। तो यू नो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि सुजाना मैम ने इतना खूबसूरत ये किरदार लिखा, उसको पिरोया, उसको इतनी अच्छी डायरेक्शन दी, यू नो एज अ यू नो एज अ यू नो मेकर ऑफ द शो, तो कि आज इतना सारे उसकी जर्नी हमें देखने को मिली। बेशक ये 2.5 साल की जर्नी थी, पर ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी जर्नी थी। एक गृहिणी जिसने 15 साल अपनी शादी के अंदर बहुत ज़्यादा यू नो अपमान सहा, बेइज्जती सही, ये सहा कि वो कुछ नहीं है, और फिर वो कहते ना कि असहाय मंगल से आत्मनिर्भर मंगल बनी और फिर जागरूक मंगल बनी कि वो देश की बेटी बन गई। तो इतनी बड़ी जर्नी है जहाँ वो एकदम असहाय मंगल थी, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती थी, उसके बाद वो आत्मनिर्भर बनी, पहला स्वाद ब्रांड जो है वो जीती और फिर उसने अपना ब्रांड बनाया ड्राई फूड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का, फूड का। उसके बाद वेडिंग बिजनेस किया, देश की बेटी बनी, देश के लिए आज उसने अपने पति को ही गिरफ्तार करवाया है, मौसी जी को गिरफ्तार करवाया है। तो बहुत बड़ी जर्नी रही है मंगल की। तो आई एम फील फॉर्चुनेट कि आजकल के ज़माने में यू नो इतना 2.5 साल तक शो चला, किरदार आज भी पॉपुलर है मंगल, मतलब। तो मेरे पास सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ये देखने के लिए, और बस यही है कि मैं फॉर्चुनेट समझती हूँ कि इतना सुंदर सीन्स आए, एंडिंग भी इतनी खूबसूरत है इसकी मंगल की, तो वो अच्छा लग रहा है। अभी तो कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं है क्योंकि इतने लंबे लंबे डायलॉग्स हैं, इतना सीन्स हैं कि मैं और एक्स्ट्रा नहीं सोच पा रही हूँ। देखिए एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने सीन्स को जस्टिफाई करना, जो मैं समझती हूँ। अभी मेरे क्या शो जा रहा है, शो फिनिश हो रहा है, दोबारा नहीं देखेंगे लोग मुझे मंगल के रूप में, वो सारी बातें, वो जो ओवर थिंकिंग है या जो भी सोचना है, वो सोचने का टाइम ही नहीं है। क्योंकि कल आज सुबह से ही, अभी सैटरडे भी मेरे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि इन डायलॉग्स को अच्छे से जस्टिफाई करूँ, जो मेरे इमोशंस हैं, पर्सनल इमोशंस हैं, वो कभी मेरे सीन पर हावी ना हो जाए, तो वो मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश रहती है। तो इसलिए मैं टच वुड, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतना मेडिटेशन और यू नो योग का हेल्प है कि जहाँ मैं हूँ मैं वहीं सोचने की हिम्मत रखती हूँ और वो ताकत है मेरे अंदर। तो अभी इन सीन्स को जैसे जस्टिफाई करना है मुझे, अभी सिर्फ मुझे यही पता है कि मुझे ये सीन का परफॉर्मेंस अच्छा करना है जो है, और आपने देखा होगा मैं बहुत मेहनत से किया, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। कल मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि जब शो जा रहा होता है, जब आखिरी दिन शो होता है, तो लोग दो दो तीन तीन लाइन बोलते हैं और प्रॉम्प्ट करवाते हैं, मुझे ऐसा नहीं पता है। मैंने बोला कि शायद फिर वो आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस देखकर हताश नहीं होते होंगे जैसे मैं हताश होती हूँ। अगर मैंने गलत परफॉर्म कर दिया, एक लाइन भी अगर मैंने बेस्ट नहीं बोली, तो मुझे बहुत हताशा हो जाएगी। तो अभी मेरे लिए प्रायोरिटी यही है कि मैं अपने सीन्स को बेस्ट करूँ, चाहे वो आखिरी सीन क्यों ना हो, उसको बेस्ट अच्छी तरीके से याद करूं जैसे मैं याद करती हूं और उसको परफॉर्म करूं, यू नो। तो वही मेरा है और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इतना अच्छा किरदार परफॉर्म करने का मौका मिला। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू साज मोबेटिया, थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस ऑफ मंगल लक्ष्मी, थैंक यू टू कलर्स टीवी, थैंक यू सुजाना मैम, गरिमा जी, सिद्धार्थ जी, अरशद सर, फहीम सर, ऑल द फहीम सर ने 2 साल तक, 1.5-2 साल तक शो संभाला, फिर अरशद सर आए, जॉर्जिया भी जाने का मौका मिला है शो के जरिए। तो मुझे 3 अवार्ड्स मिले हैं शो के लिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, ITA, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे इस शो से मुझे बहुत कुछ मिला है, तो तो ओवरवेल्म हो सकती हूँ, बट अभी टाइम ही नहीं है।
0: वैसे इसी के साथ आज तो इमोशनल हो रही है कुसुम यानी उर्वशी उपाध्याय, जो अपने मेकअप रूम में से समेट कर ले जा रही है ढेर सारी यादें। भाई इनके इस बैग में मेकअप रूम का सारा सामान है, लेकिन ये बैग भारी हो गया है अच्छी और मीठी यादों से। तो आइए देखते हैं कैसे पैकिंग कर रही हैं उर्वशी, और साथ ही साथ हो रही हैं इमोशनल भी। भाई यादों के इन पिटारों को साथ ले जाना आसान नहीं।
2: तो आज शूटिंग का आखिरी दिन है और ऑलमोस्ट सारे सीन ख़त्म हो गए हैं, एक ही सीन बचा है छोटा सा, तो बीच में मुझे थोड़ा टाइम मिला है। मैं रूम में आई हूँ और ढाई साल की यादों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ढाई साल का एक लगाव कहें या यहाँ इस रूम में बैठ के मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की है, बहुत सारे सीन्स तैयार किए हैं, मेरी एग्ज़ाम की तैयारियाँ की है, हम सब ने बैठ के यहाँ पे अच्छे अच्छे समय बिताए, सब खाना खाने यहाँ साथ में बैठे हैं और मतलब वॉट नॉट, क्योंकि हम घर से ज़्यादा समय यहाँ पर बिताते हैं तो, और मेरा रूम भी जिस तरह से मैंने बनाया, सबका ही मेरा रूम फेवरेट होता था, सभी आके बोलते थे कि भाई आपका रूम सबसे बेस्ट रूम है, लेकिन इस बेस्ट रूम से अब चीज़ें थोड़ी बहुत तो मैंने इसमें पैक कर दी है और मतलब आने के टाइम पे ये हल्का लग रहा था जब पहले दिन सजाया, आज इसका वज़न है उससे भी कहीं ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आज इसमें ढेर सारी यादें भी हैं और शायद इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी वरना मैं इमोशनल हो जाऊँगी, तो अब चलो थोड़ा बचा हुआ हम पैक करते हैं।

सो अभी ये मंदिर जो जिस दिन से गणपति बापा की स्थापना की थी, विघ्नहर्ता की, मेरे नटराज जी की, सरस्वती माता और राधा कृष्ण जो मेरे एक फैन स्पेशली मुझे यहाँ पे देने आए थे, और आज वापस मंदिर को भी सारे अपने देवी देवताओं को साथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उनको तो यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते। तो चलिए आज वो भी

0: कितना मुश्किल होता है,
1: चीज़ें सजाना कितना आसान है और समेटना कितना मुश्किल होता है। हम सब बोलते हैं कि ठीक है, जिंदगी का ये हिस्सा है, जो मतलब जिसकी शुरुआत है उसका अंत निश्चित है, मतलब हम भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का सफ़र होता है, बीच का लगाव होता है, यादें होती है, और ऐसा नहीं है, पहले भी काफ़ी सारे शोज़ में ऐसा हुआ है कि भाई शोज़ बंद होते हैं, शोज़ शुरू होते हैं, लेकिन ये जो बीच की यादें होती है, बीच की झरनी होती है, वो ही मतलब हमेशा यादगार रह जाती है। और ये जो प्रोसेस है, इसमें से गुजरना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फाइनली ये भी बाकी था, मतलब एक आखिरी सीन है, सीन के बाद पता नहीं कैसा मूड होगा और कल ज़्यादा महसूस होगा। आज तो चलो दिन निकल जाएगा सबके साथ में, लेकिन कल, परसों, तरसों, और जब लास्ट टेलीकास्ट होगा उसके बाद तो बहुत ज़्यादा फील होने लगेगा कि अच्छा कॉल टाइम नहीं आएगा, अच्छा अभी सब बात करते हैं कि मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। सभी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और 2.5 साल से शो चल रहा है, तो बहुत सारे पेंडिंग प्लान्स होते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, या वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ों में शेड्यूल होने लगता है। तो खैर, वापस हम बैक टू लाइफ चले जाते हैं, लेकिन हाँ, आज तो ये है जो मुझे करना है, चाहे हंस के करूँ या रो के, लेकिन आज ये मुझे कंप्लीट करना ही है, क्योंकि अभी सीन शुरू हो जाएगा। तो ये बीच में मुझे 10-15 मिनट का टाइम मिला है जहाँ पे मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे लगा मैं कर लूँ। बाकी तो मुझे लगा मैं पैकअप के बाद ही करूँगी, लेकिन कर ही लेती हूँ, क्योंकि पैकअप के बाद पता नहीं और क्या हो जाएगा। सब बैठेंगे, बातें करेंगे, थोड़ा सा मतलब आँखें नम हो जाएंगी सबकी, और घर जाने का मन कैसा होगा उस दिन, क्योंकि रोज़ तो पैकअप के बाद भागने लगते हैं, मतलब मैं तो स्टॉप ब्लॉक में गायब हो जाती हूँ जैसे पैकअप सुनती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या होगा। तो

ये वाला मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि जैसे मेरा भी एक फ़ोटो देखा जिसमें मैं दुर्गा का पोज दिए हुए खड़ी हूँ, और ये भी बहुत ही अच्छा कटआउट है, बहुत ही प्यारा कटआउट है, और मुझे मेरे वो दिन याद दिलाता है कि भाई जब मैं मतलब क्लासिकल डांसर हुआ करती थी और बहुत सारे शोज़ वगैरह और जो भरतनाट्यम किया करते थे वो दिनों की याद दिलाता है, तो बहुत सुंदर भी लगता है। एक और भी है, मुझे लगा ये नहीं निकल पाएगा पर निकल गया, तो चलो इसको भी मेरे साथ आना ही है। नाइस, अभी मेरी दोस्त आई थी उसको भी बहुत अच्छा लगा था कि ये बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए, तो हाँ अभी इसको लेके जाती हूँ उसके लिए।

0: न कर।
1: सो फाइनली सारी चीजें तो गाड़ी में जा चुकी हैं और मेकअप एनिटी और मेरा ये कपूरदानी, बस ये एक दो चीजें हैं। ये जल रहा था इसलिए मैंने उसको जलने दिया कि ये खत्म हो जाए, उसके बाद मैं उसको हटाऊंगी। और वैसे भी एक सीन अभी होना बाकी है, तो बस ये वैनिटी मैं वाइंड अप कर देती हूँ और ऑलमोस्ट सब हो गया। मंगल लक्ष्मी की ढेर सारी यादों के साथ हम आज विदा ले रहे हैं सब लोग, और बहुत ही खूबसूरत ये जर्नी रही। अब आगे कल का दिन कैसे शुरू करेंगे वो अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ कि कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, लेकिन डेफिनेटली और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। 10 डे का गैप है, 30 को मैं एक और एक मेरा एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, एक जैसे मैं आगे स्टडी कर रही हूँ तो उसकी तैयारियों में जुट जाऊँगी, क्योंकि ये लकीली या जैसे बोलो, मतलब ऊपर वाले ने कुछ ऐसा सेटिंग किया कि मुझे अच्छे 10 दिन मिलेंगे जहाँ पे मैं तैयारी कर सकूँगी, पढ़ने का समय निकाल सकूँगी, तो यहाँ मैं पढ़ाई में फिर से लग जाऊँगी। और 30 जून के बाद सोचा है कि शायद मैं जो बहुत सारे टेंपल विजिट करने रह गए थे और मुझे विजिट करने थे, ऊपर वाला ही रास्ता दिखाएगा आगे क्या करना है, और नया काम, नया किरदार और एक नए रूप में फिर से जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा लूंगी और ढेर सारे प्यार के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, और प्रार्थना कीजिए कि मैं हमेशा उर्वशी उपाध्याय आपको ऐसे एंटरटेन करती रहूं।
2: तो भाई अब दोबारा आपको टीम मंगल की ये कहानी देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि ये कलाकार नए किरदार में आप सबको एंटरटेन करने टीवी पर जल्द ही लौटे। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अब डिजाइनर हैंडबैग्स तो होते हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव, दैट्स व्हाई दे आर सो रॉकिंग, लेकिन बहुत ही ध्यान रखना चाहिए हमें अपनी हैंडबैग्स की मेंटेनेंस का भी, तभी तो आते हैं वो डस्ट बैग्स, नहीं तो हो जाएंगे आपके हैंडबैग्स खराब और हो जाएगा आपके लिए शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
2: बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। सोनी सब लेकर आ रहा है नया सीरियल जिसका नाम है चुड़ैल चली ससुराल, जिसमें नजर आएंगी हिबा नवाब और इनके साथ हैं अधिक मेहता, जो बने हैं इनके लव लाइफ। लेकिन इनकी कहानी में भी ट्विस्ट है, क्योंकि हिबा नवाब निभा रही हैं चुड़ैल का किरदार और इनकी माँ बनी है राखी, यानी कि इसमें है कई सारे मैजिक्स, कई सुपरनेचुरल चीजें। हो जाइए तैयार ये नया सीरियल चुड़ैल चली ससुराल देखने के लिए।
4: हाय झुमका, आई रे आई, अप्सरा आई।
5: अप्सरा फेरी को कहते हैं,
6: स्केरी को नहीं।
4: माँ
5: चुड़ैल है हम,
6: चुड़ैल होके इंसान से शादी क्यों?
4: जापान में लोग रोबोट से शादी कर रहे हैं, तो मैं तो इंसान से शादी कर ही सकती हूँ ना।
6: हम घर उजाड़ते हैं, पसाते नहीं।
4: पर मुझे बसाना है उनके साथ छत पर सोकर।
6: अरे साथ में उसे तो पता भी नहीं तुम इंसान नहीं चुड़ैल हो। 7 दिन नहीं टिकेगा तुम्हारा ये रिश्ता।
7: 7 जन्मों का रिश्ता है ये, तुझे पता है क्यों? क्योंकि वो लड़की नहीं,
8: एंजल है एंजल ब्रो।
4: माना इनकी जरा डिफरेंट जोड़ी है, मगर अरमान अलग थोड़ी है। कॉमेडी चाहिए थी ना, तो अब देखने आना।
2: इसी के साथ जी अनमोल पर भी आने वाला है नया शो जिसका नाम है हमारी राधा, जिसमें नजर आएंगे अक्षय महात्रे और सिमरन कौर। देख लीजिए इसकी पहली झलक।
9: जलाल तू आई बला कुटाल तू, नजर पर सवार चुड़ैल का वार, जय काली कलकत्ते वाली भाग जाए छाया काली,
10: और राग बने ऑफिस वाली हमारी राधा।
2: तो हीरे दिल में कैसेट से सामने आए हैं ये BTS नजारे, तो आइए देखते हैं कैसे हो रही है शूटिंग

एक्ट्रेस अनुष्का सेन चल नजर आएंगी कोरियन मूवी में, जो कि होगी एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा जिसमें अनुष्का निभाएंगी सिंगर का किरदार। ऐसे में खुद अनुष्का ने इसकी अनाउंसमेंट की है।

0: नजर डाल लीजिए लाफ्टर शेफ के नए प्रोमोस पर, जहां राहुल वैद्य और विवेन डिसेना की हो गई है एंट्री।
1: मैं लेके आ गया तेरे लिए तेरा काउंटर।
2: भाई तुम तो मुझे कहते थे क्या बात है विवेन भाई, तू क्या कर रहा है शो में?
3: क्या बात है विवेन भाई,
4: आज फिर खतरा है, ये दोनों करेंगे आज
1: कान खोल के
4: सुन आपका खाना टेस्ट।
0: इसी के साथ आए हैं छोटे छोटे नन्हे फैंस भी।
5: बेटा किसके फैन हो आप?
6: अजीश्वी।
7: तेजस्वी। तेजस्वी
5: भारती के तो आंसू निकल आए,
4: इतना प्यार कभी नहीं देखा। थैंक यू सो मच।
8: अनुपमा आपको तो फुर्सत नहीं है शॉपिंग वगैरह करने की, तो मैंने सोचा आज आपके लिए ही खरीद लूं कुछ हैंडबैग्स। वैसे मैं जानती हूं आप काफी सिंपल हैं, ऐसे कुछ डिजाइनर हैंडबैग्स वगैरह फ्लॉन्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा जो सूट करे आपकी पर्सनालिटी को। वैसे हमारी अनुपमा की पर्सनालिटी है काफी धमाकेदार, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास।
9: Hey, listen, baby, baby, I'll do anything for you.
0: अंश और प्रेरणा की बैचलर्स पार्टी।

स्टारप्लस के सीरियल अनुपमा में अपनी शादी से पहले अंश और प्रेरणा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए हैं डिस्को बैचलर्स पार्टी मनाने के लिए। अब चाहे अंश प्रेरणा हो, प्रेम राही हो, राजा परी हो, माही हो या फिर हो बंकू और ईशानी, सभी मॉडर्न अंदाज में अपना टशन दिखा रहे हैं और बैचलर्स पार्टी है तो जाहिर सी बात है डांस करना तो बनता है। इसीलिए देखिए कैसे अंश प्रेरणा और प्रेम राही ने अपने डांस का जलवा दिखाना शुरू किया और उसमें माही, बंकू और ईशानी सभी साथ दे रहे हैं और ताल से ताल मिला रहे हैं।

0: मैंने और इसने ट्विनिंग किया, हमने ब्लैक ही पहना है। तूने व्हाइट कुछ नहीं पहना, मैंने व्हाइट पहना है।
1: व्हाइट मेरा फेस है ना।
0: व्हाइट है इसका फेस, स्किन कलर का नहीं है, ब्राइट कुछ येलो पेल कुछ नहीं है, व्हाइट कलर का फेस है इसका, कागज है।
1: हाँ पर अच्छे लग रहे हैं यार,
0: अच्छे लग रहे हैं।
2: मेरे लुक के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो जैकेट है वो मेरे दिल के बहुत बहुत बहुत करीब है। बताओ क्यों?
1: क्यों
2: बोल बल्लू,
1: क्यों करीब है? मुझे क्या पता, मैंने तो गिफ्ट नहीं दिया,
2: इसने सीन नहीं पड़ा। तो क्योंकि ये जैकेट मुझे ईशानी ने स्पेशली पहनाया है इस पार्टी के लिए, इसलिए ये जैकेट मेरे दिल के बहुत करीब है।
1: तुमने ट्विनिंग क्यों नहीं किया फिर?
2: फिलहाल नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्पेशल डे हम चुराना नहीं चाहते इसलिए।
0: अरे बट तुम्हारा भी तो चल रहा है।
2: हमारा स्पेशल डे जब आएगा तो हम चलाएंगे।
0: बट हमने तुम्हें मौका दिया ना, अब तुम भी हमें अपने स्पेशल डे पे ट्विनिंग करने का मौका दोगे?
2: ऑफ कोर्स,
0: बहुत मतलब गर्मी भी मैनेजेबल है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, मौसम ही यही है।
1: बट कर
0: गाना, हाँ अरे ये तो बहुत ट्रेंडिंग गाना उठा लिया है, मतलब ये तो गाने गाड़ी में सुनते हैं वो वाले।
1: फंक्शन है, भाई की शादी है तो फिर नाचना तो बनता है।
3: भाई परी की खुशी तो दिखाई दे रही है, लेकिन आज प्रेम और राही भी बहुत खुश हैं। प्रेम अंश से अपने सारे गिले शिकवे भुला चुका है, तभी तो आज इनके संग ताल से ताल मिला रहा है। परी और माही भी अपना जलवा दिखा रही हैं, ईशानी भी बंकू संग नाच रही है, लेकिन इसी डांस के जलवे में प्रेम राही और अंश प्रेरणा को मौका मिल गया है एक दूसरे के साथ प्यार बयां करने का।

0: अब नाच गाना तो बहुत हो गया, लेकिन अनुपमा के परिवार के सभी जेंजीज एक साथ मिले हैं तो जाहिर सी बात है एक टेबल पर बैठकर ढेर सारी बातें भी होंगी, हंसी मजाक भी होगा और साथ ही साथ खेल भी खेला जा रहा है, क्योंकि वहाँ का मैनेजर लेकर आ गया है इनके लिए स्पेशल खेल। और इस खेल में कांच के बोल में रखी चॉकलेट्स उठानी होगी, उसके अंदर एक पर्ची है जो सभी के सामने सुनानी होगी। बस फिर क्या, ये सुनते ही गेम शुरू हो गया।
1: फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि लेडी लक ने आपका हाथ थाम लिया है।
2: फॉर्च्यून कुकी आपने सुना होगा, फॉर्च्यून कुकी होती है तो फिर उसमें जो आपका मैसेज निकलता है वो आपका फ्यूचर ऐसा प्रेडिक्ट होता है कि वो होगा, तो वही हमारे सबके निकलते हैं उसमें।
3: और भाई प्रेडिक्टेबल वाले हैं सारे के सारे।
4: और जो चानी का निकलता है वो देखे वो ब्लश कर जाती है।
5: बंगो का भी सेम निकलता है, इसीलिए तो वो बहुत प्यारा मोमेंट है वहाँ पे।
4: यस,
5: वो मैसेज ऐसा है कि कोशिश करूंगा, अंग्रेजी बंगू को ज्यादा आती नहीं है तो वो टेक में सुनेंगे।
4: मेरे वाले में तो निकला था कि वही लाइफ सेट हो गया।
3: और मेरे वाले में निकला था कि पुरानी दोस्ती वापस से आ रही है, प्रेम और प्रेम।
4: देख रहे हो, मतलब प्रायोरिटी देख रहे हो, मेरी में ये निकली।
3: मेरा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा।
0: अंश और प्रेरणा के अलावा सभी ने इस खेल को खेला। अब चाहे बंकू हो, ईशानी हो, आकाश हो, परी हो या फिर हो माही, सभी ने बारी बारी चॉकलेट उठाई और अपनी पर्ची सभी के सामने पढ़कर सुनाई, जिस पर सभी ने एक दूसरे को दी है ढेर सारी बधाइयां। लेकिन जैसे ही बारी आई राही की तो राही ने सभी को बता दिया कि उसकी किस्मत में लिखा है गुड न्यूज। ये सुनकर सभी लोग और भी खुश हो गए, क्योंकि अब परी की बात हो सकता है राही घर वालों को जल्द ही गुड न्यूज दे। लेकिन जैसे ही बारी आई प्रेम की तो प्रेम की पर्ची में जो लिख कर आया उसे प्रेम ने बड़े ही टशन से सभी के सामने सुनाया, जिसे सुनकर सभी की हंसी रुक गई, क्योंकि सभी को पता है कि प्रेम क्या जताने की कोशिश कर रहा है।
4: वो थोड़ा प्रेम का पर्सनल जो उसका चल रहा है अभी तक कि उसका विक्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान है तो उसी के लिए निकल जाता है, तो वो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है सबके बीच, बस इतना ही है।
0: भाई इस खेल ने तो हंसी ठहाकों के बीच ब्रेक लगा दिया। खैर इस खामोशी को दूर करने के लिए अंश ने जिम्मा उठाया और देखिए कैसे सभी के सामने ऐलान कर दिया कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है।
6: Let's not draw.

खैर यहाँ पर सभी खुश तो बहुत हैं, लेकिन जल्द ही कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि प्रेम इन जश्न में शामिल तो हो गया है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी जीत चाहिए। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: करना है ऑन रिपीट।
1: अब देखिए आजकल तो हम सब हो गए हैं फैशन कॉन्शियस। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा हैंडबैग भी मैच करे हमारे कंप्लीट लुक से। जिस तरह एक हैंडबैग करता है लुक को कंप्लीट, उसी तरह ये अगली खबर भी कर रही है हमारे शुभ सास बहू और बेटा को कंप्लीट। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए ऐसे।
2: लॉकअप के नए सीजन का आगाज। रितेश, फरा और एकता कपूर की ग्रैंड एंट्री। रिवील हुए 3 कंटेस्टेंट्स। तो भाई हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार आने वाला है लॉकअप का नया सीजन नेटफ्लिक्स पर, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। और बीती शाम हुआ इसका लॉन्च, जिसमें नजर आए प्रोड्यूसर एकता कपूर और शो के होस्ट यानी कि रितेश देशमुख और फारा खान। भाई शो के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं और साथ ही कंटेस्टेंट्स भी, जो लॉकअप में बंद होने को तैयार है। यानी कि इस शो में मिलेगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ड्रामा, धमाल और कॉन्ट्रोवर्सीज, जिसके लिए सभी हैं तैयार। तो चलिए देखते हैं कि इस लॉन्च में क्या कुछ खास हुआ।
3: हर कन्फेशन नया एंगल, जिंदगी की राज, योर इमेज इज गोना गैम्बल, एंड एवरी स्टोरीज गॉट अ सीक्रेट, एलिगेशंस के जंगल से परे, वी गो सी दैट।
2: तो भाई ग्रैंड एंट्री लेकर स्टेज पर पहुंचे एकता कपूर, रितेश देशमुख और फारा खान। जहां इस शो को प्रोड्यूस कर रही हैं एकता, तो वहीं होस्ट कर रहे हैं रितेश और फारा, और ये सभी हैं काफी एक्साइटेड।
4: एक प्रोड्यूसर का एक ही विश होता है कि वो इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करता है कि उसे एक पॉइंट तो आता है कि इनको तो जेल में डालना ही होगा, यू नो। एंड देन दिस कॉन्सेप्ट केम आउट ऑफ दैट वेरी बिग विश that these guys need to be in jail, and who better to partner with than Netflix for that, because with Tudum there's always going to be darang now.
5: Yeah.
6: Sach main hu, saza Farah Khan hai.
7: Ritesh, main saza nahi, main maza hu. Aur yahi sach hai.
6: True, but such on a serious note, mujhe lagta hai ki punishment mujhe boring se lagti hai. चॉइसेस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि चॉइसेस से लोगों के असली चेहरे बाहर आते हैं, एंड आई फील जो एक्साइटिंग चॉइसेस लोग लेंगे उनकी असलियत धीरे धीरे बाहर आएगी, और सच्चाई इज ट्रेडेबल, आप सच्चाई यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी।
7: राइट नाउ यू नीड टू रिडीम योर सेल्फ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला ऑर्डर एज जेलर होगा कि इस आदमी को लॉकअप में डालो प्लीज। ये कब से बोले जा रहा है?
8: मैंने क्या किया फरा? इतना तो कम बोलता हूँ, मैंने
7: लेके था उसको।
8: नो
7: भाई, अंदर
8: डू यू थिंक, डू यू एग्री, डू यू एग्री?
7: अरे
8: गाइस, पहले तो एक सेकंड, ये तो सुन ही नहीं रहे हैं।
7: बंद करो, पहले इसका मुंह बंद करो, बाद में इसको बंद करो।
2: तो भाई इन सभी ने बताया कि इस सीजन में क्या कुछ खास होने वाला है, कितनी स्ट्रिक्टनेस होगी, क्योंकि लॉकअप सच या सजा, यही तो है टैगलाइन। तो या तो सच होगा या ना सच बोलने पर होगी सजा।
4: आई एम श्योर बहुत लोग मुझे जेल में डालना चाहते हैं, बट द सेम लव इन फॉर देम आई हैड। एंड ये मोनिका इज राइट, वी लिव इन अ वर्ल्ड जहां रोज हमें पता चलता है ये औरतों को हेट करता है, ये आदमियों को, शी इज अ गोल्ड डिगर, ये है, ये है। आप 30-second क्लिप पर डिसाइड कर लेते हो कि ये इंसान कैसा है, और उसके बाद आप जजमेंट पास कर देते हो। अब उन्हीं लोगों को हम एक लॉकअप में डालेंगे, और आपको उतना टाइम मिलेगा उनको जानने का और डिसाइड करने का। एंड सम वेरी फेवरेट पीपल हु हैव बीन डाइंग टू पुट इनटू जेल आर इन दिस शो टुडे। सो आई एम सो एक्साइटेड, यू हैव नो आइडिया। इन एनी ह्यूमन रिलेशनशिप द मोस्ट डेक्रीमेंटल थिंग इज जजमेंट, एंड दैट्स द ईजिएस्ट थिंग टू पास। And today you will have the chance to go beyond the judgment and know the person.
6: नहीं, challenging सबसे पहले जिस तरह का जेल बना है, जिस तरह के टास्क होने वाले, वो काफी challenging होने वाले। तो of course जेल challenging होने वाला है, जेल से बचे तो फिर jailers तो है।
7: As worried as Shirish is of me.
6: तो ये तो तय हो गया कि शिरीष इनमेटी है घर पे.
7: दे शुड बी वरिड.
8: Yeah.
7: और ऊपर से एकता है, मोनिका है, उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. अरे यार रितेश मेरा भाई है, नॉट एज इरिटेटिंग एज माय रियल ब्रदर, बट ही इज माय ब्रदर. आई एम गोइंग टू इंजॉय, क्योंकि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जितना वो दिखाता है ना, उससे बहुत 100 times ज्यादा वो इविल और कटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर ही है. सो वी आर गोइंग टू एंजॉय आवरसेल्फ.
0: गेट रेडी.
2: तो भाई एक एक कर हो रहे हैं कंफर्म कंटेस्टेंट्स रिवील. तो सबसे पहले ग्रैंड एंट्री मारी राम कपूर ने. तो भाई सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं के बाद कई और फिल्मों में ये काम कर चुके हैं और अब ये रियलिटी शो लॉकअप में नजर आने वाले हैं. तो आइए राम कपूर से ही जानते हैं कि वो लॉकअप में क्या धमाल मचाएंगे.
7: राम.
8: हेलो. हाय.
7: बट राम ये क्यों कर रहा है ये? क्यों मतलब क्या हो गया? I can't believe Ram. I swear we didn't know who's there.
8: बड़ी स्टाइल में बोला था इन्होंने own your truth. So here it is. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा शो करूं. Fact. Yesterday Father's Day था. मेरे बच्चों ने मुझे उठाया और पूछा, Dad, why are you doing this? They were worried. पहली बार उन्होंने मेरे को question किया. They were worried that why the hell are you doing this? कोई कारण नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी यूनिवर्स गिव्स यू साइंस. आई एम अ बिलीवर. मेरे को 4 signs मिले हैं जो मैं आपको बताऊंगा. ओनिंग योर ट्रूथ सर. फर्स्ट साइन, जिस कास्टिंग एजेंट ने मुझे फोन किया, शी इज वेरी रिस्पेक्टेड एंड वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, जो कभी जिंदगी में ऐसा शो मुझे नहीं प्रेजेंट करती, लेकिन उसने बोला प्लीज एक मीटिंग. आई कांट से नो. मैं गया उस मीटिंग में फुली प्रिपेयर्ड टू बी पोलाइट एंड से गाइस इट्स नॉट फॉर मी. जो दो लोग उस मीटिंग में थे, स्वाति एंड मलय, आई एम नॉट सेइंग लास्ट नेम्स गाइस, दे शॉक्ड मी. उन्होंने प्रेजेंट किया मुझे एग्जैक्टली व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, बट आई डिडंट नो. दे शॉक्ड मी. साइन नंबर 2. साइन नंबर 3, इस देश की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन उन सारे लोगों से ये दो मिले हैं. मैं आपको एक ट्रूथ बताता हूं, इन दोनों का फरा मी एंड साजिदा चड्डी बडीज, चड्डी बडीज. वन फैक्ट, इन 15 years एवरी टाइम एकता एंड वी हैव वर्क्ड टुगेदर वी हैव क्रिएटेड मैजिक. फैक्ट. तो मेरे को बताओ, हाउ डू आई से नो व्हेन द यूनिवर्स इज टेलिंग मी गॉड डैम इट डू इट. इसलिए मैं हूं, लेकिन ये लोग से बहुत डरता हूं, आप लोग बचा लेना मुझे.
6: आप इस शो में हैं और आपकी एनर्जी इस शो को एक अलग लेवल तक पहुँचाएंगी.
2: भाई इसी के साथ स्टेज पर पहुँच गई एकता कपूर और देखिए कैसे राम कपूर ने एकता को गले से लगा लिया, यानी कि इनके सारे गिले शिकवे अब मिट चुके हैं और अब हो गई है नई शुरुआत.
8: हम जानना चाहते हैं कि आप लॉकअप में जाने के लिए तैयार हैं?
4: मैं भेजने के लिए तैयार हूँ. बहुत टाइम से वेट किया इसका. इस पे हथकड़ी मैं लगाऊंगी. इसको लॉकअप में बहुत टाइम से मैं भेजना चाहती हूँ. क्योंकि ये हमें बड़े ही अच्छे लगते थे. तो ज्यादा पतले हो गए.
8: बट ये मैं रेडी बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं जा रहा हूँ एंड होप फॉर द बेस्ट. अब देखते हैं क्या होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता क्या होगा.
2: वैसे इसी के साथ एंट्री की है टीवी की बिटिया रानी यानी कि शिवांगी जोशी ने. भाई शिवांगी ने कई सारे सीरियल्स किए हैं, जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़े अच्छे लगते हैं का नया सीजन और कई और सीरियल्स. और अब वो रियलिटी शो से कर रही है कमबैक. लॉकअप में दिखेगा शिवांगी का रियल अंदाज. इसी के साथ नजर आने वाली है लॉकअप के इस सीजन में देसी ब्लिंग फेम पामेला सेरेना, जो कि मिस यूनिवर्स दुबई 2021 रह चुकी है और अब लॉकअप में दिखेगा उनका रियल अंदाज. तो आइए इन दोनों से ही जानते हैं कि लॉकअप के इस सीजन के लिए इन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है.
5: लॉकअप एज योर इनमेट फैम.
9: Well, I would like to say first, Dubai ki desi bling aagi hai Bombay.
5: Welcome to Mumbai.
9: And who don't I want to see? Chalo, ek choti si hint de de. Oh, I think you guys could guess this one. Shut up. Of course, Tejasvi.
8: Okay. Okay, Pammy. No. Pamela Serena, a.k.a. Pam. That's how we like it, right?
9: Excuse me. Don't call me Pammy. I don't even know you that well.
8: Attitude, drama. Can't wait and wish you the best for lockup, Sachya Saza. And now,
9: thank
8: now,
9: you
8: now.
9: So much.
0: Kiss Farah, ma'am. Marry Farah, ma'am.
7: Yeah.
0: And kill him.
7: And kill, no, kill him.
0: Kill you for asking this question.
10: Ma'am, I don't know. You also.
6: मुझे नहीं लगता कि ये तीनों एक दूसरे से मिले हैं.
4: बड़े सीजन वन, बड़े सीजन थ्री.
10: Holy shit. Oh my God.
4: I had made the video for her which you reacted on.
0: I know.
10: My God. Oh my God. Wow. I have a franchise.
0: Yes, sir. मैं जानती हूँ लोग मुझे यहाँ देख के काफी happily shocked होंगे क्योंकि कोई expect नहीं कर रहा होगा कि मैं ये show कर सकती हूँ but I want to tell them छोटे packet ही बड़े धमाके करते हैं तो yeah I think they'll see the most my most favorite character abhi tak ka which is me and
9: did you guys watch Desi Bling?
8: No.
9: Oh.
0: No, but we know of you.
10: My wife did, but I'm sorry.
9: Okay, so I would say yes. What did they call me? I think they call me the Kamalika of Dubai.
4: See, frankly, when the format changed so much, the whole vision of the show changed, and the demographic, the kind of jailer judge format we had changed the full dimension of the show. So nothing of the original show has been kept, neither the jailer, neither the host. And so keeping anything from the old would not give the fresh presentation we were planning. So I'm sure Kangana understood.
2: भाई ये तो रहे तीन कंटेस्टेंट्स जिन्हें इस लॉन्च में रिवील किया गया. इसके अलावा कई और नाम हैं जो लॉकअप के सीजन 2 में नजर आने वाले हैं. भाई अगला नाम है सुनीता आहूजा का, यानी गोविंदा की वाइफ, जो नजर आएंगी लॉकअप के इस सीजन में. इसके अलावा सोशल मीडिया वायरल स्टार योगेश रावत, जो स्प्रिट्सविला के 16 सीजन में भी नजर आ चुके हैं, तो वहीं स्प्रिट्सविला 16 फेम आकांक्षा चौधरी भी नजर आएंगी लॉकअप में. इसके अलावा कई और नाम है जो सामने आ रहे हैं, जैसे कि बिग बॉस फेम आसिम रियाज, बिग बॉस में नजर आ चुकी अर्चना गौतम, सोशल मीडिया के स्टार पुनीत सुपरस्टार, टीवी के बेटे हर्षद चोपड़ा, कमोलिका यानी उर्वशी ढोलकिया और रश्मि देसाई. भाई फिलहाल तो ये सभी नाम सामने आए हैं, लेकिन अब इनमें से कौन कौन कंटेस्टेंट्स असल में लॉकअप के सीजन 2 में नजर आएंगे ये देखना होगा.

0: जाइए तैयार कंटेस्टेंट्स की रियल अंदाज और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये लॉकअप शो देखने के लिए नेटफ्लिक्स पर। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: हर एक कन्फेशन नया एंगल जिंदगी की राज योर इमेज गोना गैम्बल।
2: लक्ष्मी और श्रीनिवास की ये कहानी ये भी लेकर आती है हमारे लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ इस कहानी में ऐसा होता ही रहता है जो हमें इस कहानी से बांध कर रखता है। एंड फिलहाल भी कहानी में चल रहा है एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए फिर लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ कहाँ बिहाइंड द सीन्स लक्ष्मी निवास के सेट पर।
3: शुरू हुई राधिका की मेहंदी की रस्म।
4: हाथों में खिलने वाली है तेरी।
3: परिवार संग झूम कर नाचे दूल्हे राजा। लक्ष्मी निवास में आई खुशियों की बहार। जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में जुड़ गया है वीर और राधिका का रिश्ता और आज हो रही है राधिका की मेहंदी की रस्म, जहां पर होने वाली दुल्हनिया राधिका सज धज कर पहुंच गई है अपनी मेहंदी की रस्म में। पूरा परिवार तो बहुत खुश है लेकिन राधिका के चेहरे पर कश्मकश और डर है कि कहीं उसकी खुशियों में फिर से नजर ना लगे। खैर राधिका की मेहंदी की रस्म की शुरुआत की है राधिका की माँ ने हाथों में शगुन की शुरुआत करके। इसी बीच राधिका की बहन भूमिका भी आ जाती है और तो और वो भी अपनी बहन की खुशी में बहुत खुश है।
5: फाइनली राधिका और वीर की शादी हो रही है और सबसे पहला फंक्शन जो है मेहंदी का फंक्शन है। हमारी राधिका के हाथों में मेहंदी लगने वाली है और सब बहुत खुश है। आप डेकोरेशन तो देख ही रहे हो कितनी माइंड ब्लोइंग डेकोरेशन की है। चंपा और मैंने हमने मिलकर ये सब सजावट करी है, सब तैयारियां करी है, सब घर वालों ने मिलकर करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। बेचारे इतने हमारे दुख के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद यू नो दोनों की शादी हो रही है और फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। अभी चौहान फैमिली धीरे धीरे कर लेंगी राधिका को एक्सेप्ट। सो बहुत खुशी का माहौल है फाइनली लक्ष्मी निवास में, बहुत खुशी का माहौल है।
3: वाकई लक्ष्मी निवास में खुशियाँ झूम कर आई है। ऐसे में राजू भूमिका को ले जाता है नाचने गाने के लिए। इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाते हैं होने वाले दूल्हे राजा वीर भी, जो इस रिश्ते से बहुत खुश हैं क्योंकि वो तो राधिका से बहुत प्यार करते हैं। और तो और इसी खुशी में शामिल होने के लिए वो भी भूमिका और पूरे परिवार संग नाचने गाने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि दूर खड़ा भूमिका का पति राज वो भूमिका को इस तरह दूसरों के साथ नाचता हुआ देख जल रहा है। उसे गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो अपने गुस्से को दबा रहा है। इतना ही नहीं, सभी से अपने गुस्से को छिपाते हुए वो भी डांस में शामिल होता है।

0: मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मुझे इतनी सिंपल साड़ियाँ मिली होती हैं, एकदम हाउसवाइफ वाली सिंपल साड़ियाँ, उससे हटके कुछ थोड़ा हैवी पहनने को मिला है और बालों में भी हमारे गजरा लगा है। और आज तो रेवती ने बाल भी खोल लिए हैं, जो कि मेरे को कभी भी खोलने को नहीं मिलता है, बाल खोलने को कभी नहीं मिलता है, तो मैंने बाल भी खोल लिए और गजरा लगा लिया है, मेकअप भी थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, क्योंकि भाई मेरी फेवरेट ननद की शादी हो रही है और बहुत खुश हूँ रेवती, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब दिल खोल के हम खुश होने वाले हैं।
1: वाकई पूरा परिवार दिल खोलकर खुशियां मना रहा है, लेकिन राधिका दूर बैठी अब भी कश्मकश में है। हालांकि उसकी बेटी अपनी माँ के हाथों में मेहंदी रचाती है, ये देख राधिका खुश है कि उसकी बेटी खुश है, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर मौजूद है और उसके डर को वीर बखूबी समझ रहा है। इससे पहले कि वीर राधिका के पास जाकर कुछ कहता, पूरा परिवार उसे घेर लेता है और रेवती वीर को देती है शादी में खुश होने का मूल मंत्र भी। अब राधिका की खुशी के लिए वीर तो कुछ भी कर सकता है, अब देखना होगा क्या राधिका वीर को मौका देगी अपने दिल में घर करने का। मुंबई से कैमरामैन सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: साइली और सचिन का रिश्ता बिल्कुल हैंडबैग और उसके जिपर की तरह है। अब देखिए दोनों हैं एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे, कितनी प्यारी है ना इनकी ये जोड़ी, ना लगे इन्हें किसी की भी बुरी नजर। तो चलिए फिर पता कर आते हैं क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको उड़ने की आशा के सेट पर।
1: साइली का नया कैंपेन,
3: और मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चे बड़ी परेशानी झेले।
1: घर वालों ने बढ़ाया साइली का हौसला। मोहल्ले वाले देंगे साइली का साथ। प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में मंदिरा को करारा जवाब देने के लिए साइली ने भी अपना नया कैंपेन शुरू कर दिया है, और ऐसे में देखिए कैसे साइली का साथ दे रहे हैं सचिन, रिया और आकाश। और तो और साइली के साथ वो मोहल्ले में पहुंच गए हैं प्रचार करने के लिए, पैम्पलेट्स बांटने के लिए, क्योंकि साइली चुनाव में जो खड़ी हो गई है, ऐसे में कुछ लोग पैम्पलेट्स पढ़कर हैरान है तो कुछ लोग साइली के खिलाफ हो रहे हैं।
4: मंदिरा तो अगेंस्ट है ही फॉर श्योर, बट जो लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है एक फूल वाली क्या ही कर सकती है, बट आई थिंक यही काम है। आई थिंक दिलासा देना चाह रही है साइली सबको कि वो भी कुछ कर सकती है एंड उसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड सबको वो हेल्प करेगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा है साइली को, बट आई एम श्योर शी विल कम आउट एज अ विनर।
1: भाई सचिन ने तो वो पैम्पलेट उठा लिया, बाकी सब भी पैम्पलेट्स फेंकने लगे, लेकिन साइली ने जिम्मा उठाया है जीतने का, और देखिए कैसे वो सभी को संतावना देने के लिए टेबल के ऊपर खड़े होकर सभी को आश्वासन दे रही है कि वो सभी की भलाई के लिए ही ये कदम उठा रही है। वो चाहती है कि सभी फूल वालों के बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और इसीलिए वो मंदिरा के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हो गई है।
3: अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और वो आगे बढ़े, उन्हें हमारी तरह कोई तकलीफ नहीं चाहिए।
4: जैसा कि आपको पता है हमेशा ही साइली की एक सपोर्ट सिस्टम रही है, तो वो फूल वालियों को बेसिकली साइली रिप्रेजेंट कर रही है, मंदिरा के अगेंस्ट वो एक कैंपेन को लड़ने वाली है। सो वो चाह रही है कि छोटे लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो एक्चुअली बिग होती है, उस चीज़ से डील करे। सो रिया इसमें हेल्प कर रही है, पैम्पलेट्स वगैरह बांटने में हेल्प कर रही है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है घर पे तो हेल्थ का भी ध्यान रखने में हेल्प कर रही है। एंड शी ऑल्सो हैज़ अ फ्रेंड जिसके खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो वो किसी को बोल के कोचिंग के थ्रू फ्री क्लासेस, फ्री ट्यूशंस दिलवाने वाली है।
2: तो फिर कैसा लगा आपको ये बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट? हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर, लेकिन क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट से उतार। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
6: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है

0: Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
7: टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स.
8: दक्षिण पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंचा मानसून. अगले कुछ दिनों में यूपी तक बढ़ने के आसार. दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया काला अंधेरा. दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का रेड और कुछ इलाकों में येलो अलर्ट. वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी, बीसीसीआई ने साझा की जानकारी. वैभव बोले सपना हुआ साकार. भारत वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग होगा और भी मजबूत. वियतनाम के होचीमिन सिटी पहुंचे भारतीय नौसेना के INS उदयगिरी और तारागिरी. गुजरात के कच्छ में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत. बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं भी मौजूद. अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़. कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल. कला और संस्कृति के दिख रहे तमाम रंग, खास अंदाज में सजा मंदिर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
8: हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार. चमोली में हुई जोरदार बर्फबारी. हेमकुंड साहिब में चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर. तापमान में दर्ज की गई गिरावट. बर्फबारी पर आस्था भी पड़ी भारी. बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहब पहुंचकर किया अरदास. बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हुआ. श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे डुबकी. खराब मौसम के बीच में हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा. 1,28,000 भक्तों ने टेका मत्था. चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब. अब तक 40,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन. सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों को पहुंच रहे भक्त. 2 महीनों में आंकड़ा पहुंचा 12.5 लाख के पार. बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह. अब तक 11,00,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन पूजन. चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा. अब तक 50,00,000

से ज्यादा भक्तों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने की विधि विधान के साथ पूजा। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, जवानों ने इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करवा रहे श्रद्धालु। देशभर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा आखिरी और 8वां बड़ा मंगल का त्यौहार, आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान के साथ पूजा करने से मिलती है बजरंगबली की विशेष कृपा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार का होता है विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुई थी भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली की मुलाकात। भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती हैं जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलने की मान्यता, ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ महीने के आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार हुआ, भगवान को अर्पित किए गए फूलों की मालाएं, आभूषण भी अर्पित किए जाते हैं। आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, राम मंदिर में तैनात दिखे जवान। ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए की जाती है पूजा। अयोध्या में आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लगी भक्तों की कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ महीने के आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शनों के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। उज्जैन में आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए। बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर, आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतारें। कौंडण्यपुर से माता रुक्मणी की 432 साल पुरानी भव्य पालकी यात्रा निकली, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। ताल, मृदंग, वीणा की गूंज और माता रुक्मणी के जय घोष से पूरी कौंडण्यपुर नगरी गूंज उठी, पंढरपुर के लिए रवाना हुई यात्रा। गांव के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों ने पालकी यात्रा का जोरदार स्वागत किया, जगह जगह रंगोलियां सजाई गई, फूलों की वर्षा भी की गई। प्रयागराज से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई, रिंगवेदपुर में बनकर तैयार हुआ राम वन गमन मार्ग। अयोध्या से सीधे जुड़ेगा प्रयागराज, जल्द राम वन गमन मार्ग होगा उद्घाटन इसका। गांधीनगर में अगरिया समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए गुजरात सरकार की अनोखी पहल, स्कूल ऑन व्हील्स रणशाला प्रोजेक्ट की शुरुआत। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 28 रणशाला बसों का विधिवत किया लोकार्पण, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं भी मौजूद। रणशाला में क्लासरूम में 43 इंच का स्मार्ट टीवी, डिश टीवी कनेक्टिविटी के जरिए एजुकेशनल चैनल, एफएम रेडियो, डिजिटल घड़ी, एलईडी लाइटिंग सिस्टम से बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलेगी। रक्सौल का गेटमैन ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कमाल कर दिया, बना डीएसपी।
जालना में पहली बार कैंसर की जटिल सर्जरी सफल हुई, मैलिग्नेंट ट्यूमर का हुआ सफल उपचार। गाजियाबाद में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के 52वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसमें शामिल हुए। अलीगढ़ में सीएम योगी ने 85 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा विकास करना हमारा मकसद। देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई, सांसद निशिकांत दुबे इसमें शामिल हुए। फिट इंडिया मुहिम के तहत तिरुवनंतपुरम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर दिया फिट रहने का संदेश, युवाओं ने भी चलाई साइकिल। अगरतला में ओलंपिक दिवस समारोह पर भव्य कार्यक्रम हुआ, सीएम माणिक साह ने की इसमें शिरकत।

0: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब इंडोनेशिया में करेंगे हनुमंत कथा। जकार्ता में 3 दिनों का कार्यक्रम है। बाबा बागेश्वर ने सोशल मीडिया पर दी इसकी जानकारी। जकार्ता में 26 से 28 जून तक करेंगे प्रभु का गुणगान। पुणे की स्मार्ट लाइफ फाउंडेशन की अनूठी पहल, इमोशन एब्जॉर्बन ध्यान कुटीर विकसित की। कुटीर बनाने में गोबर और जूट जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल हुआ। 10 मिनट की साधना और ध्वनि तरंगों से मिलेगी तनाव से मुक्ति। परियोजना में अरोमा मेडिटेशन साउंड थेरेपी के जरिए तनाव को कम करना इसका मकसद है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।

0: all sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
1: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
0: Big 12 Radio.
2: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
0: and
2: down.
0: Talk sports.
3: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
0: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: क्या आपकी कुंडली में शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या हैं इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
14: दक्षिण पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पहुंचा, अगले कुछ दिनों में यूपी तक बढ़ने के आसार। दिल्ली NCR में भी मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश का रेड और कुछ में येलो अलर्ट। वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी, BCCI ने साझा की जानकारी, वैभव बोले सपना हुआ साकार। भारत वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग होगा मजबूत, वियतनाम के हो ची मिन सिटी पहुंचे भारतीय नौसेना के INS उदयगिरी ताराके। गुजरात के कच्छ में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला संस्कृति के दिख रहे तमाम रंग, खास अंदाज में सजा मंदिर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। आज जानेंगे गायत्री जयंती की महिमा। माँ गायत्री को वेदों की जननी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ गायत्री का ध्यान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि गायत्री महामंत्र के जाप से 24 देवों का आशीर्वाद मिलता है। तो आखिर माँ गायत्री और उनके महामंत्र की क्या है महिमा, आइए जान लेते हैं।

0: त्रिशक्ति का स्वरूप है माँ गायत्री, वो है ज्ञान बुद्धि और चेतना की अधिष्ठात्री। माँ गायत्री हैं वेद माता और विश्व माता, माँ की महिमा का गुणगान करते ही विधाता। माँ के महामंत्र में है चमत्कारी शक्ति, हर संकट और कष्ट से मिल सकती है आपको मुक्ति। कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने से न सिर्फ स्मरण शक्ति बढ़ती है बल्कि एकाग्रता और ध्यान भी बढ़ता है। माँ गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है। माता गायत्री को देवी पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी का संयुक्त अवतार भी माना जाता है।
1: चारों वेदों की उत्पत्ति गायत्री से ही हुई है, तो इसलिए गायत्री को सर्वोत्तम माना जाता है और गायत्री की महिमा चारों वेदों की उत्पत्ति होने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनकी सभी की देवी को गायत्री माता हैं, जिनकी वजह से इनकी विशेष महिमा उत्पन्न होती है। कुछ लोग शास्त्रों में महागंगा भी कहा गया है, जिनका सार अनेक ग्रंथों में मिलता है।
0: माँ गायत्री का जन्मोत्सव आने वाला है। अपनी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे माँ गायत्री की महिमा और साथ ही जानेंगे कि माँ के महामंत्रों से कैसे बरस सकती है आप पर कृपा। माँ गायत्री को वेदों की जननी कहा गया है। सारे वेदों की उत्पत्ति माँ गायत्री को ही माना गया है। माँ गायत्री ज्ञान की देवी हैं, जिन्हें अखंड शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
2: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।
0: माना जाता है कि गायत्री मंत्र एक लौता ऐसा मंत्र है जिसमें 24 देवों की शक्ति समाहित है।
1: गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में सर्वोत्तम असरदार है, सबसे उत्तम मंत्र गायत्री है। इससे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं मनुष्य का। गायत्री मंत्र है ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में सभी एक एक शब्द का मनुष्य के कल्याण के रूप में वर्णन किया गया है, इसलिए गायत्री मंत्र का जप करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सिद्धि प्राप्त होती है।
0: मान्यता है कि वेदों से लेकर धर्म शास्त्रों तक समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। माँ गायत्री की महिमा हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानिए कि माँ का सृष्टि में प्राकट्य कैसे हुआ। मान्यता है कि ब्रह्मा देव जब सृष्टि की रचना के प्रारंभ में थे तब उन पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री माता का आवाहन किया, अपने मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस तरह से गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ। गायत्री माता से ही चारों वेद शास्त्र आदि पैदा हुए। गायत्री माता को माँ पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। कुछ उपनिषदों में सावित्री और गायत्री को एक ही बताया गया है। गायत्री माता का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः है, जो वेदों का सार माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो भागों से मिलकर बना है। इस ऋचा में ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है, इसलिए इसको सावित्री भी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है वैसे ही उपलब्धि प्राप्त होती है। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है।
3: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।
0: माना जाता है कि सुबह सूर्य देव या ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप बहुत शुभ और असरदार होता है। वेद माता माँ गायत्री की उपासना 24 देव शक्तियों की भक्ति का फल और कृपा देने वाली भी मानी गई है। इससे सांसारिक जीवन में सुख, सफलता और शांति की कामना पूरी होती है।
1: सबसे उत्तम तो आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, कीर्ति आपकी बढ़ती है, तेज बढ़ता है और शिक्षा में आपका मन लगता है, शक्ति प्रदान करती हैं गायत्री माता। इस तरह की अनेक प्रकार की शक्तियाँ देती हैं जो मनुष्य के जीवन में कल्याण करती हैं।
0: अद्भुत है माँ गायत्री की महिमा। इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। माना जाता है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो, गायत्री मंत्र का जाप सबसे असरदार माना गया है। इसके उपाय करने से जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए आपको सारे उपाय भी बताएंगे। आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आपकी हर परेशानी को दूर कर सकता है। परेशानी कोई भी हो, गायत्री मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है जिसका जाप आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। वेद माता गायत्री की कृपा से आपका भी कल्याण हो सकता है। इस गायत्री जयंती के साथ साथ सामान्य रूप से भी आप वेद माता गायत्री की पूजा उपासना कैसे करें, गौर से देखिए।

जिन्हें वेदों शास्त्रों की जननी कहा गया है। माँ गायत्री जिनसे बहती है ज्ञान की गंगा, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्या देवी माना गया है। गायत्री माता को लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती का अवतार माना जाता है।

0: माँ गायत्री का मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिताओं को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मंत्रों में वो गायत्री मंत्र है। यही वजह है कि तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र पूरा नहीं होता।
1: पुराणों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गायत्री को सिद्ध कर लेता है उसको बहुत सी सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं, और इस गायत्री की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि जो गायत्री का 108,000 जप कर लेता है वो उसको बहुत सी सिद्धियां अपने आप प्राप्त होने लगती हैं।
0: जानकार बताते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है, तनाव दूर होता है और आत्मशक्ति में वृद्धि होती है।

0: आइए आपको बताते हैं माँ गायत्री का महामंत्र और इसका अर्थ। ये महामंत्र है ओम भूर भुवत्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वो तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। मंत्र जाप चाहे कोई भी अगर सच्चे मन और पूरी एकाग्रता और विधि विधान से किया जाए तो ये दुखों को दूर करता है। गायत्री मंत्र के जाप से मन एकाग्र होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र के पहले 9 शब्द प्रभु के गुणों की व्याख्या करते हैं। आप ही समझिए। ओम प्रणव भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाला, देवस्य प्रभु धीमहि आत्मचिंतन के योग्य, धियो बुद्धि यो जो द हमारी प्रचोदया हमें शक्ति दे। तो देखा आपने हम सभी का कल्याण करने वाला है माँ गायत्री का ये सिद्ध मंत्र। माँ गायत्री को सर्वशक्तिमान सर्व सिद्धिदायिनी और सर्व कष्ट विनाशिनी कहा गया है। गायत्री की महिमा को वेद शास्त्र पुराण सभी वर्णन करते हैं। माँ गायत्री के जन्म उत्सव पर माँ की विशेष पूजा से पूजन करने का विधान है। तो इस दिव्य तिथि पर वेद माता गायत्री की पूजा उपासना कैसे आपको करनी है वो भी जरा समझिए।
1: गायत्री माता जी की तस्वीर रखें, उनको जैसे सभी देवताओं की पूजन की पूजा की जाती है अक्षत जल से स्नान कराइए, चंदन रोली अक्षत सब लगाइए, माला फूल चढ़ाइए, नैवेद्य के रूप में कुछ भोजन उनको अर्पित करिए, फल रखिए और फल रखने के बाद एक आसन में बैठ करके उनका जप करिए, पूजन आरती दियावत्ती जैसे किया जाता है साधारण सभी देवताओं की जिस प्रकार पूजा की जाती है उसी तरह से गायत्री माता की भी पूजन की जाती है।
0: गायत्री की पूजा साकार यानी प्रतिमा पूजन के रूप में भी की जाती है। पूजा के लिए एक चौकी पर गायत्री की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के समय धूप दीप नैवेद्य फल फूल आदि का उपयोग करें। साधना निराकार रूप में भी की जाती है, इसे मानसी पूजा कहते हैं। इसके लिए सूर्य का चित्र या दीपक या अग्नि के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। पूजा के समय मुंह को पूर्व दिशा की ओर रखें। धर्म ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि गायत्री मंत्र शुद्धता शक्ति और संयम का मंत्र है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी ये मंत्र कारगर माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं।
2: समस्या कितनी भी विकट हो, गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बस जरूरत है सही नियम और संयम के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने की। ज्योतिष के जानकारों की माने तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है, मन शांत होता है और जीवन में खुशहाली आती है। गायत्री जयंती से जुड़े महा उपाय क्या है गौर से देखिए।

0: गायत्री मंत्र से मिलेगी सद्बुद्धि। महामंत्र के प्रताप से होगी कार्य की सिद्धि। माना जाता है कि बच्चों के लिए सौगात है गायत्री मंत्र का नियमित जाप। मंत्र की सिद्धियों को जानने वाले बताते हैं कि गायत्री मंत्र की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के मन पर होता है। माना जाता है कि विद्यार्थी अगर गायत्री मंत्र का नियम अनुसार 108 बार जाप करे तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। यह हम क्यों कह रहे हैं ये भी जरा आप समझिए। अथर्ववेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला मंत्र कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि ने कहा है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं।
1: गायत्री मंत्र के जाप करने से आयु, आरोग्यता, कीर्ति, शिक्षा, शक्ति, स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो जो व्यक्ति सूर्योदय से आधी घंटा पहले और आधी घंटे बाद तक गायत्री मंत्र का विधि विधान से स्नान करके प्रातः समय गायत्री मंत्र का जप करता है उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
0: माना जाता है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर की 24 अलग अलग ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं। इस मंत्र के उच्चारण से शरीर के 24 बिंदुओं पर एक सितार सा कंपन होता है जिनसे उत्पन्न ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड में जाकर पुनः साधक के शरीर में लौटती है। ये तरंगे जप करने वाले व्यक्ति के शरीर में विद्यमान प्रकाश अणुओं को दिव्य, तेजस्वी और प्रसन्नता बढ़ाने वाले अणुओं में परिवर्तित कर देती है जो इस मंत्र को प्रभावी बना देता है। चलिए अब आपको बताते हैं बच्चों की शिक्षा से जुड़े कुछ महाप्रयोग जो गायत्री मंत्र की महिमा को बताता है। चंदन या गुगुल की सुगंध का प्रयोग करें। धीरे धीरे बोल बोल कर इसका जाप करें। कम से कम 27 या 108 बार जाप करें। अगर कोई बच्चा छोटा है और इसका जाप नहीं कर सकता तो उसके समक्ष मंत्र का जाप करें। प्रसाद में केसर या मिश्री अर्पित करें। बच्चे को खाने के लिए दें।
1: बच्चों के शिक्षा के सुधार में गायत्री माता की तो इतनी शक्ति है कि अगर कोई भी बच्चा एक माला प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से जप करता है तो उसकी शिक्षा में अनेक प्रकार की जो विघ्न बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। उनका शिक्षा में बहुत मन लगने लगता है। उससे उसकी शिक्षा ग्रहण होती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका तेज बढ़ता है और उसका पढ़ने में मन लगता है और वो जहां भी जाएगा वह गायत्री मंत्र का जप करने वाला छात्र छात्राएं जो भी हैं वो बहुत ही तेज और मेधावी होते हैं।
0: एक भोज पत्र ले, उस पर लाल स्याही से गायत्री मंत्र लिखे। भोज पत्र को पीले कपड़े में सीले या ताबीज में बंद कर दे। इसे बच्चे को पीले धागे में गले में धारण कराए। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को गायत्री मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। सच्चे मन और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। यहाँ तक कि घर का वास्तु दोष भी इससे दूर हो सकता है। स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर ले। बोल बोल कर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। मंत्र जाप के 5 मिनट बाद उस लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दे। बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए ये छोटे छोटे महाप्रयोग आपके जीवन की दुविधा का अंत कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो नियम और संयम से गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे यकीनन आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
2: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
5: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
6: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
5: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
9: ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: चलिए इसके साथ वक्त हो चला है आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
14: फीफा के क्रेज के बीच यूनाइटेड किंगडम के एक जू से बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो को देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ रही है। वायरल वीडियो में एक नन्हा एशियाई हाथी फुटबॉल के साथ खेलता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात ये कि हाथी के इस बच्चे का जन्म महज 2 दिन पहले ही हुआ है। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल के साथ उसकी मासूम हरकतें लोगों का दिल जीत रही हैं। फुटबॉल फैंस के साथ साथ पशु प्रेमियों को भी तस्वीरें लुभा रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो वायरल है जिसे देख हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया है। कुछ लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तभी वहाँ एक गाय आ जाती है और फुटबॉल पर कब्जा जमा लेती है। युवक लाख कोशिशें करते हैं कि किसी तरह बॉल छीन लें, लेकिन गाय अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। गाय बिल्कुल किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पैरों से फुटबॉल को हल्का हल्का ड्रिबल करती दिख रही है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक युवक गाय के पैर के पास से फुटबॉल निकालने में सफल हो जाता है। कुछ देर तक मैदान में गाय और फुटबॉल के बीच ये लुका छिपी का खेल चलता रहता है और आखिर में बॉल दोबारा गाय के पास आ जाती है। यूजर्स गाय के गेम का खूब मजा ले रहे हैं। रील बनाने के चक्कर में एक लड़के ने नदी किनारे बैठे बंदर की नकल शुरू कर दी, लेकिन ये मजाक उसे भारी पड़ गया। शांत दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन ही पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।

0: आप जरा इस वायरल बंदर को देखिए। ये बंदर बड़ी सावधानी से साइकिल के पहिए से ट्यूब निकाल रहा है। उसके हाव भाव और काम करने का तौर तरीका देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस काम का पूरा एक्सपीरियंस हो। पास में मौजूद एक शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडियो किस जगह का है। जानवरों के मजेदार और प्यारे से वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों का दिल जीत ही लेते हैं। इन दिनों एक नन्हे हाथी का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल है, जिसे देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। देखिए कैसे ये छोटा हाथी पानी के टब में पूरी तरह मस्ती के मूड में है। कभी वो पानी में उछलता कूदता है तो कभी सिर के बल टब में गिर जाता है। उसकी शरारतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं, जिसे देखकर लोग खुश हो रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या आपकी कुंडली में शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
5: दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में NSG कमांडो ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे रंग। ₹27 करोड़ रुपए के ऋषभ पंत, 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे, 13.5 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल, दोनों टीमों के बीच हुआ ट्रेड। वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की 3 नंबर जर्सी, कहा खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं, आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर रवाना।

तेज गेंदबाज की आकाशदीप की शादी की रस्में शुरू, हल्दी मेहंदी का वीडियो वायरल, कल वाराणसी निकलेगी बारात। भारत वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग होगा मजबूत, वियतनाम के हो ची मिन सिटी पहुंचे भारतीय नौसेना के आईएनएस उदयगिरी तारागिरी।

श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज आठवें बड़ा मंगल का बड़ा जो महायोग बन रहा है उसकी आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि मंगल को जन्मे और मंगल ही करते, ऐसे हैं वीर हनुमान। आज बेहद ही पावन दिन है, आज ज्येष्ठ माह का अंतिम बड़ा मंगल है। ये तो हर मंगलवार वीर बजरंगी की पूजा का दिन माना जाता है, मगर बड़ा मंगल बेहद विशेष होता है। ज्येष्ठ मास के पावन अंतिम बड़े मंगल पर श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हनुमान जी की कृपा से आज का दिन विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। शुभ योगों और मंगलकारी संयोगों के बीच भक्त बजरंग बली के चरणों में अपनी आस्था अर्पित कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से भी आज का दिन कई राशियों के लिए उत्साह, ऊर्जा और सफलता का संदेश लेकर आया है। मंदिरों में दर्शन, भंडारों में सेवा और हनुमान चालीसा पाठ स्वर वातावरण को भक्तिमय बना रहा है। ये राम भक्त से सेवा का मर्म समझने का दिन है। ये वीर बजरंगी से भक्ति के गुण ग्रहण करने का दिन है। हनुमान जी मैनेजमेंट गुरु भी कहलाते हैं। जब जब जीवन में चुनौती आए, उनकी सिखाई सीख राह दिखाएगी। बस सच्ची निष्ठा और राम नाम का जाप करना जरूरी है। आज आठवां और अंतिम बड़ा मंगल पर देश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की

0: भारी भीड़ है, क्या दिल्ली और क्या लखनऊ, सभी शहरों में हनुमान जी के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त श्री राम जी के साथ बजरंग बली के जयकारे लगा रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सुंदरकांड की चौपाइयां गूंज रही है। अयोध्या में तो अलग ही रौनक है। एक तरफ रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की कतार, जबकि दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन को जाने वाले भक्तों की लाइन लगी है। हर तरफ आस्था और भक्ति के बयार बह रही है। सनातन संस्कृति में बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल का विशेष महत्व माना गया है।
1: ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान राम के वन में आने के बाद पहली बार हनुमान जी ने दर्शन किए थे, तो ऐसा माना जाता है कि बड़ा मंगलवार इसलिए, और बड़ा नाम या बुढ़वा नाम भी, कई जगह बड़े के लिए बुढ़वा भी कहते हैं ना, बड़े का अर्थ है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगल सारे बड़े मंगल कहलाते हैं। इस दिन हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी का पूजन करना और हनुमान जी के समक्ष श्री राम के चरित्र का गुणगान करना विशेष पुण्यदायी और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सुगम अवसर कहलाता है।
0: बड़ा मंगल पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। आज के दिन रामनगरी में हर ओर रामदूत की जय जयकार है। हनुमानगढ़ी में भक्त महाबली के दर्शन पूजन कर मनोकामना पूर्ति का वरदान मांग रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामदूत वीर हनुमान के दर्शन के लिए किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ यहां पर है। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए लोग तो उमड़ ही रहे हैं, लेकिन आज का दिन चूंकि विशेष है तो आज लंबी लंबी कतारों में रामदूत हनुमान के दर्शन के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त फूल माला लिए बजरंग बली को चढ़ावा चढ़ाने पहुंच रहे हैं।
2: आज हम लोग का दर्शन अच्छे से हो गया है। बजरंग बली का भीड़ बहुत काफी थी।
3: हम लोग 3 बजे भोर में आ गए। भीड़ की तो आप बात कर रहे हैं शिवाजी, भीड़ इतनी ज्यादा है, अपार भीड़ है। लगभग 1-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और सबकी श्रद्धा है, हनुमान जी सबकी सुनते हैं।
4: बड़ा मंगलवार का 8वां मंगलवार है और आराम से भगवान के दर्शन हो गए हैं, बाकायदे जैसे होना चाहिए।
5: दर्शन करने में बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया है। हाँ भीड़ है पर हाँ आने में ठीक लग, बढ़िया लग रहा है। हाँ दर्शन हो गया, बढ़िया से हो गए।
0: आपको बता दें कि बड़ा मंगल पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का विशेष अभिषेक हुआ। भव्य भस्म आरती यहां पर हुई। भगवान शंकर का अवतार हनुमान जी को माना जाता है। बड़ी संख्या में भक्त अभिषेक में शामिल हुए। जय महाकाल के जयकारों से पूरा महाकालेश्वर धाम गूंजता नजर आया। यहां पर भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। विशेष करके भस्म आरती में शामिल होने के लिए हजारों हजार श्रद्धालु रात से ही इंतजार करते हैं और आज का दिन चूंकि विशेष है, उज्जैन में महाकाल के दर्शन और महाकाल का ही एक रूप बजरंग बली को चूंकि माना जाता है, तो इसलिए भी आज का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भव्य भस्म आरती के बाद तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जब भस्म आरती संपन्न हुई तो महाकाल की ये विशेष आरती उतारी गई। आज का दिन कई मायनों में अहम है, खास है, कई दुर्लभ योग आज के दिन बन रहे हैं। ऐसे में सुबह से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए भगवान के पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी सच्चे मन से पवन पुत्र हनुमान जी का दर्शन पूजन करता है उसके तमाम रोग दोष मिट जाते हैं और सभी मनोकामना पूरी हो जाती है।
1: ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी ने राम जी के दर्शन किए थे वन में भटकते हुए और उनका परीक्षा भी यही ली थी ब्राह्मण रूप बन के, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के चरण उन्होंने अपने अश्रुओं से ही धोए थे। तब भगवान राम ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति आज के दिन आपके दर्शन करेगा, सभी ग्रह गोचर, सभी नक्षत्रों, किसी भी प्रकार से शत्रुओं से होने वाले भय को समाप्त कर लेगा, आशीर्वाद आपका प्राप्त कर लेगा।
0: तो आज का दिन कितना शुभ है ये आपने जान ही लिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दे। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कथावाचक। आचार्य जी, सबसे पहले आचार्य जी को दिखाया जाए, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी का। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं। श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि ज्योतिष आचार्य है। श्रुति जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वाणी आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य। वाण्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य पंडित संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वाण्या जी, आपके पास आते हुए, साल का आखिरी बड़ा मंगल, आठवां बड़ा मंगल इसे कहते हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बार बेहद दुर्लभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं। सबसे पहले तो इन संयोगों के बारे में हम जानना चाहेंगे।
6: धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है और आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बड़े आठवां बड़ा मंगल है, जो बड़ा मंगलवार है, जो कि आखिरी है। तो ये दिन इतना ज्यादा स्पेशल है कि अगर आपने सात बड़े मंगलवार को जो है हनुमान जी के दर्शन नहीं करे हैं, तो इस बड़े मंगलवार को आप जरूर जो है उनके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। इसके बाद और मंगलवार तो आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आपको वैसे मौका नहीं मिलेगा बड़े मंगलवार का। कहते हैं इस दिन जो भी आप हनुमान जी से मांगते हैं, आज के दिन अगर आप उनको गुड़ चने का भोग लगाते हैं, और सबसे अच्छा भोग अगर आप चूरमे का लड्डू अपने घर में खुद बनाते हैं, मीठे चूरमे का लड्डू, तो बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आज जो है शाम के टाइम पर चित्रा नक्षत्र है, और जो है आपका ज्येष्ठ की नवमी तिथि भी है। नवमी होता है कंप्लीशन का जो दिन होता है, वो नवम दिन होता है। अब न्यूमरोलॉजी में भी 9 नंबर कंप्लीशन का है, और 9 नंबर है भी हनुमान जी का ही नंबर है, तो मार्स का ही जो है ये नंबर है। तो आज के दिन आपकी कुंडली में अगर किसी भी कारणवश मंगल अच्छे नहीं है, तो भी जो है आप जो है आज जरूर आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। किसी गरीब को आज आप खाना खिला दीजिए, और आज के दिन आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आज के दिन जो है अगर आप मंगल का आपने व्रत रखा हुआ है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी रखा हुआ तो भी आज के दिन आप जितना काम रहते हैं उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो उससे भी जो है हमारा मंगल बहुत ज्यादा खराब होता है। हनुमान जी के आगे चमेली का दीपक जलाएं, पीपल पर जो है आप जो है श्री राम लिख के जो है कुमकुम से 108 पीपल के पत्तों की आप माला, या फिर 11 या फिर 21, वो आप हनुमान जी के आगे चढ़ाएं। और आज के दिन जब आप मंदिर जाते हैं, तो आपकी जो भी विश है, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आप हनुमान जी से मांगना चाहते हो, आज के दिन वो विश जो है आप हनुमान जी से जरूर बोल के आइए। और इसके अलावा 7 बार जो है आज हनुमान चालीसा का पाठ जो है वहां बैठ के करके आइए, हनुमान अष्टकम का पाठ और बजरंग बाण का आज पाठ करें, और सच्चे मन से जो भी आपकी लाइफ की विश है वो आज आप जरूर मांगे। अगर आपको लाइफ में डर लगता है तो आप अपने फियर्स के लिए मांगे, क्योंकि क्लियर हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो जो भी महावीर का नाम लेते हैं उनके लिए भूत पिशाच उनके निकट बिल्कुल भी नहीं आते।
0: बिल्कुल, ये तो हम हमेशा से जानते हैं कि भाई जब भी डर हो, जब भी किसी तरह का भय हो, तो बजरंग बली का नाम ले लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए, तो सारी जो नेगेटिविटी है आपके आसपास वो भी दूर हो जाएगी, कोई बुराई आपको छू तक नहीं पाएगी। श्रुति जी ये बताइए, लेकिन चूंकि आज दिन के हम विशेष करके बात कर रहे हैं, और जैसे कि वाण्या जी ने भी कहा कि वैसे तो हर मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत खास है, तो श्रुति जी ये बताइए कि आज के दिन ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य और मंगल का भी संयोग बन रहा है, और इसको लेकर भक्त जो आज सुबह से ही बजरंग बली के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन्हें विशेष कृपा की प्राप्ति आज हो सकती है।
7: बिल्कुल श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल मेरे आगे लाने के लिए, और दर्शकों को इस बारे में बहुत कुछ पता लगना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की कृपा है। देखें, यूं तो हनुमान जयंती का बहुत महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास का मंगल जो है, ज्येष्ठ यानी बड़ा मंगल, हम इसलिए कहते हैं ना क्योंकि बड़ा भाई को कहा जाता है। अब ग्रह संयोग अगर आज के दिन हम देख लें तो वह इतने शुभ है, क्योंकि शुभ ग्रह ज्योतिष में होते हैं बुध गुरु शुक्र, जो कि प्रॉपर्टी की राशि या भूमि की राशि आप जिसको कहें वो कर्क राशि होती है, वहां पे विराजमान है फिलहाल। और जो मंगल स्वयं है उसकी सप्तम दृष्टि, हालांकि ज्येष्ठ नक्षत्र पे हम कह सकते हैं, लेकिन वो वेल्थ एक्यूमुलेशन की राशि में बैठे हैं। और सूर्य जो है वो ऐसी राशि में बैठे हैं जिसको मिथुन राशि कहते हैं, जो सिचुएशन को, आपके हालातों को पलट दे। तो जिन लोगों के लिए ये बहुत फेवरेबल है वो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है किसी ना किसी प्रकार से वेल्थ एक्यूमुलेशन, कोई बोनस, कोई रुका हुआ पेमेंट, उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से आता हुआ दिखता है। बहुत लोगों के लिए ट्रैवल बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आज के दिन जो भी वो किया हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लोग किसी रोग से, शारीरिक कष्ट से या भय से, क्योंकि राहु की स्थिति भी अगर हम आज के दिन देखें तो वो देखते हुए अकारक भय जो होता है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना अच्छा दिन कभी नहीं मिलता कि ग्रहों का भी जो संयोग है वो बहुत अनुकूल हो, कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ग्रह की ऊर्जा भी है और ईश्वर की दया भी है, वो दोनों साथ मिले। इसलिए शाम को अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं, व्रत नहीं भी कर पाए हैं, तो शाम को 7:30 बजे 7:22 से लेकर 8:35 तक का ये समय जो है बहुत उत्तम मुहूर्त है, आप मंदिर जरूर जाएं, चमेली का तेल और सिंदूर उनको अर्पित करें, अग्नि तत्व का जो है ये भोग होता है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही पंचमुखी हनुमान जी को दक्षिण दिशा में उनको स्थापित कर सकते हैं, दक्षिण दिशा में एक दीप जला सकते हैं उनके नाम का, वरना हनुमान चालीसा का पाठ जैसे भी आपकी क्षमता हो वो जरूर करें, हनुमान जी की आरती जो है शाम के समय जरूर करें। किसी भी प्रकार के भय से और अकारक जो शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, उनसे आपको निजात मिलेगा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई श्रुति जी। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ज्योतिषीय एंगल से तो हम समझ रहे हैं कि आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या संयोग या योग बन रहे हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तौर पर समझना चाहें आज के दिन को, तो आध्यात्मिक महत्व इसका क्या है?
8: बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, समस्त दर्शकों को भी जय श्री राम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्क्रीन पर पहले भी चला था कि आज के दिन ही किष्किंधा की घाटी में हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था। स्पष्ट तौर पर है, एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी महाराज आए थे और भगवान राम को देख करके पहले शक पैदा हुआ कि सर्वभूषण भूषारसा किमर्थम न विभूषते। दे राम जी को देखकर, लक्ष्मण जी को देखकर के कहा कि आपके शरीर में जो चित्र अंकित हैं, जो चिन्ह बने हुए हैं, वो किसी राजकुमार के हैं, क्योंकि मुकुट का चिन्ह दिखाई पड़ रहा पर मुकुट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाजू बंद के चिन्ह है पर बाजू बंद नहीं दिखाई पड़ रहा है, कवच का चिन्ह है, हृदय में हार का चिन्ह है पर हार नहीं दिखाई पड़ रहा, अब सन्यासी का वेश बना के चल रहे हैं, आपका परिचय क्या है? और राम जी ने अपना परिचय उस समय दिया कि हम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, प्रभु पहचान परयोग कप चरणा सो सुखोमा जाई नहीं वरना। अपना परिचय तो दिया नहीं, ब्राह्मण के रूप में थे फिर चरणों में गिर गए, तब भगवान ने कहा कि आप ब्राह्मण होकर के चरण में क्यों गिर रहे हैं, तो अपने रूप में आए और एक मिनट पहचान लिया कि आप कौन हो, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप साक्षात प्रकट हुए हैं। पहचाना कैसे, तो आप थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि महाकाल भी हनुमान जी के ही अवतार हैं। उर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेष लग्ने अंजनी गर्भात प्रादुर्भूतो शिवा स्वयं। शंकर भगवान ही आए थे और शंकर भगवान ने ही देवताओं को बताया था, हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। और उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, हम दशरथ कौशल्या के हैं अवतरित होंगे, तो पहचान लिया मेरे आराध्य देव भगवान है, परस्पर यहाँ पर मिले थे अपने स्वामी से हनुमान जी, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, भगवान राम कौन है? भगवान राम का परिचय है कि रामो राष्ट्र से सर्वस्वम, रामो राष्ट्र से देवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्र से मंगलम। भगवान राम ही मंगल स्वरूप हैं और उस चौपाई को तो सभी लोग गाते हैं, सभी सनातनी लोग जानते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान राम मंगल भवन है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी स्वयं भी मंगल मूर्त मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन है। आज के दिन का महिमा क्यों इतनी न हो, आज ऐसे महापुरुष का, ऐसे भगवान का, ऐसे स्वामी का दिन है। हम अयोध्या वासियों के लिए तो कुछ कहना इसलिए ज्यादा ठीक नहीं कि आप स्वयं भी जानती हैं, हमारे अयोध्या के राजा तो स्वयं श्री हनुमंत लाल जी महाराज ही हैं। बड़े पुत्र लवकुश है, बड़े पुत्र ऐसे लवकुश दो पुत्र हैं, पर सीता माता जी ने जो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है कि हनुमान जी अजर हैं, अमर हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, इस वर को देने वाला कोई और नहीं था, ये अजर अमर गुण निधियों के खान अष्ट सिद्धियों के दाता, ऐसा वरदान देने वाली जनक नंदनी हमारी किशोरी माता जी ही थी, उन्होंने ही दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हाँ, अजर अमर गुणित करो बहुत रघुनायक छो। मुझको लगता है श्वेता जी कि किसी प्रकार का, चाहे दैविक दैविक दैविक दैविक भौतिक त्रेताप वाले हों, चाहे भूत प्रेत झाड़ने फूकने वाले भूत हों, किसी प्रकार से किसी को निर्भयता चाहिए तो हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। और आज के दिन का विशेष महत्व सभी ज्योतिषी लोग बता ही रहे हैं, और बिना मैं तो कहता हूं भगवान की भक्ति भी किसी को चाहिए, इस बात को संदेश सबको जाना चाहिए, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे हो तो नज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी कृपा जी के कोई राम जी तक पहुंचेगा नहीं, राम जी का दर्शन नहीं कर पाएगा, और उनकी कृपा के बिना राम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता।
0: बहुत बड़ी आपने बात कही,
8: इसलिए हर व्यक्ति
0: महाराज जी आपने बहुत बड़ी बात कही कि भक्ति भी करने के लिए आपको प्रेरणा चाहिए, और वो प्रेरणा हनुमान जी देते हैं। श्री राम की भी अगर आपको भक्ति करनी है तो हनुमान जी की जब तक प्रेरणा नहीं होगी, उनका आशीर्वाद नहीं होगा, तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा दिन है। संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आज के दिन को चूंकि हम समझ रहे हैं, और सुबह से आप देखिए तस्वीरें भी लगातार गुड न्यूज टूडे पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश में जहां जहां हनुमान मंदिर है, प्रयागराज की हमने तस्वीर दिखाई, हमने और भी जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं, अयोध्या की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उज्जैन में भी पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से यहां पर भक्त जो है पहुंच रहे हैं। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आज के दिन क्या कोई विशेष राशि है, विशेष राशि वाले जातक हैं जिनको विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है, अगर आप बता पाएं।
9: जी देखो, आज का जो दिन है सभी को जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। आज का दिन ऐसा दिन है, और कहते हैं मंगल मंगल करने वाले हैं, तो जीवन के अंदर मंगल जो है मंगल करते हैं, और कहा जाता है जा पर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी कृपा कर देते हैं। तो आज हनुमान जी का बुढ़वा मंगल का दिन है, तो किसी विशेष राशि की तो बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि सभी राशियों सभी नक्षत्रों के ऊपर इसका शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात, क्योंकि बड़े मंगल की बात कर रहे हैं, बुढ़वा मंगल की बात कर रहे हैं, तो बड़ा दिन आज का दिन भी अगर आप देखें तो आप देखें 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन कहलाता है, और उस दिन जो है सूर्य नारायण देव जो है 13 घंटे के करीब, घंटे 11 मिनट और 4 या 5 सेकंड के करीब जो है बड़ा दिन हो जाता है। तो सूर्य भी जो है उस दिन जो है बड़े रूप में होते हैं और बड़े दिन का अनुमान होता है, और आज का दिन जो है बड़ा ही शुभकारी है, क्योंकि मंगल जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में, तो कृतिका नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र, आज जो है परिधान योग भी बन रहा है, परिध योग भी बन रहा है, सौम्य योग भी बन रहा है। अभी जैसे कहा कि आज के दिन सौम्य रहने की बात की, बहुत सुंदर बात की, क्योंकि सौम्य युग में अगर आप सौम्य रहते हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट कुछ नहीं होता, कहते हैं कि जिस प्रकार से निर्मल जल होता है उसी प्रकार से आप अपने जीवन में निर्मल हो जाते हैं, और काम क्रोध मद लोभ सब चीजों को त्याग करके, और भगवान के भक्ति का दिन है, क्योंकि जिस प्रकार से कहते हैं कि भगवान राम का जो मिलन हुआ हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी भी जो है और राम जी भी दोनों सब कुछ भूल गए और एक साथ जो है गले मिले और उनकी मदद करने के लिए तत्पर हुए। तो आज का दिन एक ऐसा दिन है जो सभी राशियों सभी नक्षत्रों के ऊपर बड़ा ही शुभ फल देने वाला है। खास तौर से जिनकी मेष और वृश्चिक राशि है उनको आज के दिन जो है ज्यादा भक्ति भाव करना चाहिए, क्योंकि इनके ईष्ट हनुमान है। जो जल तत्व राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, इनको ज्यादा प्रभाव अच्छा रहता है। तो ये ग्रहों की राशियों की बात करें तो सभी राशियों के लिए जो है भगवान राम और हनुमान जी जो है कृपा करने वाले हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता। तो कहते हैं कि उनकी जो सिद्धियां है अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राण्य प्राकृत, ये जो सिद्धियां हैं उनकी, उन सिद्धियों से हमें धारण करना चाहिए अणिमा महिमा, क्योंकि जैसे सूक्ष्म रूप से अणु से जो है बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, जिस जगह जिस चीज की आवश्यकता है वैसे बन जाते हैं हनुमान जी, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में वैसा ही बनना है, और भक्ति श्रद्धा और विश्वास परमात्मा के प्रति रखना है और उसी रूप में चलना है, भगवान के गुणों को जो हम धारण करें। कहते हैं कि जो भगवान के गुण है, भगवान का जो गण है वही गुण है,
0: उसको धारण आज के दिन करना चाहिए। बिल्कुल, और विशेष फल की बात की जा रही है आज के दिन। वाणिया जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि आज के दिन विशेष करके जो भक्त जाता है मंदिर में जाता है, आमतौर पर मुझे लगता है कि बहुत ही सरल हृदय से लोग वहां पर पहुंचते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे में क्या कोई विशेष तरीका है पूजा पाठ करने का या कर्म कांड, और जिन्हें नहीं आता है तो वो आज के दिन क्या करें, चाहे वो मंदिर हो या फिर घर?
6: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है श्वेता जी, और मैं भी आप ही की बात को मानती हूँ कि ईश्वर जो है वो हमारी इंटेंशंस को हमेशा देखते हैं, हमारी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो आज के दिन आप थोड़ा सा बूंदी का भोग या फिर लड्डू का भोग अगर आप लेके जाते हैं हनुमान जी के मंदिर, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा शुभ है।
7: अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल गुड़ चना जो है वो आप गुड़ चना लेके जाइए, और आज के दिन अगर आप पहन सकते हैं तो हनुमान जी के कुछ सिंदूर का कलर जो कि एक ऑरेंजिश कलर होता है, या फिर थोड़ा सा रेडिश फैमिली लाल फैमिली से जो है आप कुछ भी इस तरह के कलर्स जो है वो आप पहन सकते हैं। आज के दिन आप कुछ भी लाल दान जो है वो भी कर सकते हैं, आप मसूर की दाल का दान कर दें, लाल वस्त्रों को दान कर दें, और मजदूरों को जो है आज आपके दिन कुछ खिला दें। और वहां पर जब आप जाते हैं तो आप सिंपल आसन लीजिए, आसन पर बैठिए, चमेली के तेल का दिया जलाइए, अगर आप एक गुलाब की माला अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पीपल की माला जो है और आप उसको कलावे में माला को बांधिए, पीपल के एक एक पत्ते पर आपने कुमकुम से श्री राम लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जी को चोला जो है मेल स्पेशली, और जो फीमेल है आप पंडित जी को बोल सकते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, आप हनुमान जी को चोला जो है जरूर चढ़ाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी कोई भी विश है तो ये एक रेमेडी है कि जहां पर आप सीता माता से कहते हैं कि आपको जो भी गुहार हनुमान जी से लगानी है उसका रूट वाया सीता माता है, तो वो आप सीता माता को बोलिए कि हनुमान जी को वो कहें कि मेरी ये विश जो है वो पूरी कर दे, तो कहते हैं कि बहुत जल्दी उस चीज की जो है सुनवाई होती है। उसके अलावा आप जब मंदिर में जाते हैं आपकी जो भी विश है पहले आप थोड़ा सा संकल्प ले, उसके बाद आपकी जो भी विश है वो आप मांगे, और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टकम का पाठ करें। अदरवाइज वेरी सिंपल, आप ओम क्राम क्रीम क्रोम साह भौमाय नमा का जाप कर सकते हैं, ओम अंग अंग काराय नमा का जो है वो आप जाप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमा का बिल्कुल सिंपल जो है आप जाप कर सकते हैं। देखिए जब आप मंगल को बैलेंस करते हैं ना अपनी लाइफ में तो आपका फायर एलिमेंट भी बैलेंस हो जाता है, आपकी एसिडिटी लेवल्स कम हो जाते हैं, आपकी डाइजेशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं अपनी चीजों पे, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और हनुमान जी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमें विल पावर सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस सिखाते हैं, भय से मुक्ति सिखाते हैं, और हनुमान जी की जो भी आराधना करते हैं उन पर कोई साइकिक अटैक्स कोई नजर,
0: बिल्कुल ये बहुत ही बेहद सरल उपाय है जो कि वान्या जी ने बताया। इसको करने से जाहिर सी बात है जितने भी इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं वो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें जरूर इसका लाभ मिलेगा। चंद्रांशु जी महाराज आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि ये जो पूजा पाठ की हम बात कर रहे हैं, कर्म कांड की बात कर रहे हैं, तो क्या एक सरल सवाल है आपसे भी कि क्या सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है या फिर सेवा और कर्म करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है?
8: पूजा है, कहीं पर लिखा देखा है 2 घंटा बैठ करके माला जपना या आराधना करना अति उत्तम बात है, पर जहां भी लिखा मिला होगा कर्म ही पूजा है, सेवा ही पूजा है, और नर सेवा नारायण सेवा है, ऐसे स्लोगन तमाम मिलते हैं। हनुमान जी के जीवन में भी देखेंगे कि अतुलित बलधाम हम स्वर्ण शैला भदे हम धनुज बन कृष्णम ज्ञानी नाम अग्र गणनीयम है, इतना सब कुछ होने के बाद में हनुमान जी से इससे बड़े अच्छी बात कोई कौन क्या सिखा सकता है कि इतनी ताकत होने के बाद में भी एक मुक्का से तो रावण के छक्के छूट गए, माता जी का धन्यवाद देने लगा अंजनी माता जी का, राम जी के इनके हनुमान जी के पुरुषार्थ का धन्यवाद देने लगा, एक मुटका में विचलित कर दिया। शक्ति हमारे पास आए उस शक्ति का हम सदुपयोग अच्छे काम में लगाएं। ज्यादातर क्या होता है शक्ति परेशाए पर पीड़न आए, ताकत लोगों के पास आती दुरुपयोग करने लगते हैं। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि शक्ति आए तो संयम बरत करके अच्छे कामों में शक्ति का कैसे उपयोग करें। सबको करते हैं स्वयं, इतना बड़ा काम क्या सीता खोज करके लेके आए, राम जी उनकी प्रशंसा करने लगे, उन्होंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं, इतने निराभिमानी कह रहे हैं सो सब तब प्रताप रघुराई, आपके प्रताप के बल पर सब कुछ हो गया। तो सब कुछ करने के बाद में भी अहंकार शून्य हो करके सेवा धर्म को सबसे समझे तो निश्चित तौर पर, और भगवान के बारे में ईश्वर के बारे में तो एक जगजाहिर स्लोगन श्लोक है सब लोग जानते हैं कि भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेक्षति, आप पत्र पुष्प अक्षत कुछ भी चढ़ाए कुछ भी नहीं है तो मानसिक पूजा के भी हमारे यहाँ बड़ा विधान है, मानसिक पूजा कर दे पर आप उसमें भाव लेकर के रखिए, क्योंकि भाव नहीं है आप अहंकार युक्त होकर के वस्तु को दे रहे हैं तो ऐसे फिर पूजा को ऐसे भावना को माला तो जप रहे हैं पर हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं मेरे जैसा कोई नहीं है ऐसी अहंकार भरी अगर कोई बात है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को ना भगवान स्वीकार करते हनुमान जी स्वीकार करते हैं ना उसका आदर कर उसकी बात को सुनते हैं। आप निरहंकार होकर के आप जाइए प्रेम से हनुमान जी के दरबार पर हाजिरी लगाइए, और हमारे पास भी तमाम फोन आते हैं हमारे यहाँ तो जग जाहिर है कि हनुमान जी के चाहे कुछ लोग लगोट मांगते हैं कुछ लोग सिंदूर मांगते हैं और वो मिलने के बाद उनके सारे दुख दूर होते हैं। तो निश्चित तौर पर श्वेता जी हनुमान जी सीखना चाहिए विनम्रता जीवन में।
0: बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि देखिए हमारे यहाँ निस्वार्थ भाव से और सच्चे मन से अगर प्रभु का स्मरण किया जाए तो उतना ही काफी होता है। और आज के दिन विशेष करके हनुमान जी से हम क्या कुछ और सीख सकते हैं, ये भी जितने भी गुणीजन हैं उनसे हम आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
10: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
11: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
10: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
11: They score!
10: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: बड़े मंगल का महायोग, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम ज्योतिष आचार्य और धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे आपका एक बार हम फिर से परिचय करा देते हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ ज्योतिष आचार्य हमारे साथ, वाणी आर्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, श्रुति खरबंदा जी हैं और साथ ही साथ संजय शर्मा जी बने हुए हैं। श्रुति जी, आपके पास आते हुए एक बार फिर से, अभी हम जो वाणी जी से बात कर रहे थे, आचार्य चंद्रांशु जी भी कह रहे थे इसी बात को कि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सनातन में जब भी हमारी चर्चा हुई है कि भाव सर्वोपरि है। जैसा हमारा भाव होता है उसी के अनुकूल हम सब करते हैं और प्रभु की कृपा भी उसी हिसाब से हमें मिलती है। तो आज के दिन की हम बात करें तो विशेष करके पूजा पाठ तो अपनी जगह है, लेकिन दान पुण्य का भी आज कहते हैं कि विशेष महत्व है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, दान पुण्य का विशेष महत्व तो है ही, और खास तौर पे वो तब और भी ज्यादा जो है उसकी अहमियत बढ़ जाती है अगर मंगल जो है वो वृषभ राशि से गोचर कर रहे हो। वृषभ राशि जो आपके खान पान और वाणी की राशि होती है, लेकिन कई कई लोगों को सेहत की समस्या भी दे सकती है। तो जिन भी लोगों के लिए मंगल का जो फल है वो प्रतिकूल है, यानी कि अनुकूल नहीं है, चोट या बुखार वगैरह इस तरह से चीजें आ जाती है, मुझे लगता है उन लोगों को तो खास तौर पर जिनको कष्ट आ रहे हैं, करियर में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, खाने की चीजें जो है आज के दिन शाम को कुछ भी थोड़ा सा हलवा बना लें या जो भी आप अपनी क्षमता अनुसार एक कदम आगे जाके बना सकते हैं वो थोड़ा सा भोग उनके लिए केसर के लड्डू हों या जो भी सरलता से आप उपलब्ध कर पाए। क्योंकि देखिए, मेरे पास यही फिलहाल मुझे जो है याद आ रहा है, लेकिन अगर आप एक फल भी लाल रंग का कोई सेब या कोई ऐसा फल भी अगर आप अलग कर देंगे और बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, गुड़ चना जो है वो उसमें थोड़ा सा एक केसर का जो है स्ट्रिंग डाल के अगर आप अलग कर देंगे तो ये भी उतना ही जो है अनुकूल है। साथ ही साथ अगर आप कॉपर के लोटे में, तांबे के लोटे में अगर जल से जो है उनका अभिषेक करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा जो है, ये दान के लिहाज से बहुत अच्छा ये माना जा सकता है। साथ ही जो अभी महाराज जी चंद्राचार्य महाराज जी बता भी रहे थे कि देखें कितना महत्व है साहस का और मेहनत का, कर्म का जो है कितना जो यहाँ पे है महत्ता है, उसके लिए मैं एक छोटी सी, अगर आप मुझे समय दें 3 से 4 सेकंड का या 10 सेकंड का, तो मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि मैं अभी हनुमान जी के एक बहुत बड़े और एक बहुत अनोखे अतरंगी अनूठे मंदिर से होकर दर्शन कर आई हूँ, जो कि है बेट द्वारका में। बेट द्वारका एक द्वीप है, जो द्वारका से आगे जाके एक द्वीप है, वहां पे हनुमान जी विराजमान है अपने सुपुत्र के साथ। देखिए, वैसे तो वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके पसीने की बूंद से जो है मकर ध्वज जी की उत्पत्ति हुई, उनके पुत्र का नाम भी मकर ध्वज है। अब होता क्या है कि जैसा आपका मन वैसी आपकी भावना, आप जाते हैं तो आप तुरंत एकदम ज्योतिष के उसे आप मैपिंग करने शुरू वहां पे हो जाते हैं। तो देखिए, मकर ध्वज जो मकर राशि है वहीं पर मंगल का ध्वज लगता है। मंगल यानी पराक्रम, आपका साहस, आपकी मेहनत, प्रभाव जो है आपकी। देखिए, ताकत दो तरीके से होती है, या तो एफ्लुएंस होता है, वेल्थ होती है, जिसलिए हम कहते हैं कि भूमि के देवता मंगल को कहा जाता है कि जिसके पास जितनी भूमि है वो जो है बहुत एफ्लुएंट होता है। तो इस तरह का जब हम देखते हैं कि चीजें एनर्जीज कैसे काम करती हैं, तो आज का दिन जो है वो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हनुमान जी की आप जितनी पूजा करें, उनसे आराधना करें कि वो आपके जीवन के जो है कष्ट हर लें। और इस तरह के अनोखे मंदिर जरूर जाया करें, आप दर्शन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग वहां पर आते हैं।
0: बिल्कुल, आपने जिस मंदिर की बात की है श्रुति जी, भेट द्वारका, उसके बारे में मुझे लगता है कि जितने भी सनातनी हैं लगभग वो सभी जानते हैं, और जो लोग नहीं गए हैं वो जरूर जाना चाहते हैं। वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वहां दूर दूर से लोग पूरे भक्ति भाव के साथ आते हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए आज के दिन की महिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज के दिन विशेष करके किस तरह से फल भक्तों को मिलते हैं अगर प्रभु का स्मरण किया जाए उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर आज के दिन की पूजा की हम बात करें तो आज विशेष करके प्रभु की पूजा करने से, बजरंगबली की पूजा करने से, क्या राहु केतु और विशेष करके शनि के जो दुष्प्रभाव हैं एक तरह से वो भी कम होते हैं?
2: जी बिल्कुल, कहा जाता है कि जो मंगल की पूजा करते हैं, मंगल के दिन हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग पाठ करते हैं, संकट मोचन का पाठ करते हैं, उसके ऊपर जो है शनि कभी भी प्रभावी नहीं होता। पहले जमाने में क्या है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए मंगल की ही पूजा की जाती थी, बाद में अभी शनि धाम वगैरह बहुत सारे हो गए, परंतु मंगल की पूजा करने से किसी भी प्रकार का रोग कष्ट आदि व्याधि, ग्रहों की व्याधि, किसी प्रकार का कष्ट जो है नहीं आता। राम राम जब कहते हैं तो माला कर लेते हैं हम, 154 चौवन दो बार बोलते हैं, तो उसी प्रकार से जय हनुमान भी अगर आप कहते रहें तो आपके जीवन में शुभता आती जाती है। और भगवान की कृपा जब ही होती है जब आप पूरे सच्चे मन और श्रद्धा और विश्वास से जो भगवान का पूजन करते हैं, और कहते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा। आपने बड़ी सुंदर बात कही थोड़ी देर पहले कि सभी रोगों को
0: संजय जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है।
2: भगवान
0: जी संजय जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे उसे ठीक करवाने की। आचार्य जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर आज के दिन की हम बात करें, देखिए तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बालक लेकर लोग पहुंच रहे हैं मंदिर में, और ये हमारे संस्कार हैं। शुरू से ही माता पिता जो है अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, पूजा पाठ वो करते हैं, और बच्चे शुरू से ही जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो वो संस्कार उनमें डलता है। आज की युवा पीढ़ी को खास करके आपके हिसाब से क्या लगता है कि हनुमान जी से या फिर बजरंग बली से सीखने की आवश्यकता है, वो क्या ले सकते हैं उनसे?
3: पूरे सबसे बच्चे मेरे पास जितने बच्चे आते हैं और लोग कहते हैं कि याद नहीं होता, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आप 5 मिनट का भी नहीं लगता, 2 मिनट में आराम से पूरा हो जाता। आप हनुमान चालीसा का पाठ हर नव युवक को करना चाहिए, क्योंकि उसमें वर्णन है ना, बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। क्लेश भी दूर होते हैं, बल भी मिलती है, विद्या भी मिलती है, बुद्धि मिलती है। एक हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी कृपा से व्यक्ति को सब मिल जाता है। इसलिए जितने भी नवयुवक हैं उनको हनुमान चालीसा कंठस्थ होना चाहिए और जरूर ही पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हनुमान जी के सामने इस बात को दर्शकों को जाना चाहिए श्वेता जी, कि लोगों को हमेशा ही भगवान के सामने जाकर के एक जो भगवान राम की स्टोरी अच्छी लगती हो, कथा अच्छी लगती हो, वह जाकर के आप सुनाइए। जो भी भगवान राम जी के सामने, हनुमान जी के सामने जाकर राम जी कथा सुनाता है ना, हनुमान जी उसके ऊपर इतना प्रसन्न होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी के रोमांच, उनके एक एक रोए खड़े हो जाते हैं राम कथा सुन करके, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगती है हनुमान जी से, और इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं, उनके लिए क्या न कर दें, इतनी खुशी हनुमान जी महाराज जी को मिलती है। तो जो भी अच्छा लगे वो जाए हनुमान जी के मंदिर में, और राम जी का छोटा छोटा जो भी प्रसंग अच्छा लगे, राम जी कथा सुनाए, उससे हनुमान जी कृपा निश्चित तौर पर होगी। और हमको लगता है हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ही शिक्षा प्रद है, शिक्षा देने वाला है। नवयुवकों को जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से आजकल व्यायाम पर जाल चल रहे हैं, तमाम चल रहा है, हनुमान जी हमारे देखने में लगते हैं खड़े होने पर। तो नवयुवकों को प्रेरणा देने के लिए हमारे हनुमान जी बिल्कुल ताकत के साथ विनम्रता के का संदेश दे रहे हैं, तो ऐसा बढ़कर किससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
0: और उनसे
3: बिल्कुल सही
0: बड़ा
3: कह रही हैं।
0: सेवा भाव जो है वो और हम किस भगवान में देखते हैं? हमारे यहाँ तो हालांकि कई भगवान हैं, लेकिन हनुमान जी की बात करें तो जो सेवा भाव उनमें हमने देखा है, वो उनसे अगर हम थोड़ा सा भी सीख ले, जान ले, और संयम बरतना अगर हम सीख ले, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी महाराज जी,
3: राम जी से बड़ा कोई वीर नहीं है। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणा। हनुमान जी सोचा इतने बड़े वीर को ताकत के बल पर नहीं जीत सकते, तो सेवा के बल पर ही सुमिर पवन सुत सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। सेवा के बल पर भी हनुमान जी ने राम जी को जीत लिया, और राम जी को कहना पड़ा कि हम आपके ऋणी हैं हनुमान जी, आप मुझसे पत्र लिखवा लो, क्योंकि जो उपकार आपने मेरे ऊपर किया है उस उपकार को करवाने के लिए आपका विवाह करवाना, फिर पत्नी का हरण करवाना, फिर भाई को शक्ति, ये सब नहीं हो पाएगा, मैं ऋणी रहूंगा। तो हनुमान जी जो राम जी को जीते वो सेवा के भाव पर जीते, उनके नाम सुमिरन के भाव पर जीते, ताकत पर जीते। तो निश्चित तौर पर यही मूल मंत्र है कि व्यक्ति सेवा के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो आलसी व्यक्ति होता है वो हमेशा जब भी दोष देता है वो केवल कर्म पर भगवान को दोष लगाता रहा मरता रहता है। पुरुषार्थी व्यक्ति हनुमान जी से शिक्षा लेता है, प्रेरणा लेता है, आगे जाकर के लंका जैसे गढ़ में, इतना बड़ा वीर के गढ़ में घुस करके सीता जी का खोज करके लाता है, क्योंकि उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, और उनके प्रति समर्पण है। इसलिए हनुमान जी का आज चर्चा जगह जगह पर होती है, उनके सेवा भाव की चर्चा होती है, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की चर्चा होती है। और एक चीज और भी है, शास्त्र सम्मत नहीं है किसी के घर में घुस जाना, किसी का समुद्र लंघन करना, कटि प्रदेश जल तक है, किसी नदी का लंघन नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। सोते हुए किसी घर में मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, ये सब नहीं है। पर लक्ष्य अगर पवित्र है, थोड़ा टेढ़ा भी रास्ता चलना पड़े, पर लक्ष्य के लिए, प्राप्ति के लिए अगर कुछ उल्टा पलटा भी थोड़ा चलना पड़े, तो व्यक्ति को चलना चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। हनुमान जी ने यह बात सिद्ध किया है, हनुमान जी ने दिखाया सीता जी खोज के संदर्भ में। इसलिए नवयुवकों को हर समय हनुमान जी से प्रेरणा लेना चाहिए और हर समय उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए। हनुमान नाटक है, अन्य है, उनको पढ़ करके देखना चाहिए। निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायक स्वरूप हनुमान जी महाराज का है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग है वो अगर अभी हमें सुन रहा है तो काफी कुछ आपसे सीखा होगा उन्होंने। वाना जी, यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है, खुद खुद मन में ये बात आती है कि क्या यह जरूरी है कि हम जब कभी भी मंदिर जाएं या जब कभी भी अपने घर में भी, अगर हम जो हमारा घर में मंदिर है, अगर हम वहां भगवान के पास जाएं तो हम कुछ मांगे ही, हर बार मांगना जरूरी है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि बिन मांगे ही प्रभु ऐसे हैं कि वो सब कुछ समझ लेते हैं, आपकी आपकी भावना वो समझ लेते हैं, आप जाके उनके सामने खड़े हो वो सब समझ लेते हैं और आपको सब उनसे मिल जाता है।
1: ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है श्वेता जी। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से ना मांगो, क्योंकि हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए। तो आप जब उनके आगे सिंपल जाके खड़े भी हो जाते हैं या थोड़ी देर बैठ भी जाते हैं तो भी ईश्वर जो है सब समझते हैं। और हनुमान जी की लाइफ से तो हमारी जिंदगी के, जीवन के बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई कहती है, सब सुख लही तुम्हारी सना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये कहते हैं जो आपकी शरण ले लेते हैं वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सारे सुखों को प्राप्त हो जाते हैं। और ये कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं कि जब जब आप रक्षक है, जब हनुमान जी हमारे जीवन के रक्षक हैं तो भय का तो हमारे जीवन में कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता, यानी कि फियर डज नॉट एग्जिस्ट इन टू अवर लाइफ अगर हम हनुमान जी को भजते हैं। फिर वो कहते हैं नासे रोग हराई सब पीरा जपत निरंतर हनुमान बीरा, जो इनका निरंतर जप करते हैं तो सभी प्रकार के रोग जो आपकी लाइफ में है, पीड़ा कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आते। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी एक रूट है, ये द्वारपाल है श्री राम तक पहुंचने का। फिर कहते हैं दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इनकी कृपा से कठिन काम, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी बहुत ही सिंपल हो जाती है और बहुत ही सहज हो जाती है। आखिरी चौपाई बस एक मिनट श्वेता जी बोलूंगी, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। जो लोग भी इनका मन क्रम वचन से ध्यान करते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट, उनकी पूरी रूट के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं
0: वो सभी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वान्या जी, मुझे लगता है कि आज जो यहाँ पर चर्चा हुई है बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है। और प्रभु श्री राम और बजरंग बली से तो हमेशा ही हम सीख सकते हैं, हमेशा ही मतलब वो हर युग में मुझे लगता है कि उतना ही लोगों से, त्रेता युग से लेकर आज कलयुग में भी उतना ही सीखा जा सकता है। जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, उम्मीद है कि उनको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप जैसे गुणीजनों से काफी कुछ उन्होंने सीखा होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या हैं इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: TuneIn's got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
2: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
1: to live sports action.
3: To the near side corner, to wrap around, he scores!
1: And your favorite music.
4: You and I stargazing.
1: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
5: चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले की शुरुआत हो गई है। कल रात 9:08 पर प्रवृत्ति अनुष्ठान की परंपरा निभाई गई। इसके बाद मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। अब 26 तारीख को निवृत्ति अनुष्ठान के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे।

0: ये आस्था, विश्वास और परंपरा की अद्भुत झलक है। कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, कोई कतारबद्ध खड़ा है, तो कोई ध्यान मग्न होकर माँ की आराधना कर रहा है। गुवाहाटी के माँ कामाख्या मंदिर में महायोग की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो गया है विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेला। सोमवार की रात 9:08:42 पर महायोग की प्रवृत्ति से जुड़े अनुष्ठान किए गए और फिर 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब 26 जून को सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद भक्तों के लिए कपाट फिर से खोले जाएंगे। इस बीच मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहेंगे और इस दौरान भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अंबुबाची मेले में 3 दिनों के इस विशेष काल को देवी के रजस्वला काल के दौरान एकांतवास का प्रतीक माना जाता है।
1: लगातार 3 दिन 3 रात को अंबुबाची महायोग रहेगा। ये सबसे शक्तिशाली समय है और ये जागतिक समय है। सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीचों-बीच में 3 दिन और 3 रात रहता है। क्योंकि ये इतना दुर्लभ समय है, ये समय में हर कोई जो भी प्रार्थना करे अपना मन से, अपना नियम से, जो भी जैसा चाहता है वो ऐसा प्रार्थना करे, क्योंकि ये समय और साल भर में एक बार ही आता है और दोबारा नहीं मिलेगा। ये समय बहुत दुर्लभ समय है और अपना जो साधना है, अपना सिद्धि है, वो लगातार करते रहिए 3 दिन 3 रात। खाली जो भी है वो हाय हत्तुगोल से बसे, वो इतना और शराबा नहीं करे और आराम से आकर के, क्योंकि हम लोग का ये परिक्रमा रहता है इस टाइम में, तो परिक्रमा में श्रृंखलाबद्ध से और अच्छे से आके यहाँ पे ना रुके और जाते रहे और परिक्रमा चलते रहे, क्योंकि माँ का दर्शन बंद रहता है, परिक्रमा ही मुख्य होता है। तो परिक्रमा करके आदमी जाता रहे और सभी को माँ का आशीर्वाद मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। दरवाज़ा बंद करने के आके एक विशेष हम लोग का वो है कि माँ का जो महाप्रसाद कपड़ा है वो कपड़ा बेस्तन करके रखा जाता है। वो प्रवृत्ति के जस शुरू होने के आगे ही माँ का पूजा पाठ करके समाप्त करके उसको कपड़ा से थके हुए होते हैं।
0: अंबुबाची मेला माँ कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा वार्षिक धार्मिक उत्सव है। ये मेला देवी कामाख्या के वार्षिक रजस्वला यानी मासिक धर्म होने और माता पृथ्वी की सृजन शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि माँ कामाख्या 3 दिनों तक रजस्वला होती हैं और ये अवधि बहुत पवित्र मानी जाती है। कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला तांत्रिकों, अघोरियों और साधु संतों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इन 3 दिनों में वे मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में गुप्त साधना और ध्यान करते हैं। असल में तांत्रिक परंपराओं में रजस्वला अवस्था को सृजन शक्ति, उर्वरता और प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है और ये समय देवी की दिव्य शक्ति के जागरण का काल होता है। इसलिए देश विदेश से तांत्रिक साधक और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं।
2: किन्नर जहाँ है वहाँ पूजा पाठ होती है। हमारा संसार तो नहीं होता है, यदि संसार होना होता था तो माता ने हमें मेल या फीमेल बनाते थे। इस जन्म में शायद से हमें पूजा ही करना है, इसलिए माता ने ये जन्म दिया है।
3: मैं लास्ट टाइम भी आया था यहाँ कामाख्या मंदिर में, लेकिन मुझे जो वाइब फील हुई आपकी बार अंबुबाची मेला में आने के बाद में 2026 के, मैं बहुत पहले भी प्रयास कर रहा था, सोचा था कि आऊँगा एक बार, लेकिन अब की बार जब आया तो ऐसा फील हो रहा है कि बार बार आना चाहिए, क्योंकि जो वाइब्रेशन है यहाँ की, जो एनर्जी है, वो जब अभी निकल रहे थे, वो परिक्रमा कर रहे थे और डमरू के साथ में पूरा जो तांत्रिक लोग थे और जितने भी साध्वी यहाँ पे आए थे, पूरा अलग ही माहौल था। और वो देख करके, वो फील करके कोई भी यहाँ पे आने के बाद में यही सोचेगा कि अब की बार तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा।
4: अभी मैं अंबुबाची मेले में हूँ, पहले अंबुबाची मेले में आया था, नॉर्मल डेज में आया था। और दूसरी बात है कि अभी जब आज हमने दूसरी बार दर्शन करे गर्भगृह के, और जब दूसरी बार दर्शन करे गर्भगृह के तो वो भी बहुत अनप्लान्ड हुए। हम कम से कम 3-4 बजे आए और फिर हमारे 6 बजे तक दर्शन भी हो गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये बोलूंगा कि मैं दूसरी बार आया हूँ अंबुबाची मेले में और मैं आऊँगा भी आगे भी, तो मैं जो लोग घर से देख रहे हैं चीज़, उनसे बोल रहा हूँ एक बार आप आके एक बार प्लीज एक्सपीरियंस करें, बहुत सही एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है।
0: 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलने पर विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालुओं को देवी का प्रसाद और पवित्र वस्त्र वितरित किए जाते हैं। ये परंपरा स्त्री शक्ति, सृजन और प्रकृति के चक्र के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। गुवाहाटी से अचिंत्य पतंगिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
6: जाए। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
2: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
1: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
1: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
7: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए हम जो वादा करते हैं वो हम निभाते भी हैं। कल हमने आपसे वादा किया था कि आज शाम 5 बजे गर्मा गर्म चाय, शगुफ्ता, ढेर सारी खबरें। क्या कुछ हो गई
8: और एक और गुड न्यूज जोड़ दो ना, बाहर बारिश हो रही है।
7: आई नो, बारिश है, बहुत कुछ है, ढेर सारी खबरें हैं, तो वो तमाम खबरें लेकर हम यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि आज केवल वैभव सूर्यवंशी की मुराद पूरी नहीं हो रही है, बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की मुराद पूरी हुई है जो वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू के इंतजार में है। तो ये खबर भी आपको बताएंगे। वैभव को जैसे ही ब्लू जर्सी मिली उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो कैसे समस्तीपुर के इस लाल ने आलन तक की यात्रा तय की है आपको बताएंगे।
8: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। खेल की दुनिया में एक और नाम गूंज रहा है, वो है लियोनेल मेसी का। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मेसी ने अपने पहले 17वें गोल दागकर जर्मनी के मिरोस्लाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और फिर मैच के आखिरी में एक और गोल करके इस रिकॉर्ड को 18 तक पहुंचा दिया। तो कैसे ये गोल बन गया मेसी के फैंस के लिए मेगा सेलिब्रेशन, तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे आपको।
9: बिल्कुल शगुफ्ता, खेल जगत की ढेर सारी खबरें आज के कार्यक्रम में होने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव, और साथ ही आज बात मौसम की भी करेंगे, क्योंकि देखिए लंबे इंतजार के बाद मॉनसून

0: दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे रंग। सत्ताईस करोड़ रुपए के ऋषभ पंत, 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे। 13.5 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल, दोनों टीमों के बीच हुआ ट्रेड।
1: वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की 3 नंबर जर्सी, कहा खुशी बयां करने के लिए शब्द ही नहीं। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर रवाना। रोहतास में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज के आकाशदीप की शादी की रस्में शुरू, हल्दी मेहंदी का वीडियो हुआ वायरल, कल वाराणसी निकलेगी बारात। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के किए दर्शन, एक्टर ने बाबा बागेश्वर को भेंट किया अंगवस्त्र। भारत वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग होगा मजबूत, वियतनाम के हो ची मिन सिटी पहुंचे भारतीय नौसेना के आईएनएस उदयगिरी, तारागिरी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
1: मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जो भी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहता है, एस्पायरिंग क्रिकेटर है या वहां जाने की इच्छा रखता है ना, उसके लिए ये वाली न्यूज़ बहुत मायने रखती है और बहुत सारे मायनों में मायने रखती है, क्योंकि इंडियन टीम की जर्सी पहनना ना अपने लिए बहुत प्राउड भरा मोमेंट होता है। अग्री करेंगे?
3: जैसे हमारे लिए यहाँ काम करना। बिल्कुल, जो भी जर्नलिज्म एस्पायर करता है वो इस ग्रुप के साथ काम करना चाहता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो भी चाहता है कि वो इंडिया के लिए खेले और ऐसा एस्पायर करता है, उसके लिए सबसे बड़ा दिन होता है उसे जर्सी मिलना, वो भी इंडिया की जर्सी। 3 नंबर जर्सी मिली है वैभव सूर्यवंशी को, समस्तीपुर का लाल, बिहार का लाल, और आज यहाँ तक पहुंचा।
4: बहुत बड़ा संघर्षों का सामना करते हुए बहुत ही लंबा सफर उन्होंने तय किया है, और देखिए आईपीएल में ना अपना कैलिबर उन्होंने दिखाया है। हम सब जानते हैं कि वो कितना बखूबी अपने खेल को जानते हैं, प्रोडिजी सब उन्हें कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि अपने देश के लिए खेलना, पैसे सब कुछ नहीं होते।
3: Exactly.
4: तो वो तिरंगा जब बना होता है ना जर्सी में, और जब मैदान पर आप उतरते हो और जब लोग चीयर करते हैं इंडिया इंडिया सूर्यवंशी, तो मजा आता है। बात क्यों हो रही है शगुन,
1: बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसी लाल की बात कर रहे हैं जिसने देश का नाम कई बार तो रोशन किया है, जो सपना हर युवा देखता है वही सपना वैभव सूर्यवंशी ने भी बुना था। उनका वो सपना पूरा होने का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। दरअसल वैभव सूर्यवंशी को इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी सौंप दी गई है, यानी भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार चुने गए वैभव सूर्यवंशी को अब टीम इंडिया की ऑफिशियली जर्सी मिल गई है।
4: बिल्कुल, 15 साल की छोटी सी उम्र में टीम इंडिया में जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर उन्हें आयरलैंड या इंग्लैंड दौरे पर खेलने का मौका मिलता है तो वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं, और इस उपलब्धि के साथ ही वो पुरुष क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।
3: देखिए, दरअसल बीसीसीआई ने वैभव को टीम इंडिया की जर्सी सौंपने का एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ सदस्य रघु उनके कमरे में पहुंचते हैं और जर्सी वाला जो बॉक्स है वो वैभव को सौंपते हैं। पहली बार टीम इंडिया की जर्सी मिलने के वैभव के उस इमोशनल और यादगार पल को भी दिखाया गया है, जिसमें 15 साल का ये चैंपियन बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है।
1: और देखिए वैभव भी अपने सहज अंदाज में हाथ जोड़कर टीम के उस सपोर्ट स्टाफ का वेलकम करते हुए उनके पैर छूते हैं, और इसी वीडियो क्लिप में एक इंडियन क्रिकेटर के रूप में वैभव सूर्यवंशी अपने पहले इंटरव्यू में उस इमोशनल पल को बयां भी कर रहे हैं, सुनिए।
5: मतलब वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, जिस चीज के लिए मैंने फर्स्ट डे से बैट पकड़ा था, क्रिकेट ग्राउंड पे मैं गया प्रैक्टिस के लिए, वो आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ, और जो मेन स्टेप होता है वो आज कंप्लीट हुआ, और मतलब मैं इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ड्रीम

0: ऐसा ही लग रहा था, और मतलब वो टी शर्ट देखते ही इतना मैं खुश हो गया, मतलब स्माइल कर रहा था मैं। और कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ आप सोचते नहीं वो होता आपके साथ, और वो चीज़ होने के बाद मतलब आप रिएक्ट नहीं कर पाते, सेम रिएक्शन मेरा भी था।
1: खास मोमेंट्स और 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की कामयाबी क्रिकेट के बड़े बड़े मसीहाओं को भी हैरान करती है। देखिए, आईपीएल में आप सभी ने उनका प्रदर्शन देखा था। 2.5 गुने उम्र के घातक गेंदबाजों को भी वो ना सिर्फ सहजता से खेलते हुए नजर आए, बल्कि उनकी धुलाई भी उन्होंने मैदान पर करी। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि इतनी छोटी उम्र में ही वैभव इतने दिग्गज बल्लेबाज कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे कहानी है एक अधूरे सपने की, वो कभी वैभव के पिता ने कभी देखा था।
2: बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन हालात की दुश्वारियों की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। पर अपने उसी अधूरे सपने को संजीव ने अपने बेटे वैभव के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। वैभव के क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी आपके दिल को छू लेगी।

0: भीड़ से निकलकर एक खास मुकाम हासिल करने वाले कुछ चुनिंदा लोग सफल कहलाते हैं, लेकिन इन सफल लोगों के बीच से निकलकर सफलता के शिखर चूमने वाले युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पर अपने बेहिसाब मेहनत, लगन और जुनून के दम पर सफलता के नए शिखर गढ़ने वाले युगांधर होते हैं, और ऐसे युगांधर कामयाबी के आसमान में नायाब नक्षत्र बनकर युगों युगों तक चमकते हैं। क्रिकेट के आसमान के ऐसे ही युगांधर हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव की इस बेनजीर कामयाबी के पीछे हाथ है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का, जो कभी खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, पर खुद की जो हसरत अधूरी रह गई उसे उन्होंने अपने लाल में प्रत्यारोपित कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक पिता के अनोखे त्याग की खामोश सदाएं समस्तीपुर जिले के जर्रे जर्रे में जज्ब है।
1: वास्तव में एक पिता का जो त्याग था, तपस्या था, जिद था कि हमको किसी भी तरह जो मैं हासिल नहीं कर सका वो मैं अपने बच्चे को उस मुकाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो एकाकी भी देखा कि लोगों से मिलना तक, लोगों में क्योंकि जुनून सवार था कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाऊं, तो लोगों से मिलना भी बंद किया। उस बीच में कई ऐसी मुसीबतें भी आईं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया।
0: पांच साल के बच्चे को पढ़ाई से दूर कर क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाने के लिए खड़ा कर देना किसी भी पिता के लिए आसान फैसला नहीं होगा, पर संजीव सूर्यवंशी ने कलेजे पर पत्थर रख कर यह फैसला लिया। समस्तीपुर जिले की ताजपुर पंचायत में, जहां क्रिकेट का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पांच साल के बेटे की प्रैक्टिस के लिए सारी व्यवस्था कर दी। यहां तक कि कुछ हम उम्र और बड़े बच्चों को भी चॉकलेट मिठाई का प्रलोभन देकर साथ जोड़ लिया, ताकि वे बॉलिंग करें और वैभव लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस करता रहे।
2: गार्डियनों का उनका सपोर्ट रहा है कि अपने बच्चे को इतना ज़्यादा टाइम किल करते थे, अपने साथ लाना ले जाना, बच्चों के साथ अपना बिजनेस छोड़ के बच्चे के प्रति इतना एक फोकस। गार्डियन का भी कहीं ना कहीं टारगेट था कि हमारा बच्चा ऊपर खेले, और भगवान की दुआ से बच्चा वो मुकाम पर हासिल किया।
0: क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि वैभव को पटना के जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में डालने के लिए संजीव सूर्यवंशी को जमीन तक बेचनी पड़ी थी? दरअसल संजीव सूर्यवंशी को जब ये लगने लगा कि उनका बेटा समस्तीपुर स्थित पटेल मैदान के स्टैंडर्ड से आगे निकल चुका है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराने का फैसला किया।
3: माँ का रोल रहता था बच्चे को तैयार करने से लेके उसको, और जब इधर से थक के जाता था तो उसको फिर रिकवरी में, चाहे वो खाने के सेंस में हो, उसको प्यार के सेंस में हो, उसको रेस्ट के सेंस में हो। और पिता का त्याग इस सेंस में था कि अर्ली सारे बोझ को वो अपने कंधे पर उठा रहे थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और फिर भी वो जो वो अपने हैसियत से ज़्यादा बढ़ के उन्होंने उस बच्चे के लिए किया, और हर एक वो सुविधा उस बच्चे के लिए उन्होंने अरेंज किया खेल के प्रति, कि वो आज इस मुकाम को प्राप्त कर सके।
0: आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था और वैभव को पटना ले जाना ले आना संभव नहीं रहा, तो संजीव सूर्यवंशी ने अपने ताजपुर स्थित घर के बाहर ही नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बनवा दी, ताकि वैभव की प्रैक्टिस खंडित ना हो।
2: लॉकडाउन में एक्चुअली पूरा बिहार बंद था, तो यहाँ पे पिच का जनरेट किया गया भैया के द्वारा, और टर्बिकेट और सीमेंटेड लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस वक्त में भी इसका प्रैक्टिस सेशन लगातार यहाँ पे चलता रहा।
0: पिता ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए त्याग तपस्या की, तो बेटा भी दो कदम आगे बढ़कर अपनी विराट उपलब्धियों से हक अदायगी कर रहा है। साफ है कि पिता के संकल्प और बेटे की जीतोड़ मेहनत का पावन संगम क्रिकेट के मैदान पर चमत्कारिक धारा बनकर नमूदार हो रही है।
4: देखिए, एक तरफ क्रिकेट की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, अब आपको फुटबॉल की तस्वीरें दिखाती हैं जो हर तरफ छाई हुई हैं। एक तरफ है फुटबॉल के सुपरस्टार मेसी, जिन्होंने हाल ही में विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं दूसरी तरफ फीफा में चर्चा ईरान के गोलकीपर अली रेजा की भी है, जिन्हें फैंस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कह रहे हैं। मेसी गोल करने के रिकॉर्ड बनाते हैं तो बेरानवन गोल रोकने के लिए सुर्खियों में है। बेल्जियम के खिलाफ इनके शानदार बचावों ने यह साबित कर दिया कि उनके सामने गोल करना आसान नहीं। फैंस का ये मानना है कि जिस तरह मेसी के लिए गोल करना आसान दिखता है, उसी तरह बेरानवन के सामने गोल करना बेहद मुश्किल होता है, और यही रीजन है कि दोनों नाम एक साथ चर्चा में आ गए हैं।
5: तो लियोनेल मेसी ने जैसे ही इतिहास रचा, वैसे ही दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस के बीच जश्न शुरू हो गया। अर्जेंटीना के से लेकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक सोशल मीडिया पर मेसी का नाम ट्रेंड करने लगा। कहीं लोग अर्जेंटीना की जर्सी पहनकर सड़कों पर जश्न मनाते नजर आए, तो कहीं पर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक मेसी मेसी के नारों से गूंज उठे। ऑस्ट्रिया के खिलाफ,
4: और देखिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दागकर मेसी ने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड भर नहीं बल्कि उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने दो दशक से फुटबॉल प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। अब एक बार फिर से पूरी दुनिया मेसी के नाम की दीवानी सी हो गई है।
6: वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया के खिलाफ शानदार जीत का जश्न अर्जेंटीना के समर्थकों ने कुछ इसी अंदाज में मनाया। डलास स्टेडियम में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए लियोनेल मेसी टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उनकी इस कामयाबी पर अर्जेंटीना और मेसी के फैंस खुशी से झूम उठे।
7: फीफा वर्ल्ड कप का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है, और इस वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी ऐसा है जो दनादन गोल कर रहा है। लियोनेल मेसी वो नाम है जिसने इस वर्ल्ड कप में 5 गोल करके एक इतिहास रच दिया है। लियोनेल मेसी अब एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम अब सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। लियोनेल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में 5 गोल किए, और इसी के साथ ही कुल गोलों की संख्या अब 18 हो चुकी है। ऑस्ट्रिया के साथ इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने 2 गोल दागे, जिसकी बदौलत अब लियोनेल मेसी ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन चुके हैं वर्ल्ड कप में।
6: मेसी की जर्सी पहने और अर्जेंटीना का झंडा लहराते हुए कुछ फैंस म्यूजिक की धुन पर नाच रहे थे, तो कुछ फुटबॉल खेलकर मेसी की सफलता को सलाम कर रहे थे। मेसी के कुछ प्रशंसक तो यहां अपने स्टार खिलाड़ी के कटआउट के साथ पहुंचे थे।
8: Último minuto, segundo gol, es un genio Messi.
9: Oh, well, Messi is a beast. Messi came to get the record of most goals in the World Cup, and he got 2 of them. Argentina beat Austria. Austria didn't play well. They were into the game, but after the first goal, they were in downhill.
6: Messi ki deewangi kisi team ya desh tak simit nahi hai. Puri duniya mein Messi ke karodon fans hain. फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत का जश्न बांग्लादेश में भी जबरदस्त अंदाज में मनाया गया। हजारों की संख्या में अर्जेंटीना के फैंस ढाका यूनिवर्सिटी में इकट्ठा हुए। यह मैच देखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इस मैच में अर्जेंटीना की जीत और वर्ल्ड कप में मेसी के कीर्तिमान ने फैंस का जोश दोगुना कर दिया। यहाँ बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी अपने पसंदीदा खिलाड़ी की कामयाबी का जश्न मनाने पहुंचे थे। जो लोग मैच देखने अंदर नहीं जा पाए, उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर ही जीत का जश्न मनाया। पूरी दुनिया पर इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है। भले ही कोई देश वर्ल्ड कप में हिस्सा ना ले रहा हो, लेकिन वर्ल्ड कप की हर हलचल पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ये वर्ल्ड कप मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। ऐसे में मेसी के हर फैंस की ख्वाहिश है कि वो इस वर्ल्ड कप को जीतकर ही अपने करियर पर विराम लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: तो इस बीच ईरान के स्टार गोलकीपर अली रेजा बेरानवन भी इन दिनों सिर्फ अपने खेल नहीं बल्कि खास उपनाम की वजह से भी चर्चा में बने हुए हैं। उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स कहा जा रहा है। देखिए, वजह यह है कि उनकी अभेद गोलकीपिंग सबसे बेहतरीन है। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स दुनिया के सबसे अहम और रणनीतिक समुद्री मार्गों में गिना जाता है, उसी तरह
10: अली रेजा का गोल पोस्ट विरोधी टीमों के लिए लगभग नो एंट्री जोन बन जाता है। बेल्जियम जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनके शानदार बचावों ने फैंस को हैरान कर दिया है।
5: आपको बता दें, अली रेजा का तेज रिफ्लेक्स, दबाव में शांत रहने की क्षमता और मैच बचाने वाले सेव्स ने उन्हें ईरानी फुटबॉल का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया है और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें दुर्ग, जिसे भेदना मुश्किल है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहकर पुकार रहे हैं।
10: तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए और कुछ पॉइंट्स में बताते हैं कि ईरानी गोलकीपर अली रेजा का गरीबी से विश्व फुटबॉल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक कहलाने की ये कहानी आखिर क्या है। तो देखिए, ईरान के इस हीरो गोलकीपर ने बेल्जियम के खिलाफ मुकाबले में कम से कम 7 शानदार बचाव कर अपनी टीम को टूर्नामेंट में बनाए रखा। 6 फीट 5 इंच लंबे अली रेजा गोल पोस्ट के सामने एक दीवार की तरह खड़े नजर आते हैं। उनकी लंबी पहुंच और बड़े हाथ विरोधी खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं। मैच का सबसे यादगार पल तब आया जब बेल्जियम ने एक्सम डीक्यू पर लगभग तय गोल करने वाले थे, लेकिन जमीन पर गिरे होने के बावजूद अली रेजा ने बाएं हाथ से नामुमकिन दिखने वाला बचाव कर दिखाया है। तो देखिए, अली रेजा का जन्म पश्चिमी ईरान के लोरिस्तान प्रांत में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता फुटबॉल के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि वो भेड़े चलाएं।
5: बिल्कुल, आपको बता दें कि पिता ने उनके गोलकीपिंग ग्लव्स तक फाड़ दिए थे, जिसके बाद उन्होंने नंगे हाथों से खेलना शुरू किया। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो घर छोड़कर तेहरान चले गए। यहाँ गुजारा करने के लिए अली रेजा ने कारें धोई, मजदूरी की और कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन फुटबॉल का सपना नहीं छोड़ा। 2015 में उन्होंने ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। 2018 फीफा विश्व कप में उन्होंने दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पेनल्टी रोककर विश्व भर में सुर्खियां बटोरी।
4: देखिए, 2016 में दक्षिण कोरिया के खिलाफ उन्होंने फुटबॉल को 200.14 फीट दूर फेंककर सबसे लंबे थ्रो का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनके नाम सबसे लंबी ड्रॉप किक, जो कि 255.95 फीट की थी, उसका रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है। बेल्जियम के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहना शुरू कर दिया था, यानी ऐसी दीवार जिसे पार कर पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है।
5: तो चलिए अब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें हम दिखाते हैं। देखिए, ब्रिटेन की राजनीति एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री आते हैं, जाते हैं, सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे का नजर आते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इस राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं पड़ता और वो है लैरी द कैट।
10: देखिए, राउनिंग स्ट्रीट के मशहूर चीफ माउसर लैरी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। उनकी पैरोडी एक्स अकाउंट ने राजनीतिक घटनाक्रम पर मजेदार टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। ब्रिटेन में चाहे कितने भी प्रधानमंत्री बदल जाएं, लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सबसे स्थायी और चर्चित निवासी के तौर पर लैरी अब भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।
11: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है। चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिस्ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टार्मर तक सबको आते जाते देखा है, मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बेट्रेसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद, जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखता है और कभी कभार तो इस ऐतिहासिक इमारत के फर्नीचर पर सोकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है, कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। एक्स पर उसके पैरोडी अकाउंट को करीब 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में इसी अकाउंट से मजाकिया अंदाज में लिखी पोस्ट खूब वायरल हुई। इसमें लिखा था, मैंने की स्टार्मर का इस्तीफा अपने मुख्य सेवक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। के बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेटकर यहां से विदा लेते हैं, तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: चलिए अब कुछ फिल्मी हलचल आपको बताते हैं। तो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, जिन्होंने अब तक के अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू में हुमा पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किलर के ऐसे अवतार में आपको नजर आने वाली हैं, जो ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है।
5: बिल्कुल, आपको बता दें, ट्रेलर में हुमा कुरैशी को भारत की पहली देसी हिट वुमन के तौर पर प्रमोट किया गया है। क्या है हुमा का ये किलर अवतार और कैसे उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार किया है, देखिए इस रिपोर्ट में।
12: लंबी सांस ले, सब डर भाग जाएगा।
13: वो ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन किसी का काम तमाम करने में उसका कोई सानी नहीं। मिलिए इंडिया की पहली हिट वुमन से। ऑन स्क्रीन ही सही, कम से कम बेबी डू डाई डू में हुमा कुरैशी को भारत की पहली देसी हिट वुमन के तौर पर ही प्रमोट किया जा रहा है।
14: नाम नाम बच्ची,
15: अरे ओ मैडम, वो डमशरा जो इंग्लिश इंग्लिश
14: बेबी। अगला स्टेशन डेस्टिनेशन बंदी फुल फायर, ना सुनेगी ना बोलेगी खूनी ऑन हायर, थोड़ा जिगरा बिगरा
13: हुमा कुरैशी की अपकमिंग फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया और रिलीज के साथ ही रोमांच और रहस्य से भरा ये ट्रेलर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और सबसे ज्यादा चर्चा में है बेबी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का किरदार जो काफी खतरनाक और इंटेंस दिख रहा है।
12: हमारे ऊपर भी लोग हैं, पावरफुल लोग, और हम भी तब तक है जब तक उनके काम आ सके।
13: बेबी डू डाई डू एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो गहरे राज, धोखे और बदले से भरी एक डार्क और सस्पेंस वाली दुनिया में लेकर जाती है। इस क्राइम की दुनिया में बेबी का दबदबा है। अब क्योंकि बेबी बोल नहीं सकती, इसलिए हुमा कुरैशी के पास डायलॉग्स नहीं है, लेकिन अपने हाव भाव से हुमा कुरैशी ने बेबी के किरदार में खौफ पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखा जाए तो मासूमियत, भोलापन और खामोशी ही उसका हथियार है। हाँ, एक हथियार और है, चमकीली लाल छतरी, जिसमें छिपी बंदूक से वो दिन दहाड़े बेखौफ होकर हत्याएं करती हैं। अब क्यों करती है, क्या वजह है, इसका जवाब तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो ट्रेलर देखकर इतना ही कहा जा सकता है कि एक रहस्यमयी कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर हुमा कुरैशी ने जबरदस्त छाप छोड़ी है।
16: ये कोई टाइम है घर आने का?
17: पता नहीं क्या करती रहती है रात रात भर।
13: एक इंटरव्यू में हुमा कुरैशी ने बेबी के किरदार को निभाने में आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ न कुछ कहना और केवल आंखों और शारीरिक हाव भाव से अभिनय करना कई पन्नों के डायलॉग बोलने से ज्यादा मुश्किल था। इसके लिए उन्होंने साइन लैंग्वेज की खास ट्रेनिंग ली थी। हुमा ने आगे कहा कि बेबी ने मुझे ऐसे तरीकों से चुनौती दी जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। वो शब्दों पर निर्भर नहीं रहती, इसलिए हर भावना को अंदर से महसूस करना और दिखाना जरूरी था। ऐसे दिन भी थे जब कुछ न कहना कई पन्नों के डायलॉग बोलने से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता था। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि लोग फिल्म को बहुत जल्दी समझने या सुलझाने की कोशिश किए बिना सिनेमा घर जाएं और बस उसके सफर का हिस्सा बने। हुमा कुरैशी इस फिल्म के एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। नचिकेत सामंत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम ने प्रोड्यूस किया है। एक एक्ट्रेस के तौर पर हुमा कुरैशी ने चुनौती पार कर ली है, लेकिन एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। बेबी डू डाई डू 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी दिन आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई एक्शन फिल्म अल्फा भी रिलीज होगी, जिसने काफी अरसे से जबरदस्त हाइप बना रखा है। यानी एक तरफ है हुमा की सीरियल किलर थ्रिलर, तो दूसरी ओर है स्पाई एक्शन थ्रिलर। अब बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन सी फिल्म मारती है, ये तो 3 जुलाई के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: तो चलिए बात अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल की कर लेते हैं, जिसे सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। लेकिन देखिए, हरी झंडी देने से पहले सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 18 जगहों पर कैंची चलाई है। अक्षय कुमार की ये पहली ऐसी फिल्म है जो इतने ज्यादा कट्स के साथ रिलीज की जा रही है।
18: और देखिए, फिल्म के जिन हिस्सों पर सेंसर बोर्ड को एतराज था उन्हें हटा दिया गया है या फिर बदल दिया गया है। अब पर्दे पर आने से पहले इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर 26 जून को दस्तक देगी।
19: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
20: एक जबरदस्त कहानी है।
21: और टाइटल क्या है फिल्म का?
20: वेलकम टू द जंगल।
21: अक्षय कुमार एक बार फिर कॉमेडी का जबरदस्त डोज लेकर बड़े पर्दे पर आने को तैयार है।
22: तो पैसों की बात कौन करेगा?
21: उनकी फिल्म वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होने जा रही है। और रिलीज से पहले फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से हरी झंडी भी मिल गई है। खास बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में कुछ सीन एडिट करने का निर्देश दिया है। फिल्म मेकर्स ने जब वेलकम टू द जंगल को सर्टिफिकेशन के लिए CBFC के पास भेजा, तो उन्हें कुल 18 सीन्स को एडिट करने का निर्देश दिया गया। इन सीन्स को एडिट करने के बाद CBFC ने फिल्म को UA16+ सर्टिफिकेट के साथ हरी झंडी दे दी।
20: और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
23: ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा?
20: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
21: फिल्म के जिन 18 सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है, उसमें कुछ डायलॉग्स और कुछ बोल्ड सीन्स शामिल है। डायलॉग्स में कुछ ऐसे शब्दों को भी बदल दिया गया है जिन पर सेंसर बोर्ड को एतराज था। 10 सेकंड के एक पूरे सीन को ही हटा दिया गया है।
20: कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था?
21: फिल्म में बिंदु दारा सिंह के एक जेस्टर को भी चेंज किया गया है।
20: वो जो छपरी ने किया है ना, वो अपने को भी करने का है। ये स्टंट एक्शन
21: इन बदलावों के साथ अक्षय की वेलकम टू द जंगल का समय 2 घंटे 44 मिनट तय हुआ है। ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की वो कॉमेडी फिल्म बन चुकी है जिसमें सेंसर बोर्ड ने सबसे ज्यादा बदलाव किए हैं।
24: कहाँ थे तुम 20 साल से?
25: अपने घर।
26: इसको टच रोल दे दिया तो हमें खा जाएगी।
27: अरे वो पुरानी चावल है।
28: मैं किस लिए फिल्म में?
27: ग्लैमर
29: क्लाइमेक्स शूट कर ले क्या?
30: कैसे करेंगे? विलन चाहिए, गुंडे चाहिए, कहाँ से लाएंगे?
21: फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी है और रिलीज से पहले अक्षय और फिल्म की स्टार कास्ट फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। कल अक्षय वेलकम टू द जंगल के प्रमोशन के लिए मुरादाबाद के तीर्थगर महावीर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उनके साथ दिशा पाटनी, अक्षरा सिंह और राजपाल यादव भी मौजूद थे।
31: मैं आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी में मैंने बहुत फिल्में की हैं, लेकिन जब भी ये लौंडे के साथ फिल्म करता हूँ ना, वो फिल्म चल पड़ती है। तो अब बोनस कौन हुआ, मैं या ये?
21: वेलकम टू द जंगल वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में अक्षय के साथ सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन जैसे 34 बड़े एक्टर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। भारी भरकम स्टार कास्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर और सबमरीन में शूटिंग ने इस फिल्म को और भी ज्यादा खास बना दिया है। रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर भी फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है फिल्म की रिलीज का, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में ही कॉमेडी के जबरदस्त रोज की झलक देखने को मिल रही है।
32: झगड़ा क्या करते हो यार?
33: ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है।
32: गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर, हां तो तू रिक्शा कर जा, कार में जाओ तुम लोग।
21: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
34: ट्रेलर खत्म, पैसा हजाम।
5: हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे मुंबई पहुंचा मॉनसून और कैसे दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
2: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
1: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
18: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 समारोह, दूसरे सम्मान समारोह में कुल 65 लोगों को अवार्ड दे रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक्टर ममूटी और सिंगर अलका याग्निक को मिला पद्म भूषण पुरस्कार। दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में NSG कमांडोज ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे रंग। करोड़ रुपए के ऋषभ पंत, 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे, 13.5 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल, दोनों टीमों के बीच हुआ ट्रेड।
5: और ये अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर पद्म पुरस्कार 2026 समारोह चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दूसरे सम्मान समारोह में कुल 65 लोगों को अवार्ड दे रही हैं, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। समारोह में गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, तो वहीं साउथ सुपरस्टार ममूटी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पर टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया।
18: और देखिए, इससे पहले 26 मई को हुए पहले समारोह में 66 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तमाम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रही हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ये भी आपको बता दें, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सम्मान कला, समाज सेवा, जन कार्य, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जिन भी लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं, उनको नवाजा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दूसरे सम्मान समारोह में कुल 65 लोगों को अवार्ड्स दे रही हैं, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। इस समारोह में जैसे कि आपको बताया, सिंगर, बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर अलका याग्निक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, तो वहीं साउथ सुपरस्टार ममूटी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। टेनिस के दिग्गज स्टार विजय अमृतराज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से यहां पर सम्मानित किया है।
5: तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सम्मान दे रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए, देश की आर्थिक राजधानी। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून के पहुंचते ही शहर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे कि लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। हालांकि मॉनसून की बारिश के बाद मुंबई की रफ्तार हमेशा थमती है, लेकिन इसके बावजूद मुंबईकर बारिश का स्वागत करते नजर आ रहे हैं।
10: बिल्कुल, आखिरकार मुंबई में झमाझम बारिश होती भी नजर आ रही है। बहुत लंबे समय से वहां पर लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार भी था। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं, बादलों की आवाजाही और कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई है। हालांकि देखिए, दिल्ली वालों को भी मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के बादल फिलहाल राजधानी से थोड़े से दूर है।
6: तो आखिर झुलसती गर्मी के बीच प्री मानसून की छोटी छोटी बूंदें दिल्ली एनसीआर में दिखाई पड़ रही हैं। मौसम का मिजाज बदला है। इस वक्त तेज हवाएं चलती हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं और इन हवाओं के बीच में बारिश भी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही 23 से 26 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया था कि इस बीच दिल्ली एनसीआर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई थी। फिलहाल कुछ देर से जो तेज हवाएं आप देख रहे हैं ये चल रही हैं, इनकी स्पीड लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास की होगी और इन हवाओं के बीच में अब बूंदाबांदी भी, हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग मौसम में राहत तो महसूस कर रहे थे, क्योंकि रह रहकर सूर्य देवता निकल रहे थे, बीच में काले बादल छा रहे थे, लेकिन ना तो बारिश हो रही थी और ना ही इस तरह से तेज हवाएं चल रही थी। मौसम में राहत ज़रूर थी लेकिन गर्मी और उमस लगातार बनी हुई थी और इस वक्त उसी गर्मी और उमस से राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर एक टेरेस पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं किस तरह से मौसम पूरी तरह से बदला है और मौसम सुहावना हो गया है। आसमान की तरफ आपको हम दिखाएंगे तो काले बादल इस वक्त दिल्ली एनसीआर के इलाके में छाए हुए हैं और ये काले बादल ही राहत लेकर आए हैं, क्योंकि अगर हवाएं चल भी रही थी इस बीच तो वो लू जैसी महसूस हो रही थी। हालांकि उनमें गर्मी कम थी लेकिन उन हवाओं से कुछ खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन इन काले बादलों के साथ अब जो हवाएं चल रही हैं, जो छींटे पड़ रही हैं, हल्की बारिश हो रही है, उससे मौसम में काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और 23 से 26 जून तक इसी तरह का मौसम दिल्ली एनसीआर में बने रहने की संभावना है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
18: आई एम जेलस ऑफ मनीष चौरसिया, इतने मजे ले लिए ना मनीष चौरसिया ने, फोन करूंगी इसके बाद मैं शो खत्म करूं जरा। अब देखिए गर्मी में ना कूल एहसास कैसे लिया जाए, इसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते रहे हैं। घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से खास पहल की गई है।
7: आपको बता दें ये पहल है अम्ब्रेला फैसिलिटी का। जी हाँ, यहाँ के नाहरगढ़, आमेर और जंतर मंतर पर आने वाले सैलानियों को सैर सपाटा करते हुए छाते की सुविधा दी गई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, तो चलिए आपको भी हम दिखाते हैं कैसे पर्यटक इस अम्ब्रेला फैसिलिटी का फायदा ले रहे हैं।
8: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशन पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर कहाँ से आए हैं आप?
9: हम नागपुर से आए हैं।
8: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए कैसा लगा?
9: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होंगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
8: मैम कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
11: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
12: ये राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छत दे रहे हैं ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इसे। ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है, धूप तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
13: असल में यहाँ पे गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
10: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
13: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे। ठीक है, लेकिन
10: मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
13: हाँ, एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है। ठीक है, तो हम लोग गर्मियां देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं।
10: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
14: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
10: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलाज हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं, तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है। उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलाज नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति है उनसे उसकी डिमांड करे कि हमें ये अम्ब्रेला जो है वो चाहिए। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने अम्ब्रेलाज प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया जाएगा और वापस जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको वो अम्ब्रेलाज जमा करवाने रहेंगे। बस इतनी सी बात है, निशुल्क सेवाएं ये हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
5: और अब बात उस कॉन्फिडेंस की जिसने रांची की एक लड़की का रिजल्ट ही बदल दिया। जी हाँ, इनका नाम है अवनी केजरीवाल। जब सीबीएसई 12वीं के नतीजे आए तो झारखंड के रांची की रहने वाली अवनी के मार्क्स उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। पहले जारी किए गए परिणाम में अवनी को 95% अंक मिले थे, लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने आंसर कॉपी के री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद उनके नतीजे बदले और अंक बढ़कर 100% हो गए। 12वीं बोर्ड परीक्षा में अवनी को 500 में से 500 अंक हासिल हुए। इस तरह दोबारा जांच के बाद अवनी नेशनल टॉपर बन गई है।
15: झारखंड ने एक बार फिर अपने टैलेंट का परचम देश में लहराया है। इस बार अवनी केजरीवाल ने सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम में नेशनल टॉपर बनकर दिखाया है। जाहिर तौर पर पूरा फैमिली जो है अभी क्लाउड नाइन में फील कर रहा है और अपने आप को एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा है और 100% इन्हें आया है। लेकिन इसका एक बड़ा क्रेडिट सीबीएसई का जो री इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको भी जाता है और वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग साबित हुआ इनके लिए। अवनी से बात करते हैं। अवनी, ये जो 100% आया, पहले आपको कितना आया था? पहले तो आपको बहुत बधाई नेशनल टॉपर के लिए।
16: थैंक यू सो मच। पहले मुझे 95.2 आया था।
15: उस वक्त जो है कोई और था ना टॉपर लिस्ट में, कोई और रहा होगा?
16: हाँ।
15: तो फिर आपने क्या किया, री इवैल्यूएशन के लिए किया ना?
16: हाँ, मैंने फिर री इवैल्यूएशन जब पोर्टल खुला था सीबीएसई का देन अप्लाई किया था।
15: हाँ, क्या फिर क्या हुआ, क्या चेंजेस आया उसमें, कितना कैसे मार्क्स इम्प्रूव हुआ बताइए।
16: सो बेसिकली इंग्लिश में मेरे पहले 81 out of 100 आए थे, तो 19 मार्क्स का इंक्रीज उस सब्जेक्ट में हुआ,
15: सीधे 100 आ गया ना?
16: हाँ।
15: अच्छा, ठीक है, वेरी गुड।
16: बिजनेस स्टडीज में मुझे पहले 95 आया था जो अब 100 हो गया।
15: ये दो में आपका नंबर बढ़ गया, मतलब 19 और 5 24 नंबर बढ़ गया।
16: हाँ, 24।
15: तो सीधे आप 100% पे चले गए।
16: हाँ।
15: इसके पहले जो टॉपर था उसको 99.4% था, वो कारों से थी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्रेडिट किसको देते हैं? ये जो आया है कितना अच्छा लग रहा है आपको, हाउ यू फीलिंग?
16: I'm feeling obviously very happy about it. Credit, I'd say, obviously मेरे teachers have been there throughout. School teachers हो गए, मेरे tuition teachers that I took, Sachit sir, Preeti ma'am, मेरे maths teacher जो थे, them. And I think मेरा जो biggest support system रहा है has always been my parents. मामा पापा को, I'd say, like that is the one thing that I'm most grateful for. So इसलिए I think
15: आगे क्या pursue करना है?
16: आगे अभी मेरा एक्चुअली कॉलेज डिसीजन स्टिल पेंडिंग है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा मेरा कोर्स स्ट्रक्चर, बट मोस्टली मुझे कॉमर्स लाइन में ही रहना है।
15: नहीं, मेरे आगे कुछ तो आपने सोचा होगा ना, कोई या तो फिर आपको सीए बनना है या फिर कोई यूपीएससी वगैरह क्रैक करना है, कोई एम तो हो?
16: मुझे एक्चुअली अपना बिजनेस स्टार्ट करने का हमेशा से एक डिजायर रहा है, सो आई थिंक
15: एंटरप्रेन्योर बनना है आपको
16: बेसिकली वही। एंड
5: क्या बात है, ऐसा भी होता है 500 आउट ऑफ 500। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुलाकात करवाएंगे 76 साल की उन महिला से जिनकी बंदरों से दोस्ती मिसाल बन गई। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: The world's biggest soccer tournament has arrived, and you can trade the entire tournament on Kalshi. Spain is currently trading at over 17% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $530 if they win soccer's biggest prize. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use code JUMP to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.
1: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
2: I have no idea how this election is going to play out,
1: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कानून व्यवस्था संभालने में बिताया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद खुद को बेजुबान जीवों की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया।
9: बिल्कुल, तमिलनाडु के मदुरई की 76 वर्षीय मालती अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा बंदरों को खाना खिलाने में खर्च करती है। उनके और बंदरों के बीच का रिश्ता अब इतना गहरा हो चुका है, ये कनेक्शन इतना गहरा हो चुका है कि ये जानवर अब उन्हें देखते ही उनके पास दौड़े चले आते हैं।
10: एक बार मालती देवी इसी तरह अपनी कार से निकलती है, बहुत से फल और ढेर सारी मूंगफलियाँ लेकर। ये फल और मूंगफलियाँ उनके खास बेजुबान दोस्तों के लिए हैं, जो मालती देवी को पहचानते हैं और उनका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। और जैसे ही उनकी कार रुकती है, मालती देवी के बेजुबान दोस्त उन्हें घेर लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है दावत का दौर। पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली 76 साल की मालती ने जानवरों की सेवा को अपना मिशन बना लिया है। 2015 से वो अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा त्रिवपरन कुंद्रम के जंगलों और पहाड़ियों में रहने वाले बंदरों को खाना खिलाने में लगा रही हैं। आज उनकी एक आवाज पर 400 से ज्यादा बंदर दौड़े चले आते हैं। मालती देवी का मिशन आज मिसाल बन चुका है। वो खुद गांधीग्राम यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन की डायरेक्टर रह चुकी हैं। उन्होंने कोडाईकनाल के एक इंटरनेशनल स्कूल में भी अपनी सर्विस दी है। यही नहीं, उन्होंने पूरे 33 साल तक तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर देश की सेवा की है। साल 2010 में वो अपनी नौकरी से रिटायर हुई।
11: In 2010, I retired from my job.
10: मैं 2010 में नौकरी से रिटायर हुई। मुझे हर महीने एक अच्छी पेंशन मिल रही है, जो मेरे खर्चे से बहुत ज्यादा है। मैं उस अमाउंट को इन बंदरों पर खर्च कर रही हूँ, जिनको समाज नजरअंदाज कर देता है। ये बंदर जंगल और हिल स्टेशन पर रह रहे हैं और खाने के लिए तरस रहे हैं। मैं पिछले 13 सालों से इन बंदरों को तिरुपरन कुंड्रम में खाना खिला रही हूँ। जानवरों के लिए मालती देवी उनकी ऐसी दादी माँ हैं जो उनका ख्याल रखती हैं, उनके लिए ढेर सारा फल लेकर आती हैं। हालांकि बढ़ती उम्र और शरीर की बंदिशों ने उन्हें थका दिया है, लेकिन बावजूद इसके उनका जज्बा कायम है। मालती देवी का मानना है कि इन बेजुबानों की सेवा करने से जो सुकून मिलता है उनको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चाय पर चर्चा लगातार जारी है, देखते रहिए जीएनटी।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल चुकी है।

0: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: और अब बात ऐसी तस्वीर की जो किसी पेंटिंग से कम नहीं है। देखिए, पूर्वी चीन के नानजिंग में मौजूद शियानवू झील में बारिश के बीच एक ही डंठल पर खिले जुड़वा कमल के फूलों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बारिश की बूंदों से सजी गुलाबी पंखुड़ियां जब हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे लहराई तो झील का नजारा और भी मनमोहक हो गया। ऐसा लगा मानो प्रकृति ने खुद अपनी सबसे खूबसूरत कलाकृति पेश कर दी।
3: दरअसल चीनी संस्कृति में एक ही डंठल पर खिले दो कमल के फूल शुभता, सौभाग्य और सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं, और यही वजह है कि हर साल जब शियानवू झील में ऐसे जुड़वा कमल दिखाई देते हैं तो उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं।
4: और देखिए, हाल ही के सालों में ये दुर्लभ प्राकृतिक घटना यहाँ बार बार देखने को मिलती है। अब ये शियानवू झील की एक खास पहचान बन चुकी है। बारिश, झील और एक ही डंठल पर खिले दो कमल, इन सब ने मिलकर ऐसी तस्वीर बुनी है जिसने देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
3: लेकिन चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी चाय जारी रहेगी क्योंकि मौसम हो गया है ऑसम। बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में भी, मुंबई में भी और भी कई राज्यों में। अभी मौसम का मजा लीजिए, कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
4: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 समारोह दूसरे सम्मान समारोह में कुल 65 लोगों को अवार्ड दे रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक्टर ममूटे और सिंगर अलका याग्निक को मिला पद्म भूषण पुरस्कार। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में एनएसजी कमांडोज ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे रंग। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के किए दर्शन, एक्टर ने बाबा बागेश्वर को भेंट किया अंगवस्त्र। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की यात्रा से लौटने के

0: हनुमान जी की पौराणिक निशानियों को देखकर बागेश्वर पीठाधीश्वर भाव विभोर हो गए।
1: स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने के लिए बागेश्वर बाबा 26 से 28 जून के बीच इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडोनेशिया की धरती पर वो सनातन कथा के माध्यम से मानव मात्र की एकता का संदेश देंगे। इंडोनेशिया से पहले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने सनातन और बौद्ध धर्म के तात्विक दर्शन का संदेश दिया। बीते 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का वहां की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक महात्म्य के अनुसार स्वागत किया गया। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। श्रीलंका जाने के बाद वो अशोक वाटिका में कैसे नहीं जाते, जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। लिहाजा बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे, जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं। मान्यता है कि सीता एलिया गांव में मौजूद वाटिका वही अशोक वाटिका है, जहां लंकाधिपति रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा श्रीलंका की उस पौराणिक दिव्य भूमि पर पहुंचकर भक्ति और आनंद के रस से सराबोर हो गए।
2: यहां सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मूत्र का दी। अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहां हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों। और वो सामने वहाँ चरण है और नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसमें माता जानकी जी स्नान करती थी ऐसा कहते थे, और इसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान रहते थे। ये सामने पूरा बाग है, इसको अशोक वाटिका कहते हैं। सामने वो पर्वत है, उस पर्वत की टीला जो देखो बड़े बड़े पर्वत हैं और पर्वतों के मध्य में है, और ये बाग है जिसको अशोक वाटिका नाम दिया था, नाम था जहाँ माता जी जिस अशोक वाटिका में विराजमान थी। इतने घने जंगल में आदता यत्याचारी रावण हमारी माँ को लेकर के कहाँ आया था, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, इतनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने दीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी है, जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं।
1: मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब पहली बार चरण रखा तो वहां दिव्य अलौकिक पद निशान बन गए। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा अशोक वाटिका में हनुमान जी के चरण चिन्ह के पास भी पहुंचे और अपने आराध्य की पावन निशानी के दर्शन कर भावुक हो गए।
2: जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर श्रीलंका की यात्रा में जहां हनुमान जी का चरण है वो आपको यहां हम दर्शन करवा रहे हैं। ये हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने विराट दर्शन माता जानकी जी के दिए थे। और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है, जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है, लोग मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी, और ये वो विराट चरणों का चिन्ह है। यदि आप दर्शन कर पाएंगे तो हम श्रीलंका की यात्रा में अशोक वाटिका में जहाँ माता जानकी जी है सकते थे। एक एक पल श्री राम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा की सुविधा

0: cel mai tată și.
1: काबिले गौर है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में सनातन धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन मंदिर और सिद्ध मठ हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम के सनातन जय घोष के साथ ही सिद्ध स्थानों पर जाकर वहां के आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाना है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर

0: और माँ काली की पूरी आस्था और विधि विधान के साथ पूजा आराधना। खास बात ये कि बाबा बागेश्वर जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुँचे तो पूरा परिसर जय श्री राम के पावन जयकारों से गुंजायमान हो गया।
1: जय श्री राम,
2: जय श्री राम।
0: जय श्री राम के जयकारों के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा की थाल में कमल पुष्प और दूसरे नैवेद्यों को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया। कोलंबो के प्राचीन भद्रकाली मंदिर में बाबा बागेश्वर काफी देर तक ठहरे और इस दौरान शांत चित्त होकर पूरे भक्ति भाव के साथ माँ के विग्रह का दर्शन पूजन किया। अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर बौद्ध और सनातन धर्म की बुनियादी एकता का संदेश देने वाले गंगार माया मंदिर भी पहुँचे और भगवान बुद्ध की स्वर्णाभ प्रतिमा का पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन किया। आपको बता दें कि कोलंबो स्थित गंगार माया मंदिर सनातन और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम है, जहाँ भगवान बुद्ध के अलावा भगवान कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की अनुपम प्रतिमाएं स्थापित हैं। बाबा बागेश्वर ने इस मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के साथ ही भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं के दर्शन किए।
3: श्रीलंका जैसे ही हम पहुंचे एक ऐसे टेंपल पे पहुंचे जहां सनातन संस्कृति और बुद्ध परंपरा दोनों का संयोग हो रहा, दोनों का एक अभूतपूर्व हमने अनूठा संगम देखा। यहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, बोधि वृक्ष और भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं, जहाँ लोग दर्शन करते हैं। भारत की परंपरा और श्रीलंका की परंपरा दोनों का यहाँ पर संयोग और मेल देखा। हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी यहाँ पहुंचे थे और भारत से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति या जो भी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति विचारधारा रखते हैं वो यहाँ सब पहुंचते हैं। हम यही कहना चाहेंगे अंततो गत्वा भारत सबको अपना बनाता है, भारतीय परंपरा सबको अपना बनाती है, इसलिए भारत को परिवार कहा जाता, भारत को माँ कहा जाता, क्योंकि माँ सबके लिए ममत्व रखती है, ममता रखती है।
0: श्रीलंका स्थित बौद्ध और सनातन मंदिरों और मठों में जाकर आध्यात्मिक लाभ लेने के बाद बाबा बागेश्वर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से भी मिले। राजपक्षे ने सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के दौरान बाबा बागेश्वर ने महिंद्रा राजपक्षे के आरोग्य की कामना के साथ ही भारत श्रीलंका के लोगों के बीच सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ाने के उपाय भी बताए।
4: और उसका यही तुम उपाय है कि भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने जाए और श्रीलंका के लोग राम लला के दर्शन करने जाए।
5: Bilji is hoping that in years from India come to see the Ramayana trail over there and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthplace.
4: People to people.
5: People will connect through Ramayana.
4: उसका सर्वोत्तम उपाय ही है रामायण के दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएंगे।
0: श्रीलंका की धरती पर जाकर बाबा बागेश्वर राम कथा की सरिता प्रभावित न करते ये भला कैसे हो सकता है। श्रीलंका की धरती पर राम कथा के लिए बाबा ने अद्भुत स्थान का चयन किया।
6: कथा में भी सरोवर है।
0: बाबा ने समंदर तट पर पंडाल लगाकर लहरों की सरसराहट के बीच राम कथा की कल कल सरिता प्रवाहित
6: की। पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करते अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। बागेश्वर परिवार के उन गिने चुने पुष्पों को हम लेकर यहाँ आए जिनको रामेश्वरम महादेव ने बुलाया। और जगह हमको बहुत प्यारी मिल गई। सामने सागर है, इस तरफ हम हैं। समुद्र तट के किनारे भगवत चर्चा हो रही, क्या अद्भुत संगम है, क्या अद्भुत। एक तरफ महादेव बैठे, एक तरफ सागर है, तीसरी तरफ कथा की रसधार बह रही है। सागर में भी डुबकी लगाओ, दर्शन में भी डूब जाओ और कथा में भी सरोवर हो जाओ।
0: साफ है कि अपनी 4 दिवसीय श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने विदेशी धरती से सनातन एकता और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया। इक्कीस जून को बाबा बागेश्वर श्रीलंका से वापस लौटकर मुंबई स्थित भिवंडी पहुंचे हैं, जहां बागेश्वर बालाजी सनातन मठ है। बाबा बागेश्वर अब अपनी इंडोनेशिया यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो 26 से 28 जून के बीच है। इंडोनेशिया में बाबा बागेश्वर की यात्रा का महत्व इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति की प्राचीन निशानियां आज भी बहुतायत में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों में लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं और 7 समंदर पार जाकर सनातन धर्म का अलौकिक संदेश दे रहे हैं। विदेशों में बाबा बागेश्वर न सिर्फ राम कथा सुनाते हैं बल्कि अपना चमत्कारिक दरबार भी लगाते हैं। इस दौरान विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय मूल निवासी भी बाबा की आध्यात्मिक सिद्धियों को देखकर कौतूहल से भर जाते हैं।

0: जहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व हमारा परिवार है और सबका मंगल हो, ये सिर्फ भारत देश के सनातनी लोग करते हैं।
1: Only Hanuman is greatest management guru on this universe. इसलिए surrender हो जाओ, राम गाओ। I cannot speak in English, but I understand your feelings. हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। रुको प्लीज वेट।

0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा विदेशी धरती पर भी सनातन धर्म का परचम लहराते रहे हैं।
1: जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय।
0: सात समंदर पार भी उनकी सिद्धि की नुमाइश लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनती है। विदेशी धरती पर सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी।
2: आप सब भारत से कोसों दूर हैं, पर दूरी 8 किलोमीटर की है, दिल की बहुत नजदीकी है आप लोगों की।
1: Yes.
0: 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया।
3: बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो।
4: ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन
5: जी।
4: यूएसए का इंतजार कर रहे हैं।
5: कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे, इटली फ्रांस जो भी था आपका प्लान, मैं
4: अभी
5: कब से
4: सब कैंसल है,
5: सब कैंसल हो गया तो मुझे आना पड़ गया।
4: ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई है
5: बस गुरु जी आप,
4: क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड।
0: दिलचस्प बात ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा ने कथा वाचन के अलावा प्रवासी भारतीयों के बीच चमत्कारी दरबार भी लगाया, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया था। कमाल तो ये है कि अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले जाने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत, हमने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक एक साल बाद यानी जुलाई 2024 में बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका आतिथ्य सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंग बली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: चालीसा का पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: यू कम हियर, सो यू स्पीक इन हिंदी।
2: पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ ही वहां के मूल निवासी भी इनके आदर सत्कार में पीछे नहीं रहते। इसी साल 8 से 22 अप्रैल के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया।

0: 15 दिवसीय यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर के सम्मान में कई समारोह आयोजित किए गए, जहां उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित किया गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया।
1: प्रसन्नता है और सनातन के लिए बहुत गौरव की बात है। हमें जो बताया गया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हॉल में कोई सनातन संस्कृति का कार्यक्रम आयोजित हो।
0: अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। जून 2025 में बाबा की फिजी यात्रा के दौरान कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिजी में 13 से 15 जून 2025 के बीच कई जगहों पर हनुमत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 से 25 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा पर भी जा चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी यूएई यात्रा को लेकर नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी की थी। बाबा बागेश्वर अपनी तमाम विदेश यात्राओं के दौरान अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों को परस्पर जोड़ने की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। यही वजह है कि विदेशी मूल के लोग भी उनके प्रवचन को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं और उससे अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं।
1: स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्लीज वेट।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: क्या आपकी कुंडली में शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या है इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: No.
2: Oh, no.
3: Welcome to Get Real.
2: I got something to say.
3: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
2: Oh, my God.
4: It's got to be deliciously desperate.
5: Why do these girls forgive him?
6: Well, she has a soft spot for troubled men.
4: Boo bloody who?
3: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
2: Love runs deeper than we know.
3: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
1: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Byers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
2: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
1: Experience the Byers difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
3: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
4: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
8: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 समारोह, दूसरे सम्मान समारोह में कुल 65 लोगों को अवार्ड दे रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक्टर ममूटी और सिंगर अलका याग्निक को मिला पद्म भूषण पुरस्कार। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में एनएसजी कमांडोज ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे हैं रंग। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के किए दर्शन, एक्टर ने बाबा बागेश्वर को भेंट किया अंगवस्त्र। दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। 56 हस्तियों को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण और 2 को पद्म विभूषण। क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साउथ सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण, टेनिस खिलाड़ी विजय को पद्म भूषण। DMM के संस्थापक दिवंगत शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया पद्मश्री से सम्मानित। पूर्व न्यायाधीश कैटी थॉमस को पद्म विभूषण, मलयालम पत्रकार पी नारायणन पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित। हेमकुंड साहब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, चमोली में हुई जबरदस्त बारिश। हेमकुंड साहब में चारों ओर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट। बर्फबारी पर आस्था भारी, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास की। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। खराब मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 1,28,000 भक्तों ने टेका मत्था। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 40,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, 2 महीनों में आंकड़ा 12,00,000 के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 11,00,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 50,00,000 से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, जवानों ने इमरजेंसी की तैयारियों को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलाबारी, आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में साल का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव कामाख्या धाम में अंबुबाची महायोग का भव्य शुभारंभ। अंबुबाची महायोग शुरू होती है, भक्ति के रंग में पूरी तरीके से डूब गया गुवाहाटी नीलाचल पहाड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। मां कामाख्या के वार्षिक राजस्व काल के कारण कपाट बंद। 23 से 25 जून तक लगातार 3 दिन और 3 रात महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, विशेष धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ होंगे संपन्न। अंबुबाची मेले में देश विदेश से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उनके पहुंचने की उम्मीद है। देश भर में आस्था और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है आखिरी और 8वां बड़ा मंगल का त्यौहार, आज के दिन बजरंगबली के दर्शन पूजन करने के लिए मंदिर में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है बड़े मंगल का दिन, विधि विधान के साथ पूजा करने से मिलता है बजरंगबली का विशेष आशीर्वाद। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला मंगलवार को होता विशेष महत्व, मान्यता है कि ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुई थी भगवान श्रीराम और बजरंगबली की मुलाकात। भगवान बजरंगबली की कृपा से दूर होती है जीवन की बाधाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति का मिलता है आशीर्वाद। ज्येष्ठ मंगल को ही भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिलता है और ज्येष्ठ में किए गए शुभ कार्य के कई गुना फलदायी होने की मान्यता मानी जाती है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का जनसैलाब। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी हुई भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन करके चमेली का तेल, सिंदूर, बेसन के लड्डू अर्पित किए। आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर बजरंगबली की मूर्ति का भव्य श्रृंगार किया गया, भगवान को अर्पित फूलों की मालाएं और अर्पित किए गए आभूषण। आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी नजर आए। ज्येष्ठ महीने के मंगल को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन हनुमान जी से शक्ति, साहस और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजा की जाती है। अयोध्या में आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन करने के लिए सुबह से मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाया जय श्री राम के जयकारे। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के आखिरी और 8वां बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का जनसैलाब, दर्शन करने के लिए लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। उज्जैन में आखिरी और 8वां बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। बाबा महाकाल का भांग चंदन सिंदूर और आभूषणों से किया गया राजा स्वरूप का श्रृंगार, सुबह से भक्तों की लंबी कतारें। कौंडण्यपुर से माता रुक्मणी की 432 साल पुरानी भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। ताल मृदंग वीणा की गूंज और माता रुक्मणी के जयघोष के साथ पूरी कौंडण्यपुर नगरी पंढरपुर के लिए रवाना हुई।
9: रुक्मणी माता
8: गांव के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों ने पालकी यात्रा को किया जबरदस्त स्वागत, जगह जगह रंगोलियां सजाई। प्रयागराज से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर, श्रृंगवेरमपुर में बन रहा है तैयार रामवन गमन मार्ग। अयोध्या से सीधे जुड़ेगा प्रयागराज, जल्द रामवन गमन मार्ग होगा उसका उद्घाटन। गांधीनगर में अगरिया समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए गुजरात सरकार की अनोखी पहल, स्कूल ऑन व्हील्स रणशाला प्रोजेक्ट की शुरुआत। मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 28 रणशाला बसों का विधिवत किया लोकार्पण। रणशाला में क्लासरूम में 43 इंच का स्मार्ट टेलीविजन, डिश टीवी कनेक्टिविटी के जरिए एजुकेशनल चैनल, एफएम रेडियो, डिजिटल घड़ी, एलईडी लाइटिंग की सुविधा। रक्सौल का गेटमैन ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में किया कमाल, बना डीएसपी। जालना में पहली बार कैंसर की जटिल सर्जरी हुई सफल, मेलिंगनेट पायलॉइड्स ट्यूमर का हुआ सफल उपचार। गाजियाबाद में नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल एसोसिएशन के 52वें स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 85 विकास परियोजनाओं को शिलान्यास कर दिया, कहा विकास करना हमारा मकसद। देवघर में नमो एम्बुलेंस सेवा की हो गई शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे हुए शामिल। फिट इंडिया मुहिम के तहत तिरुवनंतपुरम में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया, युवाओं ने भी चलाई साइकिल। अगरतला में ओलंपिक दिवस समारोह पर भव्य कार्यक्रम किया गया, मुख्यमंत्री माणिक साह ने शिरकत की। जूनागढ़ में कुएं में गिरा शेर का शवक वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे लगातार सैलानी, श्रीनगर में शिखर राइड कर ले रहे हैं आनंद। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों की हुई भारी परेशानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। धूलभरी आंधी से दिल्ली एनसीआर का लुढ़का तापमान, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ८० किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, चारों तरफ धूल भरी आंधी। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के बाद दिल्ली में झमाझम बारिश, मौसम सुहाना। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट, लोगों के खिले चेहरे। धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली में दिन में ही छा गया अंधेरा, कई इलाकों में उठा धूल का गुबार। गाजियाबाद में भी तेज रफ्तार से चली धूल भरी आंधी, इसके कारण विजिबिलिटी रही बहुत कम। गाजियाबाद के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त, धूल भरी आंधी के बाद गर्मी से मिली राहत। गुरुग्राम में भी मौसम ने ली करवट, तेज आंधी की वजह से सड़कों पर छाई धूल। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, चिलचिलाती गर्मी के बाद हुई झमाझम बारिश। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश, कई इलाकों में भर गया पानी। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मानसून होगा और मजबूत, 25-26 जून को मूसलाधार बारिश की संभावना। वाशिम के कई इलाकों में बारिश, जगह जगह भर गया पानी। भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिले राहत। गुजरात के कई जिलों में जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर जलजमाव। नवसारी में भी जबरदस्त बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भावनगर में भारी बारिश, लोगों को मिली राहत, 2 घंटे में 1.5 इंच बारिश। अमरेली में लगातार 5 दिनों से बारिश लगातार जारी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में बदल गया मौसम का मिजाज, अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। आईएमडी के मुताबिक अल नीनो की वजह से गुजरात में अब तक मानसून की शुरुआत नहीं हो पाई है, अभी 3 से 5 दिनों तक करना होगा और इंतजार। गुजरात के वलसाड में भी अच्छी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में भर गया पानी। सूरत में भी हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। डांग में दूसरे दिन रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में मानसून ने अपनी खूबसूरती बिखेरी, पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों का नजारा जबरदस्त। पश्चिम बंगाल के नागरकाटा में भारी बारिश से बढ़ा सुकानी नदी का जलस्तर, कई घरों में घुस गया पानी। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग में भारी भूस्खलन, लिकाबा ली बासार रूट पर आया मलबा। भूस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट, कई रास्तों को किया गया बंद, आवाजाही प्रभावित। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के चलते तीस्ता नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में पानी भरा। बांदा में फिर बढ़ने लगी गर्मी, तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार, लोग बेहाल। हुमा कुरैशी की आगामी फिल्म बेबी डू डाई डू का धमाकेदार ट्रेलर हो गया रिलीज, 3 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म रूह में इमरान हाशमी की एंट्री, फिल्म का पहला लुक निकलकर सामने आया, अगले साल 2027 में होगी रिलीज। निधि दत्त की फिल्म बॉर्डर 3 का ऐलान, सनी पाजी की होगी दमदार वापसी। फिल्म तेरा यार हूं मैं का टाइटल सॉन्ग जारी हुआ, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर हुआ लॉन्च, 10 जुलाई 3 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दिल्ली के ऑस्ट्रियाई दूतावास पर देखा फीफा का खुमार, दूतावास पर वॉच पार्टी का आयोजन किया गया। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस, लोगों ने मैच का जमकर लुत्फ उठाया। कोलंबियाई सिंगर शकीरा ने डलास में अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया मैच का उठाया लुत्फ, शकीरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस। फीफा वर्ल्ड कप के रोमांच के बीच मियामी का मशहूर लिटिल हवाना इलाका स्कॉटिश रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ नजर आया। मुकाबले से पहले फैंस ने सड़कों पर मार्च निकालकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाया।

0: स्कॉटलैंड के झंडे, पारंपरिक परिधान, बैकपाइपर और ड्रम की धुन पर नाचते गाते नजर आए समर्थक, जमकर लगाए अपनी टीम की जीत के जयकारे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: क्या आपकी कुंडली में शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या हैं इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अब गर्मी में कूल कूल एहसास कैसे लिया जाए, उसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते रहे हैं। वहीं पर घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज जो हैं गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से भी एक खास पहल की गई है, देखिए।
2: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशन पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर कहाँ से आए हैं आप?
3: हम नागपुर से आए हैं।
2: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए कैसा लगा?
3: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होंगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
2: मैम कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
4: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
5: राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छतरी दे रहे हैं ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इसे, ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
6: असल में यहाँ पे गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
2: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
6: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे, ठीक है। लेकिन
2: मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
6: हाँ एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियां देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं। हाँ
2: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
7: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
2: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलास हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलास नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति है माने रहेंगे, बस इतनी सी बात है। निःशुल्क सेवाएं हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
1: चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें दिखाते हैं। देखिए ब्रिटेन की राजधानी एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इन राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं पड़ता और वो है लैरी द कैट। डाउनिंग स्ट्रीट के मशहूर चीफ माउसर लैरी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं।
8: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है। चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिज ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टार्मर तक सबको आते जाते देखा है, मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बेट्रेसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना, और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद, जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखता है, और कभी कभार तो इस ऐतिहासिक इमारत के फर्नीचर पर सोकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है। कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। एक्स पर उसके पैरोडी अकाउंट को करीब 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में इसी अकाउंट से मजाकिया अंदाज में लिखी पोस्ट खूब वायरल हुई। इसमें लिखा था, मैंने की स्टार्मर का इस्तीफा अपने मुख्य सेवक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेटकर यहां से विदा लेते हैं, तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
9: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
10: What about me, Jack? What about me?

0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
1: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
3: गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
9: Sage University, transforming your passion into profession. TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
10: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह. सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण. क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान. कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड. जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी के दरबार. 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड. अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता. जम्मू में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल. 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा. अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़. कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल. कला और संस्कृति के दिख रहे रंग. दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट. तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा. मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके.
10: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा. शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के

साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की सात गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज ज्येष्ठ महीने का आठवां और अंतिम बड़ा मंगल है, यानी कि आज बजरंग बली का दिन है, लिहाजा पूरे देश के हनुमान मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है आखिरी बड़ा मंगल पर मंगल कामना। आपको बता दें कि आज संकट मोचन हनुमान की भक्ति में श्रद्धालु लीन है। बजरंग बली के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं।

देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों भोलेनाथ के जयकारों से पहाड़ गूंज रहे हैं। पंच केदारों में शामिल चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कठिन पहाड़ी रास्तों और 22 किलोमीटर लंबे दुर्गम ट्रैक को पार कर भक्त भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है कठिन ट्रैकिंग कर रुद्रनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। आस्था, प्रकृति और रोमांच का अनूठा संगम इन दिनों रुद्रनाथ यात्रा में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग बाबा रुद्रनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

0: ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरे भरे पहाड़ और हर दिशा में गूंजता हर हर महादेव का जय घोष। ये तस्वीर है चमोली जिले के पंच केदारों के चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ धाम की, जहां इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव के मुख्य स्वरूप के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ के भक्त और ट्रैकिंग के शौकीन लगभग 22 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा ट्रैकिंग कर रुद्रनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्ग पर क्या पुरुष क्या महिलाएं, क्या बच्चे और बुजुर्ग, सभी 22 किलोमीटर लंबे और कठिन ट्रैक को पूरा करके बाबा रुद्रनाथ के दर्शन कर रहे हैं।
1: बाबा रुद्रनाथ के कपाट इस बार 18 मई को खुले थे और अब यहां लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बड़ी कठिन यात्रा बाबा रुद्रनाथ की होती है, 18 से 22 किलोमीटर का जो पैदल सफर होता है उसके बाद रुद्रनाथ धाम में पहुंचा जाता है। यहाँ पे भोलेनाथ के मुखानन के मुख के दर्शन श्रद्धालुओं को होते हैं और 18 मई के बाद यहाँ लगातार जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं लगातार पहुंचने पे लगे हैं। जो भोलेनाथ के भक्त हैं बड़ी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पे पहुंच रहे हैं।
0: दरअसल रुद्रनाथ धाम तक पहुंचना आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को सागर गांव से करीब 22 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में खड़ी चढ़ाई, संकड़े पहाड़ी मार्ग और बदलता मौसम यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाता है, लेकिन भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा के आगे ये कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। रुद्रनाथ में आस्था का सबसे भव्य नजारा शाम के समय नजर आता है, जब रुद्रनाथ मंदिर में आरती होती है और पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से भर जाता है। भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आते हैं। 18 मई को रुद्रनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे, तब से यहां लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। ट्रैकिंग प्रेमी और शिव भक्त इस यात्रा को अपनी आस्था और साहस का प्रतीक मानते हैं। रुद्रनाथ यात्रा उत्तराखंड की सबसे चुनौतीपूर्ण और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है, जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वैसे आस्था और भक्ति की ऐसी ही तस्वीर हेमकुंड साहिब के दरबार में भी देखने को मिल रही है। इन दिनों रोजाना पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5000 से ज्यादा है, जबकि अब तक हेमकुंड साहिब में 1,27,369 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने पहुंच चुके हैं। हालांकि समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब में मौसम लगातार बदल रहा है और तापमान भी काफी कम बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन ने यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान पर्याप्त गर्म कपड़े, रेनकोट और मजबूत वाटरप्रूफ जूते अपने साथ जरूर रखें। दरअसल जून जुलाई के महीने में पहाड़ों में मौसम कभी भी अचानक बदल जाता है, जिससे ठंड बढ़ने के साथ बारिश या बर्फबारी जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं को पहले से सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कमल नयन सिलोरी, चमोली, उत्तराखंड, गुड न्यूज टुडे।
2: ओडिशा का पवित्र तटीय शहर पुरी इन दिनों भक्ति, उत्साह और तैयारियों के रंग में सराबोर है। दुनिया भर में प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को निकाली जाएगी, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है अंतिम चरण में भगवान जगन्नाथ का रथ। जगन्नाथ रथ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा महापर्व है, जिसका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा, अद्भुत शिल्पकला और सामुदायिक सहभागिता का अनूठा संगम है।

0: ये तैयारी उस महापर्व की है जब भगवान और भक्तों के बीच की दूरी मिट जाती है और पूरी नगरी भक्ति के रंग में रंग जाती है। ये तैयारी उस ऐतिहासिक रथ यात्रा की है जो सदियों से श्रद्धा, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक बनी हुई है। ये तैयारी उस अलौकिक यात्रा की है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथों पर विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तैयारी उस भव्य यात्रा की है जिसका इंतजार करोड़ों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। सबसे ज्यादा इस रथ यात्रा का इंतजार होता है पुरी के लोगों को, उन कारीगरों को जो दिन रात एक करके अपने आराध्य का रथ पूरी भक्ति और शक्ति के साथ तैयार करते हैं।
1: इस साल 2026 जुलाई 16 तारीख को रथ यात्रा मनाया जाएगा और इसके लिए पूरी में पूरी तैयारी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं, मैं अब जहां पे रथ बनाया जाता है भगवान जगन्नाथ का, जो रथ यात्रा होगा इस रथ यात्रा के लिए जो रथ, तीनों रथ बनाया जाता है, ये तीनों रथ का काम अब शुरू हो चुका है।
0: इस साल 16 जुलाई को होने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। रथ का निर्माण पूरा हो चुका है और खास बात है कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक आज भी इन रथों को आधुनिक मशीनों से नहीं बल्कि पारंपरिक तकनीकों से बनाया जाता है। कारीगर अपनी पूरी आस्था के साथ एक लकड़ी के टुकड़े को नक्काशी के साथ तैयार करते हैं।
2: हम विश्वकर्मा के परिवार से हैं, मुख्य विश्वकर्मा के परिवार से हैं, जो ताल ध्वज का मुख्य परिवार है हमारा। अभी तो अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक तीनों महीने काम होता है रथ का, लेकिन इस साल पुरुषोत्तम महीना एक महीना ज़्यादा है तो इसलिए तीन महीना काम हो रहा है। अभी रथ का शेष पर्याय काम चल रहा है, जो रथ के चारों तरफ चार चार द्वार भड़ा जो है अभी तीनों बन चुका है और एक बनना बाकी है। अभी रथ के ऊपर का काम जो है पटल, बाढ़धरा पटल लगाया गया है।
0: वैसे रथ यात्रा की तैयारी केवल लकड़ी और निर्माण तक सीमित नहीं है, रथों की पारंपरिक गुम्बदाकार आकृति को बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। रंग बिरंगे कपड़े और आकर्षक सजावट के लिए भी अलग से कारीगर लगे हैं। कुल करीब 220 कारीगर और सेवादार दिन में 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं।
1: कितने लोग यहाँ लगे हुए हैं, कितने कारपेंटर यहाँ लगे हुए हैं?
3: कारपेंटर को सहायता करने के लिए भोई, लकड़ियाँ उठाने के लिए, इसके बाद लोहे काम करने के लिए कमार से कहा जाता है, चित्रकार काम कर रहे हैं, टेलरिंग दर्जी का काम चल रहा है, लगभग 220 आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पर।
1: 220
3: आदमी काम कर रहे हैं।
0: लकड़ी पर हर चोट के साथ लकड़ी आकार ले रही है और हर आकार के साथ जगन्नाथ प्रभु की ऐतिहासिक यात्रा की तारीख करीब आ रही है। और जैसे जैसे रथों का निर्माण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की उत्साह भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस भव्य रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु पूरी पहुंचते हैं। ऐसे में रथ निर्माण के दौरान हर छोटी बड़ी बारीकी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विशालकाय रथों को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वे लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी और लंबी यात्रा के दौरान पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत बने रहें। कारीगर रथ के हर हिस्से की कई बार जांच करते हैं, लकड़ी के चयन से लेकर पहियों, खंभों और ऊपरी संरचना तक हर भाग को पारंपरिक मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी प्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त लकड़ी, जरूरी उपकरण और मरम्मत से जुड़े संसाधन भी तैयार रखे जाते हैं।
1: यहाँ तक पूरा 4 इंच से लेकर के 4.5 फीट तक ये किल लगता है।
0: सदियों पुरानी परंपरा, अद्भुत शिल्पकला और अटूट श्रद्धा का प्रतीक जगन्नाथ रथ यात्रा का निर्माण अब अंतिम चरण में है और पूरी नगरी भी तैयार है उस ऐतिहासिक क्षण के लिए जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच रथ पर सवार होकर पहुंचेंगे। पूरी से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले दिनेश मशरूवाला अपने साइकिल प्रेम के लिए जाने जाते हैं। जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम और रिटायरमेंट की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उस उम्र में दिनेश जी न सिर्फ रोज साइकिल चलाते हैं बल्कि दुनिया की दुर्लभ साइकिलों का ऐसा शानदार कलेक्शन तैयार किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है और वो है दुनिया की दुर्लभ साइकिलों का शानदार कलेक्शन। जी हाँ, दिनेश मशरूवाला का जुनून आज युवाओं के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं। आइए जानते हैं उनकी इस अनोखी कहानी के बारे में।

0: ये है सूरत के सलाबतपुरा इलाके में रहने वाले दिनेश मशरूवाला। जिस उम्र में ज्यादातर लोग आराम और रिटायरमेंट की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उस उम्र में दिनेश न सिर्फ रोज साइकिल चलाकर खुद को फिट रखते हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया की कुछ दुर्लभ साइकिल्स का भी शानदार कलेक्शन कर रखा है। दिनेश को बचपन से साइकिल्स बेहद पसंद थी और उन्हें साइकिल चलाने के अलावा साइकिल्स को इकट्ठा करने का भी शौक था। समय बीतने के साथ उनका ये शौक बढ़ता चला गया। दिनेश ने धीरे धीरे अलग अलग देशों के खास और दुर्लभ साइकिल्स को अपने कलेक्शन में शामिल करना शुरू किया और आज उनके पास दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, नीदरलैंड समेत कई देशों से लाई गई 30 अनोखी साइकिल्स मौजूद हैं।
1: कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है और जब इंसान के जीवन में कोई शौक पाल लेता है तो उसे किए बिना वो नहीं रहता है। बात गुजरात के सूरत शहर के एक ऐसे वृद्ध की है जिनकी उम्र 74 साल है और उनका जो शौक है वो साइकिल चलाने का है। साइकिल चलाने के लिए न सिर्फ वो सूरत की सड़कों को पसंद करते हैं बल्कि विदेश की धरती पर भी जाकर के साइकिलें चला चुके हैं और यही कारण है आज उनके पास 30 से ज्यादा विदेशी ब्रांड की साइकिलें हैं।
0: दिनेश के पास मौजूद हर साइकिल का डिजाइन अलग है, हर मॉडल की अपनी खासियत है और सबसे बड़ी बात ये कि हर एक के पीछे एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है।
2: एक ओलंपिक वाली जो बाइसिकल थी वो इट इज मेड ऑफ गोल्ड द पर्टिकुलर द रिंग और वो दैट इज कॉस्ट मोर देन 10 लाख्स और 20 लाख्स। आई हैड नॉट फॉर सेल, नेवर आई हैव गॉन एनीवेयर कि भाई उसकी कीमत क्या है, बट आई कैप इट as I keep my child with me. So there is no point of valuations for the cycle, but I think as and when I die some of the cycles these people will put in when I buried or maybe died.
0: दिनेश की पहचान उनके सिर्फ साइकिल कलेक्शन तक सीमित नहीं है, वो आज भी नियमित तौर पर साइकिल चलाते हैं और लोगों को फिट रहने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि अगर इंसान अपने शरीर को एक्टिव रखे और अपने शौक को भी जिंदा रखे तो उम्र कभी भी उसकी रफ्तार को रोक नहीं सकती। यही वजह है कि उनके घर आने वाले लोग सिर्फ साइकिल्स का कलेक्शन देखने नहीं आते बल्कि उनकी सोच और जीवन जीने के अंदाज से भी प्रभावित होते हैं और उनके घर प्रेरणा हासिल कर लौटते हैं।
2: 17 साल की उम्र से मैं साइकिल चला रहा हूँ एट द एज ऑफ 17 और अभी तक चला रहा हूँ। मेरी हॉबी यही है टू कीप हेल्दी टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ और इसके फिटनेस के लिए यही साइकिल इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। सेव पेट्रोल सेव नेशन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोटो ऑफ माय लाइफ।
0: साइकिल से प्रेम करने वाले दिनेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में अगर जुनून और अनुशासन बना रहे तो बढ़ती उम्र भी नई शुरुआत करने से रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आपके पास भी कोई सपना है या कोई शौक है तो उसे उम्र के साथ खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि असली पहचान उम्र से नहीं बल्कि आपके हौसले और जुनून से ही बनती है। सूरत से संजय राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और इस साल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में कई स्टूडेंट्स ने अपने आंसर को री इवेल्युएट कराने का फैसला लिया था। इसी कड़ी में रांची की रहने वाली एक छात्रा ने 95% अंक प्राप्त करने के बाद भी अपने आंसर शीट के दोबारा जांच की मांग की थी। इस इवेल्युएशन के दौरान उसके 24 अंक बढ़ गए जिससे कि उसके 500 में से 500 अंक प्राप्त हुए हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। री इवेल्युएशन के बाद सीबीएसई टॉपर बनी अवनी। जी हाँ, आपको बता दें कि रांची की बेटी अवनी केजरीवाल को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में री वैल्युएशन के दौरान 500 में से 500 अंक प्राप्त हुए हैं। री वैल्युएशन से उनके कुल अंकों में 24 अंक बढ़ गए। अवनी के मुताबिक उन्हें 500 अंकों की उम्मीद नहीं थी लेकिन 500 में से 500 अंक प्राप्त करने पर उनके परिवार में सभी लोग बेहद खुश हैं। दरअसल अवनी के इंग्लिश में 19 अंक कट गए थे जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इसके बाद उन्होंने री वैल्युएशन के लिए अप्लाई किया। री वैल्युएशन के बाद उनके 19 अंक बढ़ गए और उन्हें इसमें भी 100 अंक प्राप्त हुए। अवनी ने अपने पांचों सब्जेक्ट में 100-100 नंबर प्राप्त किए हैं। अवनी केजरीवाल दूरवा स्थित डीपीएस सेल टाउन शिप की छात्रा हैं। उनके पिता मितेश केजरीवाल बिजनेसमैन हैं जबकि मां पूनम केजरीवाल एक हाउसवाइफ हैं।
4: इस बार अवनी केजरीवाल ने सीबीएसई की 12वीं के परीक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम में नेशनल टॉपर बनकर दिखाया है। जाहिर तौर पे पूरा फैमिली जो है अभी क्लाउड 9 में फील कर रहा है और अपने आप को एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा है और 100% इन्हें आया है। लेकिन इसका एक बड़ा क्रेडिट सीबीएसई का जो री इवेल्युएशन सिस्टम है उसको भी जाता है और वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग साबित हुआ इनके लिए। अवनी से बात करते हैं। अवनी, ये जो 100% आया, पहले आपको कितना आया था? पहले तो आपको बहुत बधाई नेशनल टॉपर के लिए।
5: थैंक यू सो मच। पहले मुझे 95.2 आया था।
4: उस वक्त जो है कोई और था ना टॉपर लिस्ट में, कोई और रहा होगा?
5: हाँ।
4: तो फिर आपने क्या किया, री इवेल्युएशन के लिए किया ना?
5: हाँ, मैंने फिर री इवेल्युएशन जब पोर्टल खुला था सीबीएसई का, देन अप्लाई किया था।
4: हाँ, क्या फिर क्या हुआ, क्या चेंजेस आए उसमें, कितना कैसे मार्क्स इंप्रूव हुआ, बताइए।
5: सो बेसिकली इंग्लिश में मेरे पहले 81 out of 100 आए थे, तो 19 मार्क्स का इंक्रीज उस सब्जेक्ट में हुआ,
4: सीधे 100 आ गया ना?
5: हाँ।
4: अच्छा, ठीक है, वेरी गुड।
5: बिजनेस स्टडीज में मुझे पहले 95 आया था, जो अब 100 हो गया।
4: ये दो में आपका नंबर बढ़ गया, मतलब 19 और 5 24 नंबर बढ़ गया।
5: हाँ, 24।
4: तो सीधे आप 100% पे चले गए।
5: हाँ।
4: तो इसके पहले जो
3: घर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह हजारों मॉडल कारें सजी हो, जहां गैराज किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम से कम नहीं लगी? दरअसल नोएडा में गाड़ियों के शौकीन एक व्यक्ति ने ऐसा एक घर तैयार किया है जिसमें उनका गाड़ियों के प्रति जुनून झलकता है। हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है घरों की दीवारों पर बाइक और कारों का जुनून। जी हाँ, नोएडा में एक व्यक्ति ने अपने घर में ऑटोमोबाइल की एक अनोखी दुनिया बसा ली है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
6: अक्सर कहा गया है कि शौक भी बड़ी चीज है, वरना कौन रातों की नींद छोड़कर सपनों को सजाता है। कुछ ऐसे ही सपनों के घर को सजाने में जुटे हैं संदीप गज्जर, जो सनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो वहीं इनका घर कुछ बेहद अनोखी और खास वजहों से मशहूर है।
3: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ।
6: नोएडा में बना ये घर भले ही बाहर से एकदम सामान्य ही नजर आएगा, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया से आप रूबरू होंगे। घर की दीवारें करीब 2000 हॉट व्हील्स कारों से सजी है। छोटे छोटे मॉडल्स का ये बड़ा कलेक्शन सनी के ऑटोमोबाइल प्रेम को बखूबी दर्शा भी रहा है। यानी दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह सजी लगभग 40 साल पुरानी ये हजारों रियल मॉडल्स की कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको किसी मोटो विला का ही एहसास कराएंगी। यही नहीं, सनी के कलेक्शन में ही मैन से लेकर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ कई और कॉमिक कैरेक्टर्स भी उनके आशियाने को बेहद पैशनेट और पावरफुल फील दे रहे हैं। यही नहीं, सनी हेलमेट डिजाइनिंग का भी शौक रखते हैं। उनके डिजाइन किए गए कई हेलमेट्स और रग्स उनकी क्रिएटिविटी पैशन को ही झलका रहे हैं, और ये सब कुछ करना उन्हें सुकून ही देता आया है।
7: मेरा प्रोफेशन जो है, आई थिंक इट्स टू इंस्पायर पीपल अल्टीमेटली, कि यू कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट डिस्पाइट आपके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स हो। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो 3 फ्लोर का, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो सिर्फ एक कमरा था, और उस एक कमरे को भी मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि किसी ने नहीं देखा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें मिलती जाएगी, लेकिन थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए।
6: आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑटोमोबाइल की दुनिया समेटे इस खूबसूरत और अनोखी क्रिएटिव गैलरी में फोटोग्राफी का पैशन भी सनी के दिल के बेहद करीब रहा है। आज के दौर में जहां लोग अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने जुनून और सपने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। उसकी एक झलक उनके बेडरूम में भी नजर आ रही है। कहते भी हैं कि शौक वो नहीं जो वक्त काटने के लिए किया जाए, शौक वो है जिसके लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि यही शौक इंसान की पहचान को और भी खूबसूरत और कलात्मक बना देता है। और जिसे अपने शौक से मोहब्बत हो जाए उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
3: तो सनी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि उनका जुनून है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सनी ने डिजाइन किया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है, और उसके बाद ये पूरा घर जिसे हम मोटो विला बोल रहे हैं ये पूरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में खास पहचान बनाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। उन्हें टीम इंडिया की जर्सी मिल गई है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, वैभव सूर्यवंशी को मिली 3 नंबर की भारतीय जर्सी। वैभव सूर्यवंशी ने उस इमोशनल पल को याद किया जब उन्हें पहली बार भारतीय टीम की जर्सी दी गई। सूर्यवंशी भारतीय टीम की जर्सी नंबर 3 पहनकर खेलते नजर आएंगे। बीसीसीआई ने सूर्यवंशी को जर्सी सौंपने का वीडियो जारी किया। बीसीसीआई ने वीडियो का कैप्शन दिया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस पल का देश इंतजार कर रहा था वो आ गया है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी को केवल 15 साल और 71 दिन की उम्र में आयरलैंड और इंग्लैंड T20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुना गया। वैभव ने अपने चयन के साथ ही सबसे कम उम्र में चुने जाने का सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू का मौका मिलता है तो वो भारतीय सीनियर पुरुष टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे।
8: वैभव सूर्यवंशी के लिए भारतीय टीम की जर्सी पहनना किसी सपने से कम नहीं है। इस 15 साल के लड़के ने अपने बल्ले से हर वो काम किया जिसने मजबूर किया सिलेक्टर्स को कि वैभव को फास्ट ट्रैक किया जाए। वैभव का सिलेक्शन होता है आयरलैंड और इंग्लैंड T20s के लिए और यही से एक सपने के सच होने की शुरुआत। यह अभी एक शुरुआत है, वैभव महज 15 साल के हैं और अभी उनको वाइट बॉल में बहुत कुछ करना है। जब जर्सी मिली वैभव को भारतीय टीम की, वो पल उनके लिए भावुक होने वाला था। उनकी आंखें नम जरूर थी लेकिन उसी आंखों में सपना भी था कि मुझे भारतीय टीम के लिए और अच्छा करना है, मुझे अभी और खेलना है। उन्होंने कहा भी कि ये एक सपना है जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन शब्दों में बयां कर पाना उस खुशी को जब उन्होंने जर्सी को गले से लगाया, हाथ में लिया, नहीं वो शब्दों से बयां नहीं हो सकती।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला
10: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, दैट पेप्सी टेस्ट यू लव विद नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
11: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
12: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
15: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
10: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में NSG कमांडोज ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे हैं रंग। दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,
10: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हाथ में घटना हर तस्वीर हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से कोसों दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां पर वायरल दावों की सच्चाई देखते हैं, हम सटीक जांच करते हैं, अफवाहों की पड़ताल करते हैं और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के इस सीसीटीवी फुटेज में वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखिए, हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह वादा किया जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए हादसे का यह वीडियो है जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT मामले की जांच में जुटी हुई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक CCTV वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखने में किसी मंदिर का वीडियो लग रहा है जिसमें कुछ लोग नोट गिन रहे हैं। इसमें कुछ लोग नोटों की गड्डियां छुपाकर दूसरे कमरे में ले जाते भी नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का है। एक यूजर ने इस CCTV फुटेज को शेयर करते हुए लिखा, राम मंदिर 200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। CCTV ने खोली सबकी पोल। अयोध्या मंदिर के CCTV में पुजारी कथित तौर पर दान का पैसा छिपाते नजर आया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते के दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर 3 सदस्यीय SIT गठित कर दी गई है और SIT ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। मामले की 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। देखिए, इसी बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो है नोट की गड्डियां छुपाकर दूसरे कैमरे में ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना यह है कि यह अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे को कसौटी पर उतारा। तो देखिए, फैक्ट चेक की टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी मंदिर का ही वीडियो है। इसके बाद देखिए, हमने वीडियो के कमेंट्स सेक्शन को खंगाला। यहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को कर्नाटक के बेंगलुरु का बताया था और इसके बाद हमने एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखा और इस दौरान हमें कुछ लोग धोती में नजर आए। इन लोगों ने जिस तरह से धोती को पहना हुआ था उससे यह इशारा हमको मिल रहा था कि वीडियो किसी दक्षिण भारत के राज्य का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई और राम मंदिर दान विवाद की जांच कर रही SIT टीम ने भी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक निकल कर क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकल कर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 1 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो को पोस्ट किया गया मिला, जिसमें वायरल क्लिप भी मौजूद थी। यहां दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है, जिसमें मंदिर के 2 सदस्यों को दान के रूप में उठाते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें 30 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर में दान के पैसों की चोरी से संबंधित है। उस वक्त इस तरह के और भी कई वीडियो सामने निकल कर आए थे, जिसमें मंदिर के कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते हुए नजर आए थे। मामले को लेकर जुलाई 2024 में FIR हुई थी। उस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी रामचंद्र ने दावा किया था कि ये घटना तकरीबन 1 साल पुरानी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में मंदिर की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों को निलंबित किया गया था और 2 रसोइयों को भी हटाया गया था। बाद में कर्नाटक सरकार ने अव्यवस्था और अनियमितताओं का हवाला देते हुए इस मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को पूर्व उत्तर प्रदेश CM अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। उसी दिन इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से पहली धर्मसेना के संस्थापक अशोक दुबे की है, दूसरी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की और तीसरी करणी सेना की है। साफ है वायरल वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है। सितंबर 2024 में वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को रुपए उठाते हुए देखा गया था। इस वीडियो का अयोध्या के राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर को पहले टकराते और फिर क्रैश होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा लगातार कर रहे हैं कि 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स का ये वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर के टकराने और क्रैश होने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में म्यूजिशियन ओलिवर ट्री शामिल थे, जो अपने वायरल हिट गानों एलियन बॉय और लाइफ गोज ऑन के लिए मशहूर थे, और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रिम भी थे, जिन्हें ऑनलाइन गैस्पी के नाम से जाना जाता था। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में कई हेलीकॉप्टर कुछ ताड़ के पेड़ों के पास कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए नजर आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने भी रियो की घटना के संदर्भ में इस वीडियो के स्क्रीन ग्रैब का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सिंगर सॉन्गराइटर ओलिवर ट्री की 14 जून को ब्राजील में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। वो 32 साल के थे। इस हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई, और अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई थी, उसी का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान दावे की पुष्टि कराती हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई उसका फुटेज भी सामने निकलकर आया था। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को देखने से फर्क साफ साफ नजर आ जाता है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि हेलीकॉप्टर हादसे का ये वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 23 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी की परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना पेराक राज्य के लुमुत नेवल बेस पर हुई और मारे गए सभी लोग क्रू मेंबर थे। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर एक AW-139 और एक फेनिक हेलीकॉप्टर थे। इसी मिली जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें कई और प्रामाणिक रिपोर्ट मिली, जिसमें यही जानकारी दी गई थी कि रॉयल मलेशियन नेवी की परेड के रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा फेक साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब रिहर्सल के दौरान मलेशियाई नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
5: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त उछला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच इस समय दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। अपनी बेहतरीन फुटबॉल स्किल्स की वजह से ये बच्चा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि बच्चे ने बिना जूते पहने जिस तरह फुटबॉल पर कंट्रोल दिखाया, उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पहने मैदान में मौजूद है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके खेल में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है, वो किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं लगता। वीडियो की शुरुआत में बच्चा मैदान के कॉर्नर एरिया में खड़ा नजर आता है। इसके बाद वो कॉर्नर किक लेने की तैयारी करता है और फिर गेंद को ऐसी दिशा में मारता है कि वो सीधे गोल पोस्ट के अंदर पहुंच जाती है। लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि कुछ सपने सिर्फ जवानी के लिए ही होते हैं, उम्र ढलने के बाद उन सपनों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दिल्ली की आयुषी नेगी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल आयुषी ने अपने 90 और 80 साल के दादा दादी को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाकर उनका वर्षों पुराना सपना पूरा किया। इस दौरान आयुषी अपने दादा दादी को ट्रिप के लिए लंदन ले गई। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर बिल्कुल तेज रफ्तार से खीरा काट रहा है। वीडियो में जिस तरह से शख्स खीरे को काट रहा है वो देख हर कोई हैरान है। बिना देखे बिजली की रफ्तार से चाकू चलाते हुए खीरे को काटना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हाथ की उंगलियों के कटने का भी बहुत खतरा होता है। फिर भी इस शख्स को इस चीज का इतना अभ्यास है कि वो आंखें बंद कर भी काफी तेजी से खीरा काट ले रहा है। शख्स ने अपने इस कारनामे से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम वॉलेस वोंग है, जिन्हें लोग सिक्स पैक शेफ के नाम से भी जानते हैं। कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता और चिड़िया तक आपने न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को घरों में प्यार मिलते देखा होगा। इनको लोग अक्सर अपना परिवार ही मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा ही लाड प्यार आपने किसी कौवे के लिए देखा है क्या? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है, उसकी गोद में कौवा है। उल्टे लेटे हुए कौवे को ये महिला गुदगुदी करते वैसे ही खिला रही है जैसे किसी बच्चे को प्यार दिखाया जाता है। इस दौरान कौवा भी प्रतिक्रिया ऐसे दे रहा है जैसे वो एक बच्चा ही हो। इस वीडियो में कौवे को पिंजरे में नहीं रखा गया है। अगर ऐसा किया जाता तो ये गैर कानूनी है। भारतीय प्रजाति के कौवों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली मेट्रो से इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को हैरान करने के साथ साथ खूब हंसने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस बार यात्रियों के साथ बंदर भी मेट्रो ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी तरह दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पर लोग ऐसे हालात में उम्मीद करते हैं कि जानवर थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही था। बंदर बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मेट्रो के डिब्बे के अंदर घूमता नजर आया। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोजाना मेट्रो में सफर करता हो। मेट्रो में मौजूद यात्री भी पहले तो उसे हैरानी से देखते रहे। कुछ लोग उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे, जबकि कुछ ने तुरंत अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बंदर आराम से एक सीट से दूसरी सीट के पास जाता रहा और यात्रियों को देखता रहा।

इसी दौरान उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। वीडियो में दिखाई देता है कि बंदर सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। अचानक सामने आए इस नन्हे मेहमान से लड़की घबरा जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन बंदर वहां से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता। उल्टा वो लड़की की और करीब आने लगता है। इस पूरे सीन को देखकर आसपास बैठे लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल हंसी मजाक में बदल जाता है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: क्या आपकी कुंडली में शल्य चिकित्सा के योग हैं? क्या आप सर्जरी की स्थितियों से बचना चाहते हैं? ज्योतिष में कौन है सर्जरी के लिए जिम्मेदार और क्या हैं इससे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से,
9: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसे अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो सबसे पहले आपको बता दें, महानगरी में बरसे मानसून के बादल, आखिर मुंबई पहुंच ही गया मानसून। साथ ही आस्था के मार्ग पर सुरक्षा की गारंटी, बाबा बर्फानी के भक्तों का सुरक्षा कवच। इसके साथ शौक जब हद से गुजर जाए, ये घर है या कोई मोटो विला, तमाम खबरें होंगी। लेकिन पहले हेडलाइंस
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
9: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी के दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे रंग। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ दिन में छाया अंधेरा, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मानसून की, जिसने देर से ही सही लेकिन मुंबई में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने भी इस

0: जबकि कई लोग सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बीच पर ही पहुंच गए।
1: 12 दिन की देरी से ही सही, लेकिन मुंबई में बारिश ने दस्तक दे दी है। अमूनन 11 जून तक बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार देरी हुई। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और धीरे धीरे हो रही है, रुक रुक के हो रही है। बावजूद इसके कई तरह की चीजें, कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं। अगर लाइफलाइन मुंबई की लोकल की बात करें तो आपको बताएं कि कुर्ला और सायन के जो रेलवे स्टेशन है उनकी पटरियों पर पानी भर गया।
0: आम तौर पर हर साल मुंबई में मॉनसून 10 और 11 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। इसके चलते मॉनसून को लेकर मुंबई वालों का इंतजार बढ़ गया। एक दिन पहले ही मौसम विभाग की ओर से खुशखबरी दी गई थी कि अगले 48 घंटों में मॉनसून मुंबई पहुंच सकता है। मौसम विभाग का ये अनुमान आज 100% सही साबित हुआ। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आगे बढ़ते हुए मध्य अरब सागर के बाकी बचे हिस्सों, महाराष्ट्र के कई दूसरे क्षेत्रों समेत मुंबई, तेलंगाना और उड़ीसा के बचे हुए हिस्सों को कवर कर लिया है। साथ ही मॉनसून छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ गया है।
2: दक्षिण पश्चिमी मॉनसून इस समय महाराष्ट्र के कई इलाकों तक पहुंच गया और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में मॉनसून बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है। इसके बाद 3-4 दिन बाद देखा जा सकता है कि मॉनसून उत्तर प्रदेश तक दस्तक दे, जिसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है और गर्मी से लोगों को राहत भी मिल सकती है।
0: मॉनसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर उत्तरी अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं। इसके बाद अगले 3-4 दिनों के अंदर झारखंड और बिहार के बाकी बचे हिस्सों के साथ साथ यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। यानी अगर मॉनसून इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो जुलाई के पहले हफ्ते में ही मॉनसून उत्तर भारत में एंट्री ले सकता है।
2: मॉनसून की रफ्तार पहले से थोड़ी बड़ी है, जिसके कारण उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक और जुलाई के पहले सप्ताह में जो मॉनसून है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में दस्तक दे सकता है।
0: हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मॉनसून के आने से पहले प्री मॉनसून बारिश के साथ जोरदार आंधी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई, जहां दोपहर में ही अंधेरा छा गया और देखते ही देखते धूल भरी आंधी ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया।
3: राजस्थान में एक फिर से तीसरी बार रेत का बवंडर उठा है। देख सकते हैं बीकानेर की ओर से ये बवंडर उठा है और एक तरफ देख सकते हैं कि जो एक तरफ आसमान है वो बिल्कुल साफ है, तो एक तरफ बवंडर है। देख सकते हैं किस तरीके से बवंडर यहाँ पर फैला हुआ है। एक तरफ आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से रेत का बवंडर उठा है। और ये तीसरी बार ये बवंडर है वो जो आया है, और देख सकते हैं कि इसमें आते आते पूरे शहर को इसने एकदम चपेट में ले लिया है।
0: मौसम के इस रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है।
4: 19 जिलों में उमस और गर्म ही रहा है और सभी जो उम्मीद कर रहे हैं वो यही है कि इस मौसम से राहत मिले। जो वापस से टेम्परेचर 40 पार जाने लगे हैं उनसे राहत की हर कोई उम्मीद इस वक्त कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब मॉनसून आएगा या फिर प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ या नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएगा, जिससे टेम्परेचर्स में इस गर्मी से सभी को राहत मिल सके।
0: वहीं राजस्थान के जैसे ही दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में भी आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए, तेज धूल भरी आंधी चलने लगी और फिर जोरदार बारिश भी कई इलाकों में हुई। ये बारिश उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत बनकर आई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दिल्ली से अनमोल बाली, सीकर से राकेश गुर्जर और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी, जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। ऐसे में यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। इन दिनों यात्रा वाले रूट पर जगह जगह सिक्योरिटी एजेंसियां मॉक ड्रिल करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पर एनएसजी, एसओजी, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर मॉक ड्रिल की, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा गया।

0: हाथों में राइफल लेकर दबे पांव आगे बढ़ते जवान, जिन्होंने कुछ ही पलों में पूरी इमारत को घेर लिया और चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन की नहीं बल्कि मॉक ड्रिल की है, जो की गई है जम्मू के उस सबसे महत्वपूर्ण जगह पर जो अमरनाथ यात्रियों का बेस कैंप है। यहीं से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को सुबह सवेरे रवाना किया जाएगा। ऐसे में बेस कैंप और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को परखने के मकसद से ये मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एनएसजी के साथ एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया।
1: सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं, उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियाँ होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखें जो यात्री निवास के भवन, यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबुओं में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर।
0: भगवती नगर का ये बेस कैंप, जहाँ हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान हजारों यात्री आते हैं, ठहरते हैं और फिर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस साल अमरनाथ यात्रियों के लिए इसके द्वार 30 जून को खोल दिए जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों ने यहां करीब 1 घंटे तक ड्रिल की, जिसमें डॉग स्क्वाड के अलावा ड्रोन और दूसरे हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एजेंसियों ने न सिर्फ भगवती नगर यात्री निवास का चप्पा चप्पा खंगाला बल्कि तवी नदी के किनारों को भी खंगाला गया।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर इस समय समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और अगर हम यहां की तस्वीरें देखें तो हम पाते हैं कि यहां पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है वो सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो भारी संख्या में तैनात हो चुके हैं। साथ ही में यहाँ पर जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रवेश द्वार है ये यात्री निवास भवन का, यहाँ पर सीआरपीएफ ने अपने मोर्चे बनाए हैं इस तरह के। यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं और आम लोगों को फिलहाल इस यात्री निवास भवन में आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसको फिलहाल सील कर लिया गया है और यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है जो कि अधिकृत लोग हैं, जो कि अधिकारी हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद जो है श्रद्धालु आना शुरू होंगे। श्रद्धालुओं के रहने की, ठहरने की व्यवस्था इसी यात्री निवास भवन में होती।
0: अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी ही तैयारी एक दिन पहले कुलगाम में देखने को मिली, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें घने जंगलों, नर्सरियों, बाग बगीचों और दूसरे संवेदनशील इलाकों में तलाशी ली गई। इस कार्रवाई के जरिए सुरक्षा कर्मियों ने संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें खत्म करने के लिए हर संवेदनशील इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया, ताकि यात्रा रूट और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा हमेशा से अहम पहलू रहा है। यही वजह है कि हर साल यात्रा से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों पर पहले मंथन किया जाता है और फिर इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर मॉक ड्रिल करती हैं। ऐसे ही ड्रिल रामबन और अनंतनाग में भी की गई। रामबन में जहां यात्री निवास कैंप में सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल को अंजाम दिया, वहीं अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने ड्रिल की, जिसमें आतंकी बने 2 लोग हथियार लेकर रेलवे स्टेशन में दाखिल होते हैं और फिर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जैसे ही फायरिंग की सूचना आरपीएफ को मिलती है, उसके जवान रेलवे स्टेशन को घेर लेते हैं और छिपे हुए आतंकियों की तलाश शुरू कर देते हैं। सटीक सूचना और बेहतर तालमेल की वजह से कुछ ही देर में आतंकी हमले को नाकाम कर दिया जाता है और इस तरह से ये मॉक ड्रिल पूरी होती है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियों की इस पूरी कवायद का मकसद तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा का अभेद्य चक्र तैयार करना है, ताकि देश भर से आने वाले तीर्थ यात्री बाबा बर्फानी के सुलभ और सुरक्षित दर्शन कर पाए।
1: समूचे जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर जो अगर हम देखें तो केंद्रीय बल जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, चाहे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहाँ पर वो तैनात होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस तो होगी ही, लेकिन साथ ही में जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं वो भारी संख्या में तैनात हो रहे हैं। और कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा का जिम्मा जो है मुख्य तौर पर केंद्रीय सशस्त्र बलों के कंधे पर ही होगा। भारतीय सेना की जो टीम्स हैं वो भी जगह जगह पर मौजूद रहेंगी, खासतौर पर जो ऊंची चोटियां हैं, तो पूरे समन्वय के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो सुरक्षा बल है वो कार्य कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जनता भी बड़ी व्याकुलता के साथ यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही है, उनके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है, और यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर ली गई है। लगभग जो बचा खुचा कार्य है उस पर भी काम किया जा रहा है और कुछ दिनों बाद ये कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक ऐसे अनोखे घर की जो मोटो विला जैसा लगता है। इस घर के हर हिस्से में बाइक और कारों के प्रति जुनून साफ दिखता है। एक ही छत के नीचे सुपर बाइक्स, परफॉर्मेंस कार, मशहूर गाड़ियों और मोटरसाइकिल के स्केल मॉडल्स के अलावा यहां अलग अलग तरह के रंग बिरंगे हेलमेट देखने को मिल जाते हैं। देखिए, जब किसी का शौक हद से गुजर जाए तो घर की नई पहचान बन जाती है।

0: शौक या जुनून जब हद से गुजर जाए तो सामान्य से दिखने वाले घर की भी तस्वीर बदल जाती है। नोएडा का यह 3 मंजिला घर भी एक तरह की जीती जागती मिसाल है।
1: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ, जो बाहर से दिखने में तो आपको एक आम घर लग सकता है दिखने में, लेकिन जैसे ही आप इस घर की दहलीज को पार करेंगे आपको एक अलग ही, एक अनोखा संसार दिखने वाला है। और कैसा ही घर है आज आपको हम वही दिखाएंगे।
0: आमतौर पर लोगों की वजह से उनके घरों की पहचान होती है, मगर ये रिहायशी इमारत अपने मालिक की पहचान और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। बाइक और कारों के प्रति मकान मालिक का जुनून इतना गहरा है कि उन्होंने अपने पूरे घर को ही मोटो विला में बदल दिया।
1: घर के अंदर एंटर हम कर चुके हैं, लेकिन आपको ये किसी तरीके से घर नहीं दिखने वाला है, आपको लगेगा कि आप एक म्यूजियम में आ गए, और तभी ये एक मोटो विला हम इसको बोल सकते हैं। वाकई में आप ये देखोगे तो ये एक छोटा सा गैराज है घर के अंदर ही, लेकिन आप ये देखिए पूरा म्यूजियम आपको नजर आएगा। अच्छा, ये रियल कार है, सबसे पहले तो ये बता दूं, कहीं किसी को ये लगे कि यहाँ पे एक मॉडल की तरह के इसको रखा हुआ है, लेकिन ये रियल कार है। और पूरा आप आगे पीछे हर एक दीवार आप इसकी देखिए कि किस तरीके से पूरा इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे जो पूरा डिजाइन किया गया है, एक चीज आपको जो है वो नजर आने वाली है।
0: रफ्तार के शौकीन सनी की मोटरसाइकिलिंग का सफर 2002 में शुरू हुआ था, तब बाजार में अपनी रफ्तार और स्टाइलिंग की वजह से धूम मचाने वाली बजाज पल्सर उनकी पहली सवारी बनी थी। रफ्ता रफ्ता मोटरसाइकिल के शौक से जुड़ा ये कारवां आगे बढ़ता गया, जिसमें दुनिया की सबसे शानदार क्रूजर बाइक ब्रिटिश ट्रायंफ रॉकेट 3, वर्ल्ड फास्टेस्ट नेकेड बाइक डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 और धूम फिल्म से सुर्खियों में आई सुजुकी हायाबुसा भी शामिल हो गई।
2: ये तो लिटरली एक कलेक्टर आइटम है। दिस इज माय फर्स्ट मोटरसाइकिल बजाज पल्सर 180 2002। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मोटरसाइकिलिंग में, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन 80 कंट्री करूंगा सुपर बाइक्स पे, लेकिन यहाँ से सब स्टार्ट हुआ है। तो आपने नेवर फॉरगेट योर रूट्स। मैंने 80 कंट्रीज करी हुई है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, एक मेरा मिशन कंप्लीट होता है, तो मैं अपने आप को ट्रीट करता हूँ कि चलो मैंने आज दिल्ली टू सिंगापुर करा था मैंने बाइक पे। तो वहाँ सिंगापुर में मैं गया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लेके आया, उनमें से एक ये था ऊपर स्टार वॉर्स का। तो ऐसे चीजें, ऐसे मैं अपने आप को ट्रीट करता हूँ और वैसे बनते ही चीज।
1: क्या मैं इसको धूम बाइक बोल सकती हूँ? ये वही है
2: ये? हाँ, ये एक्चुअली जो जॉन अब्राहम ने हायाबुसा चलाई थी पहले, ये उसका लेटेस्ट जनरेशन है। और ये रियल है सारी बाइक्स, एंड ये ऑफ कोर्स स्पीड किंग बोलते हैं इसको। तो एक ये रही, और अगर बाइकों के बारे में बात करें तो हम क्योंकि यहाँ पे हैं, ये वाली जो बाइक है ये है डुकाटी स्ट्रीट फाइटर। दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट नेकेड बाइक। नेकेड का मतलब है यहाँ पे फेयरिंग नहीं है, जैसे इसकी फेयरिंग है। ये वो है, लेकिन आई थिंक जो यहाँ पे बात करने वाली बाइक है इनके अलावा वो है ये वाली। सो अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 2500, और ये है रॉकेट 3। ये यहाँ पर 2500 cc की है ये। सो दिस इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी मोटरसाइकिल, और ये क्रूजर स्टाइल में है। आप देख ही सकते हो कि कितनी ह्यूज इसका जो इंजन सेंटर पीस है। सो ऐसे कर करके हर बाइक यहाँ पे काफी यूनिक है। दो तीन बाइक यहाँ बाहर खड़ी हुई हैं, एंड यस, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शंस। तो यहाँ पे स्केल मॉडल बोलते हैं, तो स्केल का मतलब होता है कि भाई स्केल होता है जैसे 12 इंच का, वॉट एवर। सो कितने स्केल का, दिस इज 1:6 स्केल, मतलब जो रियल कार है उसका 6th जो है साइज की ये है। एंड दिस इज द बिगेस्ट स्केल यू कैन गेट, बिगेस्ट स्केल मॉडल्स। तो ये बैटमैन का हो गया, ये बैक टू द फ्यूचर मेरी एक फेवरेट मूवी है नीचे, हाँ ये उसका हो गया। तो ऐसे कर करके मैंने ये कलेक्शन बनाई हुई है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
1: होनी भी चाहिए, क्योंकि ये आप बोल रहे हो ना एक टाइम के बाद इसकी कोई कीमत नहीं होगी।
2: हाँ, ये बेसिकली
1: प्राइसलेस है, ये
2: लिमिटेड नंबर्स में आती हैं, एंड कुछ चीजें होती हैं जो बहुत प्राइस में बढ़ जाती हैं।
0: मोटरसाइकिल चलाते समय सुरक्षित रहने के लिए सही सेफ्टी गियर पहनने वाले सनी पेट्स की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो कई बड़े ब्रांड्स के लिए हेलमेट्स भी डिजाइन करते हैं।
1: इतने इतने छोटे हेलमेट्स क्यों?
2: ये बेसिकली पेट्स के लिए होते हैं. छोटे बिल्ली कुत्ते उनके लिए यूज हो सकते हैं बिकॉज वाइजर भी ऊपर जाता है इनका. बट दिस इज जस्ट अ नाइस थिंग टू हैव लाइक यू नो रियल हेलमेट्स ऑब्वियसली साइड में आप देख रहे हो. इनफैक्ट हेलमेट की अगर आप बात करो मैं हेलमेट डिजाइन भी करता हूँ और वो हेलमेट पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे. एंड मैंने अभी तक 5 हेलमेट डिजाइन करे. ये जो है ये वन ऑफ द हेलमेट्स है. सो एक है उनमें से जो बेसिकली हर एक हेलमेट की डिजाइन की स्टोरी है. तो इसमें जैसे बाय होने के जैसे दिल है, फिर इंजन है, ऐसे यहाँ पे ब्रेन है. तो ये मुझे बहुत मजा आता है ऐसी चीजें करने में. और ये जो हेलमेट हम प्रोड्यूस करते हैं वेगा के साथ एंड दिस इज रेडी टू बी सोल्ड इन यूरोप, अमेरिका, अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज सर्टिफिकेशंस होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो सेफ हेलमेट. एंड ये जो आप देख रहे हो नीचे ये मेरी ट्रैक बाइक है, रेस बाइक. मैं रेसिंग नहीं करता, मैं ट्रैक डे जाता हूँ.
0: सनी का जुनून सिर्फ सुपर बाइक्स और परफॉर्मेंस कारों तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने वर्षों तक मशहूर कार और बाइक्स के स्केल मॉडल्स को भी संग्रह किया है. इनमें अपनी बेहतरीन डिजाइन, हाई स्पीड प्रदर्शन और किफायती कीमत के कारण दुनिया भर में मशहूर हॉट व्हील्स भी शामिल है. इस घर में गेमिंग जोन भी है जहां वीडियो गेम खेलने के लिए वर्चुअल बाइक सिमुलेटर्स भी हैं.
1: फर्स्ट फ्लोर पर आ गए. अगेन जैसे मैंने आपको रग्स की बात करी थी कि यहाँ पे हर एक चीज जो डिजाइन करी है वो सनी ने खुद करी है क्योंकि वो डिजाइनर भी है. तो आप रग्स देखिए कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ आपको यहाँ पे हर एक छोटा बड़ा रग जो है वो नजर आने वाला है. और ये एरिया बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर लोगों के घरों में जो दीवारें होती है उसमें पेंटिंग्स, अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो नजर आती है. लेकिन अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर आई थिंक ये हजारों में ही होगा. कितना मतलब लगभग कितनी हॉट व्हील्स होगी ये सारी की सारी?
2: आई थिंक ये 1500 होंगी कम से कम. मेरे पास एक बोरी भर के और भी है, उसको सोचो क्या करना है. एंड मैंने किसी एक वीडियो में गलती से बोल दिया था, जो पूरा काट दिया गया था उन्होंने, ये बैंगलोर का ट्रैफिक जाम लग रहा है. लेकिन मैंने उसमें बोला था बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, किसी का भी. तो मेरे पीछे लोग पड़ गए कि ये बैंगलोर ही क्यों. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप ये देख रहे हो तो ऐसे ही है, जस्ट इट्स लाइक अ फन थिंग यू नो.
1: बट बहुत खूबसूरती के साथ आपने मतलब एक होता है ना कि क्रिएटिव माइंड चाहिए. इस कार का किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से उसको कहाँ पे मतलब यू नो रखा जाए, बहुत मुश्किल लग ही रहा है.
2: ये ना इसको लगाना बहुत मुश्किल था, तो इसमें काफी टाइम लगा और अभी भी थोड़ी बहुत गिरती रहती है, लेकिन ठीक है.
1: लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने जो ये पूरा एरिया ये डिजाइन किया. अच्छा, यहाँ पर ये जो है सनी को जब भी गेम्स खेलने का मन होता है, आपको प्लेस्टेशन वगैरह जो है पीछे नजर आ जाएगा, वो यहाँ पर इस पूरे एरिया में खेलते. तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती की तरह ये जो रूम है पूरा डिजाइन किया है. लेकिन इस फ्लोर की अगर हम रूम की बात करें तो यहाँ पे ये रूम जो है वो सबसे ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको चलता फिरता तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि
2: ये 3D प्रिंटेड एक वो बाइक अपाची जो आती है वो बाइक है. इसके साइड में पंखे जो हैं वो खुलते हैं, पंखे मतलब जो फेयरिंग. एंड इसके अंदर जो है एक एक्चुअली में कंप्यूटर है जो इससे कनेक्टेड है, रिग है ये. हमारी सिमुलेशन रिग, जिसमें आप पेडल वेडल भी देख सकते हैं या स्टीयरिंग भी देख सकते हैं. और ये वहाँ पे टीवी से कनेक्टेड है. सो ये बेसिकली सिमुलेटर टाइप है बेसिक. सो या मतलब टाइम नहीं मिलता खेलने का, लेकिन अगर आप एक बार बैठ गए तो फिर उठना मुश्किल है.
0: मोटो विला कलेक्टिवर्स की एक अनोखी दुनिया भी है. सनी के घर का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है और उनकी पसंद और व्यक्तित्व को दर्शाता है. यही वजह है कि कुछ सेलेब्स भी उनके इस अनोखे घर को देखने भी आ चुके हैं.
2: ये बन गया है एक म्यूजियम और मुझे बहुत खुशी होती है जब जो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है मोटरसाइकिलिंग में वो आके अप्रिशिएट करते हैं. एंड आई थिंक अल्टीमेटली यही है कि दिस स्पेस इज फॉर एवरीवन. एंड यस, आपने इसको म्यूजियम बोला. पहली बार मुझे पता किसने बोला था म्यूजियम? गुलपनाग ने.
1: हाँ, अच्छा वो भी यहाँ पे आए.
2: वो भी आई यहाँ पे.
0: इस तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादातर लोग जहाँ करियर की होड़ में अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने इस जुनून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया. ये मोटो विला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनके सपने, मेहनत और जुनून का नतीजा है. मनीषा लड्डा के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम.
5: वेलकम बैक टू yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh.
6: Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
7: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
6: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
8: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
9: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में, यानी शल्य चिकित्सा के बारे में। इसका महत्व क्या है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जून 2026, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:12 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सा, सर्जरी यानी ऑपरेशन के बारे में। कुंडली में आपके सुरक्षा का कारक, सुरक्षा का स्वामी है मंगल, और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी है और हिंसा भी करवाता है, वायलेंस भी करवाता है, लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। यानी चीर फाड़ हिंसा व्यक्ति को बेहतर करने के लिए की जाती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मुख्य रूप से मंगल ही ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के अलावा कभी कभी केतु और सूर्य भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अग्नि की राशियां मेष, सिंह, धनु और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 12 राशियों में वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक होती है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल का प्रभाव होने से डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन होता है। लेकिन कुल मिला के ये बात जानिए कि अग्नि तत्व और मंगल ये मुख्यतः सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन खर्च बढ़ा रहेगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी की नौबत आती है। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो, केतु का, शनि का, सूर्य का, राहु का, तो सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए तो ये सर्जरी और दुर्घटना दोनों संभावना जीवन में दिखाता है। कुंडली के छठे भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, खास तौर से अग्नि के ग्रह बैठें या अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की सर्जरी होती है। हाथ में अगर तारा बनता हो या किसी रेखा पर द्वीप बनता हो, तो इसका मतलब व्यक्ति व्यक्ति की सर्जरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग लाल हो, मंगल के समान हथेलियां हों, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की सर्जरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हों, तो इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छा नहीं है। और अगर मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सर्जरी की, ऑपरेशन की संभावना बनेगी। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिख रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई जोखिम कोई रिस्क ना लें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी की तैयारी हो जाती है, आदमी रेडी हो जाता है कि मैं अब अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन बहुत बार होते होते आदमी सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बच जाता है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो या शुक्र प्रबल हो, शुक्र मजबूत हो, तो ये आदमी की रक्षा कर लेते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अगर केंद्र में ना हो, तो भी आदमी सर्जरी से बचता है। आपकी एकदम नकारात्मक दशा चल रही थी, सर्जरी के योग बने हुए थे, अचानक से जीवन में शुभ दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाती है तो सर्जरी का योग टल जाता है, व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या एकदम संध्या काल का होता है, वो भी अक्सर सर्जरी होते होते बच जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपकी निगेटिव दशा में सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन अचानक से निगेटिव दशा खत्म हो गई और अचानक से पॉजिटिव दशा आ गई तो आप सर्जरी से बच जाते हैं। या गोचर में, यूनिवर्स में कोई ग्रह सर्जरी के योग बना रहा है, अचानक वो बदल जाता है तो आदमी सर्जरी से बच जाता है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब अगर कुंडली में आपके सर्जरी के शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं तो क्या उपाय करें कि उससे बच सकें? लाल फूल से नृसिंह भगवान की रोज उपासना करिए। नृसिंह भगवान के मंत्र का नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करने के बाद जप करिएगा।

0: और मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा, जब भी मौका मिले रक्त दान करिए। दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ अपना सर करके सोइएगा और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अगर सर्जरी के योग ज्यादा प्रबल हैं तो सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिएगा। अगर नृसिंह भगवान की पूजा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो सर्जरी को लंबे समय तक टाल पाएंगे। अगर भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को मंदिर में या घर पर हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करिएगा और इसके बाद हनुमान जी के सामने कम से कम 27 बार या 108 बार राम नाम का जप करिएगा तो बहुत उत्तम होगा। कि अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त करने में समस्या हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और जब भी मौका मिले सार्वजनिक स्थान पर केले के पौधे पार्क में, सड़क में, मैदान में लगवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
2: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अब कुंडली में सर्जरी के योग बन जाते हैं, कब आदमी सर्जरी से बच जाता है, सर्जरी से बचने के और सर्जरी को सफल बनाने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
3: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे रंग। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के किए दर्शन, एक्टर ने बाबा बागेश्वर को भेंट किया अंगवस्त्र। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा रुद्रनाथ और मां कामाख्या मंदिर में रौनक की भी होगी। देखिए,
6: पंच केदारों में चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ में इन दिनों भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। 22 किलोमीटर कठिन ट्रैकिंग कर श्रद्धालु इस पवित्र धाम तक पहुंच रहे हैं। रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। हालांकि यहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से ठंड का असर भी है, इसके बावजूद भक्तों की एक बड़ी तादाद इस धाम तक दर्शन के लिए पहुंच रही है। रुद्रनाथ यात्रा उत्तराखंड की सबसे चुनौतीपूर्ण और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है, जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर इन दिनों शक्ति उपासकों की भारी भीड़ जमा है। यहां अंबुवाची मेले में रौनक के ढेरों रंग बिखरे हैं। मां कामाख्या के पावन धाम पर लगने वाले इस महापर्व में शामिल होने के लिए पूरे भारत से लाखों की तादाद में देवी के भक्त, साधु संन्यासी और तीर्थ यात्री पहुँचे हैं। मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे अंबुवाची पर्व से ठीक पहले 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। अब 26 जून को पारंपरिक रस्मों के निभाए जाने के बाद आम भक्तों के दर्शन और पूजन के लिए कपाट दोबारा खुलेंगे। शक्ति के उपासकों से जुड़ा ये धार्मिक उत्सव 22 जून की शाम को शुरू हुआ और 26 जून तक चलेगा। मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और मुंबई में दस्तक दे दी है। ऐसे में मुंबई के बांद्रा इलाके में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। सिर्फ बांद्रा ही नहीं, मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। आने वाले दिनों में मानसून के और मजबूत होने की संभावना है, जबकि 25 और 26 जून को मूसलाधार बारिश की आशंका है। गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सातुपारा में रिमझिम बारिश के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया। पहाड़ों के बीच मौजूद सर्प गंगा झील के आसपास धुंध और बादलों की चादर देखने को मिली। बारिश के बाद इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है। झील के आसपास फैली धुंध और बादलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर नजर आ रहा है। इन खूबसूरत नजारों का आनंद लेने के लिए पर्यटक बड़ी बेसब्री से मानसून का इंतजार करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों मौसम का मिजाज अलग नजर आ रहा है। अनंतनाग समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हल्की ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है।

0: भी करना पड़ा है। खबर अंधेरी से है, जहां पर एक लग्जरी कार में पेड़ गिर गया, तो वहीं दूसरी तरफ सबवे अंधेरी का वो भी पानी से लबालब भर गया। हालांकि सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और धीरे धीरे हो रही है, रुक रुक के हो रही है। बावजूद इसके कई तरह की चीजें, कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं। अगर लाइफलाइन मुंबई की लोकल की बात करें तो आपको बताएं कि कुर्ला और सायन के जो रेलवे स्टेशन है उनकी पटरियों पर पानी भर गया। हालांकि कई तरह के दावे प्रशासन द्वारा और बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा किए गए थे, लेकिन पोल खुलती उनकी नजर आ रही है। मौसम विभाग ने कल ये घोषणा की कि आने वाले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश होगी।
1: मुंबई में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं मॉनसून करीब एक हफ्ते की देरी के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंच गया। हालांकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाता है, लेकिन इस वर्ष इसके आगमन में देरी हुई है।
2: मुंबई में मॉनसून का ऑनसेट आज हुआ है 23 जून 2026 को। ये लगभग 12-13 दिन लेट है, जो नॉर्मल डेट है वो 10-11 है, तो आज 13 दिन लेट आया है। लेकिन वो अच्छा मॉनसून सर्ज लेके आया है, तो अलोंग कोंकण कोस्ट हमने साउथ कोंकण एंड रायगढ़ के लिए, रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट दिया है, क्योंकि हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड। कल भी वहाँ बहुत भारी वर्षा हुई थी। और सिंधुदुर्ग एंड रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया है, और मुंबई थाना के लिए हैवी रेन का भी वार्निंग दिया है।
1: देवभूमि उत्तराखंड के श्री हेमकुंड साहिब में देर रात से सुबह तक जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद यहां मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन ठंडक काफी बढ़ गई है। हेमकुंड गुरुद्वारा के आसपास की पहाड़ियों, चोटियों और पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हालांकि मौसम साफ होने के बाद सुबह से ही श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवार रात मौसम के अचानक बदलने के साथ ही चमोली के निचले इलाकों में बारिश हुई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में श्री गंगानगर और बीकानेर से उठे धूल के गुबार ने दिन में ही रात जैसा अंधेरा कर दिया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के दौरान दिन में अंधेरा छा गया। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आया।
3: राजस्थान में फिर से तीसरी बार रेत का बवंडर उठा है। देख सकते हैं बीकानेर की ओर से ये बवंडर उठा है, और एक तरफ देख सकते हैं कि जो एक तरफ आसमान है वो बिल्कुल साफ है, तो एक तरफ बवंडर है। देख सकते हैं कि किस तरीके से बवंडर यहाँ पर फैला हुआ है। एक तरफ आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से रेत का बवंडर उठा है। और ये तीसरी बार ये बवंडर है वो जो आया है, और देख सकते हैं कि इसमें आते आते पूरे शहर को इसने एकदम चपेट में ले लिया है। देख सकते हैं कि किस तरीके का बवंडर है, तो दूसरी तरफ मौसम है बिल्कुल साफ नजर यहाँ पर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवंडर हुआ है, और इसके बाद दिन में ही रात जैसा माहौल यहाँ पर होने जा रहा है।
4: आप देख सकते हैं जैसे फतेहपुर शेखावटी के अंदर बहुत ही भयंकर रेतीला तूफान आ रहा है। ये उधर चूरू रामगढ़ की साइड से होते हुए इधर फतेहपुर की साइड आ रहा है, बहुत ही भयंकर तूफान है। आप देख सकते हैं कि जैसे दिन के अंदर ही रात जैसा माहौल हो गया है।
1: राजस्थान में पिछले 28 दिनों के भीतर आए 3 रेतीले बवंडर ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। देश के तमाम हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग है। जून का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान में मौसम का मिजाज अब भी लोगों की परीक्षा ले रहा है। एक तरफ आसमान में बादलों की आवाजाही है, दूसरी तरफ तेज धूप और उमस लोगों को बेहाल कर रही है। वहीं राजस्थान में कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है।
5: आज भी 19 जिलों में आंधी और बारिश के अलर्ट्स दिए गए हैं, पर फिर भी अभी भी आसमान बिल्कुल साफ है। ऐसे में जितने भी अलर्ट्स जारी किए गए हैं उसके बाद भी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर संभाग में पारा 40 पार दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर संभाग में मौसम उमस और गर्म ही रहा है, और सभी जो उम्मीद कर रहे हैं वो यही है कि इस मौसम से राहत मिले। जो वापस से टेम्परेचर 40 पार जाने लग गए हैं, उनसे राहत की हर कोई उम्मीद इस वक्त कर रहा है। इंतज़ार कर रहा है कि कब मॉनसून आएगा, या फिर प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ या नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएगा, जिससे टेम्परेचर्स में इस गर्मी से सभी को राहत मिल सके।
1: दिल्ली NCR में मंगलवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई इलाकों में तेज धूल भरी

0: भी चली जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आसमान में घने काले बादल छा गए जिससे मौसम सुहावना हो गया।
1: तो आखिर झुलसती गर्मी के बीच प्री मानसून की छोटी छोटी बूंदे दिल्ली एनसीआर में दिखाई पड़ रही हैं। मौसम का मिजाज बदला है। इस वक्त तेज हवाएं चलती हुई आपको दिखाई पड़ रही हैं और इन हवाओं के बीच में बारिश भी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही 23 से 26 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया था कि इस बीच दिल्ली एनसीआर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई थी। फिलहाल कुछ देर से जो तेज हवाएं आप देख रहे हैं ये चल रही हैं। इनकी स्पीड लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास की होगी और इन हवाओं के बीच में अब बूंदाबांदी भी हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग मौसम में राहत तो महसूस कर रहे थे क्योंकि रह रहकर सूर्य देवता निकल रहे थे, बीच में काले बादल छा रहे थे, लेकिन ना तो बारिश हो रही थी और ना ही इस तरह से तेज हवाएं चल रही थी। मौसम में राहत ज़रूर थी लेकिन गर्मी और उमस लगातार बनी हुई थी और इस वक्त उसी गर्मी और उमस से राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है।
0: इस साल भी मॉनसून और वर्षा को लेकर फिलहाल अनिश्चितता ही बनी हुई है। इसका बड़ा कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस के पैटर्न में बदलाव है। जो डिस्टरबेंस पहले अक्टूबर नवंबर में आते थे वो अब दिसंबर जनवरी में आ रहे हैं और गर्मियों के महीनों यानी अप्रैल मई तक खींच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस साल मॉनसून की रफ्तार सुस्त क्यों है और इसका कारण क्या है। मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनाना जरूरी होता है जो इस बार शुरुआती दौर में नहीं बना। हिंद महासागर से आने वाली सोमालिया जेट स्ट्रीम हवाएं भी कमजोर हैं। अब उम्मीद है कि 28-29 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम सक्रिय होगा। ऐसे में दिल्ली में जुलाई के पहले हफ्ते से पूर्व मॉनसून आने की संभावना काफी कम है। मौसम विभाग ने एक बार फिर देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में कई इलाकों में तेज बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर, जयपुर से रिदम जैन, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दिल्ली से अनमोल बाली के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
2: अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के मकसद से एनएसजी ने की ड्रिल, तो अयोध्या से प्रयागराज के बीच का राम वन गमन मार्ग तैयार। ये सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह आयोजित हुआ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जिसमें 56 हस्तियों को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण और 2 को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन हस्तियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री, साउथ सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण, जीएमएम के संस्थापक दिवंगत शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को पद्म विभूषण दिया गया और मलयालम पत्रकार पी नारायणन को भी पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेजी से हो रही हैं। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर आज एनएसजी ने मॉक ड्रिल की जिसके तहत जवानों ने इमरजेंसी की तैयारी को परखा। इन अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। अब तक करीब 4,00,000 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। अब तक 40,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे। 2 महीने में करीब 12.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए जबकि बद्रीनाथ धाम में भी अब तक 11,00,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। वहीं अब तक 50,00,000 से ज्यादा भक्त चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। प्रयागराज से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। श्रृंगवेरपुर में राम वन गमन मार्ग बनकर तैयार हो गया है। इससे संगम नगरी प्रयागराज अयोध्या से जुड़ जाएगी। राम वन गमन मार्ग का यह हिस्सा अयोध्या से शुरू होकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और जौनपुर के कुछ हिस्सों से होते हुए प्रयागराज तक जाता है। श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा नदी पर एक बड़ा 6-लेन पुल भी बनाया गया है ताकि आने जाने में सुविधा हो। अब जल्द ही राम वन गमन मार्ग के अयोध्या से प्रयागराज के बीच के हिस्से का उद्घाटन किया जाएगा। गांधीनगर में अगरिया समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए गुजरात सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। ये शुरुआत रणशाला प्रोजेक्ट के तहत हुई है, जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने 28 रणशाला बसों का लोकार्पण किया। इन बसेस में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। रणशाला के क्लासरूम में स्मार्ट टीवी है, जिसमें डिश टीवी कनेक्टिविटी के जरिए एजुकेशनल चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही FM रेडियो, डिजिटल घड़ी, LED लाइटिंग सिस्टम के होने से भी बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी।
2: आम का ये मौसम सिर्फ स्वाद का ही नहीं बल्कि उन अनोखे इंसानी जज्बों को सलाम करने का भी है जिनमें आम की मिठास के साथ कड़ी मेहनत और पुरानी यादें बसी हैं। गोरखपुर में जहां एक ही छत के नीचे अलग अलग किस्म के आमों की खुशबू फैली है, तो वहीं सहारनपुर में पत्नी की याद में सबसे महंगे आमों में शुमार मियाज़ाकी की पूरी फसल खड़ी कर देने की कहानी भी है।
3: गर्मियों का मौसम हो और जुबान पर आम की मिठास न घुले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अपनी बेमिसाल खुशबू और लाजवाब स्वाद से हर किसी के दिल पर राज करने वाले फलों के राजा का दीदार करना किसे पसंद नहीं। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर क्लब की, जो इन दिनों आम की खुशबू से सराबोर है। मौका है चौथे सालाना मैंगो फेस्टिवल का, जहाँ आम के शौकीनों का हुजूम उमड़ पड़ा है। फेस्टिवल में आमों की अलग अलग किस्मों को एक ही छत के नीचे समेट दिया गया है। मेले में एक या दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा आम की किस्में मौजूद हैं।
4: ये हम लोगों ने आम महोत्सव किया है, ये हमारा चौथा आम महोत्सव है गोरखपुर में, और इसको किया जाता है इस ध्येय से कि इंटैक का जो ध्येय होता है कि जो हमारी लोकल हेरिटेज है, लोकल विरासत का संरक्षण करना और उसके प्रति जागरूकता करना है।
3: यहाँ देश के कोने कोने से लाए गए दुर्लभ विदेशी और स्वदेशी आम मौजूद हैं। सदाबहार अल्फांसो से लेकर चौसा और दुनिया के सबसे महंगे आमों में शुमार मियाज़ाकी तक, हर वैरायटी यहाँ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है।
5: अब गोरखपुर के लिए गौरव की बात है, और वैसे मैंने बताया ना कि जो है दोनों तरह के आम जो है, चाहे वो देसी आम हो चाहे जिसको ये कलमी आम या कपूरी आम जो आप कह लें, बहुत सारे वैरायटीज है, केवल दो ही ये नहीं है, उनकी बहुत सारी वैरायटीज है।
3: 3 दिन के इस फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ आम प्रेमियों को एक अनोखा अनुभव देना है बल्कि देश की पारंपरिक और लुप्त होती आम की प्रजातियों से लोगों को रूबरू कराना भी है। अलग अलग तरीकों के आमों के बीच अब आम का एक और रंग भी है, गहरा लाल रंग, और पहली ही नजर में किसी का भी दिल जीत लेने वाला ये खूबसूरत फल जो दुनिया का सबसे महंगा आम है, जिसका नाम है मियाज़ाकी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगे इस आम की कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि अनमोल भावनाओं में है, क्योंकि मियाज़ाकी आम का ये अनोखा बगीचा किसान शक्ति सिंह का अपनी दिवंगत पत्नी रवि प्रभा की यादों से जुड़ा एक भावनात्मक संसार है। कोरोना ने शक्ति सिंह से उनकी जीवन संगिनी रवि प्रभा को हमेशा के लिए छीन लिया, लेकिन शक्ति सिंह ने उनकी यादों को संजोने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा माने जाने वाला मियाज़ाकी आम का पौधा न सिर्फ रोपा बल्कि उसे अपनी पत्नी का नाम रवि मियाज़ाकी भी दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर से इन पौधों को मंगवा कर अपने खून पसीने से सींचा। आज जब इस पेड़ पर फल आए हैं तो शक्ति सिंह को इसमें अपनी पत्नी की मुस्कान नजर आती है। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, लेकिन सहारनपुर के इस किसान ने तो अपनी पत्नी की याद में प्रकृति का अनमोल तोहफा ही उगा दिया, जिसकी मिठास और कहानी किसी मिसाल से कम नहीं। आम के स्वाद की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन ये दास्तान है आम और अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़ने की। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले विकास मिश्रा की, जो आज मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं। विकास ने मोटी सैलरी वाली नौकरी को अलविदा कहकर अपने खेतों का रुख किया और आज उनका बगीचा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आमों का ठिकाना बन चुका है।
6: ये खेती तो हमारा खून में है, हम तो जो है ना बचपन से खेती ही करते आए हैं, बैगन, टमाटर, जब हम लोग लगाते थे, दो चार स्कूल से आते थे और अपने खाने के लिए जब हम लोग बैंगन लगाते थे, टमाटर लगाते थे, मिर्चा लगाते थे, तो बहुत खुशी होता था। अब धीरे धीरे जैसे हम काम किए और किसानों की समस्याएं समझ में आई कि ये बड़ी समस्या है, तो समस्याओं के समाधान के लिए ही हम लोग इस फील्ड में आए।
3: विकास के इस अनोखे बगीचे में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 92 किस्म के आम लहलहा रहे हैं। जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की वो दुर्लभ प्रजातियां जिन्हें देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो आज मुजफ्फरपुर की मिट्टी में मिठास घोल रही हैं। विकास के बगीचे में ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जिनकी अलग अलग डालियों पर 3 अलग अलग स्वाद वाले आम एक साथ उगते हैं। तकनीक और प्रकृति का ये संगम हर किसी को हैरान कर देता है।
6: मेरे बगीचे में 92 वैरायटी है आम का, और इसकी शुरुआत हम लोग 2014 में किए थे, और विदेशी वैरायटी है इसमें, जापानी मियाजाकी, रेड पालमार, थाई बनाना मैंगो, क्यूजई, किंग ऑफ चाकापात, अमेरिकन रेड पालमार, उसमें क्यूजई है, बाड़ी 11 है, बाड़ी 13 है, R2E2 है, 3 टेस्ट मैंगो है, रेड आइवोरी है, ऑस्टिंग गोल्ड मैंगो है, गोल्डन नाम डॉकमाई है, ब्लैक कस्तूरी है, तमाम तरह की जो है ना थाई लैंड का काटीमन मैंगो है जो ऑल टाइम है इस तरह से, और बाकी अपने यहाँ की जो वैरायटी है जो भारत में हम लोग बिहार की वैरायटी है, वैसे मुंबई की जो वैरायटी है अल्फांसो, उसी तरह से केसर है, तो अलग अलग प्रदेशों की वैरायटी को भी हम लोग रखे हुए हैं।
3: आज अलग अलग इलाकों से किसान और आम प्रेमी विकास के इस मैंगो रिसर्च सेंटर जैसे बगीचे तक आते हैं। कोई यहाँ से दुर्लभ पौधे ले जाता है तो कोई कम जगह में ज्यादा और अनोखी पैदावार करने के गुर सीखने यहाँ आता है। सहारनपुर से राहुल कुमार और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार।
7: भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली के चलते आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 893 अंक गिरकर 76,200 पर और निफ्टी 278 अंक टूटकर 23,824 पर बंद हुआ। टेक शेयरों और वॉल स्ट्रीट में भारी बिकवाली और इसके चलते दक्षिण कोरियाई बाजार में आई बड़ी गिरावट का असर शेयर बाजार पर साफ देखने को मिला। आज दिल्ली में सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की कीमत 3,000 रुपए गिरकर 1,49,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। बिकवाली का असर चांदी पर भी पड़ा और इसकी कीमत 10,500 रुपए गिरकर 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो 2 महीने से ज्यादा समय में इसका सबसे निचला स्तर है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया फिर फिसल गया। $1 के मुकाबले रुपया 11 पैसे गिरकर 94.74 पर बंद हुआ। इसकी वजह डॉलर की मजबूती और घरेलू बाजार में कमजोरी थी। हालांकि विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपए में और बड़ी गिरावट को रोकने में मदद ही की है।
2: हुमा कुरैशी की आने वाली फिल्म बेबी डू डाई डू का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
3: क्राइम, रहस्य और सस्पेंस से भरपूर फिल्म बेबी डू डाई डू का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया। फिल्म में हुमा कुरैशी एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका निभा रही हैं, जो बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन अपने खतरनाक अंदाज से हर किसी को हैरान कर देती है। बिना संवाद के सिर्फ हाव भाव से अभिनय करना हुमा के लिए बड़ी चुनौती रहा। नचिकेत सामंत के निर्देशन में बनी ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर अल्फा से मुकाबला करेगी।
8: अब ये सिचुएशन को तो हैंडल करना पड़ेगा ना।
9: सबको यहाँ से निकालना होगा।
10: बेबी किधर?
11: वो भाग गई, वापस नहीं आएगी।
10: तुम लोग के अंतिम संस्कार के लिए आएगी।
12: आप कौन है?
13: पुलिस वाले बेटा।
3: निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी की फिल्म 13 यार हूं मैं से अमन इंद्र कुमार बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। फिल्म के टाइटल ट्रैक का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें दोस्ती, प्यार और रिश्तों की झलक दिखाई गई है। अमन के साथ आकांक्षा शर्मा और वरिष्ठ अभिनेता परेश रावल अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। फिल्म की नई रिलीज डेट 24 जुलाई तय की गई है। मेकर्स को उम्मीद है कि ये पारिवारिक और भावनात्मक कहानी दर्शकों का दिल जीतने में सफल होगी।

अभिनेता इमरान हाशमी एक बार फिर हॉरर जॉनर में वापसी करने जा रहे हैं। उनकी नई फिल्म रूह का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। ये एक हाई कॉन्सेप्ट म्यूजिकल हॉरर फिल्म होगी जिसका निर्देशन ब्रीथ फेम मयंक शर्मा कर रहे हैं। फिल्म की कहानी रहस्य संगीत और डर के अनोखे मेल पर बेस्ड होगी। वीकेंड फिल्म्स के बैनर तले बन रही रूह हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर हॉरर प्रेमियों के बीच अभी से उत्साह बढ़ गया है। श्रद्धा कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म इथा का टीजर रिलीज होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। ये फिल्म महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कलाकार बिठाबाई भाऊ मांग नारायण गांवकर के जीवन पर आधारित बायोपिक है। फिल्म में उनके संघर्ष, कला और सफलता की प्रेरणादायक कहानी दिखाई जाएगी। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अयूब भी अहम भूमिकाओं में हैं। इथा 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और टॉक्सिक से टकराएगी।

0: पान में पान चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा।
1: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी के दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे रंग। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए दर्शन, एक्टर ने बाबा बागेश्वर को भेंट किया अंगवस्त्र। न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
4: गर्मी से राहत पाने का इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई होगा। भीषण धूप और बढ़ते तापमान के बीच ये भालू तालाब के ठंडे पानी में उतर कर खूब आनंद ले रहा है। पानी में इसकी मस्ती देखकर ऐसा लगता है मानो इसे तैराकी की पूरी ट्रेनिंग मिली हो। कभी आराम से तैरता है तो कभी पानी में खेलता नजर आता है। ये नजारा न सिर्फ सुकून देता है बल्कि बताता है कि जानवर भी मौसम के हिसाब से खुद को ढालना अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों की चहल पहल नहीं थी, लेकिन इस प्यारी बिल्ली ने माहौल को खास बना दिया। अपने नन्हे बच्चों के साथ स्कूल पहुंची ये बिल्ली सभी का ध्यान खींच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो भी चाहती हो कि उसके बच्चे कुछ नया सीखें। मासूम बच्चों और उसकी माँ की ये मौजूदगी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसे ममता और स्नेह का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं। सफलता की नींव बचपन में ही रखती जाती है और इसमें माँ की भूमिका सबसे अहम होती है। सुबह सुबह बच्चों को जगाना, उन्हें पढ़ाई और अभ्यास के लिए तैयार करना आसान काम नहीं है। ये माँ भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का पाठ सिखाकर वो उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। ये नजारा बताता है कि माँ का त्याग और समर्पण ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है। आमतौर पर सीधी दीवार पर चढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन इस मेढक को देखकर हर कोई हैरान है। ये बिना रुके और बिना फिसले लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसकी फुर्ती और संतुलन देखकर लोगों को स्पाइडरमैन की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार नहीं बल्कि कोई सामान्य रास्ता हो। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस छोटे से जीव की अद्भुत क्षमता और दृढ़ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बल्कि कोई सामान्य रास्ता हो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस छोटे से जीव की अद्भुत क्षमता और दृढ़ता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्यार और दया की कोई उम्र नहीं होती, ये नन्ही बच्ची इसका सुंदर उदाहरण पेश कर रही है। अपने छोटे छोटे हाथों से वो बड़े प्यार से मोर को खाना खिला रही है। मोर भी बिना डरे उसके पास खड़ा होकर दाना खा रहा है। दोनों के बीच का ये स्नेह लोगों का दिल जीत रहा है। ये नजारा इंसानों और पक्षियों के बीच भरोसे और अपनापन की अनोखी तस्वीर पेश करता है। सोशल मीडिया पर लोग बच्चे की मासूमियत और संवेदनशीलता की खूब सराहना कर रहे हैं।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को मुफ्त छातों की व्यवस्था की। तेज धूप और लू के कारण पर्यटकों को राहत देने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग की ओर से ये पहल की गई है। राजस्थान की तपती गर्मी और असर, राजधानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर और नाहरगढ़ फोर्ट में देखने को मिल रहा है। ऐसे में पर्यटकों को राहत देने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग की ओर से छाते उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से देसी विदेशी पर्यटक दिन के समय ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर जाने से बच रहे हैं, जिससे कि पर्यटन स्थलों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम चहलकदमी देखी जा रही है। लिहाजा पर्यटकों को राहत देने और गर्मी के कहर से बचाने के लिए पर्यटन और पुरातत्व विभाग ने विशेष इंतजाम शुरू किए हैं। आमेर महल, हवा महल और जंतर मंतर के बाद अब नाहरगढ़ फोर्ट में भी पर्यटकों को निःशुल्क छाते उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे धूप से बचते हुए ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सके। पर्यटकों का कहना है कि पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए मुख्य गेट पर ही छाते उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तरह की पहल भ्रमण के दौरान राहत देने का काम कर रहे हैं। ये जानने के लिए हमारी सहयोगी रिदम जान ने जयपुर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
5: जंतर मंतर में गर्मी और बारिश को ध्यान में रखते हुए जंतर मंतर के प्रवेश द्वार पर छाते रखवाए गए हैं विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके जंतर मंतर में घूमने में, और अगर टूरिस्ट अपनी आईडी देता है तो उसको छाते दे दिए जाते हैं, और जब वो विजिट करके वापस जाता है तो छाते जमा करा के अपनी आईडी वापस ले लेता है।
6: जो अम्ब्रेलाज आपको मिले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए, कैसा लगा?
7: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
6: मैम कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं, और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
8: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए। अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
6: सर बारिश का भी सीजन है, प्री मॉनसून भी है, अभी धूप पड़ रही है पर कल जैसे बारिश आ रही थी, तो अलग अलग मौसम रहते हैं। ऐसे में कितना अच्छा लगा आपको राजस्थान सरकार की ओर से ये जो पहल है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना आप और टूरिस्ट स्पॉट्स में ये सब देखना चाहेंगे?
9: ये राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छाते दे रहे हैं ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इससे। ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
6: हम कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे कि और भी क्या कुछ ऐड कर सकते हैं अम्ब्रेलास के साथ में?
8: यहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ठंडा पानी थोड़ा सा, गर्मी के सीजन में थोड़ा पानी तो बहुत अच्छा है बस।
6: तो और मतलब पानी और एक बार हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मतलब। तो पानी के लिए हम आपको बता देते हैं कि वाटर कूलर्स यहाँ पे चारों तरफ लगे हुए, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वाटर कूलर्स दिखेंगे, एक एक कोने में है, तो आप जाइए आपको वो सुविधा भी मिलेगी क्योंकि राजस्थान सरकार ने उसकी भी पूरी तैयारियां की हुई है। सर कहाँ से आए हैं आप?
10: रांची झारखंड।
6: कैसा लग रहा है राजस्थान और राजस्थान की गर्मी प्लस मॉनसून?
10: हाँ असल में यहाँ पे गर्मी, ये गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
6: मतलब बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
10: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे। ठीक है, लेकिन
6: मतलब मैं ये समझ रही हूँ अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
10: हाँ एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियाँ देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं।
6: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर था?
11: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
6: सर आप क्या सुझाव देंगे?
10: नहीं मैं अभी आमेर फोर्ट भी गया था, वहाँ पे ये सुविधा शायद नहीं शुरू हुई है, तो बाकी जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ भी ये सुविधा अगर शुरू की जाए तो अच्छी।
6: काफी जगह ये आ गई है, काफी जगह ये अभी बच रही है क्योंकि धूप के समय ज्यादा थी। अब मॉनसून में भी इसको कंटिन्यू करने का सोचा जा रहा है और यहाँ पे किया गया, सिटी पैलेस में किया गया, हम उम्मीद कर रहे हैं। मैम आपको कैसा लग रहा है और आप क्या सुझाव देंगे?
12: हम क्या सुझाव, इन लोग बता ही दिए जो सुझाव देना था। हाँ और ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी भी लग रही थी, धूप भी लग रहा था, तो ये बहुत अच्छा किया है।
1: और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात क्लीन गंगा के मकसद से शुरू हुए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कानपुर के जजमाओं में चल रहे सीटीपी की सफलता की। ये प्लांट यहां उद्योगों, टैनरीज और फैक्ट्रीज के जहर से गंगा को मुक्त कर रहा है। गंगा के प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में सफल रहा है। पहले जहां ये जहरीला पानी गंगा में मिल जाता था, अब वाटर ट्रीटमेंट से न सिर्फ किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है बल्कि गंगा भी साफ हो रही है।
13: हिंदुस्तान में गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा एक संस्कार है, पर्व है, गीत है, पुण्य का आधार है, या यूं कहें कि धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। यह परंपरा है गंगा, विवेक है गंगा, गंगा ही सत्य है और गंगा ही सहारा है। वो गंगा ही है जिससे हरिद्वार है, काशी और प्रयाग है। गंगा ही घर की देहरी है और गंगा ही चिराग है। गंगा ही ऊर्जा है, गंगा ही आग है, गंगा ही दूध पूत है तो गंगा ही सुहाग है। लेकिन आज यही मैली गंगा उदास भी है, इसलिए गंगा की उदासी को महसूस करते हुए उसकी पवित्रता सहेजने की संवेदना ने क्लीन गंगा मिशन का आगाज किया। गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए नित नए कदम उठाए गए। उसी में से एक बड़ा कदम है कानपुर के जाजमऊ इलाके में 28 एकड़ में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के मकसद से लगाया गया कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीईटीपी।
14: इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के जाजमऊ इलाके में बने 20 एमएलडी कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसे बनाया गया था ताकि इंडस्ट्रीज और टैनरी से निकलने वाला दूषित पानी और केमिकल का पानी सीधे गंगा नदी में ना जाने पाए और उसका पहले यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाए और उसे साफ किया जाए।
13: 650 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने 20 एमएलडी कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में रोजाना 20 मिलियन लीटर यानी करीब 2 करोड़ लीटर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का केमिकल वाला पानी साफ होता है। केमिकल युक्त गंदे पानी को साफ करने की ये प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। इसमें पहले प्राकृतिक, फिर ऑर्गेनिक और फिर रासायनिक चरण शामिल है। जाजमऊ की करीब 340 से 400 टैनरीज से निकलने वाले केमिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्देश्य गंदा पानी गंगा में न जाने देने का है। ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए साफ कर पानी को 16 किलोमीटर लंबी इरिगेशन पाइपलाइन में भेजा जाता है, जहां से किसान अपने अपने खेतों में उस पानी से सिंचाई करते हैं।
15: ये काफी हद तक हमारा साफ पानी सिंचाई के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी अभी फाइनल स्टेज नहीं है। हमारी एक स्टेज हमारे प्लांट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूएफ प्रोसेस, वो अभी हमने किसी कारणवश अभी स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो स्टार्ट कर देंगे तो इस पानी का जो हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी।
14: इसमें भी आपका और इसको आप लोग टेस्टिंग भी करते हैं पैरामीटर्स में कि
15: कितने? एक लैब बनी हुई है बहुत अच्छी और हाईली एजुकेटेड हमारे लेबोरेटरी पर्सन है। डेली बेसिस पे हमारे सारे पैरामीटर टेस्ट होते हैं कि क्या बीओडी है, क्या सीओडी, क्या क्रोमियम है, सब में हम डेली बेसिस पे सब टेस्ट कर सकते हैं।
13: यही नहीं, सरकार ने काफी पहले से हर लेदर फैक्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाना जरूरी कर दिया है, जिससे फैक्ट्री के अंदर ही खतरनाक रसायन सॉलिड फॉर्म में अलग कर दिए जाते हैं और बाकी पानी ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। सॉलिड वेस्ट को डंपिंग साइड में दबा दिया जाता है।
14: जो पानी साफ करके ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है, उसे इस चैनल के जरिए किसानों के पास पहुंचाया जाता है ताकि वे फसल सींचने पाए और यह पानी उनके प्रयोग में ला पाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वो चैनल है, ये वो पाइपलाइन है जहां से पानी इस इरिगेशन चैनल में आ रहा है और इस पाइपलाइन को सामने जो ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है वहां से जोड़ा गया है ताकि वहां से जब पानी साफ होता है तो इस तरीके से सीधा गंगा नदी में ना जाने पाए बल्कि किसानों के खेतों में जाने पाए और वहां से जो पानी बचने पाए वो कहीं ना कहीं आखिरी में जाकर गंगा नदी के पास जाने पाए।
13: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत लगाए गए इस प्लांट के चलते आज गंगा नदी में पहुंचने वाले औद्योगिक प्रदूषण में जबरदस्त कमी आई है। साल 2017 की तुलना में इस प्रदूषण में करीब 60% की गिरावट दर्ज की गई है।
16: पहले क्या था कि नाले डायरेक्ट अपना गंगा नदी में जा रहे थे, फिर हमारे पास एसटीपीज बने और उन नालों को टैप करके डाइवर्ट किया गया एसटीपी में, तो एसटीपी से आफ्टर ट्रीटमेंट वो पानी फिर गंगा में जा रहा, तो उससे क्वालिटी इंप्रूव हुई गंगा जी की। अभी भी हमारे पास एक 15 एमएलडी का नया प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, और इसके साथ साथ हमारे पास फरुखाबाद में 2 एसटीपी लगे हुए हैं जबकि ये भी बाद में ही बने हैं। उसमें करीब एक 14.5 एमएलडी का है और एक करीब 12 एमएलडी का है।
13: लंबे समय तक जाजमऊ से निकलने वाला दूषित पानी गंगा प्रदूषण की अहम वजह माना जाता रहा, लेकिन 2023 में लगाए गए सीईटीपी से सबसे बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान गंगा में सीधे गिरने वाले सीसामऊ नाले को भी इंटरसेप्ट किया गया। ये नाला पहले हर रोज लगभग 140 एमएलडी गंदा पानी सीवेज और उद्योगों की गंदगी गंगा में प्रवाहित करता था, मगर अब कानपुर इलाके में पानी की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। कानपुर में सीईटीपी की सफलता को देखते हुए अब मथुरा और उन्नाव में भी प्लांट लगाए गए हैं।
14: कानपुर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का ये दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट है। पहला जिसकी क्षमता 1.5 एमएलडी की है वो भी बन रहा है, अपने विस्तार की ओर है। कानपुर के आसपास ऐसे कई इलाके हैं, फरुखाबाद, मथुरा, जहां पर ऐसे जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि गंगा का जो अपने आप में एक साफ सुथरा जो पानी है वो बना रहे और केमिकल्स का जो पानी है वो किसी तरीके से उसे खराब ना करने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।
1: चीन में श्वानवू झील में बारिश के बीच एक अनोखा चमत्कार हुआ, जब एक ही तने पर खिले दो कमल के फूल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में एक बेहद दुर्लभ और मनमोहक नजारा देखने को मिला, जहां मशहूर श्वानवू झील में बारिश के बीच एक अनोखा चमत्कार हुआ। यहां एक ही डंठल यानी एक ही तने पर दो कमल के फूल एक साथ खिले हैं। रिमझिम फुहारों के बीच पानी की बूंदों से सजे इन गुलाबी कमलों को हवा के झोंकों के साथ झूमते देखना अपने आप में एक जादुई एहसास है। चीनी संस्कृति में इन ट्विन लोटस यानी जुड़वा कमलों को बेहद शुभ, पवित्र और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चीन के सिचुआन प्रांत में एक किसान ने एक ऐसा अनूठा फार्म तैयार किया है जो आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सो मेनी पेपर फार्म्स में एक या दो नहीं बल्कि मिर्च की 100 से भी ज्यादा दुर्लभ किस्में उगाई जा रही हैं। कमाल की बात यह है कि इस फसल से सिर्फ 100 ही नहीं बल्कि तीखेपन के 8 अलग अलग लेवल्स वाली अनोखी चिली चॉकलेट भी तैयार की जा रही है। इटली के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अनोखा रोबोटिक हाथ तैयार किया है जो बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह काम करता है। इस रोबोटिक हाथ को सिलिकॉन से तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लगे कृत्रिम सक्शन कप्स में बेहद छोटे सेंसर्स और एलईडी लाइट्स लगाई गई है, जिसकी मदद से ये रोबोट पानी के अंदर या हवा में किसी भी चीज को छूकर ये महसूस कर सकता है कि वो चीज कितनी भारी है, किस आकार की है और उस पर कितना दबाव बनाना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराइयों में रेस्क्यू ऑपरेशन और अंडरवाटर रिसर्च करने में किया जा सकता है। चीन के हुबेई प्रांत से जीव वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद अद्भुत और ऐतिहासिक कामयाबी की खबर आई है। यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोबायोलॉजी ने एक बेहद दुर्लभ जलीय जीव यांगसे फिल्लिस पोर्पोइस के बच्चे के जन्म का एक दुर्लभ वीडियो जारी किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रजाति के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है जब बच्चे का जन्म पूंछ की तरफ से ना होकर हेड फर्स्ट यानी पहले सिर की तरफ से हुआ है। इस नन्हे और बेहद प्यारे मेहमान का नाम रिसर्चर्स ने लिटिल 26 रखा है। ये प्रजाति दुनिया के सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जलीय जीवों में से एक है, इसलिए इस बच्चे का जन्म वैज्ञानिकों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं। अमेरिकी रॉक बैंड सोशल डिस्टॉर्शन और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप ने मिलकर फैशन की दुनिया में एक बेहद पर्यावरण अनुकूल शुरुआत की है। अपनी यूरोपीय टूर बॉर्न टू किल के दौरान ये बैंड अपने फैंस को ऐसी टी शर्ट्स और हुडीज बेच रहा है जो पूरी तरह से रिसाइकिल की गई है। दरअसल कुछ कलाकारों के पुराने टूर्स की करीब 400,000 अनसोल्ड टी शर्ट्स बेकार पड़ी थी। यूनिवर्सल म्यूजिक की मर्चेंडाइज डिवीजन ने इन सभी कपड़ों को एक टेक्सटाइल कंपनी की मदद से नष्ट कर एक नया धागा तैयार किया। अब इसी धागे से करीब 280,000 नई रिसाइकल टी शर्ट्स बनाई जा रही है। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
18: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
19: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
22: अविश्वास में विश्वास बसता है
20: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
18: गुड न्यूज टुडे
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
24: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
22: अविश्वास में विश्वास बसता है
20: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
18: गुड न्यूज टुडे
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
23: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: वैभव सूर्यवंशी को 3 स्टार वाली टीम इंडिया की मिली जर्सी। इसके साथ ही खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए सीधे चले खेल चक्कर।
2: वैभव सूर्यवंशी को 3 स्टार वाली टीम इंडिया की जर्सी मिल गई है। बीसीसीआई ने एक वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी है। वीडियो में टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ सदस्य रघु उनके कमरे में पहुंचकर वैभव को जर्सी वाला बॉक्स सौंपते दिख रहे हैं। पहली बार टीम इंडिया की जर्सी मिलने के बाद वैभव इमोशनल दिखे। वैभव सूर्यवंशी का चयन आयरलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए किया गया है। भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मुकाबले खेलने हैं। T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हुई। इंग्लैंड में टीम इंडिया को 5 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं, जबकि उप कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। साथ ही कोहली और रोहित भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। ऋषभ पंत की IPL में घर वापसी हो गई है। वो एक बार फिर अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हाई प्रोफाइल ट्रेड डील हुई है, जिसके तहत विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हुई है, जबकि स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में दिखेंगे। हालांकि अब ट्रेड के जरिए ऋषभ को सिर्फ 15 करोड़ ही मिलेंगे। 38 साल के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच डाला है। ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना के मुकाबले में मेसी ने जैसे ही मैच का पहला गोल दागा, वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उनका ये फीफा वर्ल्ड कप में 17वां गोल था। उन्होंने जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मेसी अब 18 गोल के साथ पहले पायदान पर हैं। फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए इराक को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही दो बार की चैंपियन टीम फ्रांस ने नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में फ्रांस की जीत के हीरो स्टार फॉरवर्ड एम्बापे रहे, जिन्होंने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उस्मान डेम्बले ने टीम के लिए 3रा गोल दागा। धमाकेदार जीत के साथ ही फ्रांस की टीम ने ग्रुप स्टेज का एक मैच बाकी रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements.
11: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान से मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किया दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। अमरनाथ यात्रा को लेकर घाटी में सुरक्षा पुख्ता, जम्मू में एनएसजी कमांडो ने की मॉक ड्रिल, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। अंबुबाची मेले में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, कामाख्या मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल, कला और संस्कृति के दिख रहे हैं रंग। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की फोटो, लिखा जन्मदिन मुबारक।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं शक्ति के धाम पर भक्ति के अद्भुत मेले की। देखिए जी हां, कामाख्या देवी मंदिर में लाखों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं, क्योंकि वहां अंबुबाची मेले की शुरुआत हो चुकी है। चार दिनों के इस उत्सव में देश भर से श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आज आपको कामाख्या मंदिर के इस महत्वपूर्ण मेले के बारे में विरासत उसकी बताएंगे, विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, इसके धार्मिक अहमियत को भी समझाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि क्यों तंत्र मंत्र के साधक इस वक्त कामाख्या मंदिर में मौजूद हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कश्मीरी पंडित वहां पर क्यों पहुंचते हैं, कश्मीर के खीर भवानी मेले की बात करेंगे, कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी के दरबार में श्रद्धा का सैलाब है, आपको खीर भवानी मंदिर से जुड़ी कहानी बताएंगे और आखिर में चलेंगे जम्मू, जहां अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता बनाया जा रहा है। जम्मू के यात्री निवास पर एनएसजी किस तरह से ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आपको ये भी दिखाएंगे। फिलहाल तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।

0: किसी के लिए भावना सर्वोपरि है तो किसी के लिए कठिन साधना। अम्बुवाची मेले का अवसर बड़ा है, इसलिए कामाख्या देवी मंदिर में जमावड़ा है। हजारों की भीड़ मां के आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़ी है। ये तस्वीर इस मायने में अनूठी है क्योंकि यहाँ भावना और साधना का अद्भुत संगम है। यही कामाख्या देवी मंदिर की विशेषता है। यहाँ सिर झुकाने आए सामान्य लोग भी हैं और तंत्र मंत्र की पद्धति से मां को पूजने वाले साधक भी। कोई पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव को देखने समझने आया है तो कोई मंदिर परिसर में मौजूद ऊर्जा को आत्मसात कर दी।
1: माँ तो मतलब जैसे उसकी तो महिमा परंपार है, हर बार बुलाती है, हर बार बहुत प्रेम से बुलाती है, तो माता की कृपा है। बिल्कुल कल्चर अलग है, लेकिन हम यही है कि हम सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के कल्चर से लेते हैं, इंस्पायर होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तो ऐसा है कल्चर हमारा।
2: यहाँ पे आने से आप हमारे मदर गॉडेस जो हिंदुइज्म में डिवाइन फेमिनिन, यहाँ काली एंड त्रिपुर सुंदरी दोनों का वास है, तो हम माँ की कंपनी में आते हैं, उनकी ऊर्जा में आते हैं। मनोकामना का तो क्या है ना, मनोकामना है कि अभी हम यहाँ है ना, बाकी तो वो दे देंगी, उनका नाम लेना काफी है।
0: गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर मौजूद कामाख्या देवी मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है, शाक्त परंपरा और तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र। साल का कोई भी दिन हो, भीड़ जरा भी कम नहीं होती, पर अम्बुवाची मेले की बात ही कुछ और है। मान्यता है कि इस वार्षिक मेले के दौरान माँ कामाख्या रजस्वला से गुजरती हैं। इसी वजह से इस दौरान देवी माँ को पूरा आराम दिया जाता है और मंदिर के मुख्य कपाट 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। बेशक कपाट बंद है, पर भक्तों के लिए इस वक्त पूरे परिसर में माँ की मौजूदगी है। अम्बुवाची उत्सव की शुरुआत सोमवार को हुई। सोमवार की रात 9:08 और 42 सेकंड पर महायोग की प्रवृत्ति से जुड़े अनुष्ठान किए गए और फिर 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब 26 जून को सुबह निवृत्ति अनुष्ठान और पारंपरिक नित्य पूजा पूरी होने के बाद भक्तों के लिए कपाट फिर से खोले जाएंगे।
3: 3 रात को अम्बुवासी महायोग रहेगा। ये सबसे शक्तिशाली समय है और ये जागतिक समय है। सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में 3 दिन और 3 रात रहता है। क्योंकि ये इतना दुर्लभ समय है, ये समय में हर कोई जो भी प्रार्थना करे अपना मन से, अपना नियम से, जो भी जैसा चाहता है वो ऐसा प्रार्थना करे, क्योंकि ये समय और साल भर में एक बार ही आता है और दोबारा नहीं मिलेगा। ये समय बहुत दुर्लभ समय है।
0: कपाट खुलने के बाद यानी 4th दिन कामाख्या देवी को शुद्ध स्नान कराने की परंपरा है। इसके बाद देवी की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा का प्रसाद प्राप्त करना सभी की मनोकामना होती है, खासकर जो साधक हैं या तांत्रिक हैं, उनके लिए तो ये उत्सव और प्रसाद बेहद अहम होता है।
4: रानी सभी भक्तों की सबकी मनोकामना पूरी करे और जो भी भगत श्रद्धा से आए उनकी यात्रा सफल हो और सभी श्रद्धालुओं का काम अच्छा हो और हम भी अपना भजन कर रहे हैं, माता रानी हमें भी शक्ति और भक्ति दे।
0: अंदाजा है कि इस अम्बुवाची मेले में देश भर से करीब 8 लाख भक्त शामिल हो रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद तांत्रिकों, अघोरियों और साधु संतों की है जो इस दौरान मंदिर के आसपास गुप्त साधना और ध्यान करते हैं। तांत्रिक परंपरा में रजस्वला अवस्था को सृजन शक्ति और प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक माना गया है। इसे देवी की दिव्य शक्ति के जागरण का काल माना जाता है, इसलिए शाक्त परंपरा में इस मेले का सबसे ज्यादा महत्व है।
5: किन्नर जहाँ है वहाँ पूजा पाठ होती है, हमारा संसार तो नहीं होता है। यदि संसार होना होता था तो माता ने हमें मेल या फीमेल बनाते थे। इस जन्म में शायद से हमें पूजा ही करना है, इसलिए माता ने ये जन्म दिया।

0: लास्ट टाइम भी आया था यहाँ कामाख्या मंदिर में, लेकिन मुझे जो वाइब फील हुई आपकी बार अम्बुबाची मेला में आने के बाद में 2026 के, मैं बहुत पहले भी प्रयास कर रहा था, सोचा था कि आऊँगा एक बार, लेकिन अब की बार जब आया तो ऐसा फील हो रहा है कि बार बार आना चाहिए, क्योंकि जो वाइब्रेशन है यहाँ की, जो एनर्जी है, वो जब अभी ये निकल रहे थे, वो परिक्रमा कर रहे थे और डमरू के साथ में पूरा जो तांत्रिक लोग थे और जितने भी साध्वी यहाँ पे आए थे, पूरा अलग ही माहौल था, और वो देख करके, वो फील करके कोई भी यहाँ पे आने के बाद में यही सोचेगा कि अब की बार तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा।
1: मैं अम्बुबाची मेले में आया हूँ, पहले अम्बुबाची मेले में आया था, नॉर्मल डेज में आया था। और दूसरी बात है कि अभी जब आज हमने दूसरी बार दर्शन करे गर्भगृह के, और जब दूसरी बार दर्शन करे गर्भगृह के तो वो भी बहुत अनप्लान्ड हुए, हम कम से कम 3-4 बजे आए और फिर हमारे 6 बजे तक दर्शन भी हो गए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये बोलूंगा कि मैं दूसरी बार आया हूँ अम्बुबाची मेले में और मैं आऊंगा भी आगे भी, तो मैं जो लोग घर से देख रहे हैं चीज़, उनसे बोलना चाहूँगा एक बार आप आके एक बार प्लीज एक्सपीरियंस करें, बहुत सही एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है।
2: कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है, लेकिन शाक्त परंपरा में इसका महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। मान्यता है कि भक्तिभाव से पूजा के बाद जो भी मनोकामना होती है माँ उसे पूरा जरूर करती हैं। तंत्र मंत्र या साधना जरूरी नहीं, जो भी सच्ची भावना से सिर झुकाता है आशीर्वाद पाता है।
3: ये जो माँ कामाख्या का पीठ है, 51 पीठों में से शक्तिपीठ ये प्रधान पीठ कहा गया है। अम्बुबाची मेले में के साधु संत सभी आ रखे हैं, सभी अपनी साधना में लगे हुए हैं, माँ कामाख्या का भजन कर रहे हैं। माँ महामाई ऐसी सभी पे कृपा बनाए रखे, ऐसे भगवती सभी मेहर बनाए रखे, जय माँ कामाख्या।
4: बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है माँ के इस मेले में आना और इस समय में आना, और उनका आप देख रहे हैं विभिन्न पूरे देश से लोग आए हैं, पूरे देश से साधु संत आए हैं, और एक अलग तरह की ऊर्जा मैं कहूँगा माँ कामाख्या के प्रमाइसिस में आपको मिलती है। और माई सब पर दया रखें और सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, देश को समृद्धि दें।
5: माँ की गोदी में आके बैठे हैं और जो यहाँ पे आके जो माँ की ऊर्जा मिलती है उसकी तो बात ही निराली है, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है।
2: मन में मुराद लिए, देवी माँ से आस लिए, भक्तों का रेला कामाख्या देवी मंदिर पहुँच रहा है। माँ का हर तरफ जयकारा गूंज रहा है। गुवाहाटी से अचिंत्य पतंगिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आइए बात करेंगे माता खीर भवानी मेले की। देखिए, गांधरबल जिले के तुलमुला में मौजूद माता खीर भवानी मंदिर में इन दोनों श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश विदेश से आ रहे कश्मीरी पंडित माता रागन्या देवी के दर्शन कर रहे हैं और जय माता दी के जयकारे लगातार गूंज रहे हैं। सदियों पुराना ये तीर्थ कश्मीरी पंडितों की आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र माना जाता है। खासकर मंदिर के पवित्र कुंड से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि मान्यता ये मानी जाती है कि कुंड का पानी अपना रंग बदलकर संकट का पहले ही संकेत दे देता है। देखिए खास रिपोर्ट।

ऊंचे पहाड़ पर माँ का दरबार सजा है, भक्ति का मेला लगा है। कश्मीर की हसीन वादी में जैसे हर रास्ता माँ के दरबार तक जाता नजर आता है। गांदरबल जिले के तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब है।

0: बस भारत माता की जय और हिंदू मुस्लिम सिख के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद।
1: इस वक्त हम गांधरबल जिले के तुलमुला इलाके में हैं और मेरे आसपास का माहौल देख के आप समझ गए होंगे कि हम हैं माता वैष्णो देवी मंदिर जो है उसके परिसर में, और हर्षोल्लास से भरे जो श्रद्धालु हैं यहां पहुंचे हैं, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है समुदाय उनके लोग जो हैं न सिर्फ जम्मू बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। और जहां रजिस्ट्रेशन का एक नंबर था लेकिन अभी बहुत ज्यादा उससे बढ़ के जो है लोग यहां पहुंचे हैं। ये मंदिर जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक जो है आस्था जुड़ी है कश्मीरी पंडित्स के इसके साथ, और शायद सबसे बड़ा जो एक धार्मिक फेस्टिवल है कश्मीरी पंडित्स का वो यहाँ तुलमुला में हर साल होता है। जैसे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, और जहाँ एक धार्मिक कनेक्शन है वहीं उसके साथ साथ जो एक रूट्स जुड़े हैं, जो उनकी यादें यहाँ जुड़ी हैं, जो उनकी मिट्टी के साथ जो मोहब्बत है, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित हैं 90 की दहाई के शुरू होते ही यहाँ से उनको पलायन करना पड़ा, हालात खराब हुए, बंदूक ने अपना सर उठाया, तो कई लोगों के लिए जो एक मौका होता है कि अपने घर वापस आने का, और यहाँ हमने कई बुजुर्ग जो हैं उनको रोते हुए भी देखा क्योंकि साफ तौर पे उनने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी थी कश्मीर में, और अचानक जो है वो जो पीड़ा है यहाँ आके उनकी आंखों से हमें आंसुओं के तरीके से जो है बहती दिखी। और जहाँ खुशी है कि दोबारा वो यहाँ आए हैं और इस माता खीर भवानी के जो मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, उन्होंने जो है दुआएं मांगी, लेकिन उसके साथ साथ वो पीड़ा भी साफ तौर पे दिखती है जो यहाँ से बिछड़ने की, यहाँ से अपने घर छोड़ के जाने की है।
2: ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के अवसर पर लगने वाला खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना जाता है। यही वजह है कि दूर दराज के इलाकों से लोग माता का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचते हैं। सालों पहले घाटी छोड़ चुके परिवार भी इस अवसर पर आस्था की डोर से खींचे चले आते हैं। माता रागन्या देवी, जिन्हें खीर भवानी के नाम से जाना जाता है, कश्मीरी हिंदुओं की सबसे बड़ी आराध्य शक्तियों में मानी जाती हैं। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कुंड श्रद्धा का मुख्य केंद्र है। भक्त यहाँ दूध, खीर और मिश्री अर्पित करते हैं और माता से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं।
3: आज की दिन की ये अहमियत है, ये जो पर्व है ये बहुत ही सदियों से मनाया जा रहा है और ये माता का दिन है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये संदेश प्यार का, पीस का, और प्रार्थना ये करते हैं कि सब आगे भी हमारा जो संसार है अच्छी तरह चले, संसार में शांति आए, हमारे कश्मीर घाटी में शांति है, जम्मू में शांति हो, सब जगह शांति हो, प्यार मोहब्बत हो, और यहाँ यही संदेश है।
2: देवी को खीर अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है, इसी वजह से उन्हें खीर भवानी कहा जाता है। खीर भवानी धाम की सबसे बड़ी विशेषता वो पवित्र कुंड है जो आस्था के साथ साथ रहस्य का भी केंद्र माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ये जलधारा रंग बदल कर संकट का संकेत देती है।
1: मान्यताएं जुड़ी हैं। ये जो माता रागन्या देवी का मंदिर है और जो पानी का जो रंग होता है उसके हिसाब से कश्मीरी पंडितों की मान्यता है, ये मानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है वो इस पानी के रंग से समझ जाते हैं, और ये सालों साल से होता आया है। आज हरा रंग है, लाइट कलर है, इसका मतलब कि आने वाला समय अच्छा होने वाला है, लेकिन जब ये रंग लाल या काला हो जाता है तो साफ संकेत है कि माता रागन्या देवी जो है वो क्रोधित हैं, और उसकी वजह से जो कोई जो है प्राकृतिक आपदा या फिर कोई मैन मेड डिजास्टर जो है होने वाला है, और वो इससे पहले भी इन्होंने देखा है। जब 1990 में इनको यहां से पलायन करना पड़ा, कई सारे मारे भी गए, तो उस वक्त इसका रंग जो है ये बताया जाता कि काला हो गया था, तो साफ तौर पे संकेत थे कि आना वाला समय जो है अच्छा नहीं है, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो एक अलग कहानी है इस पानी को लेके, और तभी इसको भी जो है काफी पवित्र माना जाता।
2: माता खीर भवानी धाम का महोत्सव केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। रजत रंगिणी में इतिहासकार कल्हण ने इस पवित्र स्थल का वर्णन किया है। मान्यता के अनुसार एक समय बाढ़ के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था और पवित्र स्थान दिखाई देना बंद हो गया था। तब योगी कृष्ण पंडित को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और सही स्थान का संकेत दिया। बाद में जल कम होने पर वही स्थान मिला और वहां फिर से पूजा प्रारंभ हुई। आज भी श्रद्धालु इस कथा को माता की कृपा का प्रमाण मानते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप भी अपने भीतर एक लंबा इतिहास समेटे हुए है। कहा जाता है कि सालों तक दूध और मिश्री अर्पित किए जाने से कुंड की तली में मोटी परत जमा हो गई थी। सफाई के दौरान पुराने मंदिर के अवशेष और प्राचीन प्रतिमाएं भी मिली थीं। बाद में महाराजा प्रताप सिंह ने कुंड के मध्य संगमरमर का भव्य मंदिर बनवाया। चारों ओर फैले विशाल चिनार और बीच में स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। माता खीर भवानी का ये धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास की वो ज्योति है जो सदियों से जल रही है। इसकी एक कहानी रावण से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता रागन्या देवी लंकापति रावण की कुल देवी थी। रावण उनकी उपासना करता था और देवी की कृपा से उसे वैभव प्राप्त हुआ। लेकिन जब रावण धर्म के मार्ग से भटक गया तब माता ने लंका छोड़ दी। मान्यता है कि हनुमान जी उन्हें कश्मीर लेकर आए और तभी से वो तुलमुला में विराजमान हैं। कहा जाता है कि रावण ने देवी को खीर अर्पित की थी और उसी के बाद उन्हें खीर भवानी नाम मिला। समय बदला, परिस्थितियां बदली, पीढ़ियां बदली, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कश्मीरी पंडित अपनी कुल देवी के इस दरबार से जुड़ाव महसूस करता है। कश्मीर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। देखिए कश्मीर में जिसकी शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है, ऐसे में यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। इन दिनों यात्रा वाले रूट पर जगह जगह सिक्योरिटी एजेंसियां मॉक ड्रिल करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पर NSG, SOG, पुलिस और CRPF ने मिलकर मॉक ड्रिल की, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों को हर कसौटी पर परखा गया। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

0: हाथों में राइफल लेकर दबे पांव आगे बढ़ते जवान, जिन्होंने कुछ ही पलों में पूरी इमारत को घेर लिया और चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन की नहीं बल्कि मॉक ड्रिल की है, जो की गई है जम्मू के उस सबसे महत्वपूर्ण जगह पर जो अमरनाथ यात्रियों का बेस कैंप है। यहीं से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को सुबह सवेरे रवाना किया जाएगा। ऐसे में बेस कैंप और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को परखने के मकसद से ये मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एनएसजी के साथ एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया।
1: सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो लगातार यहां पर मॉक ड्रिल्स चल रही हैं। आज सुबह भी यहां पर जो एनएसजी के कमांडोज हैं उन्होंने मॉक ड्रिल की यात्री निवास भवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि तैयारियां जो है पूरी रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है सुरक्षा बल सक्षम रहे, तैयार रहें, इसीलिए मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। ये तैयारियाँ होती हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। फिलहाल अगर हम आपको देखें जो यात्री निवास भवन का जो बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये तंबू लगे हैं, अस्थाई शेड्स बनाए गए हैं। इन्हीं अस्थाई शेड्स में और तंबू में जो है सीआरपीएफ के जवानों की ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि शिफ्ट वाइज जो है ड्यूटी होती है। भारी संख्या में यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और अगर हम देखें तो पूरे यात्री निवास भवन को सील कर।
0: भगवती नगर का ये बेस कैंप, जहाँ हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान हजारों यात्री आते हैं, ठहरते हैं और फिर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि इस साल अमरनाथ यात्रियों के लिए इसके द्वार 30 जून को खोल दिए जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों ने यहां करीब 1 घंटे तक ड्रिल की, जिसमें डॉग स्क्वाड के अलावा ड्रोन और दूसरे हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एजेंसियों ने न सिर्फ भगवती नगर यात्री निवास का चप्पा चप्पा खंगाला बल्कि तवी नदी के किनारों को भी खंगाला गया।
1: श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर इस समय समूचे जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और अगर हम यहां की तस्वीरें देखें तो हम पाते हैं कि यहां पर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है वो सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो है वो भारी संख्या में तैनात हो चुके हैं, साथ ही में यहाँ पर जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रवेश द्वार है ये यात्री निवास भवन का, यहाँ पर सीआरपीएफ ने अपने मोर्चे बनाए हैं इस तरह के, यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं और आम लोगों को फिलहाल इस यात्री निवास भवन में आने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसको फिलहाल सील कर लिया गया है और यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है जो कि अधिकृत लोग हैं, जो कि अधिकारी हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद जो है श्रद्धालु आना शुरू होंगे। श्रद्धालुओं के रहने की ठहरने की व्यवस्था इसी यात्री निवास भवन में होती।
0: अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की ऐसी ही तैयारी एक दिन पहले कुलगाम में देखने को मिली, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें घने जंगलों, नर्सरियों, बाग बगीचों और दूसरे संवेदनशील इलाकों में तलाशी ली गई। इस कार्रवाई के जरिए सुरक्षा कर्मियों ने संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें खत्म करने के लिए हर संवेदनशील इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया, ताकि यात्रा रूट और आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा हमेशा से अहम पहलू रहा है। यही वजह है कि हर साल यात्रा से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों पर पहले मंथन किया जाता है और फिर इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर मॉक ड्रिल करती हैं।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: आइए आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही एक खास तस्वीर का दीदार करवाते हैं। देखिए एक्ट्रेस त्रिशा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के 52वें जन्मदिन के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने केक के साथ दोनों की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, उस इंसान को जन्मदिन मुबारक जो हर चीज को मायने देता है।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर को मिला सम्मान। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासन नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच की लाइफ लाइन फिर से हुई बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शीशावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान से मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक। आइए आपको लिए चलते हैं पवन धर्मनगरी अयोध्या, जहां पर राम की नगरी आज एक और अलौकिक और भव्य उत्सव की साक्षी बनी। तस्वीरें देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मौजूद शेषावतार मंदिर के शिखर पर आज पूरे विधि विधान के साथ ध्वजारोहण संपन्न हुआ और इस दिव्य समारोह में अयोध्या के 11 पूज्य संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पहले ध्वज का पूजन किया और फिर मंदिरों के गगनचुंबी शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई और इस ऐतिहासिक और पावन पल का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लगभग 4,000 राम भक्त अयोध्या धाम में पहुंचे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर श्री रामलला राम परिवार मंदिर और परकोटा क्षेत्र के सभी देव विग्रहों के दर्शन पूजन भी किए। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले राम मंदिर परिसर के परकोटा में विराजमान भगवान गणेश, सूर्यदेव, माता अन्नपूर्णा, माता भगवती, संकटमोचन हनुमान और देवाधिदेव महादेव के मंदिर के शिखरों पर भी धर्म ध्वजा लहराई जा चुकी है। और आइए देखते हैं खबरें फटाफट, GNT एक्सप्रेस।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। छप्पन हस्तियों को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण और 2 को पद्म विभूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मान। साउथ सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण, टेनिस खिलाड़ी विजय को पद्म भूषण से सम्मान। JMM के संस्थापक दिवंगत शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, हॉकी खिलाड़ी सविता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को पद्म विभूषण, मलयालम पत्रकार पी नारायण पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, चमोली में हुई जबरदस्त बर्फबारी। हेमकुंड साहिब में चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, तापमान में गिरावट। बर्फबारी पर रास्ता भारी, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास की। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। खराब मौसम के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, 1,28,000 भक्तों ने टेका मत्था। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 40,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, 2 महीनों में आंकड़ा पहुंचा 12,00,000 के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 11,00,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक 50,00,000 से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। जम्मू में अमरनाथ यात्रा को लेकर एनएसजी ने किया मॉक ड्रिल, जवानों ने इमरजेंसी को परखा। अभ्यासों में आतंकी हमले, आईईडी विस्फोट, गोलाबारी, आपदा जैसी तमाम स्थितियों से निपटने का पूर्वाभ्यास। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 4,00,000 श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में साल का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव कामाख्या धाम में अंबुबाची महायोग का शुभारंभ। अंबुबाची महायोग शुरू होते ही भक्तों में जबरदस्त रंग देखने को मिला, नीलाचल पहाड़ी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मां कामाख्या के वार्षिक राजस्व लाभ काल के कारण कपाट हुए बंद, 26 जून की सुबह श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे मंदिर के कपाट। 23 से 25 जून तक लगातार 3 दिन और 3 रात महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, विशेष धार्मिक अनुष्ठान। अंबुबाची मेले में देश विदेश से भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, 8,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन। माता वैष्णो दरबार से आई गुड न्यूज, रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किए माता के दर्शन, साल 22 जून तक 50,70,000 से ज्यादा भक्तों ने पूजा पाठ किया। श्राइन बोर्ड की व्यवस्थाओं से यात्रा बनी और भी ज्यादा सुगम। रेल प्रबंधन और डिजिटल सुविधाओं से यात्रा बनी आसान, वैष्णो देवी यात्रा में पिछले से 10,86,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। कल शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर आकाशदीप, अक्षिता राज संग लेंगे फेरे। कानपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान बना देवदूत, सूझबूझ और तत्परता से बचाई यात्री की जान। प्रयागराज से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर, श्रृंगवरेपुर में बनकर तैयार हुआ राम वन गमन मार्ग। अयोध्या से सीधे जुड़ेगा प्रयागराज, जल्द राम वन गमन मार्ग होगा उसका उद्घाटन। गांधीनगर में अगरिया समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए गुजरात सरकार की अनोखी पहल, स्कूल ऑन व्हील्स रणशाला प्रोजेक्ट की शुरुआत। उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने 28 रणशाला बसों का विधि विधान के साथ लोकार्पण कर दिया, बसों में डिजिटल लर्निंग संसाधन समेत तमाम सुविधाएं। रणशाला में क्लासरूम में 43 इंच का स्मार्ट टेलीविजन, डिश टेलीविजन कनेक्टिविटी की भी सुविधा। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों को हुई भारी परेशानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। धूल भरी आंधी से दिल्ली एनसीआर का लुढ़का तापमान, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, चारों तरफ उड़ी धूल की मोटी परत। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के बाद दिल्ली में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट, लोगों को खिले चेहरे। धूल भरी आंधी की वजह से दिल्ली में दिन में ही छा गया अंधेरा, कई इलाकों में उठा धूल का गुबार। गाजियाबाद में भी तेज रफ्तार से चली धूल भरी आंधी, इसके कारण विजिबिलिटी रही बहुत कम। गाजियाबाद के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त, धूल भरी आंधी के बाद गर्मी से मिली राहत। गुरुग्राम में भी मौसम ने ली करवट, तेज आंधी की वजह से सड़कों पर छाया सन्नाटा। आईएमडी के मुताबिक अल नीनो की वजह से गुजरात में अब तक मॉनसून की शुरुआत नहीं हो पाई है, अभी 3 से 5 दिन और इंतजार करना होगा। गुजरात के वलसाड़ में भी अच्छी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली, कई इलाकों में भर गया पानी। सूरत में भी हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। डांग में दूसरे दिन रुक रुक कर बारिश लगातार जारी, लोगों को गर्मी से राहत मिली। गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में मानसून की खुशखबरी, पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों का नजारा अद्भुत। पश्चिम बंगाल के नागरा काटा में भारी बारिश से बढ़ा सुकानी नदी का जलस्तर, कई घरों में घुस गया पानी। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग में भारी भूस्खलन, लिकावा ली बासारा रूट पर मलबा आया। भूस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट, कई रास्तों से हटाया गया मलबा, आवाजाही प्रभावित। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश से तीस्ता नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में पानी। बांदा में फिर बढ़ने लगी गर्मी, तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार। हुमा कुरैशी की आगामी फिल्म बेबी डूडा डू का धमाकेदार ट्रेलर हो गया रिलीज, 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म रूह में इमरान हाशमी की एंट्री, फिल्म का पहला लुक रिलीज हुआ, अगले साल 2027 में होगी रिलीज। निधि दत्त की फिल्म बॉर्डर 3 का ऐलान, सनी पाजी की होगी दमदार वापसी। फिल्म तेरा यार हूं मैं का टाइटल सॉन्ग हुआ जारी, 24 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर हुआ लॉन्च, 10 जुलाई को 3 भाषाओं में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। चीन की अनोखी ड्रैगन बोट ड्रिफ्टिंग रेस में देखी न्यूजीलैंड की दम, 10,000 किलोमीटर का सफर करके चीन पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। कोशान में ड्रैगन बोट सिर्फ दौड़ी नहीं बल्कि तीखे मोड़ों पर भी ड्रिफ्ट करती हुई नजर आई। ड्रिफ्टिंग रेस कोर्स देखकर दंग रह गए विदेशी प्रतिभागी, माओरी खिलाड़ियों ने पारंपरिक चीनी खेल में दिखाई अपनी ताकत। कोशान की नहरों में गूंजी ड्रैगन बोट की रेस की गूंज, चीन की रोमांचक ड्रिफ्टिंग रेस अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ने बढ़ाई रौनक, जलधाराओं में दिखा जबरदस्त खेल। यूएई में 600 स्ट्रे कैट्स का सहारा बना शेल्टर, दीना ताजी ने 3,000 से ज्यादा बिल्लियों को नई जिंदगी दी। साइकिल से शुरू हुआ था सफर, अपनी साइकिल पर लगे बैकपैक पर रखकर वेटरनरी क्लिनिक ले जाती थी दीना। घायल नेत्रहीन और लकवाग्रस्त बिल्लियों को मिल रहा है दूसरा जीवन। दुबई स्ट्रीट किडीज शेल्टर बिल्लियों के लिए बना वरदान, हर बिल्ली का हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन और माइक्रोचिपिंग। बीस साल पहले दुबई के सुपरमार्केट के बाहर दिखी थी स्ट्रे कैट्स, वहीं से शुरू हुआ सफर। ताइवानी किसान ने मिर्च की 100 से ज्यादा किस्में उगाकर बनाई पहचान, मिर्च से बनाई तीखी चॉकलेट। फार्म में 100 से ज्यादा मिर्च की किस्में और रानों के प्रयोग, मिर्च के 8 अलग अलग तीखेपन स्तर वाले उत्पादन लॉन्च। खेती से आगे बढ़कर प्रोसेस्ड फूड कारोबार में उतरे किसान, मिर्च और चॉकलेट का अनोखा मेल। 2022 में शुरू हुआ था इको फार्म, आज बना सफल मॉडल। मिर्च संग्रहालय बनाकर खेती को दिया नया आयाम, मिर्च बनी व्यापार और सांस्कृतिक जुड़ाव का माध्यम। इटली के पीसा में ऑक्टोपस से प्रेरित रोबोटिक आर्म ने पानी के अंदर काम करके दिखाई क्षमता। आर्टिफिशियल सक्शन कप से रोबोटिक आर्म को मिली नई संवेदना शक्ति। संपर्क दबाव और दिशा में पहचान सकती है रोबोटिक आर्म, मॉड्यूलर डिजाइन से हुई है तैयार। हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम नई रोबोटिक तकनीक, सॉफ्ट रोबोटिक्स में ह्यूमनॉइड भविष्य की संभावना भी खुली। चीन की जुआनवू झील में खिले दुर्लभ जुड़वा कमल के फूल, नानजिंग की झील में एक ही डंठल पर दो कमल। मोरक्को के टेंजियर्स में बिना बिके कॉन्सर्ट टी शर्ट को मिल रही है दूसरी जिंदगी। पुराने टूर मर्चेंटाइज में बन रहे हैं अपसाइकल कपड़े। 4 लाख से ज्यादा बिना बिके टी शर्ट को किया गया रिसाइकल, नैशविले के वेयरहाउस से तैयार किया। टेंजियर्स में पुरानी टी शर्ट से बन रहा है नया फैशन का धागा, म्यूजिक टूर के लिए इको फ्रेंडली मर्चेंडाइज लॉन्च। पुराने कपड़ों से बन रहे 2,80,000 से ज्यादा नए टी शर्ट और हुडीज। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप की अनोखी रिसाइकलिंग पहल, फैशन और म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रीन क्रांति।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
13: कुंडली में सर्जरी के योग बन जाते हैं, कब आदमी सर्जरी से बच जाता है, सर्जरी से बचने के और सर्जरी को सफल बनाने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: अब गर्मी में कूल कूल एहसास कैसे लिया जाए, इसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते हैं। वहीं पर घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से भी एक खास पहल की गई है, देखिए।
14: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशन पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर कहाँ से आए हैं आप?
15: हम नागपुर से आए हैं।
14: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए कैसा लगा?
15: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होंगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
14: मैम कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं, और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
16: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
17: ये राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छतरी दे है ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इससे। ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
18: असल में यहाँ पे गर्मी, ये गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
14: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
18: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे, ठीक है। लेकिन
14: मतलब मैं ये समझ रही हूँ अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
18: हाँ एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियां देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं।
14: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
19: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
14: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलास हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं, तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलास नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति हैं उनसे उसकी डिमांड करें कि हमें ये अम्ब्रेला जो है वो चाहिए। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया जाएगा और वापस जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको वो अम्ब्रेलास जमा करवाने रहेंगे। बस इतनी सी बात है, निशुल्क सेवाएं हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
20: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno, ESPN Radio.
21: How they looked after game one.
22: I mean, they were frustrated.
20: The Daily.
23: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
20: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: Good news today.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन। टीआईटी भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
8: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शल्य चिकित्सा के बारे में, यानी कि सर्जरी के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अचानक से सर्जरी के योग बन जाते हैं, तो क्यों बनते हैं योग और इनसे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध ठीक करना चाहते हैं तो हर मंगलवार को मंदिर में या घर पर हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करिएगा और इसके बाद हनुमान जी के सामने कम से कम 27 बार या 108 बार राम नाम का जप करिएगा तो बहुत उत्तम होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं 24 जून 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 24 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम को 6:12 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बारे में ज्योतिष का क्या कहना है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सा सर्जरी यानी ऑपरेशन के बारे में। कुंडली में आपके सुरक्षा का कारक, सुरक्षा का स्वामी है मंगल, और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी है और हिंसा भी करवाता है, वायलेंस भी करवाता है, लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। यानी चीरफाड़ हिंसा व्यक्ति को बेहतर करने के लिए की जाती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मुख्य रूप से मंगल ही ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के अलावा कभी कभी केतु और सूर्य भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अग्नि की राशियां मेष सिंह धनु और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 12 राशियों में वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक होती है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल का प्रभाव होने से डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन होता है। लेकिन कुल मिला के ये बात जानिए कि अग्नि तत्व और मंगल ये मुख्यतः सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन खर्च बढ़ा रहेगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ

0: वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि कब व्यक्ति की शल्य चिकित्सा होती ही है।
0: देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी की नौबत आती है। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो, केतु का, शनि का, सूर्य का, राहु का, तो सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए तो ये सर्जरी और दुर्घटना दोनों संभावना जीवन में दिखाता है। कुंडली के छठें भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, खास तौर से अग्नि के ग्रह बैठें या अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो, तो व्यक्ति की सर्जरी होती है। हाथ में अगर तारा बनता हो या किसी रेखा पर द्वीप बनता हो, तो इसका मतलब व्यक्ति की सर्जरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग लाल हो, मंगल के समान हथेलियां हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की सर्जरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हों, तो इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छा नहीं है, और अगर मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सर्जरी की, ऑपरेशन की संभावना बनेगी।
1: और अब जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा

0: है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बनेगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न महेंद्र जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 14 जून 1995, जन्म का समय रात में 11:45, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री विवाह के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो उसकी शादी की संभावना क्या है और उसका भविष्य क्या है। देखिए महेंद्र जी, आपकी पुत्री के विवाह होने में थोड़ा सा भी विलंब है। साल 2027 में इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा के साथ जाने पहचाने लड़के से, और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। तो दबाव मत बनाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और अगले साल इनका विवाह अवश्य होगा। आपकी बेटी का करियर और स्वास्थ्य बेहतर रहे, विवाह जल्दी हो सके, इसके लिए आप रोज सुबह और शाम अपनी बेटी के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ये उपाय करें तो बेटी के जीवन में सुधार अवश्य होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, प्रश्न योगिता ने हमें लिखा है और योगिता हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1983, जन्म का समय सुबह 8:25, जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश। योगिता कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी बदलना चाहती हूं, वर्तमान नौकरी में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। योगिता, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने का समय चल रहा है, साल 2026 के अंत तक आते आते आपकी नौकरी बदलेगी और आपको तरक्की मिलेगी। करियर आपका बेहतर दिख रहा है, करियर में कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अभी 2029 के पहले किसी तरह के व्यवसाय में जाने का प्रयास मत करिएगा, आपके लिए अभी नौकरी करना ही उत्तम होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि कब व्यक्ति शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से बच जाता है।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी की तैयारी हो जाती है, आदमी रेडी हो जाता है कि मैं अब अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन बहुत बार होते होते आदमी सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बच जाता है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो या शुक्र प्रबल हो, शुक्र मजबूत हो, तो ये आदमी की रक्षा कर लेते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अगर केंद्र में ना हो, तो भी आदमी सर्जरी से बचता है। आपकी एकदम नकारात्मक दशा चल रही थी, सर्जरी के योग बने हुए थे, अचानक से जीवन में शुभ दशा आ गई, तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाती है तो सर्जरी का योग टल जाता है, व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या एकदम संध्या काल का होता है, वो भी अक्सर सर्जरी होते होते बच जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपकी निगेटिव दशा में सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन अचानक से निगेटिव दशा खत्म हो गई और अचानक से पॉजिटिव दशा आ गई, तो आप सर्जरी से बच जाते हैं। या गोचर में, यूनिवर्स में कोई ग्रह सर्जरी के योग बना रहा है, अचानक वो बदल जाता है, तो आदमी सर्जरी से बच जाता है।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिख रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए जानते हैं कि कुंडली में अगर शल्य चिकित्सा के योग हो तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय हैं जो करने चाहिए।
0: अब अगर कुंडली में आपके सर्जरी के शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं तो क्या उपाय करें कि उससे बच सकें। लाल फूल से नृसिंह भगवान की रोज उपासना करिए। नृसिंह भगवान के मंत्र का नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करने के बाद जप करिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा। जब भी मौका मिले रक्त दान करिए। दक्षिण दिशा की तरफ साउथ की तरफ अपना सर करके सोइएगा और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अगर सर्जरी के योग ज्यादा प्रबल हैं तो सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिएगा। अगर नृसिंह भगवान की पूजा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो सर्जरी को लंबे समय तक टाल पाएंगे।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और अब चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न अभिनव ने हमें लिखा है और अभिनव हमें भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई सन 2002। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है सीहोर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अभिनव, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सरकारी नौकरी की तैयारी जैसे कर रहे हैं करते रहिए। साल 2027-28 का अच्छा समय है और अगर आप ठीक से प्रयास करें तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और इसी के साथ गुडलक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम और चौथे प्रश्न का। तो जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का अंतिम प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अंतिम प्रश्न मधु जी ने हमें लिखा है और मधु जी मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1980। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है मुंबई। मधु जी कह रही हैं कि हम लोग, मैं और मेरे पति मिल करके एक नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो हम कब तक प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और क्या मुंबई छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना लाभकारी होगा। मधु जी, आपकी कुंडली में इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, तो ज्यादातर संभावनाएं यही हैं कि आप अपनी जगह बदलेंगी, स्थान परिवर्तन होगा और साल के अंत में आप एक प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगी। स्थान परिवर्तन करना आपके लिए अनुकूल है, प्रॉपर्टी का लाभ भी दिख रहा है और आने वाला समय भी ठीक है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को निर्धनों को गुड़ का या किसी मिठाई का अगर दान करें तो काफी बेहतर होगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सर्जरी के बारे में, तो जिसकी सर्जरी है उसे सर्जरी से पहले ऐसा क्या उपाय करना चाहिए ताकि उसकी सर्जरी जो है वो सफल हो जाए।
0: जी, देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी सर्जरी इनएविटेबल हो, टाली ना जा सकती हो, सर्जरी कराना जरूरी हो, और अगर सर्जरी कराना जरूरी है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो उनकी बात मानिए। लेकिन आप कुछ उपाय ऐसे सर्जरी के पहले जरूर कर सकते हैं जिसको करने से आपकी सर्जरी अवश्य ही सफल होगी। देखिए, पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर जीने मरने का प्रश्न ना हो, सर्जरी की डेट डिसाइड कर सकते हो, तो शनिवार के दिन सर्जरी मत करवाइएगा। हाँ, अगर जीवन मरण का प्रश्न है तब फिर आप दिमाग मत लगाइए, लेकिन अगर आप डेट समझ सकते हो, डेट आगे पीछे कर सकते हो, तो शनिवार को सर्जरी मत करवाइएगा। सर्जरी जिस दिन होनी है उसके एक दिन पहले एक नारियल ले लें, जटा वाला नारियल, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को समर्पित कर दें और हनुमान जी से प्रार्थना कर लें कि आपकी सर्जरी सफल हो। अब मान लिया जिस व्यक्ति की सर्जरी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो मंदिर नहीं जा सकता, तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके नाम से एक नारियल लेकर के हनुमान जी को अर्पित कर सकता है और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफल सर्जरी के लिए प्रार्थना कर सकता है।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 24 जून को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, करियर के मामले में सुधार और उन्नति होगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस साल पैसे के इन्वेस्टमेंट में, धन के निवेश में सावधानी रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, अक्सर हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जो पुजारी होते हैं वो भगवान के गले की माला हमें दे देते हैं, भगवान के चरणों के फूल हमें दे देते हैं, तो मंदिर से मिली हुई माला और फूल का क्या करना चाहिए? मंदिर से मिली हुई माला और फूल वास्तव में प्रसाद स्वरूप हैं। इसको घर लाकर अपने काम करने की जगह पर या अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए, और अगर ये सूख जाता है तो इसको जल प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें, इधर उधर ना फेंकें।
1: और आइए अब जानते हैं 24 जून 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 24 जून 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और मन की चिंताएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 24 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुड लक में अब जानेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। सिंह राशि ऊर्जा की, एनर्जी की सबसे बड़ी राशि है। सिंह राशि का संबंध आपके शरीर में हृदय से, लिवर से, लोअर एब्डोमिन से और रीढ़ की हड्डी से होता है।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि पंडित जी आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी प्राप्त करने में समस्या हो तो क्या करेंगे, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और जब भी मौका मिले सार्वजनिक स्थान पर केले के पौधे पार्क में, सड़क में, मैदान में लगवा दीजिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: When your business grows, communication can get messy fast. Calls come in, texts stack up, and suddenly your team is working in different places without the full picture. That's where Quo comes in. Quo gives your business one shared number, so every call and text lives in one place. Your whole team can see the entire history. Everything stays connected, and nothing falls through the cracks. Money is on the line. Always say hello with Quo. Get started free, plus get 20% off your first 6 months at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: आइए बात करेंगे मॉनसून की, जिसने देर से ही सही मुंबई में लेकिन दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्सों यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाकी बचे हिस्सों और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं।

0: करीब दो हफ्ते की देरी से ही सही, आखिरकार मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी। सुबह से ही मुंबई और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। मॉनसून वाली इस बारिश का इंतजार मुंबई वाले बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। इस बारिश के साथ ही उनका ये इंतजार भी खत्म हो गया। सुबह जब लोग कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले तो आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और बारिश की बूंदें राहत बनकर बरस रही थी। इस बारिश से बचने के लिए लोगों को रेनकोट और छाते का सहारा लेना पड़ा, जबकि कई लोग सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए बीच पर ही पहुंच गए।
1: 12 दिन की देरी से ही सही, लेकिन मुंबई में बारिश ने दस्तक दे दी है। अमूनन 11 जून तक बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार देरी हुई। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है और धीरे धीरे हो रही है, रुक रुक के हो रही है। बावजूद इसके कई तरह की चीजें, कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं। अगर लाइफलाइन मुंबई की लोकल की बात करें तो आपको बताएं कि कुर्ला और सायन के जो रेलवे स्टेशन है उनकी पटरियों पर पानी भर गया।
0: आम तौर पर हर साल मुंबई में मॉनसून 10 और 11 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। इसके चलते मॉनसून को लेकर मुंबई वालों का इंतजार बढ़ गया। एक दिन पहले ही मौसम विभाग की ओर से खुशखबरी दी गई थी कि अगले 48 घंटों में मॉनसून मुंबई पहुंच सकता है। मौसम विभाग का ये अनुमान आज 100% सही साबित हुआ। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने आगे बढ़ते हुए मध्य अरब सागर के बाकी बचे हिस्सों, महाराष्ट्र के कई दूसरे क्षेत्रों समेत मुंबई, तेलंगाना और उड़ीसा के बचे हुए हिस्सों को कवर कर लिया है। साथ ही मॉनसून छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ गया है।
2: दक्षिण पश्चिमी मानसून इस समय महाराष्ट्र के कई इलाकों तक पहुंच गया और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में मानसून बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में दस्तक दे सकता है। इसके बाद 3-4 दिन बाद देखा जा सकता है कि मॉनसून उत्तर प्रदेश तक दस्तक दे, जिसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है और गर्मी से लोगों को राहत भी मिल सकती है।
0: मॉनसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर उत्तरी अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं। इसके बाद अगले 3-4 दिनों के अंदर झारखंड और बिहार के बाकी बचे हिस्सों के साथ साथ यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल मुफीद हैं। इसके बाद अगले 3-4 दिनों के अंदर झारखंड और बिहार के बाकी बचे हिस्सों के साथ साथ यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। यानी अगर मॉनसून इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो जुलाई के पहले हफ्ते में ही मॉनसून उत्तर भारत में एंट्री ले सकता है।
2: मॉनसून की रफ्तार पहले से थोड़ी बड़ी है, जिसके कारण उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक और जुलाई के पहले सप्ताह में जो मॉनसून है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में दस्तक दे सकता है।
0: हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मॉनसून के आने से पहले प्री मॉनसून बारिश के साथ जोरदार आंधी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक तस्वीर राजस्थान के सीकर से सामने आई, जहां दोपहर में ही अंधेरा छा गया और देखते ही देखते धूल भरी आंधी ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया।
3: राजस्थान में एक बार फिर से तीसरी बार रेत का बवंडर उठा है। देख सकते हैं बीकानेर की ओर से ये बवंडर उठा है और एक तरफ देख सकते हैं कि जो एक तरफ आसमान है वो बिल्कुल साफ है तो एक तरफ बवंडर है। देख सकते हैं किस तरीके से बवंडर यहाँ पर फैला हुआ है। एक तरफ आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से ये रेत का बवंडर उठा है और ये तीसरी बार ये बवंडर है वो जो आया है। और देख सकते हैं कि इसमें आते आते पूरे शहर को इसने एकदम चपेट में ले लिया है।
0: मौसम के इस रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है।
4: 19 जिलों में उमस और गर्म ही रहा है और सभी जो उम्मीद कर रहे हैं वो यही है कि इस मौसम से राहत मिले। जो वापस से टेम्परेचर 40 पार जाने लग गए हैं उनसे राहत की हर कोई उम्मीद इस वक्त कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब मॉनसून आएगा या फिर प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ या नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आएगा जिससे टेम्परेचर्स में इस गर्मी से सभी को राहत मिल सके।
0: वहीं राजस्थान के जैसे ही दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में भी आज दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए, तेज धूल भरी आंधी चलने लगी और फिर जोरदार बारिश भी कई इलाकों में हुई। ये बारिश उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत बनकर आई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दिल्ली से अनमोल बाली, सीकर से राकेश गुर्जर और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: आइए बात करेंगे नोएडा के ऐसे अनोखे घर की जो मोटो विला जैसा लगता है। इस घर के हर हिस्से में बाइक और कारों के प्रति जुनून साफ तौर पर देखने को मिला। एक ही छत के नीचे सुपर बाइक्स, परफॉर्मेंस कार, मशहूर गाड़ियों और मोटरसाइकिल के स्केल मॉडल्स के अलावा यहां अलग अलग तरह के रंग बिरंगे हेलमेट्स भी नजर आए।

0: शौक या जुनून जब हद से गुजर जाए तो सामान्य से दिखने वाले घर की भी तस्वीर बदल जाती है। नोएडा का यह 3 मंजिला घर भी एक तरह की जीती जागती मिसाल है।
1: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ, जो बाहर से दिखने में तो आपको एक आम घर लग सकता है दिखने में, लेकिन जैसे ही आप इस घर की दहलीज को पार करेंगे आपको एक अलग ही, एक अनोखा संसार दिखने वाला है। और कैसा ही घर है आज आपको हम वही दिखाएंगे।
0: आमतौर पर लोगों की वजह से उनके घरों की पहचान होती है, मगर ये रिहायशी इमारत अपने मालिक की पहचान और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। बाइक और कारों के प्रति मकान मालिक का जुनून इतना गहरा है कि उन्होंने अपने पूरे घर को ही मोटो विला में बदल दिया।
1: घर के अंदर एंटर हम कर चुके हैं, लेकिन आपको ये किसी तरीके से घर नहीं दिखने वाला है, आपको लगेगा कि आप एक म्यूजियम में आ गए, और तभी ये एक मोटो विला हम इसको बोल सकते हैं। वाकई में आप ये देखोगे तो ये एक छोटा सा गैराज है घर के अंदर ही, लेकिन आप ये देखिए पूरा म्यूजियम आपको नजर आएगा। अच्छा, ये रियल कार है, सबसे पहले तो ये बता दूं, कहीं किसी को ये लगे कि यहाँ पे एक मॉडल की तरह के इसको रखा हुआ है, लेकिन ये रियल कार है। और पूरा आप आगे पीछे हर एक दीवार आप इसकी देखिए कि किस तरीके से पूरा इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे जो पूरा डिजाइन किया गया है, एक चीज आपको जो है वो नजर आने वाली है।
0: रफ्तार के शौकीन सनी की मोटरसाइकिलिंग का सफर 2002 में शुरू हुआ था। तब बाजार में अपनी रफ्तार और स्टाइलिंग की वजह से धूम मचाने वाली बजाज पल्सर उनकी पहली सवारी बनी थी। रफ्ता रफ्ता मोटरसाइकिल के शौक से जुड़ा ये कारवां आगे बढ़ता गया, जिसमें दुनिया की सबसे शानदार क्रूजर बाइक ब्रिटिश ट्रायंफ रॉकेट 3, वर्ल्ड फास्टेस्ट नेकेड बाइक डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 और धूम फिल्म से सुर्खियों में आई सुजुकी हायाबुसा भी शामिल हो गई।
2: ये तो लिटरली एक कलेक्टर आइटम है। दिस इज माय फर्स्ट मोटरसाइकिल बजाज पल्सर 180 2002। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मोटरसाइकिलिंग में, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन 80 कंट्री करूंगा सुपर बाइक्स पे, लेकिन यहाँ से सब स्टार्ट हुआ है। तो आपने नेवर फॉरगेट योर रूट्स। मैंने 80 कंट्रीज करी हुई है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, एक मेरा मिशन कंप्लीट होता है, तो मैं अपने आप को ट्रीट करता हूँ कि चलो मैंने आज दिल्ली टू सिंगापुर करा था मैंने बाइक पे। तो वहाँ सिंगापुर में मैं गया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लेके आया, उनमें से एक ये था ऊपर स्टार वॉर्स का। तो ऐसे ऐसे चीजें ऐसे मैं अपने आप को ट्रीट करता हूँ, और वैसे बनते ही चीज।
1: क्या मैं इसको धूम बाइक बोल सकती हूँ? ये वही है
2: ये हाँ, ये एक्चुअली जो जॉन अब्राहम ने हायाबुसा चलाई थी पहले, ये उसका लेटेस्ट जनरेशन है। और ये रियल है सारी बाइक्स, एंड ये ऑफ कोर्स स्पीड किंग बोलते हैं इसको। तो एक ये रही, और अगर बाइकों के बारे में बात करें तो हम क्योंकि यहाँ पे हैं, ये वाली जो बाइक है ये है डुकाटी स्ट्रीट फाइटर। दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट नेकेड बाइक। नेकेड का मतलब है यहाँ पे फेयरिंग नहीं है, जैसे इसकी फेयरिंग है। ये वो है, लेकिन आई थिंक जो यहाँ पे बात करने वाली बाइक है इनके अलावा वो है ये वाली। सो अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा 2500, और ये है रॉकेट 3। ये यहाँ पर 2500 cc की है ये। सो दिस इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी मोटरसाइकिल, और ये क्रूजर स्टाइल में है। आप देख ही सकते हो कि कितनी ह्यूज इसका जो इंजन सेंटर पीस है। सो ऐसे कर करके हर बाइक यहाँ पे काफी यूनिक है। दो तीन बाइक यहाँ बाहर खड़ी हुई हैं, एंड यस, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शंस। तो यहाँ पे स्केल मॉडल बोलते हैं, तो स्केल का मतलब होता है कि भाई स्केल होता है जैसे 12 feet 12 inch का वॉट एवर। सो कितने स्केल का, दिस इज 1:6 स्केल, मतलब जो रियल कार है उसका 6th जो है साइज की ये है। एंड दिस इज द बिगेस्ट स्केल यू कैन गेट, बिगेस्ट स्केल मॉडल्स। तो ये बैटमैन का हो गया, ये बैक टू द फ्यूचर मेरी एक फेवरेट मूवी है नीचे, हाँ ये उसका हो गया। तो ऐसे कर करके मैंने ये कलेक्शन बनाई हुई है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
1: होनी भी चाहिए, क्योंकि ये आप बोल रहे हो ना एक टाइम के बाद इसकी कोई कीमत नहीं होगी।
2: हाँ, ये बेसिकली
1: प्राइसलेस है, ये
2: लिमिटेड नंबर्स में आती हैं, एंड कुछ चीजें होती हैं जो बहुत प्राइस में बढ़ जाती हैं।
0: मोटरसाइकिल चलाते समय सुरक्षित रहने के लिए सही सेफ्टी गियर पहनने वाले सनी पेट्स की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो कई बड़े ब्रांड्स के लिए हेलमेट्स भी डिजाइन करते हैं।
1: इतने छोटे हेलमेट्स क्यों?
2: ये बेसिकली पेट्स के लिए होते हैं. छोटे बिल्ली कुत्ते उनके लिए यूज हो सकते हैं बिकॉज वाइजर भी ऊपर जाता है इनका. बट दिस इज जस्ट अ नाइस थिंग टू हैव लाइक यू नो रियल हेलमेट्स ऑब्वियसली साइड में आप देख रहे हो. इनफैक्ट हेलमेट की अगर आप बात करो मैं हेलमेट डिजाइन भी करता हूँ और वो हेलमेट पूरे इंडिया में आपको मिलेंगे एंड मैंने अभी तक 5 हेलमेट डिजाइन करे. ये जो है ये वन ऑफ द हेलमेट्स है. सो एक है उनमें से जो बेसिकली हर एक हेलमेट की डिजाइन की स्टोरी है. तो इसमें जैसे बाय होने के जैसे दिल है फिर इंजन है ऐसे यहाँ पे ब्रेन है. तो ये मुझे बहुत मजा आता है ऐसी चीजें करने में. और ये जो हेलमेट हम प्रोड्यूस करते हैं वेगा के साथ एंड दिस इज रेडी टू बी सोल्ड इन यूरोप अमेरिका अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज सर्टिफिकेशंस होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो सेफ हेलमेट. एंड ये जो आप देख रहे हो नीचे ये मेरी ट्रैक बाइक है रेस बाइक. मैं रेसिंग नहीं करता मैं ट्रैक डे जाता हूँ.
0: सनी का जुनून सिर्फ सुपर बाइक्स और परफॉर्मेंस कारों तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने वर्षों तक मशहूर कार और बाइक्स के स्केल मॉडल्स को भी संग्रह किया है. इनमें अपनी बेहतरीन डिजाइन हाई स्पीड प्रदर्शन और किफायती कीमत के कारण दुनिया भर में मशहूर हॉट व्हील्स भी शामिल है. इस घर में गेमिंग जोन भी है जहां वीडियो गेम खेलने के लिए वर्चुअल बाइक सिमुलेटर्स भी हैं.
1: फर्स्ट फ्लोर पर आ गए. अगेन जैसे मैंने आपको रग्स की बात करी थी कि यहाँ पे हर एक चीज जो डिजाइन करी है वो सनी ने खुद करी है क्योंकि वो डिजाइनर भी है. तो आप रग्स देखिए कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ आपको यहाँ पे हर एक छोटा बड़ा रग जो है वो नजर आने वाला है. और ये एरिया बहुत खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर लोगों के घरों में जो दीवारें होती है उसमें पेंटिंग्स अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो नजर आती है. लेकिन अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर आई थिंक ये हजारों में ही होगा. कितना मतलब लगभग कितनी हॉट व्हील्स होगी ये सारी की सारी?
2: आई थिंक ये 1500 होंगी कम से कम. मेरे पास एक बोरी भर के और भी है उसको सोचो क्या करना है. एंड मैंने किसी एक वीडियो में गलती से बोल दिया था जो पूरा काट दिया गया था उन्होंने कि ये बैंगलोर का ट्रैफिक जाम लग रहा है. लेकिन मैंने उसमें बोला था बैंगलोर दिल्ली मुंबई किसी का भी तो मेरे पीछे लोग पड़ गए कि ये बैंगलोर ही क्यों. तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप ये देख रहे हो तो ऐसे ही है जस्ट इट्स लाइक अ फन थिंग यू नो.
1: बट बहुत खूबसूरती के साथ आपने मतलब एक होता है ना कि क्रिएटिव माइंड चाहिए इस कार का किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए किस तरीके से उसको कहाँ पे मतलब यू नो रखा जाए. बहुत मुश्किल लग ही रहा है
2: ये ना इसको लगाना बहुत मुश्किल था. तो इसमें काफी टाइम लगा और अभी भी थोड़ी बहुत गिरती रहती है लेकिन ठीक है.
1: लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने जो ये पूरा एरिया ये डिजाइन किया. अच्छा यहाँ पर ये जो है सनी को जब भी गेम्स खेलने का मन होता है आपको प्लेस्टेशन वगैरह जो है पीछे नजर आ जाएगा वो यहाँ पर इस पूरे एरिया में खेलते. तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती की तरह ये जो रूम है पूरा डिजाइन किया है. लेकिन इस फ्लोर की अगर हम रूम की बात करें तो यहाँ पे ये रूम जो है वो सबसे ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको चलता फिरता तो नहीं बोलूंगी मैं इसको क्या बोल सकती हूँ क्योंकि
2: ये 3D प्रिंटेड एक वो बाइक अपाची जो आती है वो बाइक है. इसके साइड में पंखे जो हैं वो खुलते हैं पंखे मतलब जो फेयरिंग एंड इसके अंदर जो है एक एक्चुअली में कंप्यूटर है जो इससे कनेक्टेड है. रिग है ये हमारी सिमुलेशन रिग जिसमें आप पेडल वेडल भी देख सकते हैं या स्टीयरिंग भी देख सकते हैं और ये वहाँ पे टीवी से कनेक्टेड है. सो ये बेसिकली सिमुलेटर टाइप है बेसिक. सो या मतलब टाइम नहीं मिलता खेलने का लेकिन अगर आप एक बार बैठ गए तो फिर उठना मुश्किल है.
0: मोटो विला कलेक्टिवर्स की एक अनोखी दुनिया भी है. सनी के घर का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है और उनकी पसंद और व्यक्तित्व को दर्शाता है. यही वजह है कि कुछ सेलेब्स भी उनके इस अनोखे घर को देखने भी आ चुके हैं.
2: ये बन गया है एक म्यूजियम और मुझे बहुत खुशी होती है जब जो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है मोटरसाइकिलिंग में वो आके अप्रिशिएट करते हैं. एंड आई थिंक अल्टीमेटली यही है कि दिस स्पेस इज फॉर एवरीवन. एंड यस आपने इसको म्यूजियम बोला. पहली बार मुझे पता किसने बोला था म्यूजियम? गुलपनाग ने.
1: हाँ अच्छा वो भी यहाँ पे आए.
2: वो भी आई यहाँ पे.
0: इस तेज रफ्तार जिंदगी में ज्यादातर लोग जहाँ करियर की होड़ में अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं वहीं सनी ने अपने इस जुनून को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया. ये मोटो विला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनके सपने मेहनत और जुनून का नतीजा है. मनीषा लड्डा के साथ वीर रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे.
3: चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें आपको दिखाते हैं. ब्रिटेन की राजनीति एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है. प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे नजर आते हैं.
4: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है. चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिस्ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टार्मर तक सबको आते जाते देखा है। मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बेट्रेसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना, और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखता है, और कभी कभार तो इस ऐतिहासिक इमारत के फर्नीचर पर सोकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है। कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। एक्स पर उसके पैरोडी अकाउंट को करीब 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में इसी अकाउंट से मजाकिया अंदाज में लिखी पोस्ट खूब वायरल हुई। इसमें लिखा था, मैंने कीर स्टार्मर का इस्तीफा अपने मुख्य सेवक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। के बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेटकर यहां से विदा लेते हैं तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।

0: नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की यात्रा से लौटने के बाद अब इंडोनेशिया जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर अब द्वीपों के देश इंडोनेशिया में भी सनातन का अलख जगाएंगे। बाबा बागेश्वर की श्रीलंका यात्रा पौराणिक कहानियों के कई यादगार अनुभवों से भरा हुआ है। श्रीलंका में बाबा बागेश्वर कई प्राचीन मंदिरों और बौद्ध मठों के अलावा उस अशोक वाटिका में भी गए जहां रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। अशोक वाटिका में मां जानकी और हनुमान जी की पौराणिक निशानियों को देखकर बागेश्वर पीठाधीश्वर भाव विभोर हो गए।
1: स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने के लिए बागेश्वर बाबा 26 से 28 जून के बीच इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडोनेशिया की धरती पर वो सनातन कथा के माध्यम से मानव मात्र की एकता का संदेश देंगे। इंडोनेशिया से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर थे जहां उन्होंने सनातन और बौद्ध धर्म के तात्विक दर्शन का संदेश दिया। बीते 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक महत्व के अनुसार स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। श्रीलंका जाने के बाद वो अशोक वाटिका में कैसे नहीं जाते जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। लिहाजा बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं। मान्यता है कि सीता एलिया गांव में मौजूद वाटिका वही अशोक वाटिका है जहां लंकाधिपति रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा श्रीलंका की उस पौराणिक दिव्य भूमि पर पहुंचकर भक्ति और आनंद के रस से सराबोर हो गए।
2: जहां सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मूत्र का दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहां हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी वारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों, और वो सामने वहाँ चरण है और नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसमें माता जानकी जी स्नान करती थी ऐसा कहते थे, और इसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान रहती थी। ये सामने पूरा बाग है, इसको अशोक वाटिका कहते हैं। सामने वो पर्वत है, उस पर्वत की टीला जो देखो बड़े बड़े पर्वत हैं और पर्वतों के मध्य में है, और ये बाग है जिसको अशोक वाटिका नाम दिया था, नाम था जहाँ माता जी जिस अशोक वाटिका में विराजमान थी। इतने घने जंगल में आदता ये अत्याचारी रावण हमारी माँ को लेकर के कहाँ आया था, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, इतनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने गीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी है, जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं।
1: मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब पहली बार चरण रखा तो वहाँ दिव्य अलौकिक पद निशान बन गए। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा अशोक वाटिका में हनुमान जी के चरण चिन्ह के पास भी पहुँचे और अपने आराध्य की पावन निशानी के दर्शन कर भावुक हो गए।
2: जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर श्रीलंका की यात्रा में जहाँ हनुमान जी का चरण है वो आपको यहाँ हम दर्शन करवा रहे हैं। ये हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने शांति जी के प्रिय थे, और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी। इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है, लोक मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी, और ये वो विराट चरणों का चिन्ह है। यदि आप दर्शन कर पाएंगे तो हम श्रीलंका की यात्रा में अशोक वाटिका में जहाँ माता जानकी जी है, एक एक पल श्री राम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा के विराट चरण चिन्ह का दर्शन।
1: काबिले गौर है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में सनातन धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन मंदिर और सिद्ध मठ

0: खास बात ये कि बाबा बागेश्वर जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुँचे तो पूरा परिसर जय श्री राम के पावन जयकारों से गुंजायमान हो गया।
1: जय श्री राम,
2: जय श्री राम,
1: जय श्री राम,
2: जय श्री राम।
0: जय श्री राम के जयकारों के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा की थाल में कमल पुष्प और दूसरे नैवेद्यों को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया। कोलंबो के प्राचीन भद्रकाली मंदिर में बाबा बागेश्वर काफी देर तक ठहरे और इस दौरान शांत चित्त होकर पूरे भक्ति भाव के साथ माँ के विग्रह का दर्शन पूजन किया। अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर बौद्ध और सनातन धर्म की बुनियादी एकता का संदेश देने वाले गंगार माया मंदिर भी पहुँचे और भगवान बुद्ध की स्वर्णाभ प्रतिमा का पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन किया। आपको बता दें कि कोलंबो स्थित गंगार माया मंदिर सनातन और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम है, जहाँ भगवान बुद्ध के अलावा भगवान कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की अनुपम प्रतिमाएं स्थापित हैं। बाबा बागेश्वर ने इस मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के साथ ही भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं के दर्शन किए।
3: श्रीलंका जैसे ही हम पहुंचे वो एक ऐसे टेंपल पे पहुंचे जहां सनातन संस्कृति और बुद्ध परंपरा दोनों का संयोग हो रहा, दोनों का एक अभूतपूर्व हमने अनूठा संगम देखा। यहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, बोधि वृक्ष और भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं, जहाँ लोग दर्शन करते हैं। भारत की परंपरा और श्रीलंका की परंपरा दोनों का यहाँ पर संयोग और मेल देखा। हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी यहाँ पहुंचे थे और भारत से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति या जो भी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति विचारधारा रखते हैं वो यहाँ सब पहुंचते हैं। हम यही कहना चाहेंगे अंततो गत्वा भारत सबको अपना बनाता है, भारतीय परंपरा सबको अपना बनाती है, इसलिए भारत को परिवार कहा जाता, भारत को माँ कहा जाता, क्योंकि माँ सबके लिए ममत्व रखती है, ममता रखती है।
0: श्रीलंका स्थित बौद्ध और सनातन मंदिरों और मठों में जाकर आध्यात्मिक लाभ लेने के बाद बाबा बागेश्वर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से भी मिले। राजपक्षे ने सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के दौरान बाबा बागेश्वर ने महिंद्रा राजपक्षे के आरोग्य की कामना के साथ ही भारत श्रीलंका के लोगों के बीच सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ाने के उपाय भी बताए।
4: और उसका भी तुम पाए है श्री भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने जाए और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाए। उसका सर्वोत्तम उपाय ही है रामायण के दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएंगे।
0: श्रीलंका की धरती पर जाकर बाबा बागेश्वर राम कथा की सरिता प्रभावित न करते ये भला कैसे हो सकता है। श्रीलंका की धरती पर राम कथा के लिए बाबा ने अद्भुत स्थान का चयन किया।
5: कथा में भी सरोवर है।
0: बाबा ने समंदर तट पर पंडाल लगाकर लहरों की सरसराहट के बीच राम कथा की कल कल सरिता प्रवाहित की।
5: पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करते। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दर्श हो जाए। बागेश्वर परिवार के उन गिने चुने पुष्पों को हम लेकर यहाँ आए जिनको रामेश्वरम महादेव ने बुलाया और जगह हमको बहुत प्यारी मिल गई। सामने सागर है, इस तरफ हम हैं,

0: समुद्र तट के किनारे भगवत चर्चा हो रही। क्या अद्भुत संगम है, क्या अद्भुत। एक तरफ महादेव बैठे, एक तरफ सागर है, तीसरी तरफ कथा की रसधार बह रही है। सागर में भी डुबकी लगाओ, दर्शन में भी डूब जाओ और कथा में भी सरोवर हो जाओ।
1: साफ है कि अपनी 4 दिवसीय श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने विदेशी धरती से सनातन एकता और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया। इक्कीस जून को बाबा बागेश्वर श्रीलंका से वापस लौटकर मुंबई स्थित भिवंडी पहुंचे हैं, जहां बागेश्वर बालाजी सनातन मठ है। बाबा बागेश्वर अब अपनी इंडोनेशिया यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो 26 से 28 जून के बीच है। इंडोनेशिया में बाबा बागेश्वर की यात्रा का महत्व इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति की प्राचीन निशानियां आज भी बहुतायत में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों में लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं और 7 समंदर पार जाकर सनातन धर्म का अलौकिक संदेश दे रहे हैं। विदेशों में बाबा बागेश्वर न सिर्फ राम कथा सुनाते हैं बल्कि अपना चमत्कारिक दरबार भी लगाते हैं। इस दौरान विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय मूल निवासी भी बाबा की आध्यात्मिक सिद्धियों को देखकर कौतूहल से भर जाते हैं।

0: गौरव का विषय है, जहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबका मंगल हो, ये सिर्फ भारत देश के सनातनी लोग हैं।
1: Only Hanuman is greatest management guru on this universe. इसलिए surrender हो जाओ, राम गाओ। I cannot speak in English, but I understand your feelings. हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। रुको प्लीज वेट।

0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा विदेशी धरती पर भी सनातन धर्म का परचम लहराते रहे हैं।
1: जय श्री राम।
0: सात समंदर पार भी उनकी सिद्धि की नुमाइश लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनती है। विदेशी धरती पर सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी।
2: सब भारत से कोसों दूर हैं, पर दूरी 8 किलोमीटर की है, दिल की बहुत नजदीकी है आप लोगों की।
0: 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलग जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया।
3: बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो।
4: ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन
5: जी।
4: यूएसए का इंतजार कर रहे हैं।
5: कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे, इटली फ्रांस जो भी था आपका प्लान, मैं
4: अभी
5: कब से
4: सब कैंसल है,
5: सब कैंसल हो गया तो मुझे आना पड़ गया।
4: ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई है
5: बस गुरुजी आप,
4: क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड।
0: दिलचस्प बात ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा ने कथा वाचन के अलावा प्रवासी भारतीयों के बीच चमत्कारी दरबार भी लगाया, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया था। कमाल तो ये है कि अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले जाने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत, हमने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमको चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक एक साल बाद यानी जुलाई 2024 में बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका आतिथ्य सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंग बली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: मुसलमान चालीसा का पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: यू कम हियर, सो यू स्पीक इन हिंदी।
2: पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ ही वहां के मूल निवासी भी इनके आदर सत्कार में पीछे नहीं रहते। इसी साल 8 से 22 अप्रैल के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया।

0: 15 दिवसीय यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर के सम्मान में कई समारोह आयोजित किए गए, जहां उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित किया गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया।
1: प्रसन्नता है और सनातन के लिए बहुत गौरव की बात है। हमें जो बताया गया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हॉल में कोई सनातन संस्कृति का कार्यक्रम आयोजित हो।
0: अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। जून 2025 में बाबा की फिजी यात्रा के दौरान कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिजी में 13 से 15 जून 2025 के बीच कई जगहों पर हनुमत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 से 25 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा पर भी जा चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी यूएई यात्रा को लेकर नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी की थी। बाबा बागेश्वर अपनी तमाम विदेश यात्राओं के दौरान अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों को परस्पर जोड़ने की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। यही वजह है कि विदेशी मूल के लोग भी उनके प्रवचन को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं और उससे अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं।
1: स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्लीज वेट।
2: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज के हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: घर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह हजारों मॉडल कारें सजी हों, जहां पर गैराज किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम से कम ना लगे? तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही आशानी में लेकर चलते हैं, क्या ऑटोमोबाइल की अनोखी दुनिया में आपके लिए चलते हैं।
3: अक्सर कहा गया है कि शौक भी बड़ी चीज है, वरना कौन रातों की नींद छोड़कर सपनों को सजाता है। कुछ ऐसे ही सपनों के घर को सजाने में जुटे हैं संदीप गज्जर, जो सनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो वहीं इनका घर कुछ बेहद अनोखी और खास वजहों से मशहूर है।
4: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ।
3: नोएडा में बना ये घर भले ही बाहर से एकदम सामान्य ही नजर आएगा, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया से आप रूबरू होंगे। घर की दीवारें करीब 2000 हॉट व्हील्स कारों से सजी है। छोटे छोटे मॉडल्स का ये बड़ा कलेक्शन सनी के ऑटोमोबाइल प्रेम को बखूबी दर्शा भी रहा है। यानी दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह सजी लगभग 40 साल पुरानी ये हजारों रियल मॉडल्स की कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको किसी मोटो विला का ही एहसास कराएंगी। यही नहीं, सनी के कलेक्शन में ही मैन से लेकर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ कई और कॉमिक कैरेक्टर्स भी उनके आशियाने को बेहद पैशनेट और पावरफुल फील दे रहे हैं।
4: जैसे अंदर एंटर करोगे आप ये देखिए, आपको हर एक कोने में हर एक चीज नजर आने वाली है। और जिस तरीके से हमने इसको मोटोवेला बोला है, यहाँ पर सिर्फ बाइक्स या फिर कार्स का कलेक्शन नहीं, आपको कुछ इस तरीके की चीजें भी दिखने वाली है जो लोग इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है।
3: सनी ने अपने घर के हर कोने को ऑटोमोबाइल कल्चर की चाशनी में भिगोया हुआ है। यहाँ किचन से लेकर मल्टी लेवल मॉडल गैराज, वेपन वॉल, बस ये मानिए कि इस घर का हर कोना सनी की पसंद और व्यक्तित्व की एक नई कहानी को बयां कर रहा है।
4: फ्रिज को भी नहीं छोड़ा आपने?
5: नहीं छोड़ दिया एक्चुअली, मैं अगर मैं मेरा पास चलता तो मैं बहुत कुछ करता उसके ऊपर।
4: एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, ये फ्रिज है जो ये आप देख रहे हैं, बट इसको भी किस तरीके से इन्होंने कस्टमाइज किया है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक जो है वो दिखने वाली है।
3: यही नहीं, सनी हेलमेट डिजाइनिंग का भी शौक रखते हैं। उनके डिजाइन किए गए कई हेलमेट्स और रग्स उनकी क्रिएटिविटी पैशन को ही झलका रहे हैं, और ये सब कुछ करना उन्हें सुकून ही देता आया है।
5: मेरा प्रोफेशन जो है, आई थिंक इट्स टू इंस्पायर पीपल अल्टीमेटली कि यू कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट डिस्पाइट आपके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स हो। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो 3 फ्लोर का, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो सिर्फ एक कमरा था, और उस एक कमरे को भी मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि किसी ने नहीं देखा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें मिलती जाएगी, लेकिन थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए।
3: आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑटोमोबाइल की दुनिया समेटे इस खूबसूरत और अनोखी क्रिएटिव गैलरी में फोटोग्राफी का पैशन भी सनी के दिल के बेहद करीब रहा है।
5: आई थिंक फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, विच इज वेरी बेसिक।
3: आज के दौर में जहां लोग अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने जुनून और सपने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। उसकी एक झलक उनके बेडरूम में भी नजर आ रही है। कहते भी हैं कि शौक वो नहीं जो वक्त काटने के लिए किया जाए, शौक वो है जिसके लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि यही शौक इंसान की पहचान को और भी खूबसूरत और कलात्मक बना देता है। और जिसे अपने शौक से मोहब्बत हो जाए, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
4: तो सनी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि उनका जुनून है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सनी ने डिजाइन किया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है, और उसके बाद ये पूरा घर, जिसे हम मोटोवेला बोल रहे हैं, ये पूरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
7: What you got for me, Jack?
6: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किया दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभववार शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हाथ में घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से कोसों दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां पर वायरल दावों की सच्चाई देखते हैं, हम सटीक जांच करते हैं, अफवाहों की पड़ताल करते हैं और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के इस सीसीटीवी फुटेज में वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखिए, हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह वादा किया जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए हादसे का यह वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ऑलिवर ट्री की मौत हो गई। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, अयोध्या के राम मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT मामले की जांच में जुटी हुई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक CCTV वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखने में किसी मंदिर का वीडियो लग रहा है जिसमें कुछ लोग नोट गिन रहे हैं। इसमें कुछ लोग नोटों की गड्डियां छुपाकर दूसरे कमरे में ले जाते भी नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का है। एक यूजर ने इस CCTV फुटेज को शेयर करते हुए लिखा, राम मंदिर 200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। CCTV ने खोली सबकी पोल। अयोध्या मंदिर के CCTV में पुजारी कथित तौर पर दान का पैसा छिपाते नजर आया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते के दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर 3 सदस्यीय SIT गठित कर दी गई है और SIT ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। मामले की 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। देखिए, इसी बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो है नोट की गड्डियां छुपाकर दूसरे कैमरे में ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना यह है कि यह अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे को कसौटी पर उतारा। तो देखिए, फैक्ट चेक की टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी मंदिर का ही वीडियो है। इसके बाद देखिए, हमने वीडियो के कमेंट्स सेक्शन को खंगाला। यहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को कर्नाटक के बेंगलुरु का बताया था और इसके बाद हमने एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखा और इस दौरान हमें कुछ लोग धोती में नजर आए। इन लोगों ने जिस तरह से धोती को पहना हुआ था उससे यह इशारा हमको मिल रहा था कि वीडियो किसी दक्षिण भारत के राज्य का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई और राम मंदिर दान विवाद की जांच कर रही SIT टीम ने भी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक निकलकर क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 1 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो को पोस्ट किया गया मिला, जिसमें वायरल क्लिप भी मौजूद थी। यहां दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है, जिसमें मंदिर के 2 सदस्यों को दान के रूप में उठाते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें 30 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर में दान के पैसों की चोरी से संबंधित है। उस वक्त इस तरह के और भी कई वीडियो सामने निकल कर आए थे, जिसमें मंदिर के कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते हुए नजर आए थे। मामले को लेकर जुलाई 2024 में FIR हुई थी। उस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी रामचंद्र ने दावा किया था कि ये घटना तकरीबन 1 साल पुरानी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में मंदिर की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों को निलंबित किया गया था और 2 रसोइयों को भी हटाया गया था। बाद में कर्नाटक सरकार ने अव्यवस्था और अनियमितताओं का हवाला देते हुए इस मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को पूर्व उत्तर प्रदेश CM अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। उसी दिन इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से पहली धर्मसेना के संस्थापक अशोक दुबे की है, दूसरी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की और तीसरी करणी सेना की है। साफ है वायरल वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है। सितंबर 2024 में वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को रुपए उठाते हुए देखा गया था। इस वीडियो का अयोध्या के राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर को पहले टकराते और फिर क्रैश होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा लगातार कर रहे हैं कि 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स का ये वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर के टकराने और क्रैश होने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में म्यूजिशियन ओलिवर ट्री शामिल थे, जो अपने वायरल हिट गानों एलियन बॉय और लाइफ गोज ऑन के लिए मशहूर थे, और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रिम भी थे, जिन्हें ऑनलाइन गैस्पी के नाम से जाना जाता था। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में कई हेलीकॉप्टर कुछ ताड़ के पेड़ों के पास कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए नजर आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने भी रियो की घटना के संदर्भ में इस वीडियो के स्क्रीन ग्रैब का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सिंगर सॉन्गराइटर ओलिवर ट्री की 14 जून को ब्राजील में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। वो 32 साल के थे। इस हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई, और अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई थी, उसी का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान दावे की पुष्टि कराती हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई उसका फुटेज भी सामने निकलकर आया था। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को देखने से फर्क साफ साफ नजर आ जाता है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि हेलीकॉप्टर हादसे का ये वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 23 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी की परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना पेराक राज्य के लुमुत नेवल बेस पर हुई और मारे गए सभी लोग क्रू मेंबर थे। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर एक AW-139 और एक फेनिक हेलीकॉप्टर थे। इसी मिली जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें कई और प्रामाणिक रिपोर्ट मिली, जिसमें यही जानकारी दी गई थी कि रॉयल मलेशियन नेवी की परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा फेक साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब रिहर्सल के दौरान मलेशियाई नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
5: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless. Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
7: Marketplace.
8: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
4: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच इस समय दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। अपनी बेहतरीन फुटबॉल स्किल्स की वजह से ये बच्चा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि बच्चे ने बिना जूते पहने जिस तरह फुटबॉल पर कंट्रोल दिखाया, उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पहने मैदान में मौजूद है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके खेल में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है वो किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं लगता। वीडियो की शुरुआत में बच्चा मैदान के कॉर्नर एरिया में खड़ा नजर आता है। इसके बाद वो कॉर्नर किक लेने की तैयारी करता है और फिर गेंद को ऐसी दिशा में मारता है कि वो सीधे गोल पोस्ट के अंदर पहुंच जाती है। लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि कुछ सपने सिर्फ जवानी के लिए ही होते हैं, उम्र ढलने के बाद उन सपनों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दिल्ली की आयुषी नेगी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल आयुषी ने अपने 90 और 80 साल के दादा दादी को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाकर उनका वर्षों पुराना सपना पूरा किया। इस दौरान आयुषी अपने दादा दादी को ट्रिप के लिए लंदन ले गई। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर बिल्कुल तेज रफ्तार से खीरा काट रहा है। वीडियो में जिस तरह से शख्स खीरे को काट रहा है वो देख हर कोई हैरान है। बिना देखे बिजली की रफ्तार से चाकू चलाते हुए खीरे को काटना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हाथ की उंगलियों के कटने का भी बहुत खतरा होता है। फिर भी शख्स को इस चीज का इतना अभ्यास है कि वो आंखें बंद कर भी काफी तेजी से खीरा काट ले रहा है। शख्स ने अपने इस कारनामे से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम वॉलेस बोंग है, जिन्हें लोग सिक्स पैक शेफ के नाम से भी जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हर देश के फुटबॉल फैंस अपने अपने अंदाज में अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से सामने आया ये वीडियो इस जुनून को एक अलग ही लेवल पर ले गया। इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर एक भेड़ को लेकर चलता दिखाई दे रहा है। पहले नजर में ये एक नॉर्मल सा नजारा लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के साथ चल रही भेड़ का शरीर नीले और सफेद रंगों में रंगा हुआ है। ये रंग अर्जेंटीना की फुटबॉल टीमों का है, जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भेड़ उस व्यक्ति के पीछे पीछे शांति से चल रही है। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अर्जेंटीना की फैन हो। इस अनोखे नजारे को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो गए हैं। कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता और चिड़िया तक आपने न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को घरों में प्यार मिलते देखा होगा। इनको लोग अक्सर अपना परिवार ही मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा ही लाड प्यार आपने किसी कौवे के लिए देखा है क्या? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है, उसकी गोद में कौवा है। उल्टे लेटे हुए कौवे को ये महिला गुदगुदी करते वैसे ही खिला रही है जैसे किसी बच्चे को प्यार दिखाया जाता है। इस दौरान कौवा भी प्रतिक्रिया ऐसे दे रहा है जैसे वो एक बच्चा ही हो। इस वीडियो में कौवे को पिंजरे में नहीं रखा गया है। अगर ऐसा किया जाता तो ये गैर कानूनी है। भारतीय प्रजाति के कौवों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो ये गैर कानूनी है। भारतीय प्रजाति के कौवों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली मेट्रो से इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को हैरान करने के साथ साथ खूब हंसने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस बार यात्रियों के साथ बंदर भी मेट्रो ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी तरह दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पर लोग ऐसे हालात में उम्मीद करते हैं कि जानवर थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही था। बंदर बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मेट्रो के डिब्बे के अंदर घूमता नजर आया। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोजाना मेट्रो में सफर करता हो। मेट्रो में मौजूद यात्री भी पहले तो उसे हैरानी से देखते रहे। कुछ लोग उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे, जबकि कुछ ने तुरंत अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बंदर आराम से एक सीट से दूसरी सीट के पास जाता रहा और यात्रियों को देखता रहा।

इसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। वीडियो में दिखाई देता है कि बंदर सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। अचानक सामने आए इस नन्हे मेहमान से लड़की घबरा जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन बंदर वहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता, उल्टा वो लड़की की और करीब आने लगता है। इस पूरे सीन को देखकर आसपास बैठे लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल हंसी मजाक में बदल जाता है।

0: रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
3: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
2: Smartless.
4: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
2: Marketplace.
5: Big three on the program today, or, you know, the big three of
2: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
6: अब गर्मी में कूल कूल एहसास कैसे लिया जाए, उसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते रहे हैं। वहीं पर घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज जो हैं गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से भी एक खास पहल की गई है, देखिए।
7: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशन पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर, कहाँ से आए हैं आप?
8: हम नागपुर से आए हैं।
7: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए, कैसा लगा?
8: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होंगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
7: मैम, कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं, और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
9: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
10: राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छतरी दे रहे हैं ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इसे। ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
11: असल में यहाँ पे गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
7: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
11: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे, ठीक है। लेकिन
7: मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
11: हाँ, एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियाँ देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं। हाँ,
7: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
12: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
7: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलास हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं, तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलास नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति हैं उनसे उसकी डिमांड करे कि हमें ये अम्ब्रेला जो है वो चाहिए। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया जाएगा और वापस जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको वो अम्ब्रेलास जमा करवाने रहेंगे। बस इतनी सी बात है, निशुल्क सेवाएं ये हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
6: चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें दिखाते हैं। देखिए, ब्रिटेन की राजधानी एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इन राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं पड़ता और वो है लैरी द कैट। डाउनिंग स्ट्रीट के मशहूर चीफ माउसर लैरी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं।
13: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है। चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिस्ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टार्मर तक सबको आते जाते देखा है। मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बेट्रेसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखता है और कभी कभार तो इस ऐतिहासिक इमारत के फर्नीचर पर सोकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है। कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। एक्स पर उसके पैरोडी अकाउंट को करीब 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में इसी अकाउंट से मजाकिया अंदाज में लिखी पोस्ट खूब वायरल हुई। इसमें लिखा था, मैंने कीर स्टार्मर का इस्तीफा अपने मुख्य सेवक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेटकर यहां से विदा लेते हैं तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किया दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।

0: नमस्कार, जेएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की यात्रा से लौटने के बाद अब इंडोनेशिया जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर अब द्वीपों के देश इंडोनेशिया में भी सनातन का अलग जगाएंगे। बाबा बागेश्वर की श्रीलंका यात्रा पौराणिक कहानियों के कई यादगार अनुभवों से भरा हुआ है। श्रीलंका में बाबा बागेश्वर कई प्राचीन मंदिरों और बौद्ध मठों के अलावा उस अशोक वाटिका में भी गए जहां रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। अशोक वाटिका में मां जानकी और हनुमान जी की पौराणिक निशानियों को देखकर बागेश्वर पीठाधीश्वर भाव विभोर हो गए।
1: स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलग जगाने का बीड़ा उठाया है। विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने के लिए बागेश्वर बाबा 26 से 28 जून के बीच इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडोनेशिया की धरती पर वो सनातन कथा के माध्यम से मानव मात्र की एकता का संदेश देंगे। इंडोनेशिया से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर थे जहां उन्होंने सनातन और बौद्ध धर्म के तात्विक दर्शन का संदेश दिया। बीते 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक महत्व के अनुसार स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। श्रीलंका जाने के बाद वो अशोक वाटिका में कैसे नहीं जाते जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। लिहाजा बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे, जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं। मान्यता है कि सीता एलिया गांव में मौजूद वाटिका वही अशोक वाटिका है जहां लंकाधिपति रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा श्रीलंका की उस पौराणिक दिव्य भूमि पर पहुंचकर भक्ति और आनंद के रस से सराबोर हो गए।
2: जहां सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी जिस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मुद्रिका दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे, ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहां हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों, और वो सामने वहाँ चरण है और नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसमें माता जानकी जी स्नान करती थी ऐसा कहते थे, और इसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान रहती थी। ये सामने पूरा बाग है, इसको अशोक वाटिका कहते हैं। सामने वो पर्वत है, इस पर्वत की टीला जो देखो बड़े बड़े पर्वत हैं और पर्वतों के मध्य में है, और ये बाग है जिसको अशोक वाटिका नाम दिया था, नाम था जहाँ माता जी जिस अशोक वाटिका में विराजमान थी। इतने घने जंगल में आदता यत्याचारी रावण हमारी माँ को लेकर के कहाँ आया था, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, इतनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने दीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी है, जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं।
1: मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब पहली बार चरण रखा तो वहाँ दिव्य अलौकिक पद निशान बन गए। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा अशोक वाटिका में हनुमान जी के चरण चिन्ह के पास भी पहुंचे और अपने आराध्य की पावन निशानी के दर्शन कर भावुक हो गए।
2: जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर से श्रीलंका की यात्रा में जहां हनुमान जी का चरण है वो आपको यहाँ दर्शन करवा रहे हैं। ये हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने गेट पे, और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी। इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है, लोग मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी, और ये वो विराट चरणों का चिन्ह है। यदि आप दर्शन कर पाएंगे तो हम श्रीलंका की यात्रा अशोक वाटिका में है, जहाँ माता जानकी जी है एक एक पल गुरु श्री राम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा के विराट चरण चिन्ह का दर्शन।
1: काबिले गौर है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में सनातन धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन मंदिर और सिद्ध मठ हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य वसुधैव कुटुम्बकम के सनातन जय घोष के साथ ही सिद्ध स्थानों पर जाकर वहां के आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाना है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुँचे। और माँ काली की पूरी आस्था और विधि विधान के साथ पूजा आराधना।

0: श्री राम के जयकारों के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा की थाल में कमल पुष्प और दूसरे नैवेद्यों को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया।
1: माननीय पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्म संभवी तन्मे वैद्य पद्माक्षी येन सोप्यं लभाम्यहम् अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने धनं मे यशदां देवि सर्वकामाश्चेरि मे पद्माननीय पद्मवी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मललाजदाक्षी।
0: कोलंबो के प्राचीन भद्रकाली मंदिर में बाबा बागेश्वर काफी देर तक ठहरे और इस दौरान शांत चित्त होकर पूरे भक्ति भाव के साथ मां के विग्रह का दर्शन पूजन किया। अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर बौद्ध और सनातन धर्म की बुनियादी एकता का संदेश देने वाले गंगार माया मंदिर भी पहुंचे और भगवान बुद्ध की स्वर्णाभ प्रतिमा का पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन किया। आपको बता दें कि कोलंबो स्थित गंगार माया मंदिर सनातन और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम है, जहां भगवान बुद्ध के अलावा भगवान कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की अनुपम प्रतिमाएं स्थापित हैं। बाबा बागेश्वर ने इस मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के साथ ही भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं के दर्शन किए।
2: श्रीलंका जैसे ही हम पहुंचे एक ऐसे टेंपल पे पहुंचे जहां सनातन संस्कृति और बुद्ध परंपरा दोनों का संयोग हो रहा, दोनों का एक अभूतपूर्व हमने अनूठा संगम देखा। यहां पर भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, बोधि वृक्ष और भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं यहां स्थापित हैं, जहां लोग दर्शन करते हैं। भारत की परंपरा और श्रीलंका की परंपरा दोनों का यहां पर संयोग और मेल देखा। हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी यहां पहुंचे थे और भारत से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति या जो भी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति विचारधारा रखते हैं वो यहां सब पहुंचते हैं। हम यही कहना चाहेंगे अंततो गत्वा भारत सबको अपना बनाता है, भारतीय परंपरा सबको अपना बनाती है, इसलिए भारत को परिवार कहा जाता, भारत को माँ कहा जाता, क्योंकि माँ सबके लिए महत्व रखती है, ममता रखती है।
0: श्रीलंका स्थित बौद्ध और सनातन मंदिरों और मठों में जाकर आध्यात्मिक लाभ लेने के बाद बाबा बागेश्वर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से भी मिले। राजपक्षे ने सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के दौरान बाबा बागेश्वर ने महिंद्रा राजपक्षे के आरोग्य की कामना के साथ ही भारत श्रीलंका के लोगों के बीच सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ाने के उपाय भी बताए।
3: और उसका भी तुम पाए है श्री भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने जाए और श्रीलंका के लोग राम लला के दर्शन करने जाए। उसका सर्वोत्तम उपाय ही है रामायण के, दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएंगे।
0: श्रीलंका की धरती पर जाकर बाबा बागेश्वर राम कथा की सरिता प्रभावित न करते ये भला कैसे हो सकता है। श्रीलंका की धरती पर राम कथा के लिए बाबा ने अद्भुत स्थान का चयन किया।
4: कथा में भी सरोवर है।
0: बाबा ने समंदर तट पर पंडाल लगाकर लहरों की सरसराहट के बीच राम कथा की कल कल सरिता प्रवाहित
4: की। पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करते अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। बागेश्वर परिवार के उन गिने चुने पुष्पों को हम लेकर यहाँ आए जिनको रामेश्वरम महादेव ने बुलाया और जगह हमको बहुत प्यारी मिल गई। सामने सागर है, इस तरफ हम हैं, समुद्र तट के किनारे भगवत चर्चा हो रही। क्या अद्भुत संगम है, क्या अद्भुत। एक तरफ महादेव बैठे, एक तरफ सागर है, तीसरी तरफ कथा की रसधार बह रही है। सागर में भी डुबकी लगाओ, दर्शन में भी डूब जाओ और कथा में भी सरोवर हो।

0: साफ है कि अपनी 4 दिवसीय श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने विदेशी धरती से सनातन एकता और वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया। इक्कीस जून को बाबा बागेश्वर श्रीलंका से वापस लौटकर मुंबई स्थित भिवंडी पहुंचे हैं, जहां बागेश्वर बालाजी सनातन मठ है। बाबा बागेश्वर अब अपनी इंडोनेशिया यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो 26 से 28 जून के बीच है। इंडोनेशिया में बाबा बागेश्वर की यात्रा का महत्व इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति की प्राचीन निशानियां आज भी बहुतायत में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों में लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं और 7 समंदर पार जाकर सनातन धर्म का अलौकिक संदेश दे रहे हैं। विदेशों में बाबा बागेश्वर न सिर्फ राम कथा सुनाते हैं बल्कि अपना चमत्कारिक दरबार भी लगाते हैं। इस दौरान विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय मूल निवासी भी बाबा की आध्यात्मिक सिद्धियों को देखकर कौतूहल से भर जाते हैं।

0: और गौरव का विषय है जहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबका मंगल हो, ये सिर्फ भारत देश के सनातनी लोग हैं।
1: Only Hanuman is greatest management guru on this universe. इसलिए surrender हो जाओ, राम गाओ। I cannot speak in English, but I understand your feelings. हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, welcome to you Hanuman कथा। रुको, please wait।

0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा विदेशी धरती पर भी सनातन धर्म का परचम लहराते रहे हैं।
1: जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय।
0: सात समंदर पार भी उनकी सिद्धि की नुमाइश लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनती है। विदेशी धरती पर सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी।
2: आप सब भारत से कोसों दूर हैं, पर दूरी 8 किलोमीटर की है, दिल की बहुत नजदीकी है आप लोगों की।
1: Yes.
0: 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलख जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया।
3: बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो।
4: ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन
5: जी।
4: यूएसए का इंतजार कर रहे हैं।
5: कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं
4: अभी
5: कब से
4: सब कैंसल है,
5: सब कैंसल हो गया तो मुझे आना पड़ गया।
4: ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई है
5: बस गुरुजी आप,
4: क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड।
0: दिलचस्प बात ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा ने कथा वाचन के अलावा प्रवासी भारतीयों के बीच चमत्कारी दरबार भी लगाया, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया था। कमाल तो ये है कि अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले जाने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत। हमने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक एक साल बाद यानी जुलाई 2024 में बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका आतिथ्य सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंग बली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: वाली शाखा पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: यू कम हियर, सो यू स्पीक इन हिंदी।
2: पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ ही वहां के मूल निवासी भी इनके आदर सत्कार में पीछे नहीं रहते। इसी साल 8 से 22 अप्रैल के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया।

0: 15 दिवसीय यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर के सम्मान में कई समारोह आयोजित किए गए, जहां उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित किया गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया।
1: प्रसन्नता है और सनातन के लिए बहुत गौरव की बात है। हमें जो बताया गया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हॉल में कोई सनातन संस्कृति का कार्यक्रम आयोजित हो।
0: अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। जून 2025 में बाबा की फिजी यात्रा के दौरान कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिजी में 13 से 15 जून 2025 के बीच कई जगहों पर हनुमत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 से 25 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा पर भी जा चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी यूएई यात्रा को लेकर नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी की थी। बाबा बागेश्वर अपनी तमाम विदेश यात्राओं के दौरान अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों को परस्पर जोड़ने की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। यही वजह है कि विदेशी मूल के लोग भी उनके प्रवचन को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं और उससे अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं।
1: स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्लीज वेट।
2: और चलिए इसी के साथ जयंत स्पेशल की आज के हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: घर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह हजारों मॉडल कारें सजी हों, जहां पर गैराज किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम से कम ना लगे? तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही आशियाने में लेकर चलते हैं, क्या ऑटोमोबाइल की अनोखी दुनिया में आपके लिए चलते हैं।
3: अक्सर कहा गया है कि शौक भी बड़ी चीज है, वरना कौन रातों की नींद छोड़कर सपनों को सजाता है। कुछ ऐसे ही सपनों के घर को सजाने में जुटे हैं संदीप गज्जर, जो सनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो वहीं इनका घर कुछ बेहद अनोखी और खास वजहों से मशहूर है।
4: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ।
3: नोएडा में बना ये घर भले ही बाहर से एकदम सामान्य ही नजर आएगा, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया से आप रूबरू होंगे। घर की दीवारें करीब 2000 हॉट व्हील्स कारों से सजी है। छोटे छोटे मॉडल्स का ये बड़ा कलेक्शन सनी के ऑटोमोबाइल प्रेम को बखूबी दर्शा भी रहा है। यानी दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह सजी लगभग 40 साल पुरानी ये हजारों रियल मॉडल्स की कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको किसी मोटो विला का ही एहसास कराएंगी। यही नहीं, सनी के कलेक्शन में ही मैन से लेकर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ कई और कॉमिक कैरेक्टर्स भी उनके आशियाने को बेहद पैशनेट और पावरफुल फील दे रहे हैं।
4: जैसे अंदर एंटर करोगे आप ये देखिए, आपको हर एक कोने में हर एक चीज नजर आने वाली है। और जिस तरीके से हमने इसको मोटो विला बोला है, यहाँ पर सिर्फ बाइक्स या फिर कार्स का कलेक्शन नहीं, आपको कुछ इस तरीके की चीजें भी दिखने वाली है जो लोग इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है।
3: सनी ने अपने घर के हर कोने को ऑटोमोबाइल कल्चर की चाशनी में भिगोया हुआ है। यहाँ किचन से लेकर मल्टी लेवल मॉडल गैराज, वेपन वॉल, बस ये मानिए कि इस घर का हर कोना सनी की पसंद और व्यक्तित्व की एक नई कहानी को बयां कर रहा है।
4: फ्रिज को भी नहीं छोड़ा आपने?
5: नहीं छोड़ दिया एक्चुअली, मैं अगर मैं मेरा बस चलता तो मैं बहुत कुछ करता उसके ऊपर।
4: एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, ये फ्रिज है जो ये आप देख रहे हैं, बट इसको भी किस तरीके से इन्होंने कस्टमाइज किया है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक जो है वो दिखने वाली है।
3: यही नहीं, सनी हेलमेट डिजाइनिंग का भी शौक रखते हैं। उनके डिजाइन किए गए कई हेलमेट्स और रग्स उनकी क्रिएटिविटी पैशन को ही झलका रहे हैं, और ये सब कुछ करना उन्हें सुकून ही देता आया है।
5: मेरा प्रोफेशन जो है, आई थिंक इट्स टू इंस्पायर पीपल अल्टीमेटली कि यू कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट डिस्पाइट आपके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स हो। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो 3 फ्लोर का, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो सिर्फ एक कमरा था, और उस एक कमरे को भी मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि किसी ने नहीं देखा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें मिलती जाएगी, लेकिन थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए।
3: आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑटोमोबाइल की दुनिया समेटे इस खूबसूरत और अनोखी क्रिएटिव गैलरी में फोटोग्राफी का पैशन भी सनी के दिल के बेहद करीब रहा है।
5: आई थिंक फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, विच इज वेरी बेसिक।
3: आज के दौर में जहां लोग अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने जुनून और सपने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। उसकी एक झलक उनके बेडरूम में भी नजर आ रही है। कहते भी हैं कि शौक वो नहीं जो वक्त काटने के लिए किया जाए, शौक वो है जिसके लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि यही शौक इंसान की पहचान को और भी खूबसूरत और कलात्मक बना देता है। और जिसे अपने शौक से मोहब्बत हो जाए, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
4: तो सनी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि उनका जुनून है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सनी ने डिजाइन किया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है और उसके बाद ये पूरा घर, जिसे हम मोटो विला बोल रहे हैं, ये पूरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। गुड न्यूज टुडे
1: इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किया दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हाथ में घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से कोसों दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां पर वायरल दावों की सच्चाई देखते हैं, हम सटीक जांच करते हैं, अफवाहों की पड़ताल करते हैं और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के इस सीसीटीवी फुटेज में वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखिए, हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए ये वादा किया जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए हादसे का ये वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, अयोध्या के राम मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT मामले की जांच में जुटी हुई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक CCTV वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखने में किसी मंदिर का वीडियो लग रहा है जिसमें कुछ लोग नोट गिन रहे हैं। इसमें कुछ लोग नोटों की गड्डियां छुपाकर दूसरे कमरे में ले जाते भी नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का है। एक यूजर ने इस CCTV फुटेज को शेयर करते हुए लिखा, राम मंदिर 200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। CCTV ने खोली सबकी पोल। अयोध्या मंदिर के CCTV में पुजारी कथित तौर पर दान का पैसा छिपाते नजर आया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते के दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर 3 सदस्यीय SIT गठित कर दी गई है और SIT ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। मामले की 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। देखिए, इसी बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो है नोट की गड्डियां छुपाकर दूसरे कैमरे में ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना यह है कि ये अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे को कसौटी पर उतारा। तो देखिए, फैक्ट चेक की टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी मंदिर का ही वीडियो है। इसके बाद देखिए, हमने वीडियो के कमेंट्स सेक्शन को खंगाला। यहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को कर्नाटक के बेंगलुरु का बताया था और इसके बाद हमने एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखा और इस दौरान हमें कुछ लोग धोती में नजर आए। इन लोगों ने जिस तरह से धोती को पहना हुआ था उससे ये इशारा हमको मिल रहा था कि वीडियो किसी दक्षिण भारत के राज्य का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई और राम मंदिर दान विवाद की जांच कर रही SIT टीम ने भी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक निकलकर क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 1 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो को पोस्ट किया गया मिला, जिसमें वायरल क्लिप भी मौजूद थी। यहां दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है, जिसमें मंदिर के 2 सदस्यों को दान के रूप में उठाते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें 30 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर में दान के पैसों की चोरी से संबंधित है। उस वक्त इस तरह के और भी कई वीडियो सामने निकल कर आए थे, जिसमें मंदिर के कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते हुए नजर आए थे। मामले को लेकर जुलाई 2024 में FIR हुई थी। उस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी रामचंद्र ने दावा किया था कि ये घटना तकरीबन 1 साल पुरानी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में मंदिर की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों को निलंबित किया गया था और 2 रसोइयों को भी हटाया गया था। बाद में कर्नाटक सरकार ने अव्यवस्था और अनियमितताओं का हवाला देते हुए इस मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को पूर्व उत्तर प्रदेश CM अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। उसी दिन इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से पहली धर्मसेना के संस्थापक अशोक दुबे की है, दूसरी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की और तीसरी करणी सेना की है। साफ है वायरल वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है। सितंबर 2024 में वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को रुपए उठाते हुए देखा गया था। इस वीडियो का अयोध्या के राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर को पहले टकराते और फिर क्रैश होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा लगातार कर रहे हैं कि 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स का ये वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर के टकराने और क्रैश होने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में म्यूजिशियन ओलिवर ट्री शामिल थे, जो अपने वायरल हिट गानों एलियन बॉय और लाइफ गोज ऑन के लिए मशहूर थे, और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रिम भी थे, जिन्हें ऑनलाइन गैस्पी के नाम से जाना जाता था। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में कई हेलीकॉप्टर कुछ ताड़ के पेड़ों के पास कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए नजर आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने भी रियो की घटना के संदर्भ में इस वीडियो के स्क्रीन ग्रैब का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सिंगर सॉन्गराइटर ओलिवर ट्री की 14 जून को ब्राजील में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। वो 32 साल के थे। इस हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई, और अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई थी, उसी का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान दावे की पुष्टि कराती हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई उसका फुटेज भी सामने निकलकर आया था। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को देखने से फर्क साफ साफ नजर आ जाता है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि हेलीकॉप्टर हादसे का ये वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 23 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी की परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना पेराक राज्य के लुमुत नेवल बेस पर हुई और मारे गए सभी लोग क्रू मेंबर थे। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर एक AW-139 और एक फेनिक हेलीकॉप्टर थे। इसी मिली जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें कई और प्रामाणिक रिपोर्ट मिली, जिसमें यही जानकारी दी गई थी कि रॉयल मलेशियन नेवी की परेड के रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा फेक साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब रिहर्सल के दौरान मलेशियाई नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: Take it easy with soft hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच इस समय दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। अपनी बेहतरीन फुटबॉल स्किल्स की वजह से ये बच्चा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि बच्चे ने बिना जूते पहने जिस तरह फुटबॉल पर कंट्रोल दिखाया, उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पहने मैदान में मौजूद है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके खेल में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है, वो किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं लगता। वीडियो की शुरुआत में बच्चा मैदान के कॉर्नर एरिया में खड़ा नजर आता है। इसके बाद वो कॉर्नर किक लेने की तैयारी करता है और फिर गेंद को ऐसी दिशा में मारता है कि वो सीधे गोल पोस्ट के अंदर पहुंच जाती है। लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि कुछ सपने सिर्फ जवानी के लिए ही होते हैं, उम्र ढलने के बाद उन सपनों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दिल्ली की आयुषी नेगी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल आयुषी ने अपने 90 और 80 साल के दादा दादी को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाकर उनका वर्षों पुराना सपना पूरा किया। इस दौरान आयुषी अपने दादा दादी को ट्रिप के लिए लंदन ले गई। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर बिल्कुल तेज रफ्तार से खीरा काट रहा है। वीडियो में जिस तरह से शख्स खीरे को काट रहा है वो देख हर कोई हैरान है। बिना देखे बिजली की रफ्तार से चाकू चलाते हुए खीरे को काटना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हाथ की उंगलियों के कटने का भी बहुत खतरा होता है। फिर भी इस शख्स को इस चीज का इतना अभ्यास है कि वो आंखें बंद कर भी काफी तेजी से खीरा काट ले रहा है। शख्स ने अपने इस कारनामे से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम वॉलेस वोंग है, जिन्हें लोग सिक्स पैक शेफ के नाम से भी जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हर देश के फुटबॉल फैंस अपने अपने अंदाज में अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से सामने आया ये वीडियो इस जुनून को एक अलग ही लेवल पर ले गया। इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर एक भेड़ को लेकर चलता दिखाई दे रहा है। पहले नजर में ये एक नॉर्मल सा नजारा लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के साथ चल रही भेड़ का शरीर नीले और सफेद रंगों में रंगा हुआ है। ये रंग अर्जेंटीना की फुटबॉल टीमों का है, जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भेड़ उस व्यक्ति के पीछे पीछे शांति से चल रही है। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अर्जेंटीना की फैन हो। इस अनोखे नजारे को देख कर आसपास के लोग भी हैरान हो गए हैं। कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता और चिड़िया तक आपने न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को घरों में प्यार मिलते देखा होगा। इनको लोग अक्सर अपना परिवार ही मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा ही लाड प्यार आपने किसी कौवे के लिए देखा है क्या? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है, उसकी गोद में कौवा है। उल्टे लेटे हुए कौवे को ये महिला गुदगुदी करते वैसे ही खिला रही है जैसे किसी बच्चे को प्यार दिखाया जाता है। इस दौरान कौवा भी प्रतिक्रिया ऐसे दे रहा है जैसे वो एक बच्चा ही हो। इस वीडियो में कौवे को पिंजरे में नहीं रखा गया है। अगर ऐसा किया जाता तो ये गैर कानूनी है। भारतीय प्रजाति के कौवों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली मेट्रो से इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को हैरान करने के साथ साथ खूब हंसने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस बार यात्रियों के साथ बंदर भी मेट्रो ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी तरह दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पर लोग ऐसे हालात में उम्मीद करते हैं कि जानवर थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही था। बंदर बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मेट्रो के डिब्बे के अंदर घूमता नजर आया। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोजाना मेट्रो में सफर करता हो। मेट्रो में मौजूद यात्री भी पहले तो उसे हैरानी से देखते रहे। कुछ लोग उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे, जबकि कुछ ने तुरंत अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बंदर आराम से एक सीट से दूसरी सीट के पास जाता रहा और यात्रियों को देखता रहा।

इसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। वीडियो में दिखाई देता है कि बंदर सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। अचानक सामने आए इस नन्हे मेहमान से लड़की घबरा जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन बंदर वहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता। उल्टा वो लड़की की और करीब आने लगता है। इस पूरे सीन को देखकर आसपास बैठे लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल हंसी मजाक में बदल जाता है।

0: रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: अब गर्मी में कूल कूल एहसास कैसे लिया जाए, उसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते रहे हैं। वहीं पर घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज जो हैं गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से भी एक खास पहल की गई है, देखिए।
5: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशंस पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर कहाँ से आए हैं आप?
6: हम नागपुर से आए हैं।
5: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए कैसा लगा?
6: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
5: मैम कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
7: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
8: ये राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छतर दे रहे हैं ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इसे। ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
9: असल में यहाँ पे गर्मी, ये गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
5: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
9: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे, ठीक है। लेकिन
5: मतलब मैं ये समझ रही हूँ अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
9: हाँ एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियां देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं।
5: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
10: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
5: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलास हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलास नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति हैं उनसे उसकी डिमांड करे कि हमें ये अम्ब्रेला जो है वो चाहिए। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया जाएगा और वापस जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको वो अम्ब्रेलास जमा करवाने रहेंगे। बस इतनी सी बात है, निशुल्क सेवाएं ये हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
4: चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें दिखाते हैं। देखिए, ब्रिटेन की राजधानी एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इन राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं पड़ता और वो है लैरी द कैट। डाउनिंग स्ट्रीट के मशहूर चीफ माउसर लैरी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं।
11: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है। चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिज़ ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टार्मर तक सबको आते जाते देखा है, मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बैटरसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखता है और कभी कभार तो इस ऐतिहासिक इमारत के फर्नीचर पर सोकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है। कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। लिया है के बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेट कर यहां से विदा लेते हैं तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
13: और आपको समझाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई। बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की यात्रा से लौटने के बाद अब इंडोनेशिया जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर अब द्वीपों के देश इंडोनेशिया में भी सनातन का अलख जगाएंगे। बाबा बागेश्वर की श्रीलंका यात्रा पौराणिक कहानियों के कई यादगार अनुभवों से भरा हुआ है। श्रीलंका में बाबा बागेश्वर कई प्राचीन मंदिरों और बौद्ध मठों के अलावा उस अशोक वाटिका में भी गए जहां रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। अशोक वाटिका में मां जानकी और हनुमान जी की पौराणिक निशानियों को देखकर बागेश्वर पीठाधीश्वर भाव विभोर हो गए।

0: स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने के लिए बागेश्वर बाबा 26 से 28 जून के बीच इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडोनेशिया की धरती पर वो सनातन कथा के माध्यम से मानव मात्र की एकता का संदेश देंगे। इंडोनेशिया से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने सनातन और बौद्ध धर्म के सात्विक दर्शन का संदेश दिया। बीते 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक महात्म्य के अनुसार स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। श्रीलंका जाने के बाद वो अशोक वाटिका में कैसे नहीं जाते, जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। लिहाजा बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे, जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं। मान्यता है कि सीता एलिया गांव में मौजूद वाटिका वही अशोक वाटिका है, जहां लंकाधिपति रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा श्रीलंका की उस पौराणिक दिव्य भूमि पर पहुंचकर भक्ति और आनंद के रस से सराबोर हो गए।
1: जहां सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मूत्र का दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहां हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों। और वो सामने वहाँ चरण है और नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसमें माता जानकी जी स्नान करती थी ऐसा कहते थे, और इसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान रहती थी। ये सामने पूरा बाग है, इसको अशोक वाटिका कहते हैं। सामने वो पर्वत है, उस पर्वत की टीला जो देखो बड़े बड़े पर्वत हैं और पर्वतों के मध्य में है, और ये बाग है जिसको अशोक वाटिका नाम दिया था, नाम था जहाँ माता जी जिस अशोक वाटिका में विराजमान थी। इतने घने जंगल में आतता यत्याचारी रावण हमारी माँ को लेकर के कहाँ आया था, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने दीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी है, जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं।
0: मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब पहली बार चरण रखा तो वहाँ दिव्य अलौकिक पद निशान बन गए। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा अशोक वाटिका में हनुमान जी के चरण चिन्ह के पास भी पहुँचे और अपने आराध्य की पावन निशानी के दर्शन कर भावुक हो गए।
1: जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर श्रीलंका की यात्रा में जहाँ हनुमान जी का चरण है वो आपको यहाँ दर्शन करवा रहे हैं। ये हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने विराट दर्शन माता जानकी जी के दिए थे। और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है, जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है, लोग मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी, और ये वो विराट चरण का चिन्ह है। यदि आप दर्शन कर पाएंगे तो हम श्रीलंका की यात्रा में अशोक वाटिका में हैं, जहाँ माता जानकी जी है एक एक पल पुरुष श्री राम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा के विराट चरण चिन्ह का दर्शन।
0: काबिले गौर है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में सनातन धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन मंदिर और सिद्ध मठ हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य वसुधैव कुटुम्बकम के सनातन जय घोष के साथ ही सिद्ध स्थानों पर जाकर वहां के आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाना है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुँचे। और माँ काली की पूरी आस्था और विधि विधान के साथ पूजा आराधना। खास बात ये कि बाबा बागेश्वर जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुँचे तो पूरा परिसर जय श्री राम के पावन जयकारों से गुंजायमान हो गया।
2: जय श्री राम,
3: जय श्री राम,
2: जय श्री राम,
3: जय श्री राम।
0: जय श्री राम के जयकारों के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा की थाल में कमल पुष्प और दूसरे नैवेद्यों को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया।

0: काफी देर तक ठहरे और इस दौरान शांत चित्त होकर पूरे भक्ति भाव के साथ माँ के विग्रह का दर्शन पूजन किया। अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर बौद्ध और सनातन धर्म की बुनियादी एकता का संदेश देने वाले गंगार माया मंदिर भी पहुँचे और भगवान बुद्ध की स्वर्णाभ प्रतिमा का पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन किया। बाबा बागेश्वर बौद्ध और सनातन धर्म की बुनियादी एकता का संदेश देने वाले गंगार माया मंदिर भी पहुँचे और भगवान बुद्ध की स्वर्णाभ प्रतिमा का पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन किया। आपको बता दें कि कोलंबो स्थित गंगार माया मंदिर सनातन और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम है, जहां भगवान बुद्ध के अलावा भगवान कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की अनुपम प्रतिमाएं स्थापित हैं। बाबा बागेश्वर ने इस मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के साथ ही भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं के दर्शन किए।
1: श्रीलंका जैसे ही हम पहुंचे एक ऐसे टेंपल पे पहुंचे जहां सनातन संस्कृति और बुद्ध परंपरा दोनों का संयोग हो रहा, दोनों का एक अभूतपूर्व हमने अनूठा संगम देखा। यहां पर भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, बोधि वृक्ष और भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं यहां स्थापित हैं, जहां लोग दर्शन करते हैं। भारत की परंपरा और श्रीलंका की परंपरा दोनों का यहां पर संयोग और मेल देखा। हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी यहां पहुंचे थे और भारत से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति या जो भी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति विचारधारा रखते हैं वो यहां सब पहुंचते हैं। हम यही कहना चाहेंगे अंततो गत्वा भारत सबको अपना बनाता है, भारतीय परंपरा सबको अपना बनाती है, इसलिए भारत को परिवार कहा जाता, भारत को माँ कहा जाता, क्योंकि माँ सबके लिए ममत्व रखती है, ममता रखती है।
0: श्रीलंका स्थित बौद्ध और सनातन मंदिरों और मठों में जाकर आध्यात्मिक लाभ लेने के बाद बाबा बागेश्वर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से भी मिले। राजपक्षे ने सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के दौरान बाबा बागेश्वर ने महिंद्रा राजपक्षे के आरोग्य की कामना के साथ ही भारत श्रीलंका के लोगों के बीच सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ाने के उपाय भी बताए।
2: और उसका ये तुम उपाय है, श्रीमराज भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने जाएं और श्रीलंका के लोग राम लला के दर्शन करने जाएं।
3: Dulji is hoping that in years for India come to see the Ramayana trail over there and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthday.
2: People
3: will connect through Ramayana.
2: उसका सर्वोत्तम उपाय ही है रामायण के, दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएंगे।
0: श्रीलंका की धरती पर जाकर बाबा बागेश्वर राम कथा की सरिता प्रभावित न करते ये भला कैसे हो सकता है। श्रीलंका की धरती पर राम कथा के लिए बाबा ने अद्भुत स्थान का चयन किया।
4: कथा में भी सरोवर है।
0: बाबा ने समंदर तट पर पंडाल लगाकर लहरों की सरसराहट के बीच राम कथा की कल कल सरिता प्रवाहित
4: की। पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करते, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। बागेश्वर परिवार के उन गिने चुने पुष्पों को हम लेकर यहाँ आए जिनको रामेश्वरम महादेव ने बुलाया और जगह हमको बहुत प्यारी मिल गई। सामने सागर है, इस तरफ हम हैं, समुद्र तट के किनारे भगवत चर्चा हो रही। क्या अद्भुत संगम है, क्या अद्भुत। एक तरफ महादेव बैठे, एक तरफ सागर है, तीसरी तरफ कथा की रसधार बह रही है। सागर में भी डुबकी लगाओ, दर्शन में भी डूब जाओ और कथा में भी सरोवर हो जाओ।
0: साफ है कि अपनी चार दिवसीय श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने विदेशी धरती से सनातन एकता और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया। इक्कीस जून को बाबा बागेश्वर श्रीलंका से वापस लौटकर मुंबई स्थित भिवंडी पहुंचे हैं।

0: जहां बागेश्वर बालाजी सनातन मठ है। बाबा बागेश्वर अब अपनी इंडोनेशिया यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो 26 से 28 जून के बीच है। इंडोनेशिया में बाबा बागेश्वर की यात्रा का महत्व इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति की प्राचीन निशानियां आज भी बहुतायत में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनातन संस्कृति की प्राचीन निशानियां आज भी बहुतायत में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों में लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं और सात समंदर पार जाकर सनातन धर्म का अलौकिक संदेश दे रहे हैं। विदेशों में बाबा बागेश्वर न सिर्फ राम कथा सुनाते हैं बल्कि अपना चमत्कारिक दरबार भी लगाते हैं। इस दौरान विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय मूल निवासी भी बाबा की आध्यात्मिक सिद्धियों को देखकर कौतूहल से भर जाते हैं।

0: वाली है और गौरव का विषय है, जहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबका मंगल हो, ये सिर्फ भारत देश के सनातनी लोग।
1: Only Hanuman is greatest management guru on this universe. इसलिए surrender हो जाओ, राम गाओ। I cannot speak in English, but I understand your feelings. हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। प्लीज वेट।

0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा विदेशी धरती पर भी सनातन धर्म का परचम लहराते रहे हैं।
1: जय श्री राम।
0: सात समंदर पार भी उनकी सिद्धि की नुमाइश लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनती है। विदेशी धरती पर सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी।
2: आप सब भारत से कोसों दूर हैं, पर दूरी 8 किलोमीटर की है, दिल की बहुत नजदीकी है आप लोगों की।
1: Yes.
0: 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलग जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया।
3: बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी,
4: हे सन्यासी
3: बाबा,
4: हे कलयुग के राजा,
3: हम पर कृपा करो।
5: ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन
6: जी।
5: यूएसए का इंतजार कर रहे हैं।
6: कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे। इटली, फ्रांस, जो भी था आपका प्लान, मैं
5: अभी
6: कब से
5: सब कैंसल है,
6: सब कैंसल हो गया तो मुझे आना पड़ गया।
5: ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई है
6: बस गुरुजी आप,
5: क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड।
0: दिलचस्प बात ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा ने कथा वाचन के अलावा प्रवासी भारतीयों के बीच चमत्कारी दरबार भी लगाया, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया था। कमाल तो ये है कि अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले जाने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
5: कुछ लोग तो कल कह रहे थे, फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत? हमने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक एक साल बाद यानी जुलाई 2024 में बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका आतिथ्य सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंग बली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: शक्तिशाली शाखा पार। इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
1: यू कम हियर, सो यू स्पीक इन हिंदी।
2: पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ ही वहां के मूल निवासी भी इनके आदर सत्कार में पीछे नहीं रहते। इसी साल 8 से 22 अप्रैल के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया।

0: 15 दिवसीय यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर के सम्मान में कई समारोह आयोजित किए गए, जहां उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित किया गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया।
1: प्रसन्नता है और सनातन के लिए बहुत गौरव की बात है। हमें जो बताया गया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हॉल में कोई सनातन संस्कृति का कार्यक्रम आयोजित हो।
0: अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। जून 2025 में बाबा की फिजी यात्रा के दौरान कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिजी में 13 से 15 जून 2025 के बीच कई जगहों पर हनुमत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 से 25 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा पर भी जा चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी यूएई यात्रा को लेकर नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी की थी। बाबा बागेश्वर अपनी तमाम विदेश यात्राओं के दौरान अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों को परस्पर जोड़ने की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। यही वजह है कि विदेशी मूल के लोग भी उनके प्रवचन को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं और उससे अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं।
1: स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्लीज वेट।
2: और चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल की आज के हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
1: somebody save me,
0: to timeless favorites,
1: and life is like a song,
0: and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: You and I, so much more than a history.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: घर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह हजारों मॉडल कारें सजी हों, जहां पर गैराज किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम से कम ना लगे? तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही आशानी में लेकर चलते हैं, क्या ऑटोमोबाइल की अनोखी दुनिया में आपके लिए चलते हैं।
4: अक्सर कहा गया है कि शौक भी बड़ी चीज है, वरना कौन रातों की नींद छोड़कर सपनों को सजाता है। कुछ ऐसे ही सपनों के घर को सजाने में जुटे हैं संदीप गज्जर, जो सनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो वहीं इनका घर कुछ बेहद अनोखी और खास वजहों से मशहूर है।
5: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ।
4: नोएडा में बना ये घर भले ही बाहर से एकदम सामान्य ही नजर आएगा, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया से आप रूबरू होंगे। घर की दीवारें करीब 2000 हॉट व्हील्स कारों से सजी है। छोटे छोटे मॉडल्स का ये बड़ा कलेक्शन सनी के ऑटोमोबाइल प्रेम को बखूबी दर्शा भी रहा है। यानी दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह सजी लगभग 40 साल पुरानी ये हजारों रियल मॉडल्स की कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको किसी मोटो विला का ही एहसास कराएंगी। यही नहीं, सनी के कलेक्शन में ही मैन से लेकर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ कई और कॉमिक कैरेक्टर्स भी उनके आशियाने को बेहद पैशनेट और पावरफुल फील दे रहे हैं।
5: जैसे अंदर एंटर करोगे आप ये देखिए, आपको हर एक कोने में हर एक चीज नजर आने वाली है। और जिस तरीके से हमने इसको मोटो विला बोला है, यहाँ पर सिर्फ बाइक्स या फिर कार्स का कलेक्शन नहीं, आपको कुछ इस तरीके की चीजें भी दिखने वाली है जो लोग इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है।
4: सनी ने अपने घर के हर कोने को ऑटोमोबाइल कल्चर की चाशनी में भिगोया हुआ है। यहाँ किचन से लेकर मल्टी लेवल मॉडल गैराज, विपन वॉल, बस ये मानिए कि इस घर का हर कोना सनी की पसंद और व्यक्तित्व की एक नई कहानी को बयां कर रहा है।
5: फ्रिज को भी नहीं छोड़ा आपने?
6: नहीं छोड़ दिया एक्चुअली, मैं अगर मैं मेरा पास चलता तो मैं बहुत कुछ करता उसके ऊपर।
5: एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, ये फ्रिज है जो ये आप देख रहे हैं, बट इसको भी किस तरीके से इन्होंने कस्टमाइज किया है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक जो है वो दिखने वाली है।
4: यही नहीं, सनी हेलमेट डिजाइनिंग का भी शौक रखते हैं। उनके डिजाइन किए गए कई हेलमेट्स और रग्स उनकी क्रिएटिविटी पैशन को ही झलका रहे हैं, और ये सब कुछ करना उन्हें सुकून ही देता आया है।
6: मेरा प्रोफेशन जो है, आई थिंक इट्स टू इंस्पायर पीपल अल्टीमेटली कि यू कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट डिस्पाइट आपके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स हो। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो 3 फ्लोर का, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो सिर्फ एक कमरा था, और उस एक कमरे को भी मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि किसी ने नहीं देखा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें मिलती जाएगी, लेकिन थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए।
4: आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑटोमोबाइल की दुनिया समेटे इस खूबसूरत और अनोखी क्रिएटिव गैलरी में फोटोग्राफी का पैशन भी सनी के दिल के बेहद करीब रहा है।
6: आई थिंक फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, विच इज वेरी बेसिक।
4: आज के दौर में जहां लोग अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने जुनून और सपने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। उसकी एक झलक उनके बेडरूम में भी नजर आ रही है। कहते भी हैं कि शौक वो नहीं जो वक्त काटने के लिए किया जाए, शौक वो है जिसके लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि यही शौक इंसान की पहचान को और भी खूबसूरत और कलात्मक बना देता है। और जिसे अपने शौक से मोहब्बत हो जाए, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
5: तो सनी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि उनका जुनून है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सनी ने डिजाइन किया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है और उसके बाद ये पूरा घर जिसे हम मोटो विला बोल रहे हैं ये पूरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। गुड न्यूज़ टुडे
2: इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हाथ में घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से कोसों दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां पर वायरल दावों की सच्चाई देखते हैं, हम सटीक जांच करते हैं, अफवाहों की पड़ताल करते हैं और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के इस सीसीटीवी फुटेज में वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखिए हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह वादा किया जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए हादसे का यह वीडियो है जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ऑलिवर ट्री की मौत हो गई। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, अयोध्या के राम मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच की वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखने में किसी मंदिर का वीडियो लग रहा है जिसमें कुछ लोग नोट गिन रहे हैं। इसमें कुछ लोग नोटों की गड्डियां छुपाकर दूसरे कमरे में ले जाते भी नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का है। एक यूजर ने इस सीसीटीवी फुटेज को शेयर करते हुए लिखा, राम मंदिर 200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सीसीटीवी ने खोली सबकी पोल। अयोध्या मंदिर के सीसीटीवी में पुजारी कथित तौर पर दान का पैसा छिपाते नजर आया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते के दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। मामले की 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। देखिए, इसी बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो है नोट की गड्डियां छुपाकर दूसरे कैमरे में ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना यह है कि यह अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे को कसौटी पर उतारा। तो देखिए, फैक्ट चेक की टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी मंदिर का ही वीडियो है। इसके बाद देखिए, हमने वीडियो के कमेंट्स सेक्शन को खंगाला। यहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को कर्नाटक के बेंगलुरु का बताया था और इसके बाद हमने एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखा और इस दौरान हमें कुछ लोग धोती में नजर आए। इन लोगों ने जिस तरह से धोती को पहना हुआ था उससे ये इशारा हमको मिल रहा था कि वीडियो किसी दक्षिण भारत के राज्य का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई और राम मंदिर दान विवाद की जांच कर रही एसआईटी टीम ने भी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक निकलकर क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 1 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो को पोस्ट किया गया मिला, जिसमें वायरल क्लिप भी मौजूद थी। यहां दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है, जिसमें मंदिर के 2 सदस्यों को दान के रूप में उठाते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें 30 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर में दान के पैसों की चोरी से संबंधित है। उस वक्त इस तरह के और भी कई वीडियो सामने निकल कर आए थे, जिसमें मंदिर के कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते हुए नजर आए थे। मामले को लेकर जुलाई 2024 में FIR हुई थी। उस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी रामचंद्र ने दावा किया था कि ये घटना तकरीबन 1 साल पुरानी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में मंदिर की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों को निलंबित किया गया था और 2 रसोइयों को भी हटाया गया था। बाद में कर्नाटक सरकार ने अव्यवस्था और अनियमितताओं का हवाला देते हुए इस मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को पूर्व उत्तर प्रदेश CM अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। उसी दिन इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से पहली धर्मसेना के संस्थापक अशोक दुबे की है, दूसरी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की और तीसरी करणी सेना की है। साफ है वायरल वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है। सितंबर 2024 में वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को रुपए उठाते हुए देखा गया था। इस वीडियो का अयोध्या के राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर को पहले टकराते और फिर क्रैश होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा लगातार कर रहे हैं कि 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स का ये वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर के टकराने और क्रैश होने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में म्यूजिशियन ओलिवर ट्री शामिल थे, जो अपने वायरल हिट गानों एलियन बॉय और लाइफ गोज ऑन के लिए मशहूर थे, और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रिम भी थे, जिन्हें ऑनलाइन गैस्पी के नाम से जाना जाता था। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में कई हेलीकॉप्टर कुछ ताड़ के पेड़ों के पास कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए नजर आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने भी रियो की घटना के संदर्भ में इस वीडियो के स्क्रीन ग्रैब का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सिंगर सॉन्गराइटर ओलिवर ट्री की 14 जून को ब्राजील में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। वो 32 साल के थे। इस हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई, और अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई थी, उसी का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान दावे की पुष्टि कराती हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई उसका फुटेज भी सामने निकलकर आया था। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को देखने से फर्क साफ साफ नजर आ जाता है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि हेलीकॉप्टर हादसे का ये वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 23 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी की परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना पेराक राज्य के लुमुत नेवल बेस पर हुई और मारे गए सभी लोग क्रू मेंबर थे। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर एक AW-139 और एक फेनिक हेलीकॉप्टर थे। इसी मिली जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें कई और प्रामाणिक रिपोर्ट मिली, जिसमें यही जानकारी दी गई थी कि रॉयल मलेशियन नेवी की परेड के रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा फेक साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब रिहर्सल के दौरान मलेशियाई नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच इस समय दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। अपनी बेहतरीन फुटबॉल स्किल्स की वजह से ये बच्चा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि बच्चे ने बिना जूते पहने जिस तरह फुटबॉल पर कंट्रोल दिखाया, उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पहने मैदान में मौजूद है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके खेल में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है, वो किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं लगता। वीडियो की शुरुआत में बच्चा मैदान के कॉर्नर एरिया में खड़ा नजर आता है। इसके बाद वो कॉर्नर किक लेने की तैयारी करता है और फिर गेंद को ऐसी दिशा में मारता है कि वो सीधे गोल पोस्ट के अंदर पहुंच जाती है। लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि कुछ सपने सिर्फ जवानी के लिए ही होते हैं, उम्र ढलने के बाद उन सपनों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दिल्ली की आयुषी नेगी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल आयुषी ने अपने 90 और 80 साल के दादा दादी को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाकर उनका वर्षों पुराना सपना पूरा किया। इस दौरान आयुषी अपने दादा दादी को ट्रिप के लिए लंदन ले गई। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर बिल्कुल तेज रफ्तार से खीरा काट रहा है। वीडियो में जिस तरह से शख्स खीरे को काट रहा है वो देख हर कोई हैरान है। बिना देखे बिजली की रफ्तार से चाकू चलाते हुए खीरे को काटना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हाथ की उंगलियों के कटने का भी बहुत खतरा होता है। फिर भी इस शख्स को इस चीज का इतना अभ्यास है कि वो आंखें बंद कर भी काफी तेजी से खीरा काट ले रहा है। शख्स ने अपने इस कारनामे से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम वॉलेस वोंग है, जिन्हें लोग सिक्स पैक शेफ के नाम से भी जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हर देश के फुटबॉल फैंस अपने अपने अंदाज में अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से सामने आया ये वीडियो इस जुनून को एक अलग ही लेवल पर ले गया। इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर एक भेड़ को लेकर चलता दिखाई दे रहा है। पहले नजर में ये एक नॉर्मल सा नजारा लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के साथ चल रही भेड़ का शरीर नीले और सफेद रंगों में रंगा हुआ है। ये रंग अर्जेंटीना की फुटबॉल टीमों का है, जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भेड़ उस व्यक्ति के पीछे पीछे शांति से चल रही है। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अर्जेंटीना की फैन हो। इस अनोखे नजारे को देख कर आसपास के लोग भी हैरान हो गए हैं। कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता और चिड़िया तक आपने न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को घरों में प्यार मिलते देखा होगा। इनको लोग अक्सर अपना परिवार ही मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा ही लाड प्यार आपने किसी कौवे के लिए देखा है क्या? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है, उसकी गोद में कौवा है। उल्टे लेटे हुए कौवे को ये महिला गुदगुदी करते वैसे ही खिला रही है जैसे किसी बच्चे को प्यार दिखाया जाता है। इस दौरान कौवा भी प्रतिक्रिया ऐसे दे रहा है जैसे वो एक बच्चा ही हो। इस वीडियो में कौवे को पिंजरे में नहीं रखा गया है, अगर ऐसा किया जाता तो ये गैर कानूनी है। भारतीय प्रजाति के कौवे को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली मेट्रो से इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को हैरान करने के साथ साथ खूब हंसने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस बार यात्रियों के साथ बंदर भी मेट्रो ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी तरह दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पर लोग ऐसे हालात में उम्मीद करते हैं कि जानवर थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही था। बंदर बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मेट्रो के डिब्बे के अंदर घूमता नजर आया। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोजाना मेट्रो में सफर करता हो। मेट्रो में मौजूद यात्री भी पहले तो उसे हैरानी से देखते रहे। कुछ लोग उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे, जबकि कुछ ने तुरंत अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बंदर आराम से एक सीट से दूसरी सीट के पास जाता रहा और यात्रियों को देखता रहा।

इसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। वीडियो में दिखाई देता है कि बंदर सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। अचानक सामने आए इस नन्हे मेहमान से लड़की घबरा जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन बंदर वहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता, उल्टा वो लड़की की और करीब आने लगता है। इस पूरे सीन को देखकर आसपास बैठे लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल हंसी मजाक में बदल जाता है।

0: दिख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: अब गर्मी में कूल कूल एहसास कैसे लिया जाए, उसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते रहे हैं। वहीं पर घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज जो हैं गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से भी एक खास पहल की गई है, देखिए।
4: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशन पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर, कहाँ से आए हैं आप?
5: हम नागपुर से आए हैं।
4: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए, कैसा लगा?
5: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होंगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
4: मैम, कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं, और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
6: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
7: राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छतरी दे है ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इसे। ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
8: असल में यहाँ पे गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
4: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
8: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे, ठीक है। लेकिन
4: मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
8: हाँ, एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियाँ देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं। हाँ,
4: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
9: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
4: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलास हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं, तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलास नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति हैं उनसे उसकी डिमांड करे कि हमें ये अम्ब्रेला जो है वो चाहिए। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया जाएगा और वापस जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको वो अम्ब्रेलास जमा करवाने रहेंगे। बस इतनी सी बात है, निशुल्क सेवाएं हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
3: चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें दिखाते हैं। देखिए, ब्रिटेन की राजधानी एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इन राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं पड़ता और वो है लैरी द कैट। डाउनिंग स्ट्रीट के मशहूर चीफ माउसर लैरी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं।
10: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है। चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिस्ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टार्मर तक सबको आते जाते देखा है। मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बेट्रेसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है। सुरक्षा व्यवस्था है। कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। एक्स पर उसके पैरोडी अकाउंट को करीब 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में इसी अकाउंट से मजाकिया अंदाज में लिखी पोस्ट खूब वायरल हुई। इसमें लिखा था, मैंने कीर स्टार्मर का इस्तीफा अपने मुख्य सेवक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। के बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेट कर यहां से विदा लेते हैं तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई। बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की यात्रा से लौटने के बाद अब इंडोनेशिया जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर अब द्वीपों के देश इंडोनेशिया में भी सनातन का अलख जगाएंगे। बाबा बागेश्वर की श्रीलंका यात्रा पौराणिक कहानियों के कई यादगार अनुभवों से भरा हुआ है। श्रीलंका में बाबा बागेश्वर कई प्राचीन मंदिरों और बौद्ध मठों के अलावा उस अशोक वाटिका में भी गए जहां रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। अशोक वाटिका में मां जानकी और हनुमान जी की पौराणिक निशानियों को देखकर बागेश्वर पीठाधीश्वर भाव विभोर हो गए।

0: स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने के लिए बागेश्वर बाबा 26 से 28 जून के बीच इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडोनेशिया की धरती पर वो सनातन कथा के माध्यम से मानव मात्र की एकता का संदेश देंगे। इंडोनेशिया से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने सनातन और बौद्ध धर्म के सात्विक दर्शन का संदेश दिया। बीते 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक महात्म्य के अनुसार स्वागत किया गया। 4 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने सनातन और बौद्ध धर्म के सात्विक दर्शन का संदेश दिया। बीते 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक महात्म्य के अनुसार स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। श्रीलंका जाने के बाद वो अशोक वाटिका में कैसे नहीं जाते, जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। लिहाजा बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे, जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं। मान्यता है कि सीता एलिया गांव में मौजूद वाटिका वही अशोक वाटिका है, जहां लंकाधिपति रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा श्रीलंका की उस पौराणिक दिव्य भूमि पर पहुंचकर भक्ति और आनंद के रस से सराबोर हो गए।
1: जहां सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मूत्र का दी, अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं। ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहां हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की झटरी मारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों। और वो सामने वहाँ चरण है और नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसमें माता जानकी जी स्नान करती थी ऐसा कहते थे, और इसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान रहती थी। ये सामने पूरा बाग है, इसको अशोक वाटिका कहते हैं। सामने वो पर्वत है, उस पर्वत की टीला जो देखो बड़े बड़े पर्वत हैं और पर्वतों के मध्य में है, और ये बाग है जिसको अशोक वाटिका नाम दिया था, नाम था जहाँ माता जी जिस अशोक वाटिका में विराजमान थी। इतने घने जंगल में आतता यज्ञचारी रावण हमारी माँ को लेकर के कहाँ आया था, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, इतनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने दीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी है, जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं।
0: मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब पहली बार चरण रखा तो वहाँ दिव्य अलौकिक पद निशान बन गए। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा अशोक वाटिका में हनुमान जी के चरण चिन्ह के पास भी पहुँचे और अपने आराध्य की पावन निशानी के दर्शन कर भावुक हो गए।
1: जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर से श्रीलंका की यात्रा में जहाँ हनुमान जी का चरण है वो आपको यहाँ दर्शन करवा रहे हैं। ये हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने विराट दर्शन माता जानकी जी के दिए थे। और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है, जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है, लोग मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी, और ये वो विराट चरण का चिन्ह है। यदि आप दर्शन कर पाएंगे तो हम श्रीलंका की यात्रा में अशोक वाटिका में हैं, जहाँ माता जानकी जी है एक एक पल श्रीराम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा के विराट चरण चिन्ह का दर्शन।
0: काबिले गौर है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में सनातन धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन मंदिर और सिद्ध मठ हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य वसुधैव कुटुम्बकम के सनातन जय घोष के साथ ही सिद्ध स्थानों पर जाकर वहां के आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाना है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुंचे। और मां काली की पूरी आस्था और विधि विधान के साथ पूजा आराधना की। खास बात ये कि बाबा बागेश्वर जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुंचे तो पूरा परिसर जय श्री राम के पावन जयकारों से गुंजायमान हो गया।
2: जय श्री राम।
0: जय श्री राम के जयकारों के बीच पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा की थाल में कमल पुष्प और दूसरे नैवेद्यों को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया।
3: पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षे पद्मसंभवे तन्मे

0: जहाँ भगवान बुद्ध के अलावा भगवान कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की अनुपम प्रतिमाएं स्थापित हैं। बाबा बागेश्वर ने इस मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के साथ ही भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं के दर्शन किए।
1: श्रीलंका जैसे ही हम पहुंचे वो एक ऐसे टेंपल पे पहुंचे जहां सनातन संस्कृति और बुद्ध परंपरा दोनों का संयोग हो रहा, दोनों का एक अभूतपूर्व हमने अनूठा संगम देखा। यहां पर भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, बोधि वृक्ष और भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं यहां स्थापित हैं जहां लोग दर्शन करते हैं। भारत की परंपरा और श्रीलंका की परंपरा दोनों का यहां पर संयोग और मेल देखा। हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी यहां पहुंचे थे और भारत से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति या जो भी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति विचारधारा रखते हैं वो यहां सब पहुंचते हैं। हम यही कहना चाहेंगे अंततो गत्वा भारत सबको अपना बनाता है, भारतीय परंपरा सबको अपना बनाती है, इसलिए भारत को परिवार कहा जाता, भारत को माँ कहा जाता, क्योंकि माँ सबके लिए ममत्व रखती है, ममता रखती है।
0: श्रीलंका स्थित बौद्ध और सनातन मंदिरों और मठों में जाकर आध्यात्मिक लाभ लेने के बाद बाबा बागेश्वर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से भी मिले। राजपक्षे ने सनातन के इस संत का दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बाबा ने भी दोनों हाथ उठाकर खुले दिल से श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति को आशीर्वाद दिया। इस मुलाकात के दौरान बाबा बागेश्वर ने महिंद्रा राजपक्षे के आरोग्य की कामना के साथ ही भारत श्रीलंका के लोगों के बीच सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ाने के उपाय भी बताए।
2: हम लेंगे चाय कोई नहीं और उसका ही तुम पाएंगे श्री राज भारत के लोग यहाँ प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने जाएंगे और श्रीलंका के लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे।
3: He's hoping that Team Leaders for India come to see the Ramayana trail over there and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama.
2: people
3: will connect through Ramayana.
2: उसका सर्वोत्तम उपाय ही है रामायण के दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएंगे।
0: श्रीलंका की धरती पर जाकर बाबा बागेश्वर राम कथा की सरिता प्रभावित न करते ये भला कैसे हो सकता है। श्रीलंका की धरती पर राम कथा के लिए बाबा ने अद्भुत स्थान का चयन किया।
4: कथा में भी सरोवर,
0: बाबा ने समंदर तट पर पंडाल लगाकर लहरों की सरसराहट के बीच राम कथा की कल कल सरिता प्रवाहित की।
4: श्रम की पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करते अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए बागेश्वर परिवार।
5: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों में लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं और सात समंदर पार जाकर सनातन धर्म का अलौकिक संदेश दे रहे हैं। विदेशों में बाबा बागेश्वर न सिर्फ राम कथा सुनाते हैं बल्कि अपना चमत्कारिक दरबार भी लगाते हैं। इस दौरान विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय मूल निवासी भी बाबा की आध्यात्मिक सिद्धियों को देखकर कौतूहल से भर जाते हैं।

0: की है और गौरव का विषय है, जहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व हमारा परिवार है और सबका मंगल हो, ये सिर्फ भारत देश के सनातनी लोग हैं।
1: Only Hanuman is greatest management guru on this universe. इसलिए surrender हो जाओ, राम गाओ। I cannot speak in English, but I understand your feelings. हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। प्लीज वेट।

0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा विदेशी धरती पर भी सनातन धर्म का परचम लहराते रहे हैं।
1: जय श्री राम।
0: सात समंदर पार भी उनकी सिद्धि की नुमाइश लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनती है। विदेशी धरती पर सबसे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 7 दिवसीय यात्रा की थी।
2: आप सब भारत से कोसों दूर हैं, पर दूरी 8 किलोमीटर की है, दिल की बहुत नजदीकी है आप लोगों की।
1: Yes.
0: 22 जुलाई से 28 जुलाई 2023 के बीच अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लंदन से लेकर लिसेस्टर तक राम कथा का अलग जगाया और मानव मात्र की वैश्विक एकता का संदेश दिया।
3: हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो।
4: ये आए ही हमारे लिए इसलिए कि गुरुजी चाय के बड़े शौकीन
5: जी।
4: यूएसए का इंतजार कर रहे हैं।
5: कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने बोला था आप जुलाई के बाद आएंगे, इटली फ्रांस जो भी था आपका प्लान, मैं
4: अभी
5: कब से
4: सब कैंसल है,
5: सब कैंसल हो गया तो मुझे आना पड़ गया।
4: ठीक है। ये बिटिया सिर्फ चाय पिलाने के लिए आई
5: बस गुरुजी आप,
4: क्योंकि पिछली बार हमने शिकायत की थी कि चाय हमको बहुत ठीक ठाक नहीं, तो बिटिया ना चाय पिलाने के लिए चली आई इंग्लैंड।
0: दिलचस्प बात ये है कि अपनी यूके यात्रा के दौरान बाबा ने कथा वाचन के अलावा प्रवासी भारतीयों के बीच चमत्कारी दरबार भी लगाया, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया था। कमाल तो ये है कि अपनी यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने कोहिनूर हीरा वापस ले जाने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। दरअसल इंग्लैंड प्रवास के दौरान बाबा के भक्तों ने उनसे ये पूछा कि आप भारत कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ह्यूमरस अंदाज में कह दिया कि अब तो कोहिनूर लेकर ही वापस लौटूंगा।
4: कुछ लोग तो कल कह रहे थे फोन लगा, गुरुजी कब आओगे भारत, उन्होंने कहा भाई आएंगे, हमने एक सज्जन से हमने कह दिया हमको तो अभी यही अच्छा लगने लगा। हमने कहा यही, बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो कोहिनूर लेकर आएंगे।
0: इस यात्रा के ठीक एक साल बाद यानी जुलाई 2024 में बागेश्वर बाबा दोबारा इंग्लैंड गए और इस बार तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी इनका आतिथ्य सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर बाबा ने अपने आराध्य यानी बजरंग बली की महिमा को 7 समंदर पार भी स्थापित कर दिया।

0: चालीस साल का अपार
1: इस सदन में हम सब भगवान बालाजी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस पाठ को विश्व शांति के लिए समर्पित करते हैं, ताकि विश्व में शांति होवे, सबका मंगल होवे, ऐसी प्रार्थना हम सब हनुमान जी के चरणों में करते हैं। भगवान सबका भला करें, सब पर कृपा करें, सब में एकता हो, सनातन धर्म की उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना इस हनुमान चालीसा के पाठ के साथ करते हैं। पुनः पुनः इस सत्र में सायंकाल उपस्थित आप सभी हमारे प्रियजनों को हम बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।
2: यू कम हियर, सो यू स्पीक इन हिंदी।
3: पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय के साथ ही वहां के मूल निवासी भी इनके आदर सत्कार में पीछे नहीं रहते। इसी साल 8 से 22 अप्रैल के बीच बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे, जहां कैनबरा से लेकर सिडनी तक में उनकी कथा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया। सिडनी ओपेरा हाउस में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब सनातन दर्शन का उद्घोष किया तो पूरा सभागार भक्ति की शक्ति से सराबोर हो गया।

0: 15 दिवसीय यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर के सम्मान में कई समारोह आयोजित किए गए, जहां उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित किया गया। काबिले गौर है कि 14 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर के आध्यात्मिक योगदान और समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए औपचारिक सम्मान प्रदान किया गया।
1: प्रसन्नता है और सनातन के लिए बहुत गौरव की बात है। हमें जो बताया गया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हॉल में कोई सनातन संस्कृति का कार्यक्रम आयोजित हो।
0: अप्रैल 2026 की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर दक्षिण प्रशांत महासागर के ओशिनिया क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश फिजी की यात्रा पर गए थे। जून 2025 में बाबा की फिजी यात्रा के दौरान कई बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिजी में 13 से 15 जून 2025 के बीच कई जगहों पर हनुमत कथा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 20 से 25 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि बाबा की इस यात्रा के दौरान फिजी में पहले विदेशी बागेश्वर सनातन मठ की आधारशिला रखी गई। भारत के बाहर बागेश्वर धाम की ये पहली संस्थागत स्थापना है। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर खाड़ी देश यूएई की यात्रा पर भी जा चुके हैं। मई 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संयुक्त अरब अमीरात गए थे, जहां प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी यूएई यात्रा को लेकर नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी की थी। बाबा बागेश्वर अपनी तमाम विदेश यात्राओं के दौरान अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों को परस्पर जोड़ने की बात करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देते हैं। यही वजह है कि विदेशी मूल के लोग भी उनके प्रवचन को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं और उससे अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं।
1: स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: प्लीज वेट।
2: और चलिए इसी के साथ जी एन टी स्पेशल की आज के हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: घर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह हजारों मॉडल कारें सजी हों, जहां पर गैराज किसी ऑटोमोबाइल म्यूजियम से कम ना लगे? तो चलिए आज आपको एक ऐसे ही आशियाने में लेकर चलते हैं, क्या ऑटोमोबाइल की अनोखी दुनिया में आपके लिए चलते हैं।
4: अक्सर कहा गया है कि शौक भी बड़ी चीज है, वरना कौन रातों की नींद छोड़कर सपनों को सजाता है। कुछ ऐसे ही सपनों के घर को सजाने में जुटे हैं संदीप गज्जर, जो सनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो वहीं इनका घर कुछ बेहद अनोखी और खास वजहों से मशहूर है।
5: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें है उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ।
4: नोएडा में बना ये घर भले ही बाहर से एकदम सामान्य ही नजर आएगा, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया से आप रूबरू होंगे। घर की दीवारें करीब 2000 हॉट व्हील्स कारों से सजी है। छोटे छोटे मॉडल्स का ये बड़ा कलेक्शन सनी के ऑटोमोबाइल प्रेम को बखूबी दर्शा भी रहा है। यानी दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह सजी लगभग 40 साल पुरानी ये हजारों रियल मॉडल्स की कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको किसी मोटो विला का ही एहसास कराएंगी। यही नहीं, सनी के कलेक्शन में ही मैन से लेकर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ कई और कॉमिक कैरेक्टर्स भी उनके आशियाने को बेहद पैशनेट और पावरफुल फील दे रहे हैं।
5: जैसे अंदर एंटर करोगे आप ये देखिए, आपको हर एक कोने में हर एक चीज नजर आने वाली है। और जिस तरीके से हमने इसको मोटो विला बोला है, यहाँ पर सिर्फ बाइक्स या फिर कार्स का कलेक्शन ही, आपको कुछ इस तरीके की चीजें भी दिखने वाली है जो लोग इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है।
4: सनी ने अपने घर के हर कोने को ऑटोमोबाइल कल्चर की चाशनी में भिगोया हुआ है। यहाँ किचन से लेकर मल्टी लेवल मॉडल गैराज, वेपन वॉल, बस ये मानिए कि इस घर का हर कोना सनी की पसंद और व्यक्तित्व की एक नई कहानी को बयां कर रहा है।
5: फ्रिज को भी नहीं छोड़ा आपने?
6: नहीं छोड़ दिया एक्चुअली, मैं अगर मैं मेरा पास चलता तो मैं बहुत कुछ करता उसके ऊपर।
5: एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, ये फ्रिज है जो ये आप देख रहे हैं, बट इसको भी किस तरीके से इन्होंने कस्टमाइज किया है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक जो है वो दिखने वाली है।
4: यही नहीं, सनी हेलमेट डिजाइनिंग का भी शौक रखते हैं। उनके डिजाइन किए गए कई हेलमेट्स और रग्स उनकी क्रिएटिविटी पैशन को ही झलका रहे हैं, और ये सब कुछ करना उन्हें सुकून ही देता आया है।
6: मेरा प्रोफेशन जो है, आई थिंक इट्स टू इंस्पायर पीपल अल्टीमेटली कि यू कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट डिस्पाइट आपके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स हो। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो 3 फ्लोर का, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो सिर्फ एक कमरा था, और उस एक कमरे को भी मैंने ऐसे बनाया होता कि किसी ने नहीं देखा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें मिलती जाएगी, लेकिन थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए।
4: आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑटोमोबाइल की दुनिया समेटे इस खूबसूरत और अनोखी क्रिएटिव गैलरी में फोटोग्राफी का पैशन भी सनी के दिल के बेहद करीब रहा है।
6: आई थिंक फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, विच इज वेरी बेसिक।
4: आज के दौर में जहां लोग अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने जुनून और सपने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। उसकी एक झलक उनके बेडरूम में भी नजर आ रही है। कहते भी हैं कि शौक वो नहीं जो वक्त काटने के लिए किया जाए, शौक वो है जिसके लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि यही शौक इंसान की पहचान को और भी खूबसूरत और कलात्मक बना देता है। और जिसे अपने शौक से मोहब्बत हो जाए, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
5: तो सनी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि उनका जुनून है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सनी ने डिजाइन किया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है और उसके बाद ये पूरा घर, जिसे हम मोटो विला बोल रहे हैं, ये पूरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: इफ यू लव पॉडकास्ट्स, यू नेवर वांट टू बी विदाउट योर फेवरेट शोज, दैट्स वेयर ट्यून इन कम्स इन। हियर्स अ क्विक टिप, यू कैन लिसन एनीटाइम इवन विदाउट द इंटरनेट, जस्ट ओपन अ पॉडकास्ट, टैप द 3 डॉट्स नेक्स्ट टू एन एपिसोड एंड हिट डाउनलोड, सिंपल एज दैट। नाउ यू आर फ्री टू लिसन वेयरएवर यू आर, ऑन अ फ्लाइट, अंडरग्राउंड और टोटली ऑफलाइन। Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिश के रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हाथ में घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानियां गढ़ दी जाती हैं जो असलियत से कोसों दूर तक इत्तेफाक नहीं रखती। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां पर वायरल दावों की सच्चाई देखते हैं, हम सटीक जांच करते हैं, अफवाहों की पड़ताल करते हैं और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी पर। देखिए, फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के इस सीसीटीवी फुटेज में वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखिए हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए यह वादा किया जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए हादसे का यह वीडियो है जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। क्या है वायरल दावे की पूरी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, अयोध्या के राम मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वहां के कर्मचारियों को पैसे चुराते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगा है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी SIT मामले की जांच में जुटी हुई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक CCTV वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखने में किसी मंदिर का वीडियो लग रहा है जिसमें कुछ लोग नोट गिन रहे हैं। इसमें कुछ लोग नोटों की गड्डियां छुपाकर दूसरे कमरे में ले जाते भी नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का है। एक यूजर ने इस CCTV फुटेज को शेयर करते हुए लिखा, राम मंदिर 200 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। CCTV ने खोली सबकी पोल। अयोध्या मंदिर के CCTV में पुजारी कथित तौर पर दान का पैसा छिपाते नजर आया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते के दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर दान विवाद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर 3 सदस्यीय SIT गठित कर दी गई है और SIT ने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। मामले की 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। देखिए, इसी बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग नोटों की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं नोट की गड्डियां छुपाकर दूसरे कैमरे में ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना यह है कि ये अयोध्या के राम मंदिर में दान के पैसों की चोरी का वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल दावे को कसौटी पर उतारा। तो देखिए, फैक्ट चेक की टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा। इस दौरान देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी मंदिर का ही वीडियो है। इसके बाद देखिए, हमने वीडियो के कमेंट्स सेक्शन को खंगाला। यहां पर कुछ लोगों ने इस वीडियो को कर्नाटक के बेंगलुरु का बताया था और इसके बाद हमने एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखा और इस दौरान हमें कुछ लोग धोती में नजर आए। इन लोगों ने जिस तरह से धोती को पहना हुआ था उससे ये इशारा हमको मिल रहा था कि वीडियो किसी दक्षिण भारत के राज्य का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई और राम मंदिर दान विवाद की जांच कर रही SIT टीम ने भी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो ये वीडियो अयोध्या के राम मंदिर का है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने अब तक निकलकर क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट से 1 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो को पोस्ट किया गया मिला, जिसमें वायरल क्लिप भी मौजूद थी। यहां दी गई जानकारी के अनुसार वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है, जिसमें मंदिर के 2 सदस्यों को दान के रूप में उठाते हुए देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें 30 सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर में दान के पैसों की चोरी से संबंधित है। उस वक्त इस तरह के और भी कई वीडियो सामने निकल कर आए थे, जिसमें मंदिर के कर्मचारी दान के पैसों की चोरी करते हुए नजर आए थे। मामले को लेकर जुलाई 2024 में FIR हुई थी। उस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी रामचंद्र ने दावा किया था कि ये घटना तकरीबन 1 साल पुरानी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में मंदिर की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों को निलंबित किया गया था और 2 रसोइयों को भी हटाया गया था। बाद में कर्नाटक सरकार ने अव्यवस्था और अनियमितताओं का हवाला देते हुए इस मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को पूर्व उत्तर प्रदेश CM अखिलेश यादव ने 7 जून को उठाया था, जिसके बाद ये चर्चा में आ गया। 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया। उसी दिन इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के पास 3 शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से पहली धर्मसेना के संस्थापक अशोक दुबे की है, दूसरी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की और तीसरी करणी सेना की है। साफ है वायरल वीडियो बेंगलुरु के गली आंजनेय स्वामी मंदिर का है। सितंबर 2024 में वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को रुपए उठाते हुए देखा गया था। इस वीडियो का अयोध्या के राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर को पहले टकराते और फिर क्रैश होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा लगातार कर रहे हैं कि 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर्स का ये वीडियो है, जिसमें मशहूर म्यूजिशियन ओलिवर ट्री की मौत हो गई। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: 14 जून को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर के टकराने और क्रैश होने से कम 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में म्यूजिशियन ओलिवर ट्री शामिल थे, जो अपने वायरल हिट गानों एलियन बॉय और लाइफ गोज ऑन के लिए मशहूर थे, और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रिम भी थे, जिन्हें ऑनलाइन गैस्पी के नाम से जाना जाता था। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो एलियन बॉय और लाइफ गोज ऑन के लिए मशहूर थे, और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गैस्पर प्रिम भी थे, जिन्हें ऑनलाइन गैस्पी के नाम से जाना जाता था। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में कई हेलीकॉप्टर कुछ ताड़ के पेड़ों के पास कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद 2 हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए नजर आते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने भी रियो की घटना के संदर्भ में इस वीडियो के स्क्रीन ग्रैब का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: सिंगर सॉन्गराइटर ओलिवर ट्री की 14 जून को ब्राजील में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। वो 32 साल के थे। इस हादसे में कुल 6 लोगों की जान चली गई, और अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। और कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई थी, उसी का ये वीडियो है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे इस वीडियो की जांच की। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की, लेकिन सर्च के दौरान दावे की पुष्टि कराती हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नजर नहीं आई, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर हादसे में ओलिवर ट्री की मौत हुई उसका फुटेज भी सामने निकलकर आया था। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। वायरल हो रहा है वीडियो और ओरिजिनल वीडियो को देखने से फर्क साफ साफ नजर आ जाता है। ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर उतारा। देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि हेलीकॉप्टर हादसे का ये वीडियो कब और कहां का हो सकता है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
2: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 23 अप्रैल 2024 की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी की परेड की रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये घटना पेराक राज्य के लुमुत नेवल बेस पर हुई और मारे गए सभी लोग क्रू मेंबर थे। इसमें शामिल हेलीकॉप्टर एक AW-139 और एक फेनिक हेलीकॉप्टर थे। इसी मिली जानकारी के आधार पर हमने पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया, लगातार सर्च किया। इस दौरान हमें कई और प्रामाणिक रिपोर्ट मिली जिसमें यही जानकारी दी गई थी कि रॉयल मलेशियन नेवी की परेड के रिहर्सल के दौरान हवा में दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा फेक साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो अप्रैल 2024 का है जब रिहर्सल के दौरान मलेशियाई नौसेना के दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए थे। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच इस समय दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक छोटे से बच्चे का वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। अपनी बेहतरीन फुटबॉल स्किल्स की वजह से ये बच्चा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि बच्चे ने बिना जूते पहने जिस तरह फुटबॉल पर कंट्रोल दिखाया, उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जर्सी पहने मैदान में मौजूद है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसके खेल में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है वो किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं लगता। वीडियो की शुरुआत में बच्चा मैदान के कॉर्नर एरिया में खड़ा नजर आता है। इसके बाद वो कॉर्नर किक लेने की तैयारी करता है और फिर गेंद को ऐसी दिशा में मारता है कि वो सीधे गोल पोस्ट के अंदर पहुंच जाती है। लोग कई बार ये सोच लेते हैं कि कुछ सपने सिर्फ जवानी के लिए ही होते हैं, उम्र ढलने के बाद उन सपनों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दिल्ली की आयुषी नेगी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल आयुषी ने अपने 90 और 80 साल के दादा दादी को उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाकर उनका वर्षों पुराना सपना पूरा किया। इस दौरान आयुषी अपने दादा दादी को ट्रिप के लिए लंदन ले गई। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधकर बिल्कुल तेज रफ्तार से खीरा काट रहा है। वीडियो में जिस तरह से शख्स खीरे को काट रहा है वो देख हर कोई हैरान है। बिना देखे बिजली की रफ्तार से चाकू चलाते हुए खीरे को काटना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हाथ की उंगलियों के कटने का भी बहुत खतरा होता है। फिर भी शख्स को इस चीज का इतना अभ्यास है कि वो आंखें बंद कर भी काफी तेजी से खीरा काट ले रहा है। शख्स ने अपने इस कारनामे से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। उनका ये कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम वॉलेस वोंग है, जिन्हें लोग सिक्स पैक शेफ के नाम से भी जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हर देश के फुटबॉल फैंस अपने अपने अंदाज में अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से सामने आया ये वीडियो इस जुनून को एक अलग ही लेवल पर ले गया। इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पर एक भेड़ को लेकर चलता दिखाई दे रहा है। पहले नजर में ये एक नॉर्मल सा नजारा लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के साथ चल रही भेड़ का शरीर नीले और सफेद रंगों में रंगा हुआ है। ये रंग अर्जेंटीना की फुटबॉल टीमों का है, जो दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भेड़ उस व्यक्ति के पीछे पीछे शांति से चल रही है। उसे देख ऐसा लग रहा है जैसे वो भी अर्जेंटीना की फैन हो। इस अनोखे नजारे को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो गए हैं। कुत्ते, बिल्ली, मछली, तोता और चिड़िया तक आपने न जाने कितने जानवरों और पक्षियों को घरों में प्यार मिलते देखा होगा। इनको लोग अक्सर अपना परिवार ही मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा ही लाड प्यार आपने किसी कौवे के लिए देखा है क्या? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठी है, उसकी गोद में कौवा है। उल्टे लेटे हुए कौवे को ये महिला गुदगुदी करते वैसे ही खिला रही है जैसे किसी बच्चे को प्यार दिखाया जाता है। इस दौरान कौवा भी प्रतिक्रिया ऐसे दे रहा है जैसे वो एक बच्चा ही हो। इस वीडियो में कौवे को पिंजरे में नहीं रखा गया है। अगर ऐसा किया जाता तो ये गैर कानूनी है। भारतीय प्रजाति के कौवों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली मेट्रो से इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों को हैरान करने के साथ साथ खूब हंसने पर भी मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस बार यात्रियों के साथ बंदर भी मेट्रो ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर किसी तरह दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंच जाता है। आमतौर पर लोग ऐसे हालात में उम्मीद करते हैं कि जानवर थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही था। बंदर बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मेट्रो के डिब्बे के अंदर घूमता नजर आया। उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोजाना मेट्रो में सफर करता हो। मेट्रो में मौजूद यात्री भी पहले तो उसे हैरानी से देखते रहे। कुछ लोग उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहे थे, जबकि कुछ ने तुरंत अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बंदर आराम से एक सीट से दूसरी सीट के पास जाता रहा और यात्रियों को देखता रहा।

इसी दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। वीडियो में दिखाई देता है कि बंदर सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी गोदी में जाकर बैठ जाता है। अचानक सामने आए इस नन्हे मेहमान से लड़की घबरा जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन बंदर वहाँ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता। उल्टा वो लड़की की और करीब आने लगता है। इस पूरे सीन को देखकर आसपास बैठे लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल हंसी मजाक में बदल जाता है।

0: देख रहा बंदर अचानक ऐसे रिएक्ट करता है कि पूरा सीन पलट जाता है और लड़के को जान बचाकर पानी में कूदना पड़ता है। कैमरे में कैद ये मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे रील का रियल एक्शन बता रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: It's storming and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
3: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: अब गर्मी में कूल कूल एहसास कैसे लिया जाए, उसको लेकर खूब उपाय घर घर आजमाए जाते रहे हैं। वहीं पर घर से बाहर भी सरकार और लोकल बॉडीज जो हैं गर्मी से परेशान लोगों को कई जरूरी सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में जयपुर में राज्य सरकार की तरफ से भी एक खास पहल की गई है, देखिए।
5: राजस्थान की गर्मी के बारे में हर कोई जानता है और अब मौसम बदलते बदलते प्री मॉनसून का समय भी आ चुका है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पहल से जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर अम्ब्रेलास टूरिस्ट के लिए रखे गए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब टूरिज्म काफी ज्यादा कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे में समर वेकेशन पे टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ने अम्ब्रेलास रखे हैं, जिससे कोई भी ना ही बारिश और ना ही तेज गर्मी धूप की चपेट से परेशान हो। कुछ टूरिस्ट मेरे पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने ये अम्ब्रेलास लिए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनको ये पहल कैसी लगी। सर कहाँ से आए हैं आप?
6: हम नागपुर से आए हैं।
5: ये जो अम्ब्रेलास आपको मिले हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ये ऑप्शन जो है जो दिया जा रहा है घूमने के लिए कैसा लगा?
6: ये अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को हेल्प होंगी थोड़ा सा धूप से बचने के लिए, काफी अच्छी पहल है ये।
5: मैम कितनी परेशानियां आती है जब आप शेड में नहीं होते हैं, धूप में घूम रहे होते हैं, और ये ऑप्शन जब आपको मिला तो कितनी राहत मिली?
7: बहुत राहत मिली है और अच्छा लग रहा है धूप से बचने के लिए जो अम्ब्रेला दी गई है, अच्छी है पहल।
8: राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा किया है, ये जो छतरी दे रहे हैं ये बारिश में और इसमें भी धूप में भी बहुत ही अच्छी मतलब सुरक्षा हो रही है इसे। ये तो करना चाहिए क्योंकि पिंक सिटी है ये, लोग बाहर से आते हैं घूमते हैं और धूप बहुत परेशान करती है धूप, तो ये तो बहुत अच्छी पहल है कि राजस्थान सरकार ये छाता दे रही है।
9: असल में यहाँ पे गर्मी को ही देखने हम लोग आए थे क्योंकि लद्दाख में लोग सर्दियों में जाते हैं, तो गर्मियों में
5: बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो गर्मियां देखने जाते हैं, ये क्यों चुना गया? क्या था इसके पीछे?
9: असल में एक शादी भी थी यहाँ पे, उसी में आए थे, ठीक है। लेकिन
5: मतलब मैं ये समझ रही हूँ अगर आप गर्मियों में घूमना चाह रहे हैं तो मतलब आपको गर्मियां पसंद है और आप चाह के गर्मियों में आए हैं।
9: हाँ एक्चुअली में हमारे यहाँ रांची में बहुत ज्यादा गर्मी होती नहीं है, ठीक है, तो हम लोग गर्मियां देखने भी आ सकते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं।
5: यहाँ पे एक राजस्थान सरकार ने जो अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए हैं उससे आपको कितनी राहत मिल रही है या फिर आपको नॉर्मल धूप में चलना भी मंजूर?
10: नहीं, राहत तो बहुत मिल रही है, धूप में आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन अगर एक सुझाव आप पूछेंगी तो मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये कपल के लिए, दो तीन लोगों के लिए, बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी चाहत होती है कि मम्मी पापा ले रखे हैं तो मैं भी लूं, तो वो छोटे अम्ब्रेला भी अवेलेबल करवाए जा सकते हैं।
5: यहाँ पे ये देखते हुए कि कितने सारे अम्ब्रेलास हैं और ऑलरेडी रखे गए हैं तो कोई भी टूरिस्ट परेशान नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ एक चीज करनी है कि वो यहाँ आए और जहां उनको अम्ब्रेलास नजर आ रहे हैं वहां जो व्यक्ति हैं उनसे उसकी डिमांड करे कि हमें ये अम्ब्रेला जो है वो चाहिए। आपको आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने अम्ब्रेलास प्रोवाइड किए जाएंगे, सिर्फ आपका नाम वहां पर रजिस्टर किया जाएगा और वापस जब आप यहां से निकलेंगे तो आपको वो अम्ब्रेलास जमा करवाने रहेंगे। बस इतनी सी बात है, निशुल्क सेवाएं हैं जो राजस्थान सरकार की तरफ से सभी टूरिस्ट को दी जा रही है क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में राजस्थान की गर्मियां जितनी तेज होती हैं, जितनी प्रचंड होती हैं, तो टूरिज्म बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और ऐसे में यहाँ पे जितने पर्यटक आ सके उनको कोई परेशानी ना हो इसलिए ये खास पहल इस जगह पे की गई है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
4: चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें दिखाते हैं। देखिए, ब्रिटेन की राजधानी एक बार फिर से बदलाव के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आते हैं जाते हैं, सत्ता बदलती है और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे पर नए चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिस पर इन राजनीतिक उठापटक का कोई असर नहीं पड़ता और वो है लैरी द कैट। डाउनिंग स्ट्रीट के मशहूर चीफ माउसर लैरी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं।
11: ब्रिटेन के सियासी बवंडर के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये ठिकाना चर्चा में है। चर्चा केवल यहाँ प्रधानमंत्रियों की जल्द आवाजाही को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले उस सदस्य की वजह से भी है जो 2011 से ब्रिटेन की हर सियासी उथल पुथल का गवाह रहा है। नाम है लैरी और काम है इस इमारत में चूहों पर लगाम लगाना। लैरी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन से लेकर थ्रेसा तक और बोरिस जॉनसन से लेकर लिज़ ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टार्मर तक सबको आते जाते देखा है। मगर इतने सालों से इस इमारत में अगर कोई टिका रहा तो वो है खुद लैरी। इतने सालों में कई सरकारें बदली, कई चेहरे बदले, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का ये चार पैरों वाला अधिकारी नहीं बदला। लैरी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 15 फरवरी साल 2011 को लैरी को लंदन के बेट्रेसी एनिमल शेल्टर से रेस्क्यू कर डाउनिंग स्ट्रीट लाया गया। उसका यहाँ मिशन था चूहों पर लगाम लगाना और इसी के साथ उसे मिला एक बेहद खास पद जो था चीफ माउजर टू द कैबिनेट ऑफिस, यानी कैबिनेट कार्यालय का मुख्य चूहा पकड़ने वाला अधिकारी। लैरी की जिम्मेदारी सिर्फ चूहे पकड़ने तक सीमित नहीं है। मजाक मजाक में तो ये भी कहा जाता है कि वो वक्त वक्त पर विदेशी मेहमानों का स्वागत भी करता है, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखता है और कभी कभार तो इस ऐतिहासिक इमारत के फर्नीचर पर सोकर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है। कुल मिलाकर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद पत्रकारों के लिए भी लैरी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। लैरी की लोकप्रियता सिर्फ डाउनिंग स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। एक्स पर उसके पैरोडी अकाउंट को करीब 9 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में इसी अकाउंट से मजाकिया अंदाज में लिखी पोस्ट खूब वायरल हुई। इसमें लिखा था, मैंने कीर स्टार्मर का इस्तीफा अपने मुख्य सेवक के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट में लैरी की जगह कोई ले नहीं सकता। कई बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कैमरे लैरी का पीछा करते नजर आए, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। ब्रिटिश जनता लैरी को प्यार से गिफ्ट और ट्रीट भेजती है। जब नेता अपना सामान समेटकर यहां से विदा लेते हैं तब भी लैरी वहीं रहता है, उसी दरवाजे के पास, उसी आत्मविश्वास के साथ, मानो कह रहा हो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट का असली मालिक तो मैं ही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: Soccer's biggest stage is here, and we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह, सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को मिला पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा और एक्टर आर माधवन को मिला पद्मश्री सम्मान, कुल 65 हस्तियों को मिले पद्म अवार्ड्स। दार्जिलिंग में त्रिशक्ति कोर का कमाल, बालासर नदी पर 34 मीटर लंबा फुटब्रिज किया तैयार, सिलीगुड़ी और मिरी के बीच की लाइफलाइन फिर से बहाल। महाराष्ट्र में मॉनसून के एंट्री के बाद मौसम हुआ सुहाना, मुंबई समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक और उत्सव की गवाह बनी धर्मनगरी अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण, 11 पूज्य संतों ने विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। जून महीने में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी दरबार, 50 लाख भक्तों ने किए दर्शन, टूटे अब तक के सभी रिकॉर्ड्स। एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बर्थडे के एक दिन बाद केक के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा जन्मदिन मुबारक।

नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की यात्रा से लौटने के बाद अब इंडोनेशिया जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद बाबा बागेश्वर अब द्वीपों के देश इंडोनेशिया में भी सनातन का अलग जगाएंगे। बाबा बागेश्वर की श्रीलंका यात्रा पौराणिक कहानियों के कई यादगार अनुभवों से भरा हुआ है। श्रीलंका में बाबा बागेश्वर कई प्राचीन मंदिरों और बौद्ध मठों के अलावा उस अशोक वाटिका में भी गए जहां रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। अशोक वाटिका में मां जानकी और हनुमान जी की पौराणिक निशानियों को देखकर बागेश्वर पीठाधीश्वर भाव विभोर हो गए।

0: स्वामी विवेकानंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और स्वामी चिन्मयानंद जैसे भारतीय मनीषियों के बाद अब बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेशी धरती पर सनातन का अलख जगाने का बीड़ा उठाया है। विदेशी धरती पर वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने के लिए बागेश्वर बाबा 26 से 28 जून के बीच इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडोनेशिया की धरती पर वो सनातन कथा के माध्यम से मानव मात्र की एकता का संदेश देंगे। इंडोनेशिया से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर थे, जहां उन्होंने सनातन और बौद्ध धर्म के सात्विक दर्शन का संदेश दिया। बीते 18 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वहां की सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक महात्म्य के अनुसार स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। श्रीलंका जाने के बाद वो अशोक वाटिका में कैसे नहीं जाते, जहां राम भक्त हनुमान मां जानकी की खोज करते हुए पहुंचे थे। लिहाजा बागेश्वर बाबा श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर के उस सीता एलिया नामक गांव पहुंचे, जहां आज भी त्रेता युग की पौराणिक निशानियां मौजूद हैं। मान्यता है कि सीता एलिया गांव में मौजूद वाटिका वही अशोक वाटिका है, जहां लंकाधिपति रावण ने मां जानकी को हरण करने के बाद रखा था। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा श्रीलंका की उस पौराणिक दिव्य भूमि पर पहुंचकर भक्ति और आनंद के रस से सराबोर हो गए।
1: यहाँ सामने हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी प्रभु जी इस पेड़ के ऊपर बैठकर माता जानकी जी को मूत्र का दी। अशोक पेड़ के एकदम सामने बैठे हैं, ये अशोक वृक्ष है और हमें इस बात की खुशी है कि जहाँ हमारे प्रभु आए थे हम वहीं पर आ गए हैं देखने के लिए। वो आए थे लंका, हम आ गए श्रीलंका, और वो आए थे रावण की ठटरी वारने और लंका जलाने, हम आए हैं सनातनियों को जगाने। बहुत प्रसन्नता है, सुबह से मन हमारा बहुत खुश है बागेश्वर धाम के पागलों। और वो सामने वहाँ चरण है और नदी है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसमें माता जानकी जी स्नान करती थी ऐसा कहते थे, और इसी वृक्ष के नीचे माता जानकी जी विराजमान रहती थी। ये सामने पूरा बाग है, इसको अशोक वाटिका कहते हैं। सामने वो पर्वत है, उस पर्वत की टीला जो देखे बड़े बड़े पर्वत हैं और पर्वतों के मध्य में है, और ये बाग है जिसको अशोक वाटिका नाम दिया था, नाम था जहाँ माता जी जिस अशोक वाटिका में विराजमान थी। इतने घने जंगल में आदता ये अत्याचारी रावण हमारी माँ को लेकर के कहाँ आया था, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, इतनी सघन जंगलों में, इतने सघन जंगलों में, इतने दीहड़ वन में हनुमान दादा ने खोज लिया। यही तो हनुमान जी है, जो भक्ति की खोज सघनता में भी कर ले उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परम भक्त हनुमान कहते हैं।
0: मान्यता है कि अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जब पहली बार चरण रखा तो वहाँ दिव्य अलौकिक पद निशान बन गए। हनुमान भक्त बागेश्वर बाबा अशोक वाटिका में हनुमान जी के चरण चिन्ह के पास भी पहुँचे और अपने आराध्य की पावन निशानी के दर्शन कर भावुक हो गए।
1: जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर श्रीलंका की यात्रा में जहाँ हनुमान जी का चरण है वो आपको यहाँ दर्शन करवा रहे हैं। हनुमान दादा का विराट चरण है और यहीं पर उन्होंने विराट दर्शन माता जानकी जी के दिए थे। और ये पीछे अशोक का पेड़ लगा हुआ है जिस वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई थी, पल पल राम जी को याद करती थी, इसी वृक्ष के ऊपर से हनुमान जी ने मुद्रिका को डाला। ये वो सरोवर है, लोग मान्यता है कि यही माता जानकी जी स्नान करती थी, और ये वो विराट चरणों का चिन्ह है। यदि आप दर्शन कर पाएंगे तो हम श्रीलंका की यात्रा अशोक वाटिका में हैं, जहाँ माता जानकी जी ने एक एक पल श्री राम की याद में बिताए थे। आप सब वहीं से हनुमान दादा के विराट चरण चिन्ह का दर्शन।
0: काबिले गौर है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रीलंका में सनातन धर्म से जुड़े अनेक प्राचीन मंदिर और सिद्ध मठ हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य वसुधैव कुटुम्बकम के सनातन जय घोष के साथ ही सिद्ध स्थानों पर जाकर वहां के आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाना है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागेश्वर पीठाधीश्वर कोलंबो स्थित प्राचीन मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुँचे। और माँ काली की पूरी आस्था और विधि विधान के साथ पूजा आराधना। खास बात ये कि बाबा बागेश्वर जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर पहुँचे तो पूरा परिसर जय श्री राम के पावन जयकारों से गुंजायमान हो गया।
2: जय श्री राम,
3: जय श्री राम,
2: जय श्री राम,
3: जय श्री राम।
0: जय श्री राम के जयकारों के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मयूरापति भद्रकाली मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा की थाल में कमल पुष्प और दूसरे नैवेद्यों को लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया।
4: पद्माक्षे पद्म संभवे तन्मे वेद पद्माक्षे येन सोप्यं लभाम्यहम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे यशदां देवी सर्वकामां च देवि मे पद्मानने पद्मवे पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मददाजदाक्षी।
0: कोलंबो के प्राचीन भद्रकाली मंदिर में बाबा बागेश्वर काफी देर तक ठहरे और इस दौरान शांत चित्त होकर पूरे भक्ति भाव के साथ मां के विग्रह का दर्शन पूजन किया। अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर बौद्ध और सनातन धर्म की बुनियादी एकता का संदेश देने वाले गंगार माया मंदिर भी पहुंचे और भगवान बुद्ध की स्वर्णाभ प्रतिमा का पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन किया। आपको बता दें कि कोलंबो स्थित गंगार माया मंदिर सनातन और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम है, जहां भगवान बुद्ध के अलावा भगवान कृष्ण और दूसरे देवी देवताओं की अनुपम प्रतिमाएं स्थापित हैं। बाबा बागेश्वर ने इस मंदिर में दीप प्रज्वलित करने के साथ ही भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं के दर्शन किए।
5: श्रीलंका जैसे ही हम पहुंचे एक ऐसे टेंपल पे पहुंचे जहां सनातन संस्कृति और बुद्ध परंपरा दोनों का संयोग हो रहा, दोनों का एक अभूतपूर्व हमने अनूठा संगम देखा। यहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, बोधि वृक्ष और भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं, जहाँ लोग दर्शन करते हैं। भारत की परंपरा और श्रीलंका की परंपरा दोनों का यहाँ पर संयोग और मेल देखा। हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी यहाँ पहुंचे थे और भारत से जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति या जो भी आध्यात्मिक परंपरा के प्रति विचारधारा रखते हैं वो यहाँ सब पहुंचते हैं। हम यही कहना चाहेंगे अंततो गत्वा भारत सबको अपना बनाता है, भारतीय परंपरा सबको अपना बनाती है, इसलिए भारत को परिवार कहा जाता, भारत को माँ कहा जाता, क्योंकि माँ सबके लिए ममत्व रखती है, ममता रखती है।
0: श्रीलंका स्थित बौद्ध और सनातन मंदिरों और मठों में जाकर आध्यात्मिक लाभ लेने के बाद

0: प्रभु श्री राम माता जानकी जी के स्थानों का दर्शन करने जाए और श्री लंका के लोग राम लला के दर्शन करने जाए.
1: Dalji's hoping that he meets for India, come to see the Ramayana trail over there, and Sri Lankans come to Ayodhya to see Lord Rama's birthday.
0: People to people.
1: People will connect through Ramayana.
0: उसका सर्वोत्तम उपाय ही है रामायण के दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएंगे.
2: श्रीलंका की धरती पर जाकर बाबा बागेश्वर राम कथा की सरिता प्रभावित न करते, ये भला कैसे हो सकता है. श्रीलंका की धरती पर राम कथा के लिए बाबा ने अद्भुत स्थान का चयन किया.
3: कथा में भी सरोवर है.
2: बाबा ने समंदर तट पर पंडाल लगाकर लहरों की सरसराहट के बीच राम कथा की कल कल सरिता प्रवाहित की.
3: पावन धरती को कोटि कोटि प्रणाम करते. अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दर्श हो जाए. बागेश्वर परिवार के उन गिने चुने पुष्पों को हम लेकर यहाँ आए जिनको रामेश्वरम महादेव ने बुलाया और जगह हमको बहुत प्यारी मिल गई. सामने सागर है, इस तरफ हम हैं. समुद्र तट के किनारे भगवत चर्चा हो रही. क्या अद्भुत संगम है, क्या अद्भुत. एक तरफ महादेव बैठे, एक तरफ सागर है, तीसरी तरफ कथा की रसधार बह रही है. सागर में भी डुबकी लगाओ, दर्शन में भी डूब जाओ और कथा में भी सरोवर हो जाओ.
2: साफ है कि अपनी 4 दिवसीय श्रीलंका यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने विदेशी धरती से सनातन एकता और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को दिया. इक्कीस जून को बाबा बागेश्वर श्रीलंका से वापस लौटकर मुंबई स्थित भिवंडी पहुंचे हैं, जहां बागेश्वर बालाजी सनातन मठ है. बाबा बागेश्वर अब अपनी इंडोनेशिया यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो 26 से 28 जून के बीच है. इंडोनेशिया में बाबा बागेश्वर की यात्रा का महत्व इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया में सनातन संस्कृति की प्राचीन निशानियां आज भी बहुतायत में मौजूद हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
4: बाबा बागेश्वर पिछले कुछ वर्षों में लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं और 7 समंदर पार जाकर सनातन धर्म का अलौकिक संदेश दे रहे हैं. विदेशों में बाबा बागेश्वर न सिर्फ राम कथा सुनाते हैं बल्कि अपना चमत्कारिक दरबार भी लगाते हैं. इस दौरान विदेशों में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा स्थानीय मूल निवासी भी बाबा की आध्यात्मिक सिद्धियों को देखकर कौतूहल से भर जाते हैं.

0: नहीं है और गौरव का विषय है। जहां पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व हमारा परिवार है और सबका मंगल हो, ये सिर्फ भारत देश के सनातनी लोग कहते हैं।
1: Only Hanuman is greatest management guru on this universe. इसलिए surrender हो जाओ, राम गाओ। I cannot speak in English, but I understand your feelings. हम आपकी भावना से बहुत सुंदर स्वागत, वेलकम टू यू हनुमान कथा। रुको प्लीज वेट।

0: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के मन की बात की पर्ची लिखने वाले बागेश्वर बाबा विदेशी धरती पर भी सनातन धर्म का परचम लहराते रहे हैं।
1: जय श्री राम।
2: बागेश्वर धाम की जय।
0: सात समंदर पार भी उनकी सिद्धि की नुमाइश

0: आशानी में लेकर चलते हैं, क्या ऑटोमोबाइल की अनोखी दुनिया में आपके लिए चलते हैं।
1: अक्सर कहा गया है कि शौक भी बड़ी चीज है, वरना कौन रातों की नींद छोड़कर सपनों को सजाता है। कुछ ऐसे ही सपनों के घर को सजाने में जुटे हैं संदीप गज्जर, जो सनी के नाम से भी मशहूर हैं। तो वहीं इनका घर कुछ बेहद अनोखी और खास वजहों से मशहूर है।
2: घर तो आपने काफी देखे होंगे, बंगले भी आपने काफी देखे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा घर देखा है जो किसी म्यूजियम से कम आपको ना लगे? घर के गैराज की बात की जाए तो वो एकदम म्यूजियम लगे, घर के किचन से लेके बेडरूम तक की बात की जाए तो हर जगह आपको एक मोटरसाइकिल, मोटर की जितनी भी चीजें हैं उसका जुनून नजर आए। डेफिनेटली नहीं देखा होगा, और वही दिखाने के लिए आज मैं आपको नोएडा लेकर आई हूँ।
1: नोएडा में बना ये घर भले ही बाहर से एकदम सामान्य ही नजर आएगा, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होते ही एक नई दुनिया से आप रूबरू होंगे। घर की दीवारें करीब 2000 हॉट व्हील्स कारों से सजी है। छोटे छोटे मॉडल्स का ये बड़ा कलेक्शन सनी के ऑटोमोबाइल प्रेम को बखूबी दर्शा भी रहा है। यानी दीवारों पर पेंटिंग्स की जगह सजी लगभग 40 साल पुरानी ये हजारों रियल मॉडल्स की कारें, स्पोर्ट्स बाइक्स आपको किसी मोटो विला का ही एहसास कराएंगी। यही नहीं, सनी के कलेक्शन में ही मैन से लेकर बैटमैन जैसे सुपर हीरोज के साथ कई और कॉमिक कैरेक्टर्स भी उनके आशियाने को बेहद पैशनेट और पावरफुल फील दे रहे हैं।
2: जैसे अंदर एंटर करोगे आप ये देखिए, आपको हर एक कोने में हर एक चीज नजर आने वाली है। और जिस तरीके से हमने इसको मोटो वेला बोला है, यहाँ पर सिर्फ बाइक्स या फिर कार्स का कलेक्शन ही, आपको कुछ इस तरीके की चीजें भी दिखने वाली है जो लोग इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है।
1: सनी ने अपने घर के हर कोने को ऑटोमोबाइल कल्चर की चाशनी में भिगोया हुआ है। यहाँ किचन से लेकर मल्टी लेवल मॉडल गैराज, वेपन वॉल, बस ये मानिए कि इस घर का हर कोना सनी की पसंद और व्यक्तित्व की एक नई कहानी को बयां कर रहा है।
2: फ्रिज को भी नहीं छोड़ा आपने?
3: नहीं छोड़ दिया एक्चुअली, मैं अगर अच्छा। मैं मेरा पास चल रहा तो मैं बहुत कुछ करता उसके ऊपर।
2: एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, ये फ्रिज है जो ये आप देख रहे हैं, बट इसको भी किस तरीके से इन्होंने कस्टमाइज किया है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक जो है वो दिखने वाली है।
1: यही नहीं, सनी हेलमेट डिजाइनिंग का भी शौक रखते हैं। उनके डिजाइन किए गए कई हेलमेट्स और रग्स उनकी क्रिएटिविटी पैशन को ही झलका रहे हैं, और ये सब कुछ करना उन्हें सुकून ही देता आया है।
3: मेरा प्रोफेशन जो है, आई थिंक इट्स टू इंस्पायर पीपल अल्टीमेटली कि यू कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट डिस्पाइट आपके पास कोई भी रेस्ट्रेंट्स हो। बिकॉज ये जो आप देख रहे हो 3 फ्लोर का, इससे पहले मैं जहाँ पे था वो सिर्फ एक कमरा था, और उस एक कमरे को भी मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि किसी ने नहीं देखा होगा। सो इट्स जस्ट अबाउट योर थिंकिंग। लाइफ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें मिलती जाएगी, लेकिन थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए।
1: आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑटोमोबाइल की दुनिया समेटे इस खूबसूरत और अनोखी क्रिएटिव गैलरी में फोटोग्राफी का पैशन भी सनी के दिल के बेहद करीब रहा है।
3: आई थिंक फोटोग्राफी एक ऐसी स्किल है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, विच इज वेरी बेसिक।
1: आज के दौर में जहां लोग अपने शौक को समय के साथ पीछे छोड़ देते हैं, वहीं सनी ने अपने जुनून और सपने को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। उसकी एक झलक उनके बेडरूम में भी नजर आ रही है। कहते भी हैं कि शौक वो नहीं जो वक्त काटने के लिए किया जाए, शौक वो है जिसके लिए वक्त निकाला जाए, क्योंकि यही शौक इंसान की पहचान को और भी खूबसूरत और कलात्मक बना देता है। और जिसे अपने शौक से मोहब्बत हो जाए, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
2: तो सनी के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि उनका जुनून है, जिसे बेहद ही खूबसूरती के साथ सनी ने डिजाइन किया है। बहुत सालों की मेहनत है, बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है, और उसके बाद ये पूरा घर जिसे हम मोटो विला बोल रहे हैं ये पूरा बनाया गया है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.